FM 103.4 MHz पर ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है। आज बुधवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ माह की 13वीं तिथि, तदनुसार 3 जून सन 2026। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 5:56 और 40 सेकेंड हो रहे हैं। आरंभ होती है हमारी आज की सभा।

ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है FM 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। इस समय स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 6 बजने वाले हैं। थोड़ी ही देर में आप हिंदी समाचार सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली से। समाचार के तुरंत बाद हम आपको लिए चलेंगे आकाशवाणी के विविध भारती केंद्र।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। सरकार ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE द्वारा ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली के लिए सेवा अनुबंध से संबंधित मामलों की जांच के लिए एक सदस्यीय समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता क्षमता निर्माण आयोग की अध्यक्ष एस राधा चौहान करेंगी। समिति एक माह के भीतर कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। बोर्ड ने कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों के लिए उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियों में पाई गई त्रुटियों के सत्यापन और उत्तरों के पुनर्मूल्यांकन के लिए ऑनलाइन पोर्टल खोल दिया है। वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिग्ज आज से 4 दिन की भारत यात्रा पर रहेंगी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कल नई दिल्ली में बताया कि उनके साथ उनके मंत्रिमंडल के प्रमुख मंत्री भी होंगे और वे इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगी।
1: विजिट ऑफ द एक्टिंग प्रेसिडेंट।
2: वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति की भारत यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगी। इन वार्ताओं में भारत वेनेजुएला संबंधों के सभी पहलुओं पर चर्चा होगी और ऊर्जा, व्यापार, निवेश, फार्मास्यूटिकल्स, स्वास्थ्य सेवा, परिवहन तथा नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्रों में सहयोग के अवसरों की खोज पर भी चर्चा होगी।
1: ट्रांसपोर्टेशन एंड रिन्यूएबल एनर्जी।
0: भारत ने नेपाल के साथ सीमा विवाद सुलझाने में तीसरे पक्ष की किसी भी तरह की भूमिका को खारिज कर दिया है। कुछ दिन पहले नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने लंबित सीमा विवाद को सुलझाने में चीन और ब्रिटेन के शामिल होने की मांग की थी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि सीमा मुद्दों के सभी पहलुओं को सुलझाने के लिए स्थापित द्विपक्षीय तंत्र मौजूद है।
3: भारत नेपाल सीमा का लगभग 98% हिस्सा निर्धारित हो चुका है। सीमा के निर्धारित हिस्सों में सीमा पार कब्जे और नो मैन्स लैंड पर अतिक्रमण के मामले भी हैं, जिसका संयुक्त रूप से मानचित्रण किया जा रहा है। हमने सीमा संबंधित सभी मामलों से निपटने के लिए द्विपक्षीय तंत्र स्थापित किए हैं। भारत और नेपाल के बीच जो भी द्विपक्षीय मामले हैं, उसमें किसी तरह से तीसरे पक्ष की कोई भूमिका नहीं है।
0: जर्मनी से होकर हवाई मार्ग से यात्रा करने वाले भारतीय नागरिकों के लिए ट्रांजिट वीज़ा की अनिवार्यता आज से समाप्त हो गई है। भारत ने इस फैसले का स्वागत किया है। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस नई व्यवस्था से भारत और जर्मनी के बीच लोगों के आपसी संपर्क और संबंधों को मजबूती मिलेगी। जम्मू कश्मीर में पंचायत और जिला विकास परिषद चुनावों की तैयारियों की समीक्षा के लिए राज्य निर्वाचन आयोग की 2 दिवसीय उच्च स्तरीय बैठक आज से शुरू होगी। बैठक की अध्यक्षता राज्य निर्वाचन आयुक्त शांतमनु करेंगे। जनजातीय कार्य मंत्रालय आज नई दिल्ली में एकीकृत जनजातीय विकास एजेंसियों और एकीकृत जनजातीय विकास परियोजनाओं को

0: दृढ़ करने पर राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित करेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगी। यह आयोजन जनजातीय गरिमा उत्सव 2026 के अंतर्गत हो रहा है। पश्चिम बंगाल सरकार आज अन्नपूर्णा योजना का शुभारंभ करेगी। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी इसका औपचारिक उद्घाटन करेंगे। मुख्यमंत्री के संबोधन के तुरंत बाद लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र वितरित किए जाएंगे। प्रत्येक ब्लॉक नगर पालिका और कोलकाता नगर निगम क्षेत्र में चयनित 100 लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र वितरित किए जाएंगे। बांग्लादेश के विदेश मंत्री खलीलुर रहमान संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं। उनका कार्यकाल इस वर्ष सितंबर से शुरू होगा। तीसरे और अंतिम महिला T20 क्रिकेट मैच में भारत को इंग्लैंड से 6 विकेट से हार का सामना करना पड़ा। इंग्लैंड ने श्रृंखला 2-1 से अपने नाम कर ली है। इंग्लैंड के टॉन्टन में खेले गए इस मुकाबले में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड को 181 रन का लक्ष्य दिया। इंग्लैंड ने 18 ओवर और 3 गेंद में 4 विकेट पर 184 रन बनाकर मैच अपने नाम कर लिया। मौसम विभाग ने आंध्र प्रदेश के तटवर्ती इलाकों गुजरात, ओडिशा, राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश में गरज और तेज हवाओं के साथ वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, सिक्किम में भी वर्षा की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदनवार।
2: ये है विविध भारती।
3: प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदनवार।

वंदनवार कार्यक्रम में सबसे पहले आज का चिंतन। विद्वानों का कथन है, मन में संतोष होना स्वर्ग की प्राप्ति से भी बढ़कर है। संतोष ही सबसे बड़ा सुख है। संतोष यदि मन में भली भांति प्रतिष्ठित हो जाए तो उससे बढ़कर संसार में कुछ भी नहीं है। ये था आज का चिंतन। अब सुनिए भक्ति संगीत।

आप सुन रहे हैं देश की सुरीली धड़कन विविध भारती। झरोखा में सुनिए आज प्रसारित होने वाले कुछ प्रमुख कार्यक्रमों का विवरण। अभी सुबह 6:35 पर सुनिए श्री रामचरितमानस पाठ। आज सुनिए भाग 208। 6:45 पर आप सुनेंगे संगीत सरिता में श्रृंखला सिने संगीत में तबले का दौर। इस श्रृंखला का तीसरा भाग सुनवाया जाएगा। कलाकार हैं तबला वादक रविंद्र खासनीस, प्रस्तुति मनीषा जैन की है। इस कार्यक्रम का पुनः प्रसारण आप आज शाम 6:45 पर भी सुन सकते हैं। 7 सुनिए कार्यक्रम भूले बिसरे गीत हमेरा ही प्यार के। ये कार्यक्रम आप सुनेंगे 7:30 से। सुबह 8:15 पर त्रिवेणी का प्रसारण होगा। प्रस्तुत करता है अनुश्री पाठक। 8:30 पर सुनिए चित्रलोक। 9:30 पर आज के फनकार कार्यक्रम केंद्रित होगा अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा पर। प्रस्तुत करता है रमेश गोखले। 10 पिटारा में सेल्यूलाइट के सितारे। इस कार्यक्रम में सुनिए बांसुरी वादक पारसनाथ से यूनुस खान की बातचीत का दूसरा भाग। प्रस्तुत करता है जुबेर खान। 11 रंग तरंग कार्यक्रम होगा। दोपहर 12:05 पर यादों की महफिल सजेगी और 1 से तय करेंगे कार्यक्रम सुरीला सफर के साथ सुरीले गानों का सफर। 2 त्रिवेणी कार्यक्रम सुनिएगा। 2:30 पर सदाबहार नगमे सुनवाए जाएंगे। 3 सखी सहेली कार्यक्रम का वक्त है। प्रस्तुत करता है अनुश्री पाठक। 4 पिटारा में आज के मेहमान कार्यक्रम में सुनिए डॉक्टर गायत्री आहूजा से ममता सिंह की बातचीत। प्रस्तुत करता है जुबेर खान। 5:30 पर कार्यक्रम होगा तराने नए पुराने। 6:35 पर आप सुनिए संध्या रंजन। 7 जयमाला कार्यक्रम पेश किया जाएगा और 7:45 पर इंद्रधनुष में सुनिए रागों पर आधारित फिल्म संगीत राग अनुराग कार्यक्रम में। रात 8 हवा महल में सुनिए नाटिका चिट्ठी। लेखक हैं नंदलाल पाठक और

और निर्देशक हैं सीबी मंडाली। 8:15 पर सुनिए चित्रलोक। 9:00 आप सुनेंगे कार्यक्रम आपके लिए। आज रात 9:30 पर आज के फनकार कार्यक्रम सुनिए, जो केंद्रित है अभिनेता आर माधवन पर। प्रस्तुत करता है तेजश्री कांबले।

11 बजे से आप सुनेंगे कार्यक्रम रंग तरंग। झरोखा में अभी आप सुन रहे थे आज प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों का विवरण।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन, प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस पाठ। आज सुनिए भाग 208।

भरत को चतुरंगिणी सेना के साथ चित्रकूट आते देख निषादों की भांति लक्ष्मण के मन में भी आशंका हुई कि राजपद पाकर भरत को प्रभुता का मद हो गया है और श्री राम को वन में अकेला असहाय समझ वे युद्ध करने आ रहे हैं। अतः लक्ष्मण ने भरत से युद्ध करने की ठान ली। श्री राम के चरणों की वंदना कर चरण रज माथे से लगाते हुए बोले, मेरा कहना अनुचित न मानिएगा। भरत ने वैसे भी हमारा कम अहित नहीं किया है और अब युद्ध करने आ रहे हैं, आखिर हम ये सब कहाँ तक सहन करेंगे, जबकि आप हमारे साथ हैं और धनुष हमारे हाथ में है। अग्रज से युद्ध की आज्ञा मांगते हुए लक्ष्मण साक्षात वीर रस के अवतार दिख रहे थे। सिर पर जटाजूट और कमर में बंधा बाणों भरा तरकस, भरत का सामना करने को वो पूरी तरह तैयार हैं। उपस्थित समाज के वहां एकत्रित होने के कारण उनका हौसला और भी बढ़ गया है। मन में दृढ़ निश्चय हो गया है कि आज वो अपना सारा पिछला क्रोध अच्छी तरह प्रकट करेंगे। क्रोधित लक्ष्मण को युद्ध के लिए उद्यत देख सारा जगत भयभीत हो गया। तभी आकाशवाणी हुई, हे तात, जो बिना विचारे जल्दी में कुछ करके बाद में पछताते हैं उन्हें बुद्धिमान नहीं कहा जा सकता।

0: श्रोताओं नमस्कार। सिने संगीत में तबले का दौर, संगीत सरिता कार्यक्रम में इन दिनों आप सुन रहे हैं ये श्रृंखला। इस श्रृंखला के लिए हमारे मेहमान हैं आकाशवाणी के संगीतकार श्री रविंद्र खासनीस। इनसे बातचीत कर रहे हैं जयंत पात्रीकर। प्रस्तुत है इस श्रृंखला की तीसरी कड़ी।
1: नमस्कार श्रोताओं, फिल्म संगीत में तबले का दौर इस श्रृंखला में हम चर्चा कर रहे हैं हमारे अतिथि श्री रविंद्र खासनीस जी से। रविंद्र जी, जब संगीत की रचना होती है तो उसमें लय ताल का विचार करना क्यों जरूरी है?
2: देखो, सुर और ताल
1: जी,
2: ये संगीत की बुनियाद है। मतलब वो एक रथ के दो पहिए हैं, और जब वो दोनों पहिए सही तरीके से चलते हैं, एक साथ चलते हैं, तभी वो रथ आगे जाता है या अपने मंजिल की तरफ बढ़ता है। मतलब संगीत की जो मधुरता है वो सुर और ताल है। तो सुर और ताल में हम अभी तो ताल का विचार कर रहे हैं
1: जी,
2: तो ताल का जो अंग है वो है लय। अभी किसी भी गीत को हम लोग जब सुरों में ढालते हैं
1: हाँ,
2: तो वो एक गीत की तर्ज बन गई। अब वो तर्ज बनने के बाद अक्सर जो संगीतकार होते हैं वो इसका विचार जरूर करते हैं कि ये जो संगीत हमने दिया है इसको किस लय में होना चाहिए। मतलब उसका ताल कौन सा होना चाहिए और वो ताल जो है वो किस लय में होना चाहिए
1: जी।
2: तो जैसे हमारा जो काव्य है जिसकी संगीत रचना की गई है, तो काव्य की अंदर ही उसके एक लय छुपी रहती है।
1: अच्छा,
2: मतलब हर कोई काव्य जो है वो काव्य एक लय भी दर्शाता है। वो लय जो है उस लय को संगीतकार पकड़ता है।

0: श्रोताओं, मदन मोहन साहब का संगीतबद्ध किया हुआ दस्तक फिल्म का गीत आप सुन रहे थे लता जी के स्वर में। इस गीत में अद्धा तीन ताल का सुंदर आविष्कार हमने देखा और इसी के साथ आज श्रृंखला की ये कड़ी अब संपन्न होती है। अगली कड़ी में हम आपसे फिर मिलेंगे। आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
1: सिने संगीत में तबले का दौर, संगीत सरिता में इन दिनों आप सुन रहे हैं ये श्रृंखला। ये थी इस श्रृंखला की तीसरी कड़ी। इस श्रृंखला में हमारे अतिथि थे श्री रविंद्र खासनीस। इनसे बातचीत की जयंत पात्रीकर ने।
0: विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता मनीषा।

0: के कहाँ जाओगे?
1: अच्छा?
0: तुम बड़ा दुख पाओगे। अब जान भी लो, पहचान भी लो, नजरें ये प्यार की हम।

0: अभी आप सुन रहे थे श्रीमती 420 फिल्म का ये गाना, गीता दत्त की आवाज में, जानिसार अख्तर के बोल थे और ओपी नैयर का संगीत था।
1: ओ, निगाहें मस्ताना देख, समा है सुहाना, तीर दिल पे चला के

0: मस्ताना।
1: किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाज़ों में आप सुन रहे थे पेइंग गेस्ट फिल्म का गाना। शब्द रचना मजरू सुल्तानपुरी की थी और संगीत से सवारा था सचिन देव बर्मन ने।
2: सुनिए
3: कहिए
4: सुनिए एक खुशखबरी,
3: कहिए ना,
4: आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखियां फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर। रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 02240024662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपनी पसंद के गाने।

0: फिल्म पटरानी का ये गाना आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज़ में। शैलेंद्र के बोलों को संगीत में पिरोया था शंकर जय किशन ने।
1: कुछ रेशमी ख्वाब, कुछ मखमली अंदाज,

सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल। सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे।

देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। ये कार्यक्रम जारी रहेगा इस छोटे से अंतराल के बाद।

फिल्म जलदीप का ये गाना आप सुन रहे थे सुधा मल्होत्रा और की आवाज़ में। कैफ इरफानी के बोल थे जिन्हें सुरों में पिरोया था स्नेहल भाटकर ने। और अब सुनते हैं गोस्वामी तुलसीदास फिल्म का ये गाना मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। बी डी मिश्रा के लिखे इस गीत को संगीत से संवारा है एस एन त्रिपाठी ने।

आइए अब सुनते हैं फिल्म चार मीनार का ये गाना आशा भोसले की आवाज में। विश्वामित्र आदिल के बोल हैं, संगीत है शार्दुल क्वात्रा का।

0: जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली तनिया।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास भूले बिसरे गीत।
3: तुम्हारी याद सताती है
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

अभी आप सुन रहे थे विविध भारती का प्रसारण। इसे हम अपने आकाशवाणी सासाराम से रिले कर रहे थे। ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है FM 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 7:30 हो रहे हैं। अब आप सुनेंगे प्रातःकालीन सूचना कार्यक्रम नमस्ते रोहतास।

हर सुबह आपकी इतनी सुहानी हो जाए, गम की हर बात पुरानी हो जाए, दे जाए इतनी खुशियाँ यह नया दिन आप सभी को कि खुशी भी आप सभी की दीवानी हो जाए। बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन आप सभी श्रोताओं का कार्यक्रम नमस्ते रोहतास में। सभी सुनने वालों को रागिनी का प्यार भरा नमस्कार। और इसी के साथ कार्यक्रम की शुरुआत आइए करें महान संत कबीर के सुविचार से। कबीर ने कहा है कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आप हूँ शीतल होए। जी हाँ, हमेशा ऐसी मीठी और विनम्र बोली बोलनी चाहिए जिससे दूसरों को भी खुशी हो और हमारा भी मन प्रसन्नचित और शांत रहे। श्रोताओं, कबीर के इस सुविचार के बाद अब आइए एक नज़र डालते हैं 3 जून के इतिहास पर। श्रोताओं, 3 जून का दिन भारतीय इतिहास में एक अत्यंत महत्वपूर्ण और संवेदनशील तारीख है। इसी दिन 1947 में भारत के विभाजन और पाकिस्तान के निर्माण का ऐलान किया गया था। जी हाँ, ब्रिटिश सरकार में भारत के अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने

भारत और पाकिस्तान के बंटवारे का आधिकारिक ऐलान आज ही के दिन किया था। 3 जून को 1918 में महात्मा गांधी की अध्यक्षता में इंदौर में हिंदी साहित्य सम्मेलन का आयोजन हुआ था। इसी सम्मेलन में पारित प्रस्ताव के माध्यम से हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया गया था। 1984 में 3 जून को अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन ब्लू स्टार शुरू किया गया था। अब आइए थोड़ी जानकारी लेते हैं भारत के प्रमुख व्यक्तियों के जन्म और निधन के बारे में। 3 जून को 1890 में सीमांत गांधी के नाम से मशहूर खान अब्दुल गफ्फार खान का जन्म हुआ था। दुनिया के महान मुक्केबाजों में से एक मोहम्मद अली का निधन 3 जून को 2016 में हो गया था। श्रोताओं, अंतर्राष्ट्रीय दिवस की बात करें तो हर साल 3 जून को पूरे विश्व में विश्व साइकिल दिवस मनाया जाता है। तो ये थोड़ी सी जानकारी हमने साझा की आज के दिन यानी 3 जून के इतिहास के बारे में। और अब चलिए चलते हैं भक्ति संगीत की दुनिया में। सुनवाते हैं आपको अजय गोगावले के स्वर में अग्निपथ फिल्म का ये भक्ति गीत। अमिताभ भट्टाचार्य के बोल हैं, अजय अतुल का संगीत है। तो आइए सुनते हैं ये भक्ति रचना।

ये भक्ति रचना हमने अभी आपको सुनवाया अग्निपथ फिल्म से अजय गोगावले के स्वर में। यह आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है और आप सुन रहे हैं प्रातःकालीन सूचना कार्यक्रम नमस्ते रोहतास। नमस्ते रोहतास कार्यक्रम में अब आइए एक नज़र डालते हैं स्थानीय सामाजिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों पर। भीषण गर्मी एवं लू को देखते हुए कैमूर जिले के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों की शैक्षणिक गतिविधियों पर 4 जून तक रोक लगा दी गई है। कैमूर जिले में लगातार बढ़ते तापमान और भीषण गर्मी के कारण आमजन विशेषकर छोटे बच्चों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशंका को देखते हुए जिला प्रशासन ने महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। जिला दंडाधिकारी सह समाहर्ता कैमूर श्री तीन कुमार सिंह भारतीय प्रशासनिक सेवा द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिले के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में पूर्वाह्न 9:30 बजे के बाद संचालित होने वाली सभी शैक्षणिक गतिविधियों पर 4 जून 2026 तक प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी हुआ है। जारी आदेश के अनुसार कैमूर जिले में व्याप्त भीषण गर्मी एवं लू की स्थिति को देखते हुए बच्चों की सुरक्षा एवं स्वास्थ्य संरक्षण को सर्वोच्च प्राथमिकता दिया गया है। जिला प्रशासन ने अभिभावकों से अपील की है कि वे बच्चों को अत्यधिक गर्मी एवं लू से बचाने हेतु अन्य आवश्यक सावधानियां भी बरतें तथा प्रशासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों का आवश्यक रूप से पालन करें।

को हाईटेक बनाने की तैयारी शुरू हो गई है। डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग की नई व्यवस्था के तहत जिले में संचालित मोबाइल वेटनरी वैन को अब सीसीटीवी कैमरा, जीपीएस सिस्टम से लैस किया जाएगा। पशुपालकों को समय पर सेवा उपलब्ध कराई जाएगी। जिला पशुपालन पदाधिकारी ने बताया है कि मोबाइल वेटनरी वैन को हॉस्पिटल ऑन व्हील के रूप में विकसित करने की योजना पर काम चल रहा है। वैन में ऑनलाइन पर्ची, पशुओं के इलाज का डिजिटल रिकॉर्ड, पशुपालकों की जानकारी दर्ज करने की व्यवस्था की जाएगी। इससे पशुओं के इलाज प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी, सेवाओं को निगरानी आसान होगी। साथ ही उन्होंने बताया कि पहले कई क्षेत्रों से शिकायत मिलती थी कि मोबाइल वेटनरी वैन समय पर गाँव तक नहीं पहुँच रही है, लेकिन अब जीपीएस सिस्टम के जरिए वैन की लोकेशन ट्रैक की जा सकेगी। साथ ही सीसीटीवी कैमरे की मदद से चिकित्सकों, कर्मियों की उपस्थिति की निगरानी भी होगी। रोहतास जिला पशुपालन पदाधिकारी ने कहा कि टोल फ्री नंबर 1962 यानी 1962 पर कॉल करने के बाद निर्धारित समय में वैन पशुपालकों तक पहुंच जाएगी। वैन में दवाओं के सुरक्षित रखरखाव के लिए बेहतर व्यवस्था किया गया है।

कैमूर जिले में 11 सरस्वती विद्या निकेतन में 57 शिक्षकों का किया जाएगा चयन। शिक्षक अभ्यर्थी 4 जून तक ई शिक्षा कोष पर आवेदन करेंगे। जी हां, कैमूर जिला अंतर्गत 11 प्रखंडों में चयनित सरस्वती विद्या निकेतन में शिक्षण कार्य के लिए 57 शिक्षकों का चयन होगा। आपको बता दें कि कैमूर जिले के आदर्श विद्यालयों में शिक्षकों के चयन की प्रक्रिया अंक आधारित और कई स्तरों पर की जाएगी। मॉडल स्कूलों में आवेदन करने वाले शिक्षकों का मूल्यांकन 4 प्रमुख बिंदुओं, शैक्षणिक योग्यता, शिक्षण अनुभव, पूर्व प्रदर्शन और व्यक्तिगत साक्षात्कार के आधार पर किया जाएगा। कैमूर जिले के 11 सरस्वती विद्या निकेतन में रिक्ति के अनुसार शिक्षकों का चयन किया जाएगा। पहले चरण में हुए चयन प्रक्रिया में 13 शिक्षक चयनित हुए हैं और अब अन्य शिक्षकों की बारी है। शिक्षकों के चयन के लिए एक बार फिर आवेदन मांगे गए हैं और अब शिक्षक अभ्यर्थी ई शिक्षा कोष पर 4 जून तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। आदर्श विद्यालय में विषयवार शिक्षकों की नियुक्ति की जानी है। कैमूर जिले में किसान अब सीखेंगे खेतों की सेहत सुधारने के गुण। जी हां, कैमूर जिले में किसान अब खेतों की सेहत सुधारने के गुण सीखेंगे और इसके मद्देनज़र कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार की ओर से 1 जून से 30 जून तक खेती बचाओ अभियान शुरू किया गया है। खेतों की सेहत सुधारने और किसानों की कृषि लागत कम करने के लिए यह जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इस बारे में जानकारी देते हुए कैमूर जिला कृषि पदाधिकारी सह परियोजना निदेशक ने बताया है कि इस अभियान को प्रत्येक गांव और पंचायत स्तर तक प्रभावी ढंग से पहुंचाने के लिए कृषि विभाग ने सभी तैयारियां पूरी कर ली है। अभियान का लक्ष्य कम खाद सही सलाह के सिद्धांत को हर खेत तक पहुँचाना है। अभियान के दौरान मिट्टी की जांच पर विशेष बल दिया जाएगा। किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड के आधार पर संतुलित उर्वरक डालने के लिए प्रेरित किया जाएगा। साथ ही हरी खाद, जैविक खेती, बायो प्रोडक्ट्स के उपयोग को बड़े पैमाने पर बढ़ावा देने के लिए भी किसानों को जागरूक किया जाएगा।

कैमूर जिले में इस बार 1.41 लाख हेक्टेयर में धान की खेती का लक्ष्य कृषि विभाग ने निर्धारित किया है। और आपको बता दें कि किसान अभी भी अच्छी बारिश का इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि कुछ किसानों का ऐसा कहना है कि धान के बिचड़े के लिए रोहिणी नक्षत्र सबसे शुभ होता है। रोहतास जिले में आज 3 जून से 7 जून के बीच मौसम और फसल के लिए सलाह जारी किया गया है। गरज चमक के साथ बारिश की संभावना है, ऐसे में कृषि विश्वविद्यालय की ओर से फसल बागवानी व पशुपालन आधारित सलाह जारी किया गया है। कहा गया है कि गरज चमक के साथ आज से लेकर 4 दिनों तक हल्की से मध्यम स्तर की बारिश की संभावना है। साथ ही हीट वेव के चलते गर्मा फसलों के साथ आने वाली अगली खरीफ फसलों की तैयारियों को लेकर भी किसानों में एडवाइजरी जारी किया जा रहा है। देर से बोई गई गर्मा मूंग और उड़द की फसल में कीट प्रबंधन को लेकर सलाह दिया जा रहा है। अगले 4 दिनों में न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी हो सकती है। आर्द्रता सुबह में 70 से 75% तथा दोपहर में 20 से 25% रहने की संभावना है। इस मौसम में गर्मा फसल में मूंग और उड़द लगाया जा सकता है, साथ ही कीट प्रबंधन करना भी आवश्यक है। पशुपालकों को चेतावनी दिया गया है कि मौसम में बदलाव के दौरान दुधारू पशुओं से बेहतर दूध उत्पादन के लिए चारे में नमक, मिनरल्स और पुष्टा आहार मिलाकर ही चारा खिलाएं।

सड़क सुरक्षा को लेकर वाहन चालकों को कल रोहतास जिला के सासाराम में किया गया जागरूक। जी हां, परिवहन विभाग के अधिकारियों द्वारा वाहन चालकों को यातायात नियमों के बारे में कल जानकारी दी गई। इस संबंध में जानकारी देते हुए रोहतास जिला के जिला परिवहन पदाधिकारी ने बताया कि परिवहन विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देश के आलोक में सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मृत्यु के कारणों और उनसे बचने के उपायों पर विस्तृत जानकारी वाहन चालकों को कल दी गई। बस चालकों को बताया गया कि रात्रि के समय में लो बीम पर ही वाहन चलाएं। अगर डीपर लाइट व ब्लिंकर का इस्तेमाल करते हैं तो उसे

सड़क सुरक्षा को लेकर वाहन चालकों को कल रोहतास जिला के सासाराम में किया गया जागरूक। जी हां, परिवहन विभाग के अधिकारियों द्वारा वाहन चालकों को यातायात नियमों के बारे में कल जानकारी दी गई। इस संबंध में जानकारी देते हुए रोहतास जिला के जिला परिवहन पदाधिकारी ने बताया कि परिवहन विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देश के आलोक में सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मृत्यु के कारणों और उनसे बचने के उपायों पर विस्तृत जानकारी वाहन चालकों को कल दी गई। बस चालकों को बताया गया कि रात्रि के समय में लो बीम पर ही वाहन चलाएं। अगर डीपर लाइट व ब्लिंकर का इस्तेमाल करते हैं तो उसे करें। साथ ही लेन डिसमिलिन अपनाएं, वाहनों के बीच सुरक्षित दूरी रखें, लाइनों के बीच वाहन जिग जैग में न चलाएं, मौसम खराब होने से वाहन को सावधानी पूर्वक चलाएं, नदी नाला पुल पुलिया पार करते समय वाहन चलाने पर ध्यान केंद्रित रखें, वाहनों पर रेडियम युक्त स्टिकर न लगाएं। राज्य परियोजना निदेशक ने भी इस अवसर पर कहा कि रॉन्ग साइड पर ड्राइविंग न करें, सार्वजनिक स्थानों बस्तियों से गुजरते हुए वाहन की गति धीमी रखें, मुख्य मार्ग चौराहा तिराहा आने पर वाहन की गति को धीमा कर लें, प्रेशर हॉर्न का उपयोग बिल्कुल न करें, गंतव्य तक पहुंचने के लिए समय से निकलें, बच्चों और परिवार के सदस्यों को भी यातायात नियमों की जानकारी दें, थकान और स्वास्थ्य खराब होने पर वाहन बिल्कुल न चलाएं और यातायात नियमों का उल्लंघन बिल्कुल न करें।

और श्रोताओं आपको बताना चाहेंगे कि जन शिकायतों के प्रभावी समाधान हेतु रोहतास और कैमूर जिले में कल कई जगहों पर लगाया गया सहयोग शिविर। सहयोग शिविर में ऑन द स्पॉट किया गया कई समस्याओं का निपटारा, कई मामले निपटाए गए। तो अब ये समय समय पर सहयोग शिविर का आयोजन होता रहेगा ताकि जन शिकायतें जो भी हैं उसका प्रभावी समाधान लोगों को मिल जाए। साफ पानी में पनपता है डेंगू का मच्छर, बचाव ही उपाय। सदर अस्पताल सासाराम के सीएस मणिराज रंजन। जी हां, मानसून पूर्व मौसम में मच्छरों की बढ़ती संख्या को देखते हुए रोहतास जिला के स्वास्थ्य विभाग में डेंगू की रोकथाम को लेकर सतर्कता जारी किया गया है। सदर अस्पताल सासाराम ने लोगों से साफ सफाई बनाए रखने, घरों के आसपास पानी जमा न होने देने, मच्छरों से बचाव के उपाय अपनाने की अपील की है। इसके लिए रोहतास जिले में जागरूकता अभियान भी कल चलाया गया। सिविल सर्जन डॉक्टर मणिराज रंजन ने बताया कि डेंगू फैलाने वाला एडिज मच्छर साफ पानी में ही पनपता है। यह मुख्य रूप से दिन के समय काटता है। ऐसे में लोगों को विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि घरों, छतों, कूलर, गमलों, टायरों तथा अन्य पात्रों में पानी जमा न होने दें। यह स्थान मच्छरों के प्रजनन के प्रमुख केंद्र बन जाते हैं। सिविल सर्जन ने बताया है कि जिले के सभी स्वास्थ्य संस्थानों को डेंगू से संबंधित आवश्यक तैयारियां करने का निर्देश दिया गया है। आशा कार्यकर्ताओं एवं स्वास्थ्य कर्मियों के माध्यम से ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में लोगों को जागरूक किया जा रहा है। बच्चों और बुजुर्गों को विशेष रूप से मच्छरों से बचाने की जरूरत है। बाहर निकलते समय पूरे शरीर को ढकने वाले कपड़े ही पहनने चाहिए। मच्छर भगाने वाली क्रीम का उपयोग करना चाहिए। घरों में मच्छरदानी जरूर लगाना है। खिड़की दरवाजों पर जाली लगानी है और अगर फिर भी किसी व्यक्ति को तेज बुखार, सिरदर्द, आंखों के पीछे दर्द, शरीर एवं जोड़ों में दर्द, कमजोरी, त्वचा पर चकते जैसे लक्षण दिखाई दे तो तुरंत नज़दीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में जांच कराना है और डेंगू से बचने का हर हाल में उपाय करना है। और श्रोताओं अब इसी के साथ चलिए सुन लेते हैं एक और गीत। इस बार हमने चुना है ये गीत रंगीला फिल्म से। महबूब का लिखा हुआ ये गीत है, संगीत ए आर रहमान का और फिल्म रंगीला।

रंगीला फिल्म का ये गीत अभी आपने सुना आशा भोसले की खनकती हुई आवाज़ में। और अब आइए एक नज़र डालते हैं समाचार पत्रों की सुर्खियों पर। हिंदुस्तान अखबार ने अपने मुख्य पृष्ठ पर छापा है कि पीएचडी प्रवेश परीक्षा पर बिहार सरकार द्वारा रोक लगा दी गई है। जी हां, बिहार राज्य के विश्वविद्यालयों में पीएचडी में नामांकन के लिए आयोजित होने वाले एडमिशन टेस्ट पैट पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दिया गया है। बिहार राज्य का कोई भी विश्वविद्यालय अब पीएचडी प्रवेश के लिए पैट आयोजित नहीं करेगा। इसके बदले यूजीसी नेट स्कोर को ही प्रवेश का आधार बनाया जाएगा। वेदांता समूह के परिसरों पर ईडी के छापे। ईडी ने विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम फेमा के नियमों के कथित उल्लंघन को लेकर कारोबारी अनिल अग्रवाल के वेदांता समूह के परिसरों में कल छापेमारी की। पीपीपी मॉडल पर बिहार खुद बनाएगा 220 किलोमीटर लंबा फोर लेन हाईवे। मनेर, बक्सर, बिदुपुर, दिघवारा और सोनपुर गोपालगंज के बीच बदलेगी तस्वीर। 3 नए एक्सप्रेसवे से दिल्ली और लखनऊ की राह होगी आसान। दैनिक भास्कर ने अपने मुख्य पृष्ठ पर ये खबर छापी है। और सीबीएसई चेयरमैन और सचिव हटाए गए, किया गया तबादला। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ऑन स्क्रीन पार्किंग प्रणाली को लेकर, जी हां, ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली को लेकर छठे विवाद के बीच केंद्र सरकार ने बड़ा प्रशासनिक कदम उठाया है। सरकार ने सीबीएसई के चेयरमैन राहुल सिंह और सचिव हिमांशु गुप्ता का तबादला कर दिया गया है। साथ ही ओएसएम सेवाओं की खरीद और टेंडर प्रक्रिया की जाँच के लिए भी विशेष समिति गठित की गई है। इसी बीच सीबीएसई ने पुनर्मूल्यांकन पोर्टल भी शुरू कर दिया गया है। ओएसएम प्रणाली की कथित खामियों को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका भी दाखिल की गई है। कल मंगलवार को संसदीय समिति के समक्ष रांची के छात्र सार्थक सिद्धांत ने ओएसएम में 15 खामियों का दावा किया। और श्रोताओं, ये खबर हमने आपको प्रभात खबर से सुनाया। और इसी के साथ चलते चलते दैनिक जागरण से भी एक खबर हम आपको बताते हैं। सम्राट चौधरी ने कहा है कि पूर्व सीएम राबड़ी देवी को आवास खाली करना होगा। साथ ही एक और खबर दैनिक जागरण ने अपने मुख्य पृष्ठ पर छापा है, वंदे मातरम पर कांग्रेस और भाजपा एकमत नहीं, इसे लेकर विवाद शुरू। और चलते चलते खेल गतिविधियों की बात करें आपको तो

0: प्रज्ञानंदा, गुकेश और दिव्या ने भारत की खिताब की उम्मीदें रखी हैं बरकरार। शतरंज प्रतियोगिता में इनकी उम्मीदें हैं बरकरार। पहले विश्व योगासन अहमदाबाद में भाग लेगी अमेरिका की टीम। सूर्यवंशी में युवा तेंदुलकर की झलक दिखती है, ऐसा कहा है श्रीनिवासन ने। साईराज बहुतुले को बीसीसीआई ने भारत का स्पिन गेंदबाजी कोच नियुक्त किया है। और मौसम की बात करें तो अधिकतम तापमान 39 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। और इसी के साथ अब रागिनी को नमस्ते रोहतास कार्यक्रम से दीजिए इजाजत। नमस्कार।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
2: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
1: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो। और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी एलोइना रोड्रिग्स गोमेज आज से 5 दिन की भारत यात्रा पर। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डी के शिवकुमार आज दोपहर कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। पश्चिम बंगाल में आज से शुरू होगी अन्नपूर्णा योजना, पात्र महिलाओं को हर महीने मिलेगी 3,000 रुपये की सहायता। बांग्लादेश के विदेश मंत्री खलीलुर रहमान संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के अध्यक्ष निर्वाचित हुए, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दी बधाई। जर्मनी ने हवाई मार्ग से यात्रा करने वाले भारतीय नागरिकों के लिए ट्रांजिट वीजा की अनिवार्यता आज से समाप्त की। भारत ने कहा इससे दोनों देशों के लोगों के बीच आपसी संपर्क बढ़ेगा। और महिला क्रिकेट में मेजबान इंग्लैंड ने तीसरे और अंतिम T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में भारत को 6 विकेट से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला 2-1 से अपने नाम की। अब समाचार विस्तार से। वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी एलोइना रोड्रिग्स गोमेज आज से 5 दिन की भारत यात्रा पर रहेंगी। उनके साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी होगा। एक रिपोर्ट।
5: भारत और वेनेजुएला के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध हैं, विशेषकर ऊर्जा और व्यापार के क्षेत्र में। इस यात्रा से दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंध और मजबूत होंगे तथा कई क्षेत्रों में सहयोग और गहरा होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बातचीत के दौरान दोनों पक्ष आपसी हित के क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा करेंगे, जिनमें ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार और निवेश, दवाएं, स्वास्थ्य सेवा, परिवहन और नवीकरणीय ऊर्जा शामिल हैं। वेनेजुएला का प्रतिनिधिमंडल ऊर्जा, दवा और ऑटोमोबाइल क्षेत्रों से जुड़ी सुविधाओं का दौरा करेगा। इस यात्रा का उद्देश्य सहयोग के अवसर को तलाशना और भारत की तकनीकी तथा औद्योगिक क्षमताओं के बारे में जानकारी हासिल करना है। दीपेंद्र और ईशानी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
4: कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डी के शिवकुमार आज कर्नाटक के 25वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। 8 बार के विधायक डी के शिवकुमार बेंगलुरु के लोकभवन स्थित ग्लास हाउस में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। उनके साथ कुछ कैबिनेट मंत्री भी शपथ लेंगे। 28 मई को सिद्धरमैया के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद कांग्रेस विधायक दल ने 64 वर्षीय डी के शिवकुमार को अपना नेता चुना था। शपथ ग्रहण समारोह में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी, राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस महासचिव के सी वेणुगोपाल और रणदीप सिंह सुरजेवाला सहित कई प्रमुख नेता शामिल होंगे। पश्चिम बंगाल सरकार आज एक महत्वपूर्ण सामाजिक कल्याणकारी पहल अन्नपूर्णा योजना का शुभारंभ करने जा रही है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी इस योजना का औपचारिक उद्घाटन करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
6: पहले चरण में लाभार्थियों को बैंक खाते में आज से ही 3,000 रुपए भेजना शुरू होगा। इस योजना से लगभग 2 करोड़ महिला उपभोक्ताओं को लाभ मिलने की संभावनाएं है। नवन्नो में दोपहर 12:30 बजे उद्घाटन समारोह में महिला एवं बाल विकास तथा समाज कल्याण विभाग की मंत्री अग्निमित्रा पल उपस्थित रहेंगी। साथ ही राज्य की सभी ब्लॉक, नगर पालिकाएं और कोलकाता नगर निगम क्षेत्र में वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन कार्यक्रम आयोजित होगा। होगा। मुख्यमंत्री का कार्यक्रम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राज्य के प्रत्येक ब्लॉक और नगर पालिका से जुड़ा रहेगा। पूरे कार्यक्रम को सुचारू रूप से संपन्न करने के लिए जिला अधिकारियों को आवश्यक व्यवस्था करने का निर्देश दिया गया है। उद्घाटन के बाद प्रत्येक ब्लॉक और नगर पालिका क्षेत्र में चुने गए 100 अन्नपूर्णा योजना लाभार्थियों को अनुमोदन पत्र प्रदान किया जाएगा। काश्मीर नाहर, आकाशवाणी संवाद, कोलकाता।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के अंतर्गत देश में पिछले 12 वर्ष में उल्लेखनीय बदलाव आया है। इस दौरान मोदी सरकार ने निर्धनों, किसानों, महिलाओं और युवाओं के कल्याण और सशक्तिकरण के लिए अनेक महत्वपूर्ण पहल शुरू की हैं। आकाशवाणी समाचार पिछले 12 वर्ष में प्रमुख क्षेत्र में सरकार के प्रयासों पर विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज चर्चा मध्यम वर्ग के कल्याण के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की।
7: केंद्र सरकार ने पिछले 12 वर्षों में विभिन्न योजनाओं और सुधारों के माध्यम से मध्यम वर्ग के लोगों को सशक्त बनाया है। सरल कर व्यवस्था, बेहतर बैंकिंग, बीमा और पेंशन जैसी सुविधाओं ने मध्यम वर्ग की आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित की है। नई कर व्यवस्था के तहत सालाना 12 लाख रुपए तक कमाने वाले लोगों को कोई आयकर नहीं देना पड़ता। वहीं GST ने भी कर व्यवस्था को सरल बनाकर और रोजमर्रा की चीजों की लागत कम करके मध्यम वर्ग को राहत पहुंचाया है। 2015 में शुरू की गई प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन ने लाखों लोगों को पक्का घर उपलब्ध कराया है। इस योजना के तहत स्वीकृत 1,25,00,000 घरों में से 98,00,000 से अधिक घर बनकर लाभार्थियों को दिए जा चुके हैं। उत्तर प्रदेश के अभिषेक कुमार ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा कि इस योजना के जरिए गरीबों को अपना घर मिल रहा है और किराए के मकान से मुक्ति मिल रही है।
8: मैंने प्रधानमंत्री आवास योजना में आवेदन किया था। आवेदन करने के बाद मेरे को लॉटरी ड्रॉ के माध्यम से मकान आवंटित होगी। स्कीम बहुत ही बढ़िया है जिससे गरीब लोगों को आवास मिल रहे हैं, सबको सहूलियत हो रही है।
7: वहीं आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 43,52,00,000 स्वास्थ्य कार्ड जारी किए जा चुके हैं जिससे लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुरक्षा मिली है। इसके अलावा प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के अंतर्गत जन औषधि केंद्रों के माध्यम से लोगों को सस्ती और गुणवत्तापूर्ण दवाइयां मिल रही है जो बाजार से 50-80% सस्ती दरों पर उपलब्ध है। बिहार के रहने वाले ब्रह्मदेव ने बताया कि इन केंद्रों पर दवाइयां बहुत कम कीमत पर मिलती है।
9: लगभग 1 साल दवाई ले रहा हूँ, सस्ती दवाई मिलती है, डॉक्टर का विश्वास है कि जन औषधि से दवाई खरीदे।
7: वहीं 2015 में शुरू की गई प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के कारण लोग अपना व्यवसाय शुरू कर रहे हैं और दूसरों को भी रोजगार दे रहे हैं। इस योजना के तहत अब तक लाभार्थियों को 40,00,000 रुपए के ऋण दिए जा चुके हैं। भारत के मध्यम वर्ग के लोगों की आय बढ़ने और नए अवसर मिलने के कारण अब वे देश की आर्थिक प्रगति, विकास और समृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
4: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। जनजातीय कार्य मंत्रालय आज नई दिल्ली में एकीकृत जनजातीय विकास एजेंसियों और एकीकृत जनजातीय विकास परियोजनाओं को सुदृढ़ करने पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन करेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगी। सम्मेलन में 26 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। ये आयोजन जनजातीय गरिमा उत्सव 2026 के अंतर्गत हो रहा है। राष्ट्रपति बेंगलुरु के भारतीय विज्ञान संस्थान के नैनो विज्ञान और इंजीनियरिंग केंद्र में प्रशिक्षण केंद्र का वर्चुअल रूप से उद्घाटन करेंगी। वे देश के विभिन्न हिस्सों में स्थित एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों में स्थापित 75 अंतरिक्ष प्रयोगशालाओं का भी उद्घाटन करेंगी। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह की पहली प्रत्यक्ष तकनीकी बैठक आज ओडिशा के पुरी में शुरू होगी। 3 दिन की इस बैठक में ब्रिक्स सदस्य और साझेदार देशों के प्रतिनिधि, नीति निर्माता और आपदा प्रबंधन विशेषज्ञ भाग लेंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि विवाहित बेटियों को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति से वंचित नहीं किया जा सकता। न्यायालय ने कहा कि परिवार की परिभाषा से विवाहित बेटियों को बाहर रखना स्पष्ट रूप से अनुचित और संवैधानिक रूप से गलत है। न्यायमूर्ति PS नरसिम्हा और न्यायमूर्ति आलोक आराधे की पीठ ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के एक आदेश को रद्द करते हुए ये टिप्पणी की। जम्मू कश्मीर में पंचायत और जिला विकास परिषद चुनावों की तैयारियों की समीक्षा के लिए राज्य चुनाव आयोग की 2 दिन की उच्च स्तरीय बैठक आज से शुरू होगी। बैठक की अध्यक्षता राज्य चुनाव आयुक्त शांत मनु करेंगे। सरकार ने थोक मूल्य सूचकांक WPI को धीरे धीरे समाप्त करने और उसकी जगह एक व्यापक उत्पादक मूल्य सूचकांक PPI प्रणाली लागू करने का निर्णय लिया है। ये निर्णय देश की मुद्रास्फीति और मूल्य निर्धारण डेटा संरचना को आधुनिक बनाने और इसे वैश्विक सर्वोत्तम

0: पद्धतियों के अनुरूप बनाने के लिए लिया गया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा है कि WPI के आधार वर्ष को 2011-12 से संशोधित करके 2022-23 करने की मंजूरी दी गई है। संशोधित थोक मूल्य सूचकांक और नया उत्पादक मूल्य सूचकांक 15 जून को जारी किया जाएगा। सरकार ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2026 के लिए नामांकन आमंत्रित किए हैं। नामांकन जमा करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई है। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने बताया कि नामांकन केवल राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल awards.gov.in के माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे। बांग्लादेश के विदेश मंत्री खलीलुर रहमान संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं। उनका कार्यकाल इस वर्ष सितंबर से शुरू होगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा में उन्हें 99 वोट मिले। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 193 सदस्य देश कल 2027-28 कार्यकाल के लिए सुरक्षा परिषद के 5 नए अस्थायी सदस्यों का भी चुनाव करेंगे। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने डॉ खलीलुर रहमान को अध्यक्ष निर्वाचित होने पर बधाई दी है। डॉ जयशंकर ने कहा है कि वे भारत और बांग्लादेश की साझा प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाने और बहुपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के लिए डॉ रहमान के साथ मिलकर काम करने के इच्छुक हैं। जर्मनी से होकर हवाई मार्ग से यात्रा करने वाले भारतीय नागरिकों के लिए ट्रांजिट वीजा की अनिवार्यता आज से समाप्त हो गई है। भारत ने इस फैसले का स्वागत किया है। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस नई व्यवस्था से भारत और जर्मनी के बीच लोगों के आपसी संपर्क बढ़ेंगे और संबंधों को मजबूती मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज के बीच इस वर्ष जनवरी में भारत यात्रा के दौरान इसकी घोषणा की गई थी। और बात खेलों की, तीसरे और अंतिम महिला 2020 क्रिकेट मैच में भारत को इंग्लैंड से 6 विकेट से हार का सामना करना पड़ा। इंग्लैंड ने श्रृंखला 2-1 से अपने नाम कर ली है। इंग्लैंड के टॉन्टन में खेले गए इस मुकाबले में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड को 181 रन का लक्ष्य दिया। इंग्लैंड ने 18 ओवर 3 गेंदों में 4 विकेट पर 184 रन बनाकर मैच जीत लिया। एलिस कैप्सी प्लेयर ऑफ द मैच चुनी गई, साथ ही प्लेयर ऑफ द सीरीज का खिताब भी उन्हीं को मिला। मौसम विभाग ने आज दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, गुजरात, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में गरज चमक के साथ आंधी चलने की चेतावनी जारी की है। विभाग ने अगले 2-3 दिनों तक केरलम और माहे में अत्यधिक वर्षा का अनुमान भी व्यक्त किया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
1: धन्यवाद विशाल। CBSE के ऑन स्क्रीन मार्किंग विवाद के बीच केंद्र सरकार की बड़ी कार्रवाई आज के सभी अखबारों के मुख्य पृष्ठ पर है। अमर उजाला की सुर्खी है, CBSE चेयरमैन और सचिव हटाए गए, OSM टेंडर की जांच के लिए समिति गठित, 1 महीने में देगी रिपोर्ट। वहीं जनसत्ता ने लिखा है, पुनर्मूल्यांकन पोर्टल पर साइबर हमला, CBSE ने कहा सेवाओं को बाधित करने का प्रयास। नेपाल से सीमा विवाद सुलझाने में तीसरे पक्ष की भूमिका का सवाल ही नहीं, विदेश मंत्रालय का ये बयान दैनिक जागरण में है। विवाद सुलझाने में चीन और ब्रिटेन को शामिल करने की नेपाल की मांग, भारत ने की खारिज। शिक्षा की शक्ति से आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करें युवा, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का ये आह्वान वीर अर्जुन में है। एक कार्यक्रम में राष्ट्रपति ने कहा, जब युवा शिक्षा और प्रौद्योगिकी की शक्ति के बल पर आगे बढ़ेंगे तो एक सशक्त, समृद्ध और आत्मनिर्भर भारत का निर्माण होगा। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद तृणमूल कांग्रेस में टूट की आशंका को भी अखबारों ने प्रमुखता दी है। पंजाब केसरी ने लिखा है, तृणमूल के 50 विधायकों का बगावती रुख, विधानसभा अध्यक्ष को सौंप सकते हैं प्रस्ताव। इस खबर पर राजस्थान पत्रिका ने संपादकीय में लिखा है, राजनीतिक दलों से जुड़े नेताओं और कार्यकर्ताओं को आज आत्ममंथन की जरूरत है। सत्ता जाते ही उन्हें ना विचारधारा की चिंता रहती है और ना ही अनुशासन की। बीते 15 वर्ष में पश्चिम बंगाल की सत्ता पर काबिज रही तृणमूल कांग्रेस में अब जो कुछ हो रहा है वो खुली बगावत की तरह है। दुश्मन की वायु रक्षा को तबाह करेगी रुद्रम 2 मिसाइल। अमर उजाला के अनुसार रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन और वायुसेना ने हवा से सतह पर मार करने वाली सुपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया।
0: धन्यवाद मुकेश। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी एलोइना रोड्रिग्स गोमेज आज से 5 दिन की भारत यात्रा पर। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डीके शिवकुमार

0: आज दोपहर बाद कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। पश्चिम बंगाल में आज से शुरू होगी अन्नपूर्णा योजना, पात्र महिलाओं को हर महीने मिलेगी 3,000 रुपए की सहायता। बांग्लादेश के विदेश मंत्री खलीलुर रहमान संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के अध्यक्ष निर्वाचित, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दी बधाई। और जर्मनी ने हवाई मार्ग से यात्रा करने वाले भारतीय नागरिकों के लिए ट्रांजिट वीजा की अनिवार्यता आज से समाप्त की। भारत ने कहा इससे दोनों देशों के लोगों के बीच आपसी संपर्क बढ़ेगा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: FM 103.4 MHz पर ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है। हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 8:15 हो रहे हैं। अब आप सुनेंगे देशभक्ति संगीत कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में अभी जो ये देशभक्ति गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं, उसे हमने लिया है धरती कहे पुकार के इस फिल्म से। मजरू सुल्तानपुरी की शब्द रचना है, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का और आवाज़ है मोहम्मद रफ़ी की।

धरती कहे पुकार के। अभी आपने इस फिल्म से ये देशभक्ति गीत सुना मोहम्मद रफ़ी के स्वर में। मजरू सुल्तानपुरी के बोल थे, संगीत था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। हम आकाशवाणी सासाराम से बोल रहे हैं FM 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। स्टूडियो की घड़ी में 8:20 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम पसंद आपकी। पसंद आपकी कार्यक्रम में आप सभी को रागिनी का प्यार भरा नमस्कार। आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। पत्रों पर आधारित इस फरमाइशी कार्यक्रम में आज भी हमारे पास ढेर सारे पत्र आए हैं और इसी में से ये पहला पत्र हम चुन रहे हैं हमारे इन श्रोताओं का। ये हैं छत्रपति संभाजी नगर से राजेश साबिल पाटले, राजदीप राजेश, राशि राजेश और शीतल राजेश। इन सभी श्रोताओं की फरमाइश है आशिकी फिल्म के गीत दिल का आलम सुनने के लिए। सरगुजा मैन पार्ट से हैं सोनिया थापा, सोनम थापा, रेशमा थापा, आदिबा थापा। बिहारी कॉलोनी से हैं परवीन डोम, सरफुद्दीन, कुमारी वली, कुमारी डब्लू। जेल रोड मथुरा से वसीम, आसमा, बेलदार और ये खत आया है बड़ी ही दूर से। जी हाँ, ग्राम पोस्ट खुरमाबाद चेनारी बाजार रोहतास से रामजी प्रसाद चौरसिया, लक्ष्मण प्रसाद चौरसिया, सन्नी कुमार चौरसिया, भरत बाबू चौरसिया, सूरज कुमार और सुजल कुमार तथा समस्त चौरसिया परिवार की तरफ से। और बड़ा ही खूबसूरत सा ये दो वाक्य इन्होंने लिखा है। जा जा रे पत्र चमकते चमकते, मेरे सासाराम आकाशवाणी परिवार को कहना नमस्ते नमस्ते। तो चलिए नमस्ते आप सभी को। बड़ा ही प्यारा सा ये दो वाक्य आपने लिखा है और आपकी भी पसंद हम पूरी करेंगे इसी फिल्म के गीत में। तो चलिए आप सबको सुनवाते हैं आशिकी फिल्म का ये गीत कुमार सानू के स्वर में। मदन पाल के बोल हैं, नदीम श्रवण का संगीत है।

कुमार सानू को अभी आपने सुना दिल का आलम इस गीत में, और ये गीत हमने चुना था आशिकी फिल्म से हमारे श्रोताओं की फरमाइश पर। और ये हमारे श्रोता हैं धर सीमा से, छेदू लाल यादव, सीता यादव, अर्चना, अरुणा, अनुराधा और अल्पना। दुर्गा पारा संतोषी नगर रायपुर से हैं छन्नू लाल, अनुराग, अभिषेक, अलका, अनामिका, बलदाऊ यादव, कुमारी रानू, खुशी, प्रवीण साहू और सी एल यादव। आप हैं छत्तीसगढ़ भाटपारा दतरेंगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा, झावेंद्र कुमार वर्मा। महादेव घाट अमलेश्वर से हैं टूमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तारनी ठाकुर, सूरज ठाकुर, सुजला ठाकुर, ज्योति ठाकुर और रियांश ठाकुर। और ये हमारे नए से श्रोता लग रहे हैं, और इन्होंने बड़ा ही रिक्वेस्ट भरा यह ख़त लिखा कि मेरा आपसे निवेदन है कि मेरा पत्र किसी भी गाना में ज़रूर शामिल करें। आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है कि मेरा पत्र अवश्य शामिल कर लिया जाएगा। तो बिल्कुल कर लिया गया है। और आप सब हैं ग्राम कोन नोखा जिला रोहतास से सोनामती देवी, अर्चना देवी, गुड़िया देवी, देवंती देवी, राधा कुमारी, आराध्या कुमारी, प्रियंका कुमारी और कुसुम देवी। नगर पालिका भभुआ कैमूर से हैं बैजनाथ चौरसिया, कृष्णा चौरसिया। वार्ड नंबर 11 नगर पालिका भभुआ कैमूर से हैं बोरबाल चौरसिया, भरत बाबू चौरसिया, वंदना देवी और प्रियंका कुमारी। ये लिखते हैं कि समस्त आकाशवाणी परिवार को नमस्कार करता हूँ और गाना सुनने की फरमाइश करता हूँ। तो बिल्कुल

0: चलिए आप सभी को सुनवाते हैं हम मोहब्बतें फिल्म में उदित नारायण लता मंगेशकर की आवाज़ों से सजा हुआ ये गीत। आनंद बख्शी के बोल हैं, जतिन ललित का संगीत है।
1: एक लड़की थी दीवानी सी,

0: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे सो इजी
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

अंगारे फिल्म का गीत अभी आपने सुना अलका याग्निक और अभिजीत की युगल आवाज में, जावेद अख्तर के बोल, आदेश श्रीवास्तव का संगीत। अंगारे फिल्म का ये गीत सुनना चाहा वाराणसी उत्तर प्रदेश चितईपुर पेट्रोल पंप के पास से लालू प्रसाद, बेबी देवी, अमन कुमार, अनमोल कुमार, सूरज कुमार, कन्हैया कुमार और भरत बाबू ने। और आप हैं जिला रोहतास खुरमाबाद बर के पेड़ के पास से कुसुम देवी, प्रियंका कुमारी, उषा देवी, विद्यावती देवी, प्रभावती देवी, अंजनी कुमारी, मुन्नी कुमारी और भरत कुमार। और कार्यक्रम के अंत में अब लीजिए सुनिए मुगले आजम फिल्म से एक कव्वाली लता मंगेशकर और शमशाद बेगम की युगल आवाज में, शकील बदायूनी के बोल, नौ सात का संगीत। और इस कव्वाली को सुनना चाहा दौलत बाग मुरादाबाद से जाफर हुसैन, नईमा बेगम, कासिम अली, नदीम अली और जुनेद अब्बासी ने। ग्राम पंचायत बोरी खुर्द तहसील जाफराबाद जिला जालना मराठवाड़ा महाराष्ट्र से सुधाकर राजे जाधव, प्रशांत राजे जाधव, जगुताई आरे गांव से संचित वायल, मोताला से प्रथमेश देशमुख, कुमारी प्रणाली देशमुख, करहा से कुमारी सानवी देशमुख, करहा से चिरंजीवी सरवद देशमुख। तो चलिए आप सभी को सुनवाते हैं मुगले आजम फिल्म से लिया गया ये कव्वाली।

और श्रोताओं, इसी के साथ पसंद आपकी कार्यक्रम का पता नोट कर लीजिए। हमारा पता है कार्यक्रम पसंद आपकी द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी सासाराम, पिन कोड 821115। और अब इसी के साथ रागिनी को इस कार्यक्रम को संपन्न करने की यहीं दीजिए इजाजत। नमस्कार। हम आकाशवाणी सासाराम से बोल रहे हैं FM 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 8:45 होने ही वाले हैं। थोड़ी ही देर में आप आकाशवाणी पटना से सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।

नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा, राज्य में 25 चीनी मिलें 2030 तक चालू हो जाएंगी। न्यायमूर्ति मीनाक्षी मदन राय को पटना उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया, 5 जून को पदभार ग्रहण करेंगी। सहयोग शिविर के दौरान अब तक 1,59,000 से अधिक मामलों का हुआ निपटारा, 2,500 पदाधिकारियों को जारी किया गया नोटिस। और मौसम विभाग ने पटना सहित राज्य के कई जिलों में हीट वेव का अलर्ट जारी किया। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि राज्य में 25 चीनी मिलें 2030 तक चालू हो जाएंगी। मुख्यमंत्री श्री चौधरी ने मुजफ्फरपुर जिले के मोतीपुर में आयोजित सहयोग शिविर को संबोधित करते हुए कहा कि अगले विधानसभा

0: चुनाव में जब वोट मांगने आएंगे तब इन मिलों में काम शुरू हो जाएगा। मुख्यमंत्री ने सरकारी आवास पर कब्जा जमाए बैठे लोगों को इससे जल्द खाली करने की चेतावनी भी दी है। उन्होंने कहा कि भवन निर्माण विभाग आवास आधिकारिक तौर पर आवंटित लोगों को सौंपेगा। श्री चौधरी ने विपक्षी नेताओं पर सरकारी संपत्ति को निजी संपत्ति समझकर कब्जा जमाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि इसे हर हाल में खाली करना होगा।
1: कुछ लोगों को लगता है मेरा घर खाली हो जाएगा, पक्का खाली होगा, धरती पे कोई रोक नहीं सकता है, ये ध्यान रखिएगा।

0: कर कब्जा जमाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि इसे हर हाल में खाली करना होगा।
1: कुछ लोगों को लगता है मेरा घर खाली हो जाएगा, पक्का खाली होगा, धरती पे कोई रोक नहीं सकता है, ये ध्यान रखिएगा। घर तो खाली करना ही पड़ेगा, कोई राजतंत्र नहीं है, ये लोकतंत्र है।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने न्यायमूर्ति मीनाक्षी मदन राय को पटना उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है। न्यायमूर्ति राय बृहस्पतिवार को पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश संगम कुमार साहू की सेवानिवृत्ति के बाद शुक्रवार से पदभार ग्रहण करेंगी। इससे पहले न्यायमूर्ति मीनाक्षी सिक्किम उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश थीं। वे पटना हाईकोर्ट की दूसरी महिला और 48वीं मुख्य न्यायाधीश के रूप में पदभार ग्रहण करेंगी। इधर देश के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने सर्वोच्च न्यायालय के 5 नए न्यायाधीशों को पद की शपथ दिलाई। न्यायमूर्ति शील नागू, श्री चंद्रशेखर, संजीव सचदेवा और अरुण पल्ली के साथ वरिष्ठ अधिवक्ता वी मोहना ने सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम की सिफारिश पर केंद्र द्वारा उनकी नियुक्ति को मंजूरी दिए जाने के बाद न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। गौरतलब है कि न्यायमूर्ति श्री चंद्रशेखर मुजफ्फरपुर के चैनपुर गांव के रहने वाले हैं। प्रदेश भर में आयोजित सहयोग शिविर के दौरान अब तक 81% मामलों का निष्पादन किया गया है। राज्य सरकार के जारी आंकड़ों के अनुसार पंचायतों और नगर निकायों में 2000 से अधिक स्थानों पर सहयोग शिविर लगाया गया। इस दौरान सहयोग पोर्टल पर 2,06,928 आवेदन प्राप्त हुए। इनमें से 1,59,000 से अधिक शिकायतों का निष्पादन कर दिया गया है। शेखपुरा, कटिहार, पश्चिम चंपारण, नालंदा, मुजफ्फरपुर, अररिया, सारण और सहरसा जिले में 90% मामलों का निपटारा किया गया। वहीं 2500 पदाधिकारियों को 10 दिनों के भीतर मामले के निष्पादन नहीं करने के आरोप में कारण बताओ नोटिस दिया गया है। गौरतलब है कि राज्य सरकार के संकल्प सबका सम्मान जीवन आसान के तहत 19 मई से प्रत्येक माह के प्रथम और तृतीय मंगलवार को सहयोग शिविर का आयोजन किया जा रहा है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद नितिन नवीन आज 2 दिवसीय बिहार दौरे पर आ रहे हैं। विधान परिषद की 9 सीटों पर होने वाले चुनाव और बांकीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव को लेकर श्री नवीन आज पटना में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक करेंगे। पार्टी सूत्रों ने बताया है कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नवीन बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर पटना में क्षेत्र के सभी मंडल अध्यक्षों और पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ विचार विमर्श करेंगे। गौरतलब है कि राज्यसभा सांसद बनने के बाद श्री नवीन ने बांकीपुर के विधायक पद से इस्तीफा दे दिया था। राज्य में इस वर्ष रबी मौसम में फसल क्षति के लिए जल्द ही 2,00,000 किसानों को मुआवजा दिया जाएगा। आपदा प्रबंधन विभाग ने कृषि विभाग को किसानों की फसल क्षतिपूर्ति के लिए 200 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। रबी मौसम में आंधी, तूफान, ओलावृष्टि और बारिश से प्रदेश के 13 जिलों में गेहूं, चना, मसूर, मक्का, फल और सब्जी की क्षतिपूर्ति के लिए किसानों के खाते में डीबीटी के माध्यम से राशि दी जाएगी। राजस्व और भूमि सुधार विभाग ने भ्रष्टाचार और अनियमितता के मामले में 8 अंचलाधिकारियों और राजस्व अधिकारियों पर कार्रवाई की है। राजस्व और भूमि सुधार मंत्री दिलीप जायसवाल ने विभागीय संचिका पर मंजूरी देते हुए कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति जारी रहेगी। गौरतलब है कि बीते एक सप्ताह के दौरान विभाग ने 23 अधिकारियों पर कार्रवाई की है। उन्होंने कहा कि अंचलाधिकारियों को शपथ पत्र देकर बताना होगा कि उनके क्षेत्र में कोई भी भूमिहीन परिवार नहीं है। श्री जायसवाल ने पटना में समीक्षात्मक बैठक में जिलाधिकारियों को निर्देश दिया कि किसी भी आवेदन को अस्वीकृत करने से पहले संबंधित आवेदक से संवाद करें। उन्होंने दाखिल खारिज, परिमार्जन, ई मापी सहित आम जन से जुड़ी सभी राजस्व मामलों का निर्धारित समय सीमा के भीतर निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। प्रदेश के विश्वविद्यालयों में पीएचडी में नामांकन के लिए होने वाली परीक्षा पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है। यूजीसी की अधिसूचना के अनुसार अब राज्य का कोई भी विश्वविद्यालय पीएचडी प्रवेश परीक्षा आयोजित नहीं करेगा। इसके बदले यूजीसी नेट स्कोर को ही

0: प्रवेश का आधार बनाया जाएगा। इस संबंध में राज्यपाल के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने बताया कि पीएचडी में नामांकन की प्रक्रिया पूरी तरह बदल गई है। सभी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को भेजे पत्र में कहा गया है कि यूजीसी की अधिसूचना और कुलाधिपति के निर्देशों के अनुरूप यह निर्णय लिया गया है। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
1: इधर आइए, इधर।
2: इधर?
1: हाँ, विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना आइए और बिहार और झारखंड के किसी भी आकाशवाणी केंद्र से अपना विज्ञापन बुक कराइए।
3: देश के सबसे बड़े रेडियो नेटवर्क पर बिल्कुल किफायती दर पर आप अपने उत्पाद का प्रचार प्रसार कर सकते हैं।
2: अच्छा, ऐसी बात है, तो फिर इधर उधर क्यों भटकना, अपनी आकाशवाणी में अपनापन भी तो है।
3: बिहार और झारखंड के आकाशवाणी केंद्रों से विज्ञापन प्रसारण हेतु संपर्क करें।
2: विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना। हमारा मोबाइल नंबर है 9431021294। हमारा लैंडलाइन नंबर है 0612225042। हमारा ईमेल एड्रेस है patnacbs@gmail.com।
3: शुभ वाणी,
2: लाभ वाणी,
3: आकाशवाणी।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_पटना को फॉलो कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के अंतर्गत देश में पिछले 12 वर्ष में उल्लेखनीय बदलाव आया है। इस दौरान मोदी सरकार ने निर्धनों, किसानों, महिलाओं और युवाओं के कल्याण और सशक्तिकरण के लिए अनेक महत्वपूर्ण पहल शुरू की है। आकाशवाणी समाचार पिछले 12 वर्ष में प्रमुख क्षेत्र में सरकार के प्रयासों पर विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज चर्चा मध्यम वर्ग के कल्याण के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की।
4: केंद्र सरकार ने पिछले 12 वर्षों में विभिन्न योजनाओं और सुधारों के माध्यम से मध्यम वर्ग के लोगों को सशक्त बनाया है। सरल कर व्यवस्था, बेहतर बैंकिंग, बीमा और पेंशन जैसी सुविधाओं ने मध्यम वर्ग की आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित की है। नई कर व्यवस्था के तहत सालाना 12 लाख रुपए तक कमाने वाले लोगों को कोई आयकर नहीं देना पड़ता। वहीं जीएसटी ने भी कर व्यवस्था को सरल बनाकर और रोजमर्रा की चीजों की लागत कम करके मध्यम वर्ग को राहत पहुंचाया है। वहीं आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 42 करोड़ 52 लाख स्वास्थ्य कार्ड जारी किए जा चुके हैं, जिससे लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुरक्षा मिली है। इसके अलावा प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के अंतर्गत जन औषधि केंद्रों के माध्यम से लोगों को सस्ती और गुणवत्तापूर्ण दवाइयां मिल रही है, जो बाजार से 50 से 80% सस्ती दरों पर उपलब्ध है। बिहार के रहने वाले ब्रह्मदेव ने बताया कि इन केंद्रों पर दवाइयां बहुत कम कीमत पर मिलती है।
5: लगभग 1 साल से यहां से दवाई ले रहा हूं, सस्ती दवाई मिलती है। डॉक्टर का विश्वास है कि जन औषधि से दवाई।
4: दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित कार्यक्रम में 2 श्रेणियों में राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। ग्रामीण विकास मंत्री राजीव रंजन सिंह देशभर की 42 उत्कृष्ट पंचायतों को ग्रामीण विकास, सुशासन, जन भागीदारी, स्वच्छता, डिजिटल सेवाओं तथा सतत विकास लक्ष्यों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए सम्मानित करेंगे। बिहार की भी कई पंचायतों को सम्मानित किया जाएगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने तकनीकी गड़बड़ी होने के कारण 30 मई को प्रभावित CUET UG 2026 परीक्षा का दोबारा आयोजन करने का निर्णय लिया है। पुनर्परीक्षा 6 और 7 जून को आयोजित होगी। एनटीए ने प्रभावित अभ्यर्थियों के लिए संशोधित प्रवेश पत्र जारी कर दिया है। राजधानी पटना सहित पूरे प्रदेश में मौसम शुष्क बना हुआ है। मौसम विभाग ने पटना सहित राज्य के कई जिलों में हीट वेव का अलर्ट जारी किया है। विभाग ने कहा है कि अगले 2 से 3 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि की संभावना है।
6: अगले 2 से 3 दिनों के दौरान राज्य के अनेक स्थानों के अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की क्रमिक वृद्धि होने का

0: पूर्वानुमान है। अगले 3 से 4 दिनों के दौरान राज्य के अनेक स्थानों के न्यूनतम तापमान में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होने का पूर्वानुमान है।
1: पटना जिले के कदमकुआं थाना क्षेत्र अंतर्गत खान कोचिंग संस्थान में बीती रात गोलीबारी, तोड़फोड़ और मारपीट मामले में पुलिस ने कार्रवाई तेज कर दी है। वरीय पुलिस अधीक्षक कार्तिकेय के शर्मा ने कहा कि सीसीटीवी फुटेज से फायरिंग की पुष्टि नहीं हुई है। खान सर ने अपने संस्थान पर 8 से 10 राउंड फायरिंग किए जाने का आरोप लगाया है। रोहतास जिला मुख्यालय सासाराम के नवरत्न बाजार में एक युवक की गोली मारकर हत्या मामले में त्वरित कार्रवाई कर पुलिस ने मुख्य आरोपी टिंकू सोनी उर्फ अजय सोनी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस अधीक्षक रोशन कुमार ने बताया कि अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। अररिया जिले के अलग अलग थाना क्षेत्रों में छापेमारी कर पुलिस ने 6 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। इनके पास से 35 किलो गांजा और 36 लीटर नेपाली शराब बरामद की गई है। औरंगाबाद जिले के नबीनगर स्थित एनटीपीसी सुपर थर्मल पावर परियोजना के बालिका विकास के लिए बालिका सशक्तिकरण अभियान शुरू हो गया है। सीआईएसएफ के महानिरीक्षक प्रबोध चंद्र, एनटीपीसी के क्षेत्रीय कार्यकारी निदेशक एलके बेहरा और अन्य ने इसका शुभारंभ किया। राज्य सरकार प्रदेश के उत्कृष्ट खिलाड़ियों को सीधी नौकरी देगी। सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार ओलंपिक से लेकर राष्ट्रीय खेल के पदक विजेताओं को अब बिना किसी परीक्षा के सीधी नौकरी दी जाएगी। खिलाड़ियों के मेडल के हिसाब से उनके पद तय होंगे। बिहार क्रिकेट एसोसिएशन ने आगामी सत्र 2026-27 के लिए चयनकर्ता और सहयोगी स्टाफ के पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन मांगा है। जारी विज्ञापन के अनुसार पुरुष सीनियर चयन समिति, जूनियर क्रिकेट समिति और महिला चयन समिति के लिए चयनकर्ताओं की नियुक्ति की जाएगी। इसके अलावा मुख्य कोच, बल्लेबाजी कोच, गेंदबाजी और क्षेत्ररक्षण कोच सहित कई सहयोगी स्टाफ पदों पर भी आवेदन मांगे गए हैं। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, सीबीएसई की ऑन स्क्रीन मार्किंग मामले में केंद्र सरकार ने की बड़ी कार्रवाई। अखबार लिखता है, सीबीएसई चेयरमैन और सचिव हटाए गए। दैनिक जागरण लिखता है, प्रदेश के मदरसों की जांच के लिए हर प्रखंड में बनेगी 3 सदस्यीय कमिटी। दैनिक भास्कर की मुख्य खबर है, बिहार का गंगा पथ, 3 नए एक्सप्रेसवे से दिल्ली लखनऊ की राह आसान। प्रभात खबर ने औद्योगिक विकास से जुड़ी खबर को अपनी पहली लीड बनाते हुए लिखा है, अमूल फतुहा में लगाएगी 200 करोड़ रुपए की यूनिट। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा, राज्य में 25 चीनी मिलें 2030 तक चालू हो जाएंगी। न्यायमूर्ति मीनाक्षी मदन राय को पटना उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया, 5 जून को पदभार ग्रहण करेंगे। सहयोग शिविर के दौरान अब तक 1,59,000 से अधिक मामलों का निपटारा हुआ, 2500 पदाधिकारियों को जारी किया गया नोटिस। और मौसम विभाग ने पटना सहित राज्य के कई जिलों में हीट वेव का अलर्ट जारी किया। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

FM 103.4 MHz पर यह आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है। हमारे स्टूडियो की घड़ी में पूर्वाहन के 9:07 हुए हैं। अब आप सुनेंगे कार्यक्रम विवरण में आज हमारे केंद्र से प्रसारित और रिले किए जाने वाले कार्यक्रमों के बारे में संक्षिप्त जानकारी। अब से थोड़ी ही देर बाद 9:10 पर गीत मालिका कार्यक्रम में आप सुनेंगे हिंदी फिल्म संगीत का कार्यक्रम। 9:30 पर आपको लिए चलेंगे आकाशवाणी के विविध भारती केंद्र कार्यक्रम आज के फनकार के लिए। सुबह 10:00 आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली से हिंदी समाचार। सुबह 10:05 पर आप सुनेंगे साप्ताहिक कार्यक्रम श्रम संसार। लोक माधुरी कार्यक्रम में भोजपुरी एल्बम लोकगीत हम आपको सुनवाएंगे सुबह 10:30 पर। रसधार कार्यक्रम में आनंद लीजिएगा भोजपुरी एल्बम सॉन्ग का 10:45 पर। पूर्वाहन 11:00 से आपको लिए चलेंगे आकाशवाणी के विविध भारती केंद्र कार्यक्रम रंग तरंग के लिए। अपराह्न 12:00 आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली से हिंदी समाचार। अपराह्न 12:05 से अपराह्न 2:00 तक एक बार फिर आप सुनेंगे आकाशवाणी विविध भारती के कार्यक्रम यादों की महफिल विविध भारती की गीतमाला। अपराह्न 2:00 आप सुनेंगे आकाशवाणी पटना से प्रादेशिक समाचार। 2:05 पर इलाकाई खबरें और 2:10 पर रोजगार सूचना। आकाशवाणी दिल्ली से मध्याह्न समाचार रिले किया जाएगा अपराह्न 2:15 से 2:30 तक। 2:30 पर आप सुनेंगे आकाशवाणी विविध भारती के कार्यक्रम। ये कार्यक्रम आप शाम 5:00 तक सुन पाएंगे। शाम 5:00 हिंदी समाचार होंगे आकाशवाणी दिल्ली से। शाम 5:05 पर एक बार फिर आप सुनेंगे कार्यक्रम संबंधित उर्दू घोषणा। वंदन कार्यक्रम में भक्ति संगीत आप सुनेंगे शाम 5:10 पर। शाम 5:30 का समय होगा महिला बहनों के कार्यक्रम घर आंगन का। घर आंगन कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे त्वचा है स्वास्थ्य का आईना और बच्चे के लिए है खेल जरूरी, इस विषय पर विशेष जानकारी। साथ ही आप सुनीता कुमारी से सुनेंगे नसीहत के अंतर्गत देश के प्रति प्रेम और समर्पण।

फर्म। शाम 6 बजे आप सुनेंगे भोजपुरी लोकगीत। शाम 6:05 पर आप सुनेंगे भोजपुरी बुलेटिन समाचार। 6:10 पर सुनिएगा ग्रामीण कार्यक्रम गांव घर। 6:40 पर सुनवाएंगे आपको सांझ गीत कार्यक्रम में भोजपुरी फिल्म संगीत। शाम 7 बजे आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम पारा मेडिकल है पारस। शाम 7:15 पर सुनिएगा सांध्यकालीन सूचना कार्यक्रम गुड इवनिंग रोहतास। 7:25 से आपको लिए चलेंगे आकाशवाणी के पटना केंद्र, जहां से आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, जिले की हलचल और कुछ संदेश। 7:50 पर आप सुनिएगा आकाशवाणी सासाराम से प्रसारित किया जाने वाला फोन इन फरमाइशी कार्यक्रम हेलो मनपसंद। 8:45 पर आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली से समाचार संध्या। 9 बजे आप सुनेंगे शास्त्रीय गायन का कार्यक्रम सुर सौरभ। 9:30 पर आकाशवाणी विविध भारती से सुनिएगा कार्यक्रम आज के फनकार। रात 10 बजे रसरंग कार्यक्रम में आप सुनेंगे हिंदी एल्बम सॉन्ग। 10:30 पर आप सुनेंगे चित्रपट तराने कार्यक्रम में हिंदी फिल्म संगीत। 10:55 पर आप सुनेंगे अगले दिन का कार्यक्रम विवरण और मौसम पूर्वानुमान। रात 11 बजे आकाशवाणी दिल्ली से हिंदी समाचार और 11:05 पर अंग्रेजी समाचार हम रिले करेंगे। हमारी आज की यह सासाराम की सभा संपन्न होगी रात 11:10 पर। तो ये था कार्यक्रम विवरण। कार्यक्रम विवरण में अभी आप जानकारी ले रहे थे आज हमारे सासाराम केंद्र से प्रसारित और रिले किए जाने वाले कार्यक्रमों के बारे में। और इसी के साथ स्टूडियो की घड़ी में पूर्वाहन के 9:11 हुए हैं। अब गीत मालिका कार्यक्रम में लीजिए सुनिए हिंदी फिल्म संगीत। कार्यक्रम की शुरुआत में हम आपको सुनवाने जा रहे हैं समीर का लिखा हुआ एक गीत, जिसे धुन दिया नदीम श्रवण ने, आवाज़ें कुमार सानू के साथ अलका याग्निक की हैं और फिल्म है दामिनी।

दामिनी फिल्म का ये गीत अभी हमने आपको सुनवाया कुमार सानू और अलका याग्निक की सुरीली आवाज़ में। श्रोताओं, हम आपको बताना चाहेंगे कि राजकुमार संतोषी द्वारा निर्देशित इस फिल्म में मीनाक्षी सह्याद्री मुख्य भूमिका में थीं और इनके साथ सहयोगी कलाकार थे सनी देओल और ऋषि कपूर। आपको बता दें कि ये एक बेहद ही दमदार महिला सशक्त फिल्म थी और मीनाक्षी सह्याद्री ने इसमें बड़ा ही बेहतर काम किया था। और ये कहानी थी कि सच्चाई के साथ एक महिला किस तरह से खड़ी रहती है जबकि उसका पूरा परिवार और ख़ास तौर पे उसका पति भी उसके खिलाफ हो जाता है, लेकिन फिर भी इस फिल्म ने महिलाओं को सोचने पर मजबूर कर दिया था। बेहद ही खूबसूरत फिल्म थी ये और महिलाओं के खिलाफ हिंसा और पुरुष प्रधान समाज के खिलाफ एक महिला की अकेले लड़ाई लड़ने की कहानी पर, यानी न्याय की कहानी पर ये फिल्म आधारित थी। तो बेहद ही खूबसूरत फिल्म रही थी ये दामिनी, जिसका गीत हमने अभी आपको सुनवाया। और अब लीजिए सुनिए ऐ दिल है मुश्किल। जी हाँ, इस फिल्म में अरिजीत सिंह की आवाज़ से सजा हुआ ये गीत। इसे लिखा है अमिताभ भट्टाचार्य ने और संगीत है प्रीतम का।

अब मुझको जाना है कहाँ, अब मुझको जाना है कहाँ, तू ही है सफ़र आखिरी। बेहद ही खूबसूरत ये पंक्तियाँ इस गीत में आपने सुनी। एयरलिफ्ट फिल्म था ये और गायक कलाकार थे अरिजीत सिंह, तुलसी कुमार, अमाल के बोल थे और संगीत भी था अमाल मलिक का। आपको बता दें श्रोताओं के प्यार एक बेहद ही खूबसूरत एहसास है, या कोई लफ्ज़ नहीं एक मुकम्मल इबादत है। और जहाँ हर दुआ में सिर्फ उसकी सलामती ही मांगी जाती है जिससे आप जुड़े होते हैं। ये मौसम भी बदल जाता है, ये रुत बदल जाती है, हवाएं बदल जाती हैं और ये दुनिया भी कभी कभी बदल जाती है, लेकिन जिससे आप प्यार करते हैं उसके लिए आपकी चाहत हमेशा वैसी ही रहती है। खैर, अब कार्यक्रम के अंत में लीजिए सुनिए ऐतराज़ फिल्म से एक गीत अदनान सामी और सुनिधि चौहान की युगल आवाज़ में, समीर के बोल, हिमेश रेशमिया का संगीत।

एतराज फिल्म के इसी गीत के साथ ही अब गीत मालिका कार्यक्रम यहीं संपन्न हुआ। हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं FM 103.4 MHz पर। स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 9:30 होने वाले हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे आकाशवाणी विविध भारती से रिले किया जाने वाला कार्यक्रम।

0: नमस्ते दोस्तों। दोस्तों, आज के फनकार कार्यक्रम में एक ऐसी कलाकार जिन्होंने अपने अभिनय से सबको खामोश कर दिया।
1: मैं इस विशाल भारतवर्ष के प्रांत बिहार के एक शहर पटना में पैदा हुआ था। सिन्हा परिवार ने पूरी रामायण को जन्म दिया। राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न यानी मैं।
2: और मैंने पूनम से शादी की। आज मेरे दो बच्चे हैं जुड़वा, लव और कुश, और मेरी एक बिटिया है। यानी कई लोग मुझसे पूछते हैं कि अब आप किससे प्रेम करते हैं। मैं कहता हूँ जीवन में एक बड़ी सुंदर सी, अच्छी सी, छोटी सी और थोड़ी मोटी सी लड़की है जिससे मैं प्रेम करता हूँ, और कोई लड़की जीवन में नहीं है। ये बात दूसरी की, जो लड़की मेरे जीवन में है वो मेरी बेटी है, उसका नाम है सोनाक्षी सिन्हा।
0: दोस्तों, आप सोच रहे होंगे जिनकी आवाज आपने सुनी वही है आज के फनकार। अरे नहीं भाई, ये तो उनके पिता की आवाज है जिन्हें अभिनय विरासत में मिली है, जिन्होंने पाई है बहुत कम समय में ढेर सारी कामयाबी और जो है बड़ी दबंग।

0: आप समझ ही गए होंगे दोस्तों, आज की फनकार हैं सोनाक्षी सिन्हा।
1: चमक छल्ला छल छबीली, कहते हैं मुझको रस रसीली।
0: दोस्तों, शत्रुघ्न सिन्हा जब अपने कामयाबी के परचम लहरा रहे थे, उन दिनों उन्हें ये अंदाजा भी नहीं रहा होगा कि उनकी बिटिया सोनाक्षी एक दिन उन्हीं की तरह फिल्म इंडस्ट्री में अपना नाम रोशन करेंगी। अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा की फिल्म इंडस्ट्री में शुरुआत ही बड़े धमाकेदार हुई है। बहुत कम फिल्मों के बावजूद चोटी की अभिनेत्रियों में सशक्त अभिनय करने वाली अदाकारा के रूप में सोनाक्षी का नाम शुमार हो गया है।

की पौध में सोनाक्षी सिन्हा एक ऐसी अदाकारा हैं जिनमें देसी लुक भी है और पश्चिमी मॉडर्न लड़की के किरदार में भी वे खूब जचती हैं। अभिनय की बारीकी तो उनके रग रग में है। अभिनय का कौशल उन्हें अपने पिता शत्रुघ्न सिन्हा से विरासत में मिला है। फिल्म ओ माय गॉड में इस गाने को विशेष तौर पे शामिल किया गया था और इस गाने ने खूब धूम

0: जून 1987 में जन्मी सोनाक्षी सिन्हा के करियर की शुरुआत हुई फिल्म दबंग से, जिसमें थे बॉलीवुड के सुपर हीरो सलमान खान, और ये फिल्म सुपर डुपर हिट हुई।
1: सच

सोनाक्षी सिन्हा ने अपने करियर की शुरुआत मॉडलिंग से की। शुरुआत में उन्होंने कई फैशन शो में हिस्सा लिया। सोनाक्षी बड़ी उम्दा फैशन डिजाइनर भी रही हैं। उन्होंने 2005 की फिल्म दिल लेके देखो के लिए कॉस्ट्यूम भी डिजाइन किया। लेकिन दोस्तों, सोनाक्षी का सपना था अभिनय में कामयाबी और वे चल पड़ी फिल्मों की पगडंडी पर। अपनी लगन और मेहनत से जल्दी ही उनकी झोली में कामयाबी के तमगे चमक उठे।

आज के फनकार कार्यक्रम में हम बातें कर रहे हैं अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा की। आइए उनकी कुछ बेहतरीन फिल्मों के गाने सुन लिए जाएं। ये फिल्म है राउडी राठौड़, जिसमें उन्होंने निभाया पारो का किरदार।

सोनाक्षी सिन्हा की कुछ महत्वपूर्ण फिल्में और भी हैं, जैसे कि वेलकम टू न्यूयॉर्क, हैप्पी फिर भाग जाएगी, मिशन मंगल, दबंग 3।

0: दोस्तों, आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा पर। शोध, आलेख और स्वर आपकी रेडियो सखी ममता सिंह का था। इस कार्यक्रम के संपादक और प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले।
1: आज के फनकार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी एलोइना रोड्रिग्स गोमेज आज से 5 दिन की भारत यात्रा पर रहेंगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि उनके साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी होगा।

0: भारत और वेनेजुएला के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध हैं, विशेषकर ऊर्जा और व्यापार के क्षेत्र में। इस यात्रा से दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंध और मजबूत होंगे तथा कई क्षेत्रों में सहयोग और गहरा होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बातचीत के दौरान दोनों पक्ष आपसी हित के क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा करेंगे, जिनमें ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार और निवेश, दवाएं, स्वास्थ्य सेवा, परिवहन और नवीकरणीय ऊर्जा शामिल हैं। वेनेजुएला का प्रतिनिधिमंडल ऊर्जा, दवा और ऑटोमोबाइल क्षेत्रों से जुड़ी सुविधाओं का दौरा करेगा। इस यात्रा का उद्देश्य सहयोग के अवसर को तलाशना और भारत की तकनीकी तथा औद्योगिक क्षमताओं के बारे में जानकारी हासिल करना है। दीपेंद्र और ईशानी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
1: जनजातीय कार्य मंत्रालय आज नई दिल्ली में एकीकृत जनजातीय विकास एजेंसियों और एकीकृत जनजातीय विकास परियोजनाओं को सुदृढ़ करने पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन करेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगी। राष्ट्रपति बेंगलुरु के भारतीय विज्ञान संस्थान के नैनो विज्ञान और इंजीनियरिंग केंद्र में प्रशिक्षण केंद्र का वर्चुअल रूप से उद्घाटन करेंगी। सम्मेलन में 26 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। पश्चिम बंगाल सरकार आज एक महत्वपूर्ण सामाजिक कल्याणकारी पहल अन्नपूर्णा योजना का शुभारंभ करेगी। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी इस योजना का औपचारिक रूप से उद्घाटन करेंगे। पहले चरण में लाभार्थियों के बैंक खाते में आज से ही 3,000 रुपये भेजना शुरू होगा। इस योजना से लगभग 2 करोड़ महिला उपभोक्ताओं को लाभ मिलने की संभावना है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डीके शिवकुमार आज कर्नाटक के 25वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। 8 बार के विधायक डीके शिवकुमार बेंगलुरु के लोकभवन स्थित ग्लास हाउस में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। उनके साथ कुछ कैबिनेट मंत्री भी शपथ लेंगे। 28 मई को सिद्धारमैया के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद कांग्रेस विधायक दल ने 64 वर्षीय डीके शिवकुमार को अपना नेता चुना था। शपथ ग्रहण समारोह में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी, राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस महासचिव के सी वेणुगोपाल और रणदीप सिंह सुरजेवाला सहित कई प्रमुख नेता शामिल होंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि विवाहित बेटियों को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति से वंचित नहीं किया जा सकता। न्यायालय ने कहा कि परिवार की परिभाषा से विवाहित बेटियों को बाहर रखना स्पष्ट रूप से अनुचित और संवैधानिक रूप से गलत है। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और आलोक आराधे की पीठ ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के एक आदेश को रद्द करते हुए ये टिप्पणी की। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के अंतर्गत आपदा जोखिम न्यूनीकरण समूह की पहली प्रत्यक्ष तकनीकी बैठक आज ओडिशा के पूर्व में शुरू होगी। 3 दिन की इस बैठक में ब्रिक्स सदस्य और साझेदार देशों के प्रतिनिधि, नीति निर्माता और आपदा प्रबंधन विशेषज्ञ भाग लेंगे। जर्मनी से होकर हवाई मार्ग से यात्रा करने वाले भारतीय नागरिकों के लिए ट्रांजिट वीजा की अनिवार्यता आज से समाप्त हो गई है। भारत ने इस फैसले का स्वागत किया है। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस नई व्यवस्था से भारत और जर्मनी के बीच लोगों का आपसी संपर्क बढ़ेगा और संबंधों को मजबूती मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज के बीच इस वर्ष जनवरी में भारत यात्रा के दौरान इसकी घोषणा की गई थी। बांग्लादेश के विदेश मंत्री खलीलुर रहमान संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं। उनका कार्यकाल इस वर्ष सितंबर से शुरू होगा। उन्हें 99 वोट मिले। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 193 सदस्य देश कल 2027-28 कार्यकाल के लिए सुरक्षा परिषद के 5 नए अस्थायी सदस्यों का भी चुनाव करेंगे। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने डॉ खलीलुर रहमान को बधाई दी है। तीसरे और अंतिम महिला 2020 क्रिकेट मैच में भारत को इंग्लैंड से 6 विकेट से हार का सामना करना पड़ा। इंग्लैंड ने श्रृंखला 2-1 से अपने नाम कर ली है। एलिस कैप्सी को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया, साथ ही उन्हें प्लेयर ऑफ द सीरीज का खिताब भी मिला। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: एफएम 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है। अब आप सुनेंगे साप्ताहिक कार्यक्रम श्रम संसार। इस कार्यक्रम में संकलन एवं वाचन है चंदा कुमारी का।
1: नमस्कार श्रोताओं, श्रम संसार कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम श्रम संसार कार्यक्रम में बात करेंगे एक ऐसे मेहनती व्यवसायी से जिन्होंने अपनी मेहनत से लोगों का भरोसा जीता। आज के समय में चाहे स्कूल कॉलेज का फॉर्म भरना हो, आधार कार्ड की कॉपी हो या किसी जरूरी दस्तावेज की कॉपी, ये फोटो स्टेट की दुकान लोगों की दैनिक जरूरत का एक अहम हिस्सा बन चुकी है। तो आइए बात करते हैं दुकान संचालक से और जानते हैं कि काम की शुरुआत इन्होंने कैसे की, इनके काम, इनके अनुभव और इनके संघर्ष की कहानी इनकी जुबानी। सबसे पहले तो आप हमारे श्रोताओं को अपना नाम बता दीजिए।
2: मनीष कुमार।
1: अच्छा मनीष जी, आप कौन सा रोजगार करते हैं?
2: मेरा साइबर कैफे फोटोकॉपी का दुकान है।
1: अच्छा अच्छा, तो आप ये जो दुकान है साइबर कैफे, आप कितने सालों से चला रहे हैं?
2: लगभग 22-23 साल हो गए।
1: यानी कि 22-23 साल आपके दुकान को हो गया, तो ये तो बहुत काफी पुराना दुकान है।
2: जी जी जी।
1: अच्छा, तो जैसे कि कोई भी इंसान जब भी अपना कोई बिजनेस खड़ा करता है तो किसी न किसी तरह से कोई आर्थिक तंगी या ऐसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, तो आपके साथ भी ऐसी कोई समस्या आई?
2: समस्या देखिए, जैसे हम लोग नया नया दुकान खोले तो उस समय नॉलेज नहीं था, तो धीरे धीरे हम लोग सीखे, धीरे धीरे मशीन पुराना था तो उसको नया नया अपडेट किए, नया नया लाए, धीरे धीरे करते करते सीख गए हम लोग।
1: समय के अनुसार से,
2: समय के अनुसार, हाँ,
1: डिजिटल का तौर तरीका,
2: हाँ, उसी तरीके से हम लोग चेंज करते आए, आज भी चेंज करते हैं बीच बीच में। और हम लोग का जो धंधा है थोड़ा सा कभी डाउन हो जाता है ज्यादा, कभी बढ़िया चलने लगता है। अभी देखिए इस समय लगभग 2-3 महीना से बहुत थोड़ा डाउन चल रहा है, उसी धीरे धीरे होता है।
1: रोजगार ऐसा है ही कि कभी मंदा कभी तेजी आते रहता है, ये रोजगार में अक्सर ऐसा होता रहता है। तो हिम्मत रखना,
2: नहीं नहीं, हिम्मत तो अब देखिए हम लोग का इतना एक्सपीरियंस हो गया तो आदमी दूसरा काम भी नहीं करने में बनता है, इसी वजह से हम लोग लगे रहते हैं।
1: नहीं, सही कहा, जो एक धैर्य होता है इंसान का, जो भी इंसान जो रोजगार करता है उसके अंदर धैर्य रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि उतार चढ़ाव तो जिंदगी में आते रहता है लेकिन हमें डट के रहना है।
2: एकदम एकदम।
1: अच्छा, आपके परिवार में और भी कोई सदस्य हैं?
2: बहुत सारे हैं, 4 भाई हम लोग हैं, बहन है, तो सबसे हम छोटे हुए
1: जी।
2: सब लोग का मतलब अलग अलग बिजनेस है, सब लोग अपना अपना काम करते हैं, सब बिजनेसमैन ही है,
1: यानी कि सब कोई बिजनेस में ही लगा हुआ है, यानी कि हर कोई अपना अपना जगह पर, सब कोई उस मुकाम तक लोग पहुंच गए हैं ताकि कोई तरह की परेशानी आगे ना आए। अच्छा, ये बताइए कि जैसे कि इंसान बोलता है कि जैसे आपने जैसे बताया कि मैंने अपना रोजगार किया, तो आपने रोजगार ही क्यों चुना?
2: मान लीजिएगा हम लोग इंटर पढ़ने के बाद, 10+2 पढ़ने के बाद बीए में एडमिशन लिए हैं, उसमें पढ़ाई भी कर रहे थे और दुकान भी हम लोग कर दिए।
1: मतलब कि आप कुछ ऐसी मजबूरी थी?
2: हाँ, मान लीजिए परिवारिक के थ्रू के वजह से हम लोग धंधा में आ गए, नहीं तो हम लोग आगे था
1: और पढ़ने आगे पढ़ाई करने का मन था।
2: लेकिन हाँ, लेकिन कुछ कारण हम लोग धंधा में लग गए, पढ़ाई भी कर रहे थे साथ में भी, लेकिन अब हम लोग को नौकरी नहीं मिल पाया।
1: लेकिन हम चाहेंगे कि अगर इंसान कहता है कि अगर पढ़ने का लगन है तो किसी भी उम्र में इंसान पढ़ सकता है, सीख सकता है, तो हम चाहेंगे कि आप चाहें तो अपनी इच्छाओं को आप आगे भी बढ़ा सकते हैं।
2: जी, ऐसा

0: है, लेकिन लेकिन अब हम लोग सर्टिफिकेट से लगभग अब
1: उम्र पार हो चुकी है,
0: पार होने वाला है, 2-3 साल बचा हुआ है।
1: यानी आप उम्र सीमा तो लगभग खत्म होने वाली है, तो ये भी एक तरह से ठीक है कि आप अपना रोजगार कर रहे हैं और उस रोजगार से आप संतुष्ट हैं।
0: हाँ ठीक है, मिला जुला के सब चल रहा है।
1: इस रोजगार से आपका मतलब पूरा काम चल जाता है?
0: फिलहाल तो चल ही रहा है, लेकिन उसी में कभी डाउन होता है, कभी ठीक हो जाता है, कभी बहुत ज्यादा डाउन, अभी बहुत ज्यादा डाउन चल रहा है।
1: यानी कि उतार चढ़ाव के कारण एक तरह से कहा जाए तो मानसिक स्थिति भी थोड़ा प्रेशर पड़ता
0: है। हाँ, प्रेशर में थोड़ा हम लोग रहते हैं ज्यादा।
1: अच्छा, आप गाने वाने भी सुनते हैं, रेडियो सुनते हैं?
0: ज्यादा हम गाना सुनते हैं और भाई बजाते भी हम लोग।
1: तो अपनी पसंद का कोई गीत बताइए, आपकी पसंद का गीत हम कार्यक्रम में जरूर शामिल करना चाहेंगे।
0: जी जी जी। हाँ, फिल्म का नाम है वही सत्यम शिवम सुंदरम, ईश्वर सत्य है।
1: आइए इनकी पसंद का ये गीत सुनते हैं।

0: छोटे व्यवसाय ही समाज की बड़ी ताकत बनते हैं और ऐसे लोग दूसरों के लिए प्रेरणादायी भी होते हैं। काम छोटा या बड़ा नहीं होता, लगन से हर काम इंसान को करना चाहिए, तभी वो आगे तरक्की की ओर बढ़ता है। श्रोताओं, हमने आज एक और मेहनतकश व्यक्ति से बातचीत की है जो अपने मेहनत और संघर्ष से अपनी जीविका को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये है एक फल विक्रेता जो रोज सुबह से लेकर शाम तक मेहनत करके लोगों तक फल पहुंचाने का काम करते हैं।
1: सबसे पहले हमने हमारे जो श्रोता भाई हैं उनको अपना नाम बता दीजिए।
2: नाम अमरजीत कुमार है।
1: आप कौन सा व्यवसाय करते हैं?
2: हम फल बेचते हैं, फल का व्यवसाय करते हैं।
1: अच्छा, तो आप जो फल का व्यवसाय कर रहे हैं वो कितने सालों से कर रहे हैं?
2: 5-6 साल लगभग।
1: अच्छा, तो ये जो आपने व्यवसाय शुरू किया तो आपने ये क्या सोचकर व्यवसाय स्टार्ट किया?
2: मैम देखिए, बेरोजगारी है, प्लस में पढ़ाई भी लिखाई करना है, इसमें घर का दयनीय स्थिति है, इसीलिए।
1: यानी कि अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए आपने ये व्यवसाय शुरू किया?
2: जी।
1: अच्छा, आपके परिवार में और कौन कौन है?
2: हमारे माता है, पिता है, 3 बहन है, 4 भाई हैं हम लोग।
1: अच्छा, तो जैसे कि आपने किसी सरकारी योजना का लाभ लिया है?
2: नहीं, सरकारी योजना का लाभ नहीं लिया।
1: जैसे कि अभी सरकार उद्यमी योजना शुरू की है तो उसके अंतर्गत सरकार आर्थिक रूप से सहायता देती है।
0: हम आपको जानकारी के लिए बता दें कि उद्यमी योजना सरकार की एक ऐसी योजना है जिसका उद्देश्य युवाओं और छोटे व्यवसाय शुरू करने वाले की आर्थिक सहायता के साथ साथ प्रशिक्षण और रोजगार के अवसर भी देती है। व्यवसाय चाहे तो दुकान हो, छोटे उद्योग, फूड प्रोसेसिंग हो या फिर कंप्यूटर प्रिंटिंग, जैसे ये रोजगार के अवसर प्रदान करती है। इस योजना का लाभ लेने के लिए आपको अपना आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, शैक्षणिक प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक, आपकी एक फोटो और मोबाइल या फिर ईमेल नंबर का होना भी जरूरी है। सरकार द्वारा चलाई जा रही इस योजना का मुख्य उद्देश्य भी यही है कि जो हमारे बेरोजगार युवा हैं, युवती हैं, उन्हें आर्थिक सहायता देकर उन्हें एक कुशल व्यक्ति बनाना है ताकि वे खुद भी आगे बढ़े और दूसरों को भी रोजगार दे सके। यानी कि हमारे कहने का मतलब कि अगर कोई व्यक्ति सरकार के द्वारा एक कुशल व्यवसायी बन जाता है तो वो दूसरों को भी

0: रोजगार अपने दम पर रोजगार उन्हें दे सकता है। तो हम चाहे तो इस योजना का लाभ ले सकते हैं और हम चाहेंगे कि आप भी इस योजना का लाभ जरूर लें, ताकि आप जो अपनी आर्थिक स्थिति है उसे मजबूत बना सके और एक सफल युवा के रूप में उभर करके आए।
1: तो आप चाहे तो आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं और अपना व्यवसाय एक अलग रूप से खड़ा कर सकते हैं।
2: जी मिलेगा तो लेंगे।
1: उसके लिए आप जाकर के एक सरकारी संस्था में अप्लाई कीजिए, आपको जरूर इस योजना का लाभ मिलेगा।
2: हाँ हाँ ठीक।
1: अच्छा ये बताइए कि आपने जब इस व्यवसाय को शुरू किया, तो जैसे कि आपने बताया कि मुझे आर्थिक तंगी थी, तो इस व्यवसाय को शुरू करने के लिए भी आपको आर्थिक सहायता की जरूरत पड़ी होगी, तो आपको आर्थिक सहायता के रूप में कहाँ से आर्थिक सहायता?
2: पहले तो घर पे होता था ये काम, पापा करते थे। अब सोचे कि पापा बूढ़े हो गए तो हम उनका साथ दे, हेल्प करें, इसीलिए।
1: अच्छा ये बताइए कि जैसे कि आपने बोला कि आर्थिक सहायता के रूप में, तो इस फल व्यवसाय के अलावा भी आप कुछ और काम करते हैं?
2: जी जी पढ़ाई करते हैं, घर पे पढ़ाई करते हैं और दुकान भी चलाते हैं, दोनों काम करते हैं।
1: ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप व्यवसाय के साथ साथ अपना पढ़ाई शुरू किए हैं। तो लेकिन ये बताइए कि आप अगर आपको पढ़ाई का मौका मिले तो आप क्या करना चाहेंगे?
2: देखिए मैम हालात कैसा भी हो मगर शिक्षा नहीं छूटना चाहिए। कहे नहीं हम ठेला पर केला बेच कर करें, लेकिन शिक्षा नहीं छोड़ना चाहिए।
1: बिल्कुल, शिक्षा वो हथियार है कि आदमी कोई भी इंसान काम कर सकता है। अच्छा ये बताइए कि आप रेडियो वगैरह सुनते हैं, गाने वाने सुनते हैं?
2: जी सुनते हैं थोड़ा बहुत।
1: तो अपनी पसंद का कोई गीत बताइए, आपका पसंद का गीत हम कार्यक्रम में जरूर शामिल करेंगे।
2: तेरे नैना सावन भादो फिर भी मेरा मन प्यासा, फिर भी मेरा मन प्यासा।
1: तो आइए ये गाने के भी शौकीन है, गाने के भी शौकीन है और ये गाना भी सुनते हैं, तो आइए इनकी पसंद का ये गीत सुनते हैं।

0: आपका बहुत बहुत धन्यवाद
1: जी मैम जी।
2: तो ये थी हमारी आज की बातचीत, स्वर एवं संकलन चंदा देवी, प्रस्तुतकर्ता संतोष कुमार। आज का यह कार्यक्रम आपको कैसा लगा? अपने सुझाव, अपनी प्रतिक्रिया हमें इस पते पर लिख भेजें। हमारा पता है कार्यक्रम श्रम संसार, द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी सासाराम, पिन कोड नंबर 821115। अब अपनी रेडियो दोस्त चंदा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
3: अभी आप सुन रहे थे साप्ताहिक कार्यक्रम श्रम संसार, ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है। हमारा अगला कार्यक्रम कुछ ही देर में।

FM 103.4 MHz पर ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है। हमारे स्टूडियो की घड़ी में पूर्वाह्न के 10:30 हो रहे हैं। अब आप सुनेंगे लोक माधुरी कार्यक्रम में कुछ भोजपुरी एल्बम लोकगीत। तो चलिए सुनवाते हैं आपको कशिश सिन्हा के स्वर में पंडित ज्वाला प्रसाद का संगीतबद्ध किया हुआ ये भोजपुरी एल्बम लोकगीत।

सर्वानंद ठाकुर के स्वर में अभी आपने सुना ये पारंपरिक भोजपुरी एल्बम लोकगीत। संगीत सर्वानंद ठाकुर का था और आवाज़ भी इन्हीं की थी और एल्बम था करी हम कौन बहाना। लोक माधुरी कार्यक्रम के अंत में अब लीजिए सुनिए देवेंद्र तिवारी का लिखा हुआ एक भोजपुरी एल्बम लोकगीत। पंडित ज्वाला प्रसाद व का धुन है और आवाज़ भरत शर्मा व्यास की। एल्बम है आधी आधी रतिया के

खनक जान मारे ला वैरी कंगनवा। भरत शर्मा व्यास के गाए हुए इसी भोजपुरी एल्बम लोकगीत के साथ ही हमारा आज का यह लोक माधुरी कार्यक्रम अब यहीं संपन्न हुआ। हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं FM 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। स्टूडियो की घड़ी में 10:46 हो रहे हैं। दस्तार कार्यक्रम में अब लीजिए सुनिए कुछ एल्बम सॉन्ग। तो सबसे पहले भोजपुरी एल्बम सॉन्ग जो हमने चुना है सुमित बाबा के स्वर में, इसे हमने लिया है तू ही लक्ष्मी तू ही सरस्वती एल्बम से। विनोद कुमार पांडे का लिखा हुआ ये भोजपुरी एल्बम सॉन्ग है जिसकी धुन बनाई NK नंदन ने।

निशुल्क कानूनी सहायता टेली लॉ के ऐप वेबसाइट www.tele-law.in या टोल फ्री नंबर 1-4454 से प्राप्त की जा सकती है।

ईद दर्दे मोहब्बत सहे के त होई, इस एल्बम से ये टाइटल एल्बम सॉन्ग अभी आप सुन रहे थे पूजा तिवारी के स्वर में। अशोक शिवपुरी के बोल थे, बाबूजान का संगीत था। और अब इसी भोजपुरी एल्बम सॉन्ग के साथ ही हमारा आज का यह रसधार कार्यक्रम अब यहीं संपन्न हुआ। हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं FM 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। हमारे स्टूडियो की घड़ी में पूर्वाह्न के 11 बजने वाले हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे आकाशवाणी विविध भारती के कार्यक्रम, जिसे हम अपने आकाशवाणी सासाराम से रिले करेंगे। तो सुनते रहिए आकाशवाणी सासाराम, हमसे जुड़े रहिए। फिलहाल प्रातःकालीन सभा से अब अपनी रेडियो दोस्त रागिनी को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।

0: बाद सुकून का एक कोना,
1: मैं और मेरी तन्हाई,
0: सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम रंग तरंग में।

हम सुन रहे थे हिंदुस्तानी गज़ल एल्बम से निर्मला देवी की आवाज़ में। शकीक बदायूनी ने इसे लिखा और खान साहेब अब्दुल रहमान ने इसे संगीतबद्ध किया। आइए सुनते हैं अगली नज़्म, जो कि है उर्दू गज़ल एल्बम से, बेगम अख्तर की आवाज़ में है और जिगर मुरादाबाद ने इसे संगीतबद्ध किया है।

हम सुन रहे थे मुकेश गजल्स एल्बम से, मुकेश की आवाज़ में जान निसार अख्तर के बोल और खयाम के संगीत से सजी हुई इस नगमे को। आइए सुनते हैं अगली गजल जो होगी हिंदुस्तानी क्लासिकल गजल एल्बम से, तलत महमूद की आवाज़ में एहसान मीरती के बोलों के साथ चित्ता रॉय का संगीत है।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है रंग तरंग। आइए सुनते हैं कार्यक्रम रंग तरंग में अगला नगमा, जो कि हिंदुस्तानी गजल एल्बम से लिया गया है, मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ है। सबा अफगानी ने इसे लिखा और इकबाल ने संगीतबद्ध किया है।

0: हम सुन रहे थे मिराज़े गज़ल एल्बम से आशा भोसले गुलाम अली की आवाज़ में। नासिर काज़मी ने इसे लिखा और गुलाम अली ने संगीतबद्ध किया। आइए सुनते हैं संदेश।
1: एक सुरीली यात्रा है यह जीवन, संग जो है विविध भारती मन भावन। अभिजात संगीत की थाह लेता विविध भारती का कार्यक्रम।

संजो रहा है सांस्कृतिक धरोहर का श्रोताओं से नाता, सांगीतिक परंपरा की खोज और फिल्म संगीत में शास्त्रीयता।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है रंग तरंग। आइए सुनते हैं उर्दू मॉडर्न गजल एल्बम से लता मंगेशकर की आवाज़ में गालिब के द्वारा लिखे गए इस नगमे को।

हम थे खामोश एल्बम से सुन रहे थे उत्कर्ष शर्मा की आवाज़ में सिया सचदेव के बोलों से सजे हुए देव बसक ने इसे संगीतबद्ध किया है। ये है एक प्यारा सा नगमा, आइए सुनते हैं कार्यक्रम रंग तरंग में अगला नगमा जो कि पृथ्वी गंधार की आवाज़ में है।

आज के कार्यक्रम रंग तरंग की अंतिम नज्म एहसास एल्बम से तलत अजीज की आवाज में, सूरज सनीम के बोल और ललित सेन के संगीत के साथ।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। दोपहर के 12 बजने वाले हैं, बस थोड़ी ही देर में हम समाचार प्रसारित करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में जनजातीय विकास पर राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए कहा कि जनजातीय सांस्कृतिक रूप से बहुत धनी हैं। उन्होंने कहा कि जनजातीय आत्मसम्मान के साथ जीते हैं। राष्ट्रपति इस समय सम्मेलन को संबोधित कर रही हैं। आइए सुनते हैं उनका संबोधन।
2: खेलकूद में आज भी एक वाला कपड़ा का बोल बना के वो खेलते हैं, उसका कोई इंटरेस्ट नहीं मुझे कोई अवार्ड मिले, खुशी से खेलते हैं। उनको प्रोत्साहित करने की जरूरत, आज भी गांव-गांव में फुटबॉल खेलते हैं, हॉकी खेलते हैं, उनके खुद के अंदर गांव-गांव के अंदर टूर्नामेंट करते हैं, लेकिन उसको प्रोत्साहित करने की जरूरत है। तो एकलव्य विद्यालय को दिया गया है। मैं कहना चाहूंगी जो भी और भी ट्राइबल स्कूल है, क्योंकि उनके पास टैलेंट है। आज आप ओडिशा के भुवनेश्वर में क्या किट आज फेमस क्यों है, किट नहीं किस फेमस आज वर्ल्ड फेमस क्यों है, क्योंकि वहां ट्राइबल्स 25,000 या 30,000 बच्चों को ट्राइबल बच्चों को लिए हैं पढ़ाई।
1: वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिक्स आज से 5 दिन की भारत

0: यात्रा पर रहेंगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि उनके साथ उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी होगा।
1: भारत और वेनेजुएला के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध हैं, विशेषकर ऊर्जा और व्यापार के क्षेत्र में। इस यात्रा से दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंध और मजबूत होंगे तथा कई क्षेत्रों में सहयोग और गहरा होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बातचीत के दौरान दोनों पक्ष आपसी हित के क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा करेंगे, जिनमें ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार और निवेश, दवाएं, स्वास्थ्य सेवा, परिवहन और ऊर्जा शामिल है। वेनेजुएला का प्रतिनिधिमंडल ऊर्जा, दवा और ऑटोमोबाइल क्षेत्रों से जुड़ी सुविधाओं का दौरा करेगा। इस यात्रा का उद्देश्य सहयोग के अवसर को तलाशना और भारत की तकनीकी तथा औद्योगिक क्षमताओं के बारे में जानकारी हासिल करना है। दीपेंद्र और ईशानी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
0: सर्वोच्च न्यायालय ने अरावली पर्वत श्रृंखला की परिभाषा और सीमांकन संबंधी केंद्र सरकार की रिपोर्ट की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद की महानिदेशक कंचन देवी करेंगी। समिति को इस वर्ष 31 अगस्त तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है। भारत अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए वार्षिक सौर ऊर्जा क्षमता वृद्धि में 2025 तक विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा विकास बाजार बन गया है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि देश की सौर ऊर्जा विकास गाथा वैश्विक मानक स्थापित कर रही है और मजबूत नीतिगत समर्थन, नवाचार और विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे के माध्यम से रिकॉर्ड क्षमता वृद्धि को गति दे रही है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डीके शिवकुमार आज कर्नाटक के 25वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। 8 बार के विधायक डीके शिवकुमार बेंगलुरु के लोकभवन स्थित ग्लास हाउस में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। उनके साथ कुछ कैबिनेट मंत्री भी शपथ लेंगे। पश्चिम बंगाल की पूर्व सत्ताधारी पार्टी तृणमूल कांग्रेस टीएमसी में उथल पुथल मची हुई है और वो विभाजन के कगार पर है। टीएमसी से निष्कासित विधायक ऋतुबर्ता बनर्जी का दावा है कि उन्हें लगभग 60 विधायकों का समर्थन प्राप्त है। उनके गुट ने विधानसभा अध्यक्ष रथिंद्र बोस को पत्र लिखकर खुद को टीएमसी के रूप में मान्यता देने की मांग की है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने कहा है कि लगभग 40,000 छात्रों ने सफलतापूर्वक पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन जमा कर दिए हैं। ये प्रक्रिया बिना किसी समस्या के पूरी कर ली गई है। बोर्ड ने कल कक्षा 12वीं के छात्रों के लिए उत्तर पुस्तिकाओं की त्रुटियों के सत्यापन और उत्तरों के पुनर्मूल्यांकन के लिए ऑनलाइन पोर्टल खोला था। ये सुविधा केवल उन्हीं छात्रों के लिए उपलब्ध है जिन्होंने अपनी मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियां प्राप्त कर ली हैं। आज विश्व साइकिल दिवस है। इस वर्ष का विषय है हरित भविष्य के लिए साइकिल चलाना। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने युवाओं से साइकिल चलाने और एक स्वस्थ, तंदुरुस्त और हरित राष्ट्र के निर्माण में अग्रणी भूमिका निभाने का आग्रह किया है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक के शुरुआती कारोबार में आज गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 948 अंक की गिरावट के साथ 73,702 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम यादों की महफिल प्रस्तुत होगा बस थोड़ी ही देर के बाद।

आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम यादों की महफिल में। आइए सुनते हैं यादों की महफिल का पहला गीत देवदास फिल्म से। गीता दत्त और मन्ना डे की आवाजें हैं, साहिर लुधियानवी के बोल हैं और सचिन देव वर्मन का है संगीत।

हम सुन रहे थे सुजाता फिल्म से यह गीत, सचिन देव बर्मन की आवाज और उनके ही द्वारा संगीतबद्ध किए गए इस गीत को, जिसे लिखा मजरूह सुल्तानपुरी ने। आप सुन रहे हैं यादों की महफिल और आज हम सजा कर लाए हैं यादों की महफिल सचिन देव बर्मन की यादों के साथ, उनके गाए हुए और उनके द्वारा संगीतबद्ध किए हुए गीतों के साथ।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का कार्यक्रम यादों की महफिल में। काला पानी फिल्म का ये गीत हम सुनने

0: बम्बई का बाबू फिल्म से यह गीत हम सुन रहे थे मुकेश की आवाज में, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल और सचिन देव बर्मन के संगीत के साथ। आइए सुनते हैं ये संदेश।
1: अरे सुनो, आजकल ये क्या हर रोज तुम रेडियो सुनती रहती हो, पढ़ाई लिखाई नहीं करती क्या? घड़ी देखो जरा, 3 बज रहे हैं 3।
2: वो क्या है ना कि आजकल मैं हर रोज दिन में 3 बजे सुनती हूँ सखी सहेली।
1: सखी सहेली?
2: हाँ, हर रोज 2 सखियाँ 3 बजे बड़ी मजेदार बातें करती हैं। और तो और, पढ़ाई, करियर, इंटरनेट, सोशल मीडिया और दुनिया भर की दिलचस्प जानकारियाँ भी देती हैं।
1: अच्छा, तो मुझे भी बताना जरा, मैं भी सुनूंगा सखी सहेली।
2: हाँ हाँ, क्यों नहीं, सखिया ही नहीं सखा भी सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे
3: सखी सहेली।
2: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
4: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली कलियां।
2: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत भूले बिसरे गीत।
5: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
2: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत
6: तुम्हारी याद सताते हैं
2: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए सुनते हैं कार्यक्रम यादों की महफिल में अगला नगमा, जो कि है फंटूश फिल्म से। आशा भोसले की आवाज है, साहिल लुधियानवी के हैं बोल, और हम आपसे बता रहे थे कि आज हम याद कर रहे हैं यादों की महफिल में सचिन देव बर्मन को, तो उनका ही संगीत है।

0: हम सुन रहे थे चुपके चुपके चल रही पुरबैया। ये गीत हमने लिया लता मंगेशकर की आवाज में, आनंद बख्शी के बोलों के साथ, सचिन देव बर्मन के संगीत से सजा हुआ फिल्म चुपके चुपके से।
1: कुछ रेशमी ख्वाब, कुछ मखमली अंदाज,

0: नए दौर के सदाबहार गानों की महफिल।
1: जाने क्यों ना गम किया करते हैं।
0: सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है यादों की महफिल और आज हमने सजाई है सचिन देव बर्मन के गीतों के साथ। आइए सुनते हैं सचिन देव बर्मन की आवाज में आराधना फिल्म का यह गीत, जिसे लिखा है आनंद बख्शी ने और संगीतबद्ध किया है सचिन देव बर्मन ने ही।

अभिमान फिल्म से सुन रहे थे ये गीत हम, जिसे गाया लता मंगेशकर ने, मजरूर सुल्तानपुरी के हैं बोल और सचिन देवबर्मन के संगीत से सजा हुआ। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है यादों की महफिल। यादों की महफिल में हम सजाकर लाए हैं सचिन देवबर्मन के संगीतबद्ध किए गए और कुछ उनके गाए गए गीतों को। तो अब हम चलते हैं उनके ही द्वारा गाए गए इस गीत की ओर, जिसे लिया है गाइड फिल्म से, जिसे सचिन देवबर्मन ने गाया भी है और संगीतबद्ध भी किया है।

आइए चलते हैं अगले गीत की तरफ, जो कि है अनुराग फिल्म से, मोहम्मद रफी लता मंगेशकर ने से गाया है, आनंद बख्शी के बोल हैं और सचिन देवबर्मन का संगीत।

हम सुन रहे थे बड़ा सकारात्मक सा गीत बाजी फिल्म से गीता दत्त की आवाज में साहिल लुधियानवी के बोल और सचिन देव वर्मन के संगीत से सजा हुआ। आइए सुनते हैं आज के कार्यक्रम में सचिन देव वर्मन के ही द्वारा संगीतबद्ध किए गए इस अगले गीत को, जिसे लिखा है साहिल लुधियानवी ने, किशोर कुमार ने गाया है और मुनीम जी फिल्म से इस गीत को लिया गया है।

आइए सुनते हैं आज के कार्यक्रम यादों की महफिल का अंतिम गीत। प्यासा फिल्म से गीता दत्त, मोहम्मद रफी की आवाजें हैं, साहिल लुधियानवी के बोल और सचिन देवबर्मन के संगीत से सजा हुआ है। सुनते हैं इसके कुछ अंश।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। बस थोड़ी ही देर में हम सुनेंगे कार्यक्रम सुरीला सफर।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। और अब हम चलते हैं उस सफर की ओर जो बहुत सुरीला है और जिसे हम कहते हैं सुरीला सफर। मैं हूं विधि प्रवीण जैन, नमस्कार स्वीकार। आज इबारत लेकर हम आपके बीच में आए हैं और वह इबारत हम आप सभी के साथ साझा करना चाहते हैं। इबारत बड़ी छोटी सी है लेकिन बात बड़े दिल की है। इबारत कुछ ऐसा कहती है कि दिल जब यह पूछता है कि वो कौन है, तो बरबस ही सामने वाले का अक्स आंखों में उभर आता है। फिर कोशिश होती है कि पहले खत के लिए, और दिल दलीलें देता है कि इशारों में

उधर से कुछ कहा तो है, और कहीं एहसान दिल पर हो गया तो क्या ही बात है। और अगर उनकी नजरों की इनायत ना हुई तो कयामत ही आ जाएगी। बस ये छोटी सी इबारत उन क्षणों की, उन लम्हों की, जिन्हें हम बहुत प्यार से जीते हैं। अब इसके लिए हमारे श्रोता क्या कहते हैं, तो वह लिखते हैं कि आज की इबारत प्रेम के शुरुआती अनुभूतियों को व्यक्त करते हुए दिल की बेहद खूबसूरत, नाजुक और कश्मकश भरे एहसास है। ये मोहब्बत के उस दौर का आईना है जब प्यार का पहला खत अभी कागज पर नहीं, दिल की धड़कनों में लिखा जा रहा है। जब किसी का चेहरा सिर्फ आंखों में नहीं बल्कि दिल और दिमाग में छाया है। एक मीठी सी जंग शुरू है। हर इशारा एक पैगाम है, हर ख्याल एक उम्मीद है, और मन उस पहले खत के अल्फाज तलाशने लगा है जो मोहब्बत की सबसे खूबसूरत इबारत बन सके। प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है। बिल्कुल सही बात है। हमारी श्रोता लिखते हैं कि प्रस्तुत गद्यमयी इबारत में प्रणय के सुनिश्चय से संबंधित दिल के उहापोह का एक अच्छा खासा मनोविश्लेषण किया गया है, जिसके फलस्वरूप दिल की दृढ़ता सामने वाले की नजर से गुफ्तगू के आधार पर न केवल टिकी हुई अपितु परिवर्धनशील भी है। इस दृष्टिकोण से आज की यह गद्यमयी इबारत वास्तव में इबारत करने योग्य है, इबादत करने योग्य है। और यह लिखते लिखते वह कहीं ना कहीं रुक जाती हैं। और इसके साथ ही हमारे श्रोता लिखते हैं कि आज के छोटे से गद्यांश से दिल में उमड़ रहे प्यार मोहब्बत के भरे बहुत ही गहरे भावों को भरा गया है। मोहब्बत का इजहार शब्दों से नहीं बल्कि दिल की गहराइयों से जुड़े छोटे छोटे और नाजुक इशारों से किया जाता है। आंखों की खामोश भाषा भाषा और प्यार के नजराने आपके जज्बातों को बिना कहे भी बयां कर देते हैं। बहुत बढ़िया लिखा है आपने। इसके साथ ही हमारे एक और श्रोता ने लिखा है, प्रेम का इजहार आंखों के इशारों से लेकर खत लिखने तक की यात्रा में बहुत उहापोह, कशमकश और मन में एक डर समाया होने वाली श्रृंखला रहती है। प्रेम की शुरुआत सर्वप्रथम दृष्टि मिलने यानी नयनों के बाण से होती है। बहुधा प्रेयसी की कटीली तिरछी चितवन से प्रेमी घायल होता है और प्रेम अंकुर फूट पड़ता है। इसके बाद मन में एक दूसरे के प्रति अनुराग या लगाव को चेहरे के हाव भाव से लज्जा शर्म और रोमांच के माध्यम से समझा जाता है और एक दूसरे के इशारों से अपने हृदय की बात पहुंचाते हैं। बिल्कुल सही बात कही है आपने। और हमारे एक और श्रोता ने लिखा है कि एक अनजान व्यक्ति से कुछ लगा हो ही जाता है तो समझ में नहीं आता कि आखिर क्या है उस शख्स में जो उस ओर खिंचा चला जाता है। कुछ चिट्ठी पत्री लिख कर दे देखूं क्या उधर से भी कोई मेरी तरह से सोच रहा है, और अगर कोई इशारा ना मिला तो क्या होगा, मेरी तरफ से पहल ठीक रहेगी। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं, आज का कार्यक्रम बहुत ही स्पेशल होने वाला है जिसमें प्यार मोहब्बत की बातें होंगी, इशारे भी होंगे, छेड़छाड़ भी होगा, खत किताबत भी होगी और फिर मिलन के गीतों की लंबी फहरिस्त भी होगी और बस सुनने में मजा आएगा। बिल्कुल सही। अब हम आपसे एक बात कहना चाहते हैं कि आज की जो इबारत है आप सही समझे हैं, बस उतने ही समय की है जितने समय में इजराहे मोहब्बत होती है। बस उससे कहने की देर होती है, पर कहने के पहले जो जो कुछ होता है वो सब कुछ आज की बातों में है। तो पहला प्रश्न है, क्या आपके जीवन में ऐसा कुछ हुआ है? देखिए, बात तो अंदर की है जो हम आपसे पूछ रहे हैं। हो सकता है ये बात आपकी अपनी पत्नी, आपके पति के साथ हुई हो या फिर कोई और हो जो आपकी प्रेयसी या आपका प्रेमी रहा हो, या ये बात आपने किसी और के लिए भी महसूस की हो, तो बताइएगा जरूर ये बात क्या है आपके दिल की। कभी कभी तो कोई अभिनेता, अभिनेत्री, गायक, गायिकाओं के लिए भी इस तरह के मन में विचार रख लेते हैं, कभी कोई खेल खिलाड़ी के लिए। तो अगर ऐसा कोई विचार मन में है तो जरूर बताइएगा, क्योंकि ये जो दिल है ना, बड़ा बड़ा खतरनाक है, जाने किस पे कब आ जाए। तो चलिए सुनते हैं आज के इस कार्यक्रम का पहला गीत, और इस गीत के साथ हमारा एक प्रश्न आपसे जो हमेशा जुड़ा होता है। पहला प्रश्न तो हमने आपको दे दिया कि बताइए कि आपके साथ ऐसा कुछ हादसा हुआ है, अगर हुआ है तो बता दीजिए, बताने में शर्म कैसी। और बस इतना बता दीजिए, ये जो गीत आप सुन रहे हैं इसमें ये मीठी सी सुरीली सी आवाज किसकी है?

अब दिल जो ना कह सका वो कहने की रात आई है, और ये गीत हमने लिया भीगी रात से, मजरू सुल्तानपुरी के बोल और संगीत है रोशन का। हमने आपसे पूछा कि ये मीठी सुरीली सी आवाज़ कौन सी है, तो ऐसा कौन होगा जो ये आवाज़ नहीं पहचान पाएगा। हमारे सभी श्रोताओं ने बहुत अच्छे से पहचाना इस बात को, और बताया कि ये आवाज़ मोहम्मद रफ़ी की है। अब ये इजराहे मोहब्बत जो है, आप सबको प्यार हुआ ही होगा कभी ना कभी, किसी ना किसी समय। तो हमारे श्रोताओं ने बहुत अच्छे से इस बात के उत्तर देना शुरू किए। हमारे एक श्रोता लिखते हैं, रफी की भी आवाज़ भीगी रात, प्रदीप कुमार, मीना कुमारी, अशोक कुमार नजर आते हैं, बहुत अच्छी बात है। हमारे श्रोता लिखते हैं, कुछ कुछ प्रेम कहानियों का आगाज झगड़े से भी होता है। हाँ, ये मैंने भी देखा है कि कई लोग झगड़ते रहते हैं और फिर बाद में प्यार करने लगते हैं, ये भी बड़ा रोमानियत भरा एहसास है। एक श्रोता लिखते हैं कि आज की इबारत हम बुजुर्गों को जवां बना दिया है, कुछ गुलाबी जख्मों को हल्के से सहला गया। अब देखिए, इस बात को अगर आप ये समझें कि जीवन जो है वो शरीर बड़ा होता है, मन और आत्मा तो वही रहती है, तो उसी मन के लिए, सहलाने के लिए और उसी मन की प्यारी बातों के लिए आज का यह कार्यक्रम हमने इन जज्बातों से संजोया है। तो हमारे श्रोताओं ने बहुत अच्छे से लिखा कि करोड़ों लोगों की पसंद की आवाज़ अनमोल रत्न रफ़ी साहब की है, बिल्कुल सही है। हमारे श्रोता ने लिखा है, हमारे हुआ तो हमारे साथ भी खुल के बता दे ना मत डरिए, बताना है तो बता दीजिए, अब तो समय निकल चुका है, अब क्या क्या है?

फर्क पड़ने वाला है। बट पर हमारे श्रोता लिखते हैं कि हमारे जमाने में प्रेम विवाह तो कोई सपना भी नहीं देखता था। हाँ, अरेंज मैरिज में बगल में बैठी पत्नी के पैर की अंगुलियां बस दिखाई पड़ती थी, वह भी साथ में बैठी नाई की पत्नी झट से ढक देती थी, तो इशारे भिसारे क्या करते। जी, शायद आप में से कई लोग होंगे जिन्होंने विवाह के बाद एक दूसरे को देखा होगा। यानी कितनी आरजू होगी ना कि जिसके साथ विवाह हो रहा है कम से कम उसका चेहरा तो देख लें, पर वह भी एक समय की बात, कितनी अच्छी एक अलग ही अनुभूति होगी। ऐसे ही हमारे श्रोता लिख रहे हैं, मोहब्बत का इजहार उनके सामने करना कोई उतना मुश्किल नहीं होता, लेकिन सामने से अगर कोई इनकार आ जाए तो बस इस बात का डर रहता है, इसीलिए कई लोग इजहार नहीं कर पाते। हमारे श्रोता लिख रहे हैं, दिल धड़कने का सबब याद आया, लेकिन राजे दिल कहने की दोपहर नहीं है, कहीं डंडे खिलवाने का इरादा तो नहीं है। देखिए, अब अगर वही है तो फिर कह सकते हैं, अगर दूसरी है तो कहना बनता नहीं है। जी चलिए आज, हाँ जी बिल्कुल, हमारे श्रोता ने लिखा है, आज सबके ये छुपे हुए राज रहस्य जानने आई हैं। जी, जानना बनता है, क्योंकि हम आपको बताएं कि ऐसा नहीं है कि ये जो प्रेम है ये केवल किसी एक तरह का ही हो। हमें भी एक बार वो बड़ा सुंदर सा एक कार्यक्रम आता था, उसमें एक संचालक हुआ करते थे, उन वो गायक हैं सोनू निगम, उनको देखकर हमें भी मन करता था कि इनको एक हम पत्र लिखें। और एक बार हमने लिखा भी, और बाकायदा लिखा, सोनू भैया आप ऐसा ऐसा कुछ कुछ जो भी लिखना था वो लिख के उनको भेजा। एक लंबे अरसे के बाद उस चिट्ठी के बारे में जिक्र भी हुआ। तो ये प्रेम किसी भी तरह का हो सकता है, ये प्यार, ये पहला खत कैसा भी हो सकता है। हमारे श्रोता लिख रहे हैं, हमें वो मिले हैं पर मुझे यकीन नहीं हो रहा कि वो सच में हमें भी प्यार करते हैं या नहीं, पर हमने सोच लिया कि वो हमें प्यार करें या ना करें, बाकी आगे देखो क्या होता है। जी बस, हमारे श्रोता लिखते हैं कि मेरी वो उम्र जब मेरी जॉब लग चुकी थी, शादी से पहले मैं सोचता था कि मेरे सपनों की रानी कैसी होगी, वाकई में मेरी आंखों के सामने बरबस ये अक्स उभर आते थे, फिर माता रानी का चमत्कार हुआ, पता नहीं कैसे मेरी पूज्य सासू माँ ने मुझे लायक समझा, मुझे पसंद किया और सपनों की रानी से मुझे मिला दिया, जिसके लिए मैं अपनी पूज्य सासू माँ का ता उम्र एहसानमंद रहूंगा, रहना ही चाहिए। उन्होंने अपनी बेटी आपको दी है और इतनी प्यारी बेटी, लाजवाब बेटी आपके साथ है उनकी। हमारे श्रोताओं ने बहुत अच्छे से बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं, और उनमें से लिखा बहुत प्यारी बात के लिए है कि हाँ, ये बहुत अच्छी इबारत है कि हे साइकिल, अपनी इनायत, आपके करम कैसे भूलेंगे हम, आज विश्व साइकिल दिवस है, तो उससे जुड़ा हुआ ये हमारे बीच में एक संदेश आया है कि ये साइकिल, आपकी इनायत, आपके करम कैसे भूलेंगे हम, अगर उस जमाने में ना होती तुम तो हमारे फूट जाते करम, खेतों के इंतजार में रह खेतों के इंतज खतों के इंतजार में रहते हरदम, जब बजती पोस्टमैन की साइकिल की घंटी, दरवाजे दौड़े दौड़े चले जाते थे हम, खत पाकर हाथों में खुश हो जाते थे हम, बोल उठते थे शुक्रिया शुक्रिया हम, अगर हमारा खत ना होता तब हो जाते थे बेदम। बहुत बढ़िया बात है, और ये खत कितने काम की चीज रही है उस समय, ये बात तो हम भी जानते हैं। हमारे श्रोताओं ने बहुत अच्छे से इस बात को बताया कि कई सारे जो प्रेम हैं, उस प्रेम के बारे में जैसे इबारत रूपी दो दिलों की रूहानी मोहब्बत, नजाकत, इनायत और तड़प का जिक्र है, जहां दिलों पर हुकूमत करने वाली मोहब्बत अगर रुस्मा हुई तो कयामत ही कयामत है। खतों और इशारों की दलीलों से दिल को सहलाने वाले प्रेमी युगल के प्रयास दो दिलों की विरह, बेसब्री और वेदना को चित्रित करता है। रूहानियत भरी इश्क में एहसान की गुंजाइश नहीं, ये जज्बा एक दरिया है जहां दो दिल अक्सर बह जाते हैं। आज के सात्विक सुरीले प्रेम सफर का आनंद का इंतजार है। तो चलिए हम चलते हैं अगले गीत की तरफ, और इस बार भी बड़ा सरल सा प्रश्न है। जैसे मैंने अपनी पहली खत के बारे में बता दिया, जिसके लिए लिखा था, दिल किया था, शायद आपका भी कोई खत हो जो आपने पहली बार लिखा था, बता दीजिए, डरिए मत, कोई पिटाई नहीं करने वाला। और आप ये बता दीजिए बस, अगला गीत जो हम आपको सौंप रहे हैं ये किस फिल्म का है, बताइएगा जरूर।

ये खूबसूरत सा गीत हम सुन रहे थे मुकेश और लता मंगेशकर की आवाज में, जिसे लिखा आनंद बख्शी ने। हमने आपसे पूछा था कि इस फिल्म का नाम क्या है, तो आप सब बहुत समझदार और बहुत ज्ञानी हैं, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर बड़ी जल्दी लिख देते हैं, और आपने लिखा कि ये फिल्म अनजाना है, और मैंने इस बात को स्वीकार किया। हमारे श्रोताओं से हम बहुत सारे प्रश्न पूछ रहे हैं, उसमें से हमारे एक श्रोता ने लिखा है, मेरी लव मैरिज है, कुछ 56 साल पहले मैंने शादी की थी, घर वालों से मंजूरी नहीं मिली क्योंकि ये जमाना था जिसमें प्यार शब्द बोलना भी गुनाह माना जाता था, लेकिन मैं तो आज भी मानती हूँ प्यार करने की कोई उम्र नहीं होती, प्रेम एक शुद्ध भावनात्मक अनुभव है जो किसी भी उम्र में हो सकता है। इन्होंने जवानी या बुढ़ापा दोनों का जिक्र किया है। यह दिल से दिल का जुड़ाव है जो समय या सामाजिक बंधनों से नहीं बंधा है। प्यार जीवन के किसी भी पड़ाव पर हो सकता है। असली प्यार वह है जहां इंसान बिना किसी डर या दिखावे के स्वीकार कर सके। बिल्कुल सही है। हमारे श्रोता लिखते हैं, नहीं बताएंगे विदी जी आपको और सभी को, पर बहुत सारी बातें हैं पर दिल में रहे तो ज्यादा अच्छी हैं। बस इतना कहेंगे कि कभी किसी को परेशान नहीं किया। हाँ, हमारे नटखट से कान्हा जी से भी प्यार का इजहार एक माँ के रूप से भी कुछ कम नहीं है। उसमें कभी कान्हा जी को डांटना, कभी नजर उतारना, और कभी कभी उनको क्या खाना है इस बात का भी एहसास, कितना सच्चा प्यार है ना ये। हाँ, सच बात है, ये बहुत खूबसूरत एहसास है। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि इसी पेज पर हमारी बहन ने लिखा है कि उसे वापस लिख रहा हूं कि उम्मीद और डर के बीच झूलता हुआ एहसास ही मोहब्बत है, और यही हाल पहले लिखे खत में नजर आता है, और वो खत चाहे किसी को भी लिखा हो। सही बात है। इसके साथ ही हमारे श्रोता लिखते हैं कि हमारी जो सगाई होने पर पत्नी रानी को खत लिखा, आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बन के, तो उन्होंने जवाब दिया, तुम्हें पाके हमने पा लिया है। क्या बढ़िया खूबसूरत, आप तो गीतों के साथ बात कर रहे थे। हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि हमने खत स्कूल टाइम में लिखा था, स्कूल को ट्यूशन क्लास लगने जाते थे तो हमने लिखा था, उसके बाद फिर कभी नहीं लिखा। इन्होंने बड़ी अच्छी पंक्तियां लिखी हैं कि चर्चा हमारे प्यार का हर आमो खास में था, पर वो ना समझ सके जो दिल के पास था, हमने तो अपनी हर दुआ उनके नाम कर दी, शायद उनकी तकदीर में कोई और ही खास था। क्या बात है, बढ़िया शेर है। ऐसे ही हमारे श्रोताओं ने उत्तर दिया कि वैसे तो प्रेम की परिभाषा अलग अलग होती है, पर मुझे जॉय मुखर्जी बहुत पसंद आती हैं। शादी वाला प्यार नहीं था लेकिन बहुत पसंद थे, इसलिए मैंने अपने बेटे का नाम जॉय ही रखा ताकि मैं जॉय मुखर्जी को हमेशा अपनी यादों में जिंदा रख सकूं। टीवी का एक कार्यक्रम आता था सुरभि, जिसमें रेणुका शाणे जी की हंसी भी मुझे बहुत पसंद थी। ये भी तो एक प्रेम का रूप है ना। इसके साथ हमारे श्रोता लिखते हैं, हमारी भी सगाई के 2 साल बाद शादी हुई, इस बीच हमने एक दूसरे को देखा भी नहीं था, शादी भी घूंघट में हुई, सीधा रूम में दीदार हुआ, लेकिन हम एक दूसरे को खत लिखते रहे। उस समय फोन से ही बातें होती नहीं थी, मात्र एक मात्र सहारा खत हुआ करते थे। उसके बावजूद भी इतना प्रकार की आज तक मजबूत डोर बंधी हुई है। यह होती है दिल से दिल का मिलन, लेकिन आज वह बात नहीं है। जो राजा न रानी दुनिया हो गई बड़ी सयानी, कब रिश्ते टूट जाते हैं। बिल्कुल सही बात है। मैंने जब शादी की तो शादी के पहले मैंने अपने जीवन साथी को देखा नहीं था, माँ पापा ने रिश्ता पसंद करके तय कर दिया था, हमने केवल फोटो देखा था, और 1990 से लेकर आज तक रिश्ता बहुत अच्छे से चल रहा है, ये सदा चलता रही है, प्रार्थना हमारे ईश्वर से है। हमारे श्रोता ने लिखा, गांव की एक लड़की को दो छोटे भाई के जरिए लेटर लिखा था कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। जब भाई ने उसके हाथ में खत दिया तो गुस्सा हो गई, बोली आगे से ऐसे खत लिखा तो खैर नहीं है, वैसे मुझे देखने के लिए हमारे घर टीवी देखने आती थी। ये बात 1992 की है। बढ़िया है। हमारे श्रोताओं ने बहुत, एक और बात मेरी जो मैंने बात कही थी उसके लिए भी उन्होंने सराहा है कि

ऐसा सबके साथ हुआ है। हमारे श्रोता लिखते हैं कि इश्क की उस नाजुक दहलीज को दिखाती है जहां एक बेइंतहा उम्मीद है, दूसरी तरफ कोने का उतना बड़ा डर। दिल पूरी तरह उस इंसान के फैसले पर निर्भर हो जाता है, जहां उसका हाँ जिंदगी को जन्नत बना सकता है और ना कयामत ला सकता है। सही बात है, हमारे श्रोता लिखता है किसी पर दिल आ जाए तो क्या होता है। बहुत बढ़िया है, खुश रहिए, ऐसे ही खुश रहिए। आप लिखते हैं, हमारे श्रोता ने लिखा, आज की जनरेशन का प्यार मोहब्बत का इजहार डिजिटल और क्रिएटिव है, तरीकों का इस्तेमाल करती है, इसके लिए सोशल मीडिया, डेटिंग ऐप और पर्सनलाइज्ड जेस्चर बढ़ चला है। बिल्कुल सही है, तो ये बहुत सारी बातें हमारे पास आ रही हैं और इन्हीं बातों के बीच में हमारे श्रोताओं ने हमें और भी संदेश भेजे हैं। उन संदेशों में खत के लिए बात कही है। खत सिर्फ कागज का टुकड़ा नहीं बल्कि दो दिलों के जोड़ने का एक पुल है और उन्हें गहराई तक पहुंचाने वाला सुकून है या एहसास का जरिया है जो दूरियों को मिटाकर शब्दों के जरिए जज्बातों को हमेशा के लिए अमर कर देता है। खत के शब्द लिखने के लिए रूह को पढ़ने वाले तक पहुंचते हैं, यानी कहीं बात बयां करने का सबसे अच्छा साधन है। यह बिल्कुल सही बात है, शब्द कभी पूरे नहीं पड़ते जब खत लिखने बैठो, इसलिए दिल इशारों इशारों में बहुत कुछ कहना चाहता है। और एक तो लिखते हैं कि प्यार का पहला खत लिखना आसान नहीं होता, अल्फाज कम, धड़कनें ज्यादा शामिल होती हैं, कलम कागज पर चलती है मगर असल में दिल अपनी बात कह रहा होता है। हर लफ्ज के साथ यह डर भी होता है कहीं भावनाएं अधूरी ना रह जाएं, हर पंक्ति में उम्मीद भी कि शायद सामने वाला उन्हें अनकहे जज्बातों को पढ़ ले जिसमें शब्द पूरी तरह बयां नहीं कर पाते। ऐसे ही कई सारे संदेश आए हैं, पर ये गीत सुनवाना बनता है आपको जब आपका, जैसे एक जिक्र किया गया कि वो फिल्म देखने हमारे घर आती थी, तो ऐसा ही कुछ भी हो सकता है ना, कोई बड़ा करीबी सा। बताइए ये किस फिल्म का गीत है।

लता मंगेशकर की आवाज़, राजा मेहदी अली खान के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत से सजा हुआ ये गीत हम सुन रहे थे अभी। और हमने आपसे पूछा था बस इस फिल्म का नाम बता दीजिए, तो आप सबने सही बताया, अनीता फिल्म का ये गीत हम सुन रहे हैं। और हम बात कर रहे थे प्यार के इजहार की या फिर खत लिखने की, प्यार किसी से भी हो सकता है। तो हमारे एक श्रोता ने लिखा कि जब मेरे बीए का एग्जाम था तो देकर अभी निकला ही था तो तुरंत विविध भारती से जुड़ गया, और ये भी तो एक प्रेम का रूप है श्रोताओं के लिए, विविध भारती के लिए। बिल्कुल सही बात है। हमारे श्रोता ने बहुत अच्छे से ये सारे उत्तर देते देते एक और बात लिखी कि मैंने एक नाटक देखा था डोली तेरे अग्निजीस में, जिसमें सच्चा प्यार करते हो, सच्चा मान लेते हो, मिल जाता है, पर मुझे लगता है कि सच्चे आशिक को सजा मिलती है, पाई हुई मंजिल भी छूट जाती है। हो सकता है, देखिए हर किसी का अलग अलग बात होती है। अच्छा, हमारे श्रोता लिखते हैं कि दूसरा खत प्रेमिका को लिखा था जो आज सरकार होम मिनिस्टर बनकर हम दोनों का जीवन जिस पथ पर सुगम करने में तुला हुआ है। क्या बात है। हमारे श्रोता लिखते हैं, मैंने पहला प्यार अगर किसी से किया तो रफ़ी साहब की आवाज़ के साथ में किया, उनको सुनकर मुझे कुछ मुझे होने लगता था। और एक शशि कपूर मुझे बेहद पसंद थे, मैं उन्हें अपने बड़े भैया की तरह मानती थी और जब वो उनको देखती तो खुशी होती थी। पर खत तो मैंने कभी किसी को नहीं लिखा। अभी कुछ साल पहले आनंद जी नाइट में मैं गई थी कोलकाता, आनंद जी भाई आए थे अपनी पत्नी के साथ, तो हम शशि कपूर को एक खत लिखकर उनको दिया था, पता नहीं उन तक पहुंचा या नहीं। उसके बाद शशि कपूर साहब चले जाने की खबर भी आई थी। जी, हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि खत तो हमने बहुत लिखे अनगिनत, लेकिन 77 में घर से बेघर हो गए थे तो पत्र के संवाद का माध्यम था। बिल्कुल सही बात है, घर जब छूट जाता है तो फिर हम अपने परिवार वालों से भी ऐसे ही बात करते हैं। हमारे श्रोता ने लिखा कि आज का प्यार तो कुछ इस तरह से हो गया कि पहले प्यार की दूसरी चिट्ठी तीसरे को दिया और मिलना बिछड़ना बड़ी आम बात हो गई है। जी, पहले ऐसा भी होता था ना कि गांव के मोहल्ले के किसी बच्चे को चिट्ठी दे देते थे और वो जाकर दे आता था, है ना। हमारे श्रोता लिखते हैं, पोस्टकार्ड इनलैंड और लिफाफे के एक जमाने में खूब लिखे हैं और आज भी संभाल कर रखे हैं। हमारे श्रोता ने लिखा, खत पहले हमने विविध भारती के प्रोग्राम को लिखा, प्रेरणा जीजा जी थे जो मुंबई विविध भारती ऑफिस में टेक्निकल विभाग में काम करते थे। तो ऐसे ही खत आप लिखते जाइए ना, अभी तो आपके लिए खत वाला कार्यक्रम भी शुरू हो चुका है और आपके खत के साथ आपके पसंदीदा गीतों को भी हम सुनाया करते हैं। हमारे एक श्रोता लिखते हैं, कॉलेज में एक लड़की को खत लिखा था मगर उसने फर्स्ट ईयर के बाद ही कॉलेज छोड़ दिया। ऐसा कैसा खत लिख दिया आपने। हमारे श्रोता लिखते हैं, लव मैरिज हुआ था और अभी 38 साल मना रहे हैं, बहुत शुभकामनाएं, बहुत बधाई। हमारी श्रोता लिखते, कभी प्यार का खत नहीं लिखा, मोबाइल आ चुके हैं, दिल की बात कागज पर नहीं मैसेज में होती है, गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग होने लगी है। बिल्कुल सही बात है। अब हमारे श्रोता लिखते हैं कि सिर्फ तुम में जो स्टोरी थी वैसे भी कहानियां बनती हैं, असलियत में बिना देखे बिना मिले वाला प्यार, हाँ ये बात तो बिल्कुल सही है, वो प्यार कितना सुंदर होता है ना जिसमें देखा ही नहीं। शादी 58 साल पहले हुई थी।

तब हम पढ़ते थे, विदाई 3 साल बाद होकर पत्नी घर आई तो हम बलिहारी जाओ उन्हें खूब प्यार करते, 6 महीने बाद वह चली गई तो हम भी परेशान, वो भी। लेकिन उनकी सहेली पढ़ती थी, वो कॉलेज का नाम पूछकर एक खत डाल दिया। एक दिन एक छात्र ने एक खत दिया और कहा, ये तुम्हारा ही है ना, आज मेल बॉक्स में पड़ा मिला, जहां डाक किया सब चिट्ठियां डालकर जाता है। हमने पढ़ा सब, जितने दोहे और शायरी उसे आते थे उसने लिखा था, नीचे आपकी रानी लिखा था। फिर हमने उनके गांव में खत भेजे, खूब शायरी लिखते थे, वो सहेली उन्हें सुनाती थी। फिर 6 महीने बाद वो आ गई, फिर ऐसे खत नहीं लिखे। कितना अच्छा, कितनी अच्छी याद होती है ना ये सारी। हमारे श्रोता लिखते हैं कि बचपन में हमारे, मेरे घर के सामने मेरी उम्र की लड़की रहती थी, मैं उसे देखता था, उसके पीछे करता था, बाद में विवाद हुआ परिवारों में और उसके बाद इन्होंने ये काम छोड़ दिया। ऐसा नहीं करना चाहिए, बेटियां भी परेशान हो जाती हैं। और इसके साथ ही हम आपको अगला गीत सौंप रहे हैं, और अगला गीत बस वही है खत के बारे में। लेकिन कई लोग हैं जो खुद खत लिखते हैं, और पहले का जमाना ऐसा था जब खत लिखवाए जाते थे किसी और से। हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि खत उन्होंने लिखा था माता पिता और बड़ी बहन जी जी जीजा जी भांजे भांजी के लिए। तब हमने मुंबई में नेवी ज्वाइन किया था। अच्छी बात है, जब दूर रहते हैं घर से तो हम लिखते ही हैं खत। ऐसी ही बहुत सारा प्रेम, बहुत सारी चीज़ें हम एक दूसरे के लिए भेजते हैं। तो अब देखिए ये वाला गीत आप सुनिए और बताइए इसकी गायिका कौन है, और साथ में संगीतकार भी बता देंगे तो अच्छा रहेगा। और इसके साथ एक बात और बताइएगा, खत तो लिखा लेकिन पहले खत का जवाब क्या आया था, ज़रूर से साझा कीजिएगा।

ये खत दूसरे से लिखवाना कितना कठिन होता होगा ना, कि आप अपने जज्बात उसे बता रहे हैं। यही बात तो आखिरी अंतरे में आशा भोसले गा गा के बता रही थी, जिसे आनंद बख्शी ने लिखा, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने संगीतबद्ध किया। फिल्म आए दिन बाहर के हमने वही प्रश्न पूछा था कि गायिका कौन है, तो हमारे श्रोताओं ने बहुत अच्छा उत्तर दिया। आशा भोसले गा रही हैं, आशा पारेख अभिनय कर रही हैं, आनंद बख्शी के गीत हैं, लक्ष्मी प्यारे का संगीत है और बहुत खूबसूरत गीत है। हमारे श्रोता लिखते हैं कि सच में बिना देखे वाला प्यार भी बड़ा प्यारा होता है। ऐसा भी होता है कभी किसी की अच्छी बातों से प्यार हो, कभी किसी की आवाज़ से प्यार हो, कभी किसी की बात ना करने से प्यार हुआ हो, तो बात बहुत सारी हो सकती है। बस प्यार में सच्चाई, अपनापन हो, ना तो कोई दिखावा हो ना कोई गलत बात। हमारे श्रोता बता रहे हैं कि यहाँ इस गीत में बाबू बार बार बोला जा रहा है या डाक बाबू के लिए ही बोला जा रहा है। हाँ, आजकल ये बाबू शब्द का प्रयोग भी प्रेमी या के लिए किया जाता है, पर यहाँ पर डाक बाबू के लिए ही कहा जा रहा है। बिल्कुल सही बात कही आपने। हमारे श्रोता ने लिखा, गाने की खूबसूरती यही है, पर्दे पर भी आशा जी हैं और आवाज में भी आशा है, यानी आशा भोसले और आशा पारेख। बिल्कुल सही। हमारे श्रोता लिखते हैं, मगर इतना जरूर जानना है कि प्यार एक बहुत गहरा एहसास है, कि पालेना ही प्यार है। प्यार महसूस किया जाता है, इसलिए प्यार किया नहीं जाता। अगर हम प्यार करते हैं तो खुशी में हमारी खुशी होती है, मर्जी में दुख। जी बिल्कुल सही बात आप कहते जा रहे हैं। इसके साथ हमारे श्रोताओं ने इस बात के लिए लिखा कि शादी के बाद जब पत्नी पीहर चली जाती थी तो उनके लेटर पैड पर पत्र लिखता था और लिफाफे को पोस्ट कर देता था उसके पास रहने वाले पड़ोसी के पते पर। पड़ोसी के पते पर क्यों, उनके पते पर क्यों नहीं, ये प्रश्न हम आपसे पूछते हैं। हमारे एक श्रोता ने हमारे लिए बहुत अच्छा संदेश भेजा है। जब पहला खत 2008 में विविध भारती को लिखा था, जब रेडियो पर अपना नाम सुना तो पल भर के लिए अविस्मरणीय बन गया। तभी से मैं विविध भारती मेरे जीवन का प्रिय साथी बन गई। लगभग 18 वर्षों से मैं नियमित रूप से विविध भारती सुन रहा हूँ। इसके कार्यक्रम उद्घोषकों की सभी कलाकारों की मधुर आवाजों से एक आत्मीय रिश्ता बन गया है। ऐसा लगता है विविध भारती केवल रेडियो नहीं, रेडियो सेवा नहीं, बल्कि परिवार का एक हिस्सा है। इसकी हर आवाज मुझे अपनापन और स्नेह मिला है, और यही कारण है

0: कि मेरा लगाव दिन प्रतिदिन और गहरा होता गया है। छोटी पंक्ति, विविध भारती से मेरा रिश्ता श्रोता का नहीं बल्कि दिल का है। इसकी हर आवाज में मुझे अपनापन और प्यार महसूस होता है। हमें भी यही होता है। हमारे एक श्रोता ने बड़े अच्छे से अंग्रेजी में लिखा है, मैं उसका हिंदी में अनुवाद करके आपसे बात करती हूँ कि उनका उनकी अरेंज मैरिज थी, यानी विवाह माता पिता ने तय किया था और दोनों गांवों के बीच में 40 किलोमीटर का अंतर था। दोनों बैंक में काम करते थे और इनके जो होने वाले सैया थे वो बड़े शर्मीले थे, इसलिए मिलने नहीं आते थे। पर इन्होंने ही एक दिन आगे रहकर बात करी तो उन्होंने जन्मदिन पर बुलाया। फिर वो एक होटल में खाने के लिए गए, बीच पर बैठे, बातें की और साथ में एक बहुत सुंदर सी रिश्ता इनके बीच में कायम हुआ। बहुत बढ़िया बात है। अब हम चल रहे हैं एक और जज्बात की ओर, एक और गीत की ओर, और उस गीत को सौंपने के पहले हम चाहते हैं कि ये संदेश हम सुन लें।
1: कहिए, सुनिए एक खुशखबरी।
2: कहिए ना।
1: आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखियां फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर। रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 02240024662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपनी पसंद के गाने।
0: बस यही प्यार है आपका और हमारे बीच में। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम चल रहा है सुरीला सफर और इसी सफर में एक इबारत हमारे श्रोता ने लिखकर भेजी कि इशारे शब्द पर हमारे दिल में कुछ यूं कहा, कुछ बातें लफ्जों में नहीं कही जाती, बस इशारों में दिल अपना हाल बयां कर देता है। एक नजर, एक मुस्कान, एक छोटी सी खामोशी, कभी कभी इतना ही काफी होता है समझने के लिए कि सामने वाले की अहमियत हमारे लिए कितनी है। इशारे वही समझ पाते हैं जिनके दिलों में अपनापन और एहसास जिंदा होते हैं। इशारे अक्सर वो कह जाते हैं जो जुबान कहने की हिम्मत नहीं करती। बिल्कुल सही बात है। और इशारे से मुझे याद आया कि हम लोग कई सारे इशारे किया भी करते थे पहले, जैसे बोलते बोलते प प ब भ कुछ एक शब्द का प्रयोग हमारे उसके साथ कर लेते थे, या उल्टा बोलना या सीधा बोलना, और ऐसे हम सबके बीच में भी अपने दिल की बात कर लेते थे। ऐसा कुछ आपने किया है क्या, उल्टा सीधा बोल के या किसी एक शब्द को जोड़ के अपने दोस्तों से बात की है? फर जोड़ते थे, बर जोड़ते थे और लोगों से बात करते थे। आपने अगर ऐसा किया है तो जल्दी से बताइए। और एक और चीज़ बता दीजिए, ये जो गीत है उसके गीतकार कौन है, गीतकार का नाम बताइए। और आपने हमारे जैसी कोई हरकत की है सीक्रेटली बात करने की तो ज़रूर बताइएगा। सुनिए ये गीत।

हम सुन रहे थे कश्मीर की कली फिल्म का यह गीत मोहम्मद रफी आशा भोसले की आवाज में ओपी नैयर के संगीत के साथ। और हमने आपसे पूछा कि इसके गीतकार कौन हैं, तो आप सबने बिल्कुल सही उत्तर दिया, SH बिहारी इस गीत के गीतकार हैं। अब इसके साथ मुझे एक चीज और, एक बड़ा प्यारा सा शेर याद आ रहा है जो जोश मलिहाबादी ने कहा था शायद, कि एक दिन कह लीजिए जो कुछ है दिल में आपके, एक दिन सुन लीजिए जो कुछ हमारे दिल में है। और ऐसी ही बात अगर हो जाती है तो फिर बात क्या कहनी है। और इसके साथ ही हमारे श्रोता ने लिखा कि 21 से 23 तक बहुत गहरा प्यार था, ये अपने दिल की बयां कह रहे हैं, और लंबे समय तक परिस्थितियां बदल गई। देखिए, कई बार प्यार हमें मिलता है, कई बार नहीं मिलता, पर ठीक है, कोई बात नहीं, खुश रहिए। और आज हम आपसे, अच्छा, हमारे श्रोता ने लिखा है, उल्टे शब्द तो आज भी कभी कभी फन के लिए बोल लेते हैं, जलेबी को जबेली कह लेते हैं। जी बढ़िया है, कहना चाहिए। और इशारों इशारों में बात थी, अच्छा मैं भी बता दूं अपना नहीं, हमने इशारों में उनसे ही बात की जिनके लिए हमारे माता पिता ने हमारे लिए चुना। उसके बाद तो चिट्ठी पत्री खत सब लिखना बनता ही है, आपने भी लिखे हमने भी लिखे। हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि बड़े प्यार से कि ये बहुत सुंदर सा गीत है, कश्मीर की कली का, पंजाबी ठेका तबले में और संतूर पियानो सितार वायलिन का बेहतरीन इस्तेमाल इशारों इशारों में, रफी साहब लाजवाब, बहुत बढ़िया। और हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि बाबू बच्चों के लिए उपयोग किया जाता है हमारे मालवा में, या लाड़ प्यार दर्शाता है, लेकिन आजकल पत्नियां अपने पति को लाड़ से बाबू कहाँ हो, बाबू इधर आओ, बाबू मेरे लिए आइसक्रीम ले आओ, ऐसा कहती हैं। तो ठीक है, ये प्रेम जताने वाली बात है। हमारे श्रोता लिखते हैं, जब हम फोन पर बात करते थे तो घर वाले सामने ऐसे बात करते थे, चोरी छुपे फोन नीचे रख के कॉल चल रही है, मैं बोलती थी सहेली का नाम लेकर कि उससे बात करी, फिर कॉल पर बोलती थी और फिर सो नहीं पाती थी और फोन कट जाता था। जी कई बार ऐसा होता था ना कि हमारी बातें ऐसी होती थी किसी को पता ही नहीं पड़ता था। और चलिए अब हम आपको अगला गीत जल्दी से सौंपना चाहते हैं क्योंकि कार्यक्रम बस समाप्ति की ओर है, और आपके साथ में जो समय बिताया वो बहुत सुंदर था। आपसे आखिरी बात कहकर मैं जा रही हूँ, और बात कुछ ऐसी कहकर जा रही हूँ कि जो ये गीत है, अगर किसी का प्यार हमें मिल जाए तो बस वो एहसान की तरह होता है, और उस एहसान के लिए लोग कई दिनों तक इंतजार करते हैं। तो

कहना उनसे मोहब्बत है मुझको, ये कहने में मुझको जमाने लगे हैं। ये लिखते हैं खुमार बाराबंकवी। और चलते हैं इस अंतिम गीत की तरफ, आज्ञा दीजिएगा इस गीत के साथ।

0: मुझ पर।
1: और ऐसा एहसान हो जाए तो जिंदगी बड़ी अच्छी होती है। हमारे श्रोता लिखते हैं कि कुछ और फर जोड़कर उनकी माँ और मौसी बातें करते थे, तो इस शब्दों पर आप जरूर बात कीजिएगा अपने लोगों से, कुछ नई तरीका सीख लीजिएगा अपने जीवन में। और आज के इस कार्यक्रम में सुरीला सफर में बस इतना ही, आज्ञा दीजिएगा, नमस्कार।

0: बिना तेल के चलती हूँ, बिना पैरों के चलती हूँ, दो पहियों पर सवारी मेरी, सबको सैर कराती हूँ, बताओ मैं कौन हूँ? पहचाना? हाँ सही पहचाना, मैं हूँ साइकिल। और यही साइकिल एक जमाने से हमेशा के लिए उपयोगी रही है, सबसे सस्ता और पर्यावरण के लिए अनुकूल वाहन है, दो पहियों पर चलने वाला साधन है और पैडल की सहायता से चलाया जा सकता है, गांव से लेकर प्रतिबद्ध है।
1: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की आज पटना में बैठक होगी। बैठक में कई महत्वपूर्ण एजेंडों पर मुहर लगने की संभावना है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने बताया कि लगभग 40,000 छात्रों ने सफलतापूर्वक पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन जमा कर दिए हैं। यह प्रक्रिया बिना किसी समस्या के पूरी कर ली गई है। बोर्ड ने कल कक्षा 12वीं के छात्रों के लिए उत्तर पुस्तिकाओं की त्रुटियों के सत्यापन और उत्तरों के पुनर्मूल्यांकन के लिए ऑनलाइन पोर्टल खोला था। यह सुविधा केवल उन्हीं छात्रों के लिए उपलब्ध है जिन्होंने अपनी मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियां प्राप्त कर ली हैं। भागलपुर के विक्रमशिला सेतु के क्षतिग्रस्त हिस्से पर निर्मित बेली ब्रिज पर वाहन परिचालन का ट्रायल किया गया। परीक्षण के दौरान 2.5 टन वजन वाले चार पहिया वाहन को 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलाकर पुल की मजबूती की जांच की गई। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार वाहनों का परिचालन पूरी तरह सफल रहा। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
2: इधर आइए, इधर।
3: इधर?
2: हाँ, विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना आइए और बिहार और झारखंड के किसी भी आकाशवाणी केंद्र से अपना विज्ञापन बुक कराइए।
4: देश के सबसे बड़े रेडियो ने

0: नेटवर्क पर बिल्कुल किफायती दर पर आप अपने उत्पाद का प्रचार प्रसार कर सकते हैं।
1: अच्छा, ऐसी बात है, तो फिर इधर उधर क्यों भटकना, अपनी आकाशवाणी में अपनापन भी तो है।
0: बिहार और झारखंड के आकाशवाणी केंद्रों से विज्ञापन प्रसारण हेतु संपर्क करें।
1: विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना।
2: हमारा मोबाइल नंबर है 9431021294। हमारा लैंडलाइन नंबर है 0612-222-5042। हमारा ईमेल एड्रेस है patnacbs@gmail.com।
0: शुभ वाणी,
2: लाभ वाणी,
0: आकाशवाणी।
3: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। पूरा प्रदेश भीषण गर्मी की चपेट में है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार कई स्थानों का अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस को पार कर गया है। पिछले 24 घंटों के दौरान 41.4 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान के साथ भभुआ राज्य का सबसे गर्म स्थान रहा। मौसम पूर्वानुमान में कहा गया है कि अगले 2 से 3 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की और बढ़ोतरी हो सकती है। वहीं आज राज्य के उत्तर पूर्वी और दक्षिण पश्चिम हिस्सों में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की संभावना है। युवा रोजगार और कौशल विकास विभाग की ओर से दरभंगा में कल से 6 जून तक अलग अलग प्रखंडों में रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। मेले में 18 से 42 आयु वर्ग के अभ्यर्थी भाग ले सकते हैं। इधर खगड़िया में भी कल एक दिवसीय रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। सिवान जिले के बड़हरिया थाना क्षेत्र के शिवराजपुर गांव में एक युवक की पीट पीट कर हत्या के मामले में पुलिस अधीक्षक पूरन कुमार झा ने डायल 112 पर तैनात पुलिस अवर निरीक्षक संजीव कुमार को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। वहीं 2 गृह रक्षकों के अनुबंध निरस्तीकरण की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। सुपौल के जिलाधिकारी सावन कुमार ने लोक शिकायत निवारण से संबंधित मामले में लापरवाही बरतने के आरोप में निर्मलिक के अंचलाधिकारी पर 1,000 रूपये का अर्थदंड लगाया है। कटिहार रेल मंडल में चल रहे दोहरीकरण और इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग कार्य के कारण रेलवे ने 12 जून को सहरसा सियालदह हाटे बाजार एक्सप्रेस के परिचालन मार्ग में बदलाव किया है। इस दिन यह ट्रेन पूर्णिया बनमनखी मधेपुरा मार्ग की जगह मानसी नौगछिया कटिहार के रास्ते संचालित होगी। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। अब आप सुनेंगे उर्दू बुलेटिन।

ये आकाशवाणी पटना है। अब आप शर्फुल हुदा से इलाकाई खबरें सुनिए। देही तरक्यात के वजीर राजीव रंजन सिंह ने आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में मुनाकिद प्रोग्राम में कौमी पंचायत अवार्ड तकसीम किए। पूरे मुल्क की 42 पंचायतों को देही तरक्यात, बेहतर हुक्मरानी, अवामी हिस्सेदारी, सफाई सुथराई, डिजिटल खिदमात और मुसलसल तरक्याती अहदाफ के मौसर नफाज अमल के लिए दो जुमरों में ये अवार्ड दिए गए। तकरीब में बिहार के 18 ज़िलों की मुख्तलिफ पंचायतों को अलग अलग इलाकों में बेहतर मुजाहरा के लिए अवार्ड से नवाजा गया। महसूलात और ज़मीनी असलाहत के वज़ीर दिलीप कुमार जायसवाल ने कहा है कि रियासत के 13 ज़िलों में मुनाकिद होने वाले शराबनी मेले के लिए 2,25,00,000 रुपये की रकम मख्तस की गई है। उन्होंने कहा कि ये रकम मेला इलाकों में बुनियादी सहूलतों की इस्तेहकामकारी और अकीदतमंदों की सहूलत के लिए खर्च की जाएगी। जनाब जायसवाल ने कहा कि रियासती हुकूमत अकीदतमंदों को बेहतर सहूलत फराहम कराने के लिए पाबंद अहद है। वज़ीर आला सम्राट चौधरी की सदारत में रियासती काबीना की आज मीटिंग पटना में मीटिंग होगी। मीटिंग में कई अहम एजेंडों पर मुहर लगने का इम्कान है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने बताया है कि लगभग 40,000 तलबा ने इवेलुएशन के लिए दरख्वास्तें जमा कर दी हैं। ये अमल बगैर किसी मसला के दरपेश मुकम्मल कर लिया गया है। बोर्ड ने कल दर्जा 12वीं के तलबा के लिए जवाबी कापियों की खामियों की तस्दीक और आंसर्स के दोबारा इवैल्यूएशन के लिए ऑनलाइन

0: पोर्टल खोला था। ये सहूलत सिर्फ उन्हीं तलबा के लिए दस्तयाब है जिन्होंने अपनी इवेलुएटेड आंसर शीट की स्कैन की गई कापियां हासिल कर ली हैं। भागलपुर के विक्रमशिला सेतु के नुकसान ज़दा हिस्से पर तामीर बेली ब्रिज पर गाड़ियों का ट्रायल किया गया। तजुर्बे के दौरान 2.5 टन वाली चार पहिए की गाड़ियों को 20 से 30 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चलाकर पुल की मजबूती की जांच की गई। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक गाड़ियों की रफ्तार पूरी तरह कामयाब रही। पूरी रियासत में शदीद गर्मी की गिरफ्त में है। महकमा मौसमियात से हासिल शुदा इत्तला के मुताबिक कई जगहों का दर्ज हरारत 40 डिग्री सेल्सियस को पार कर गया है। पिछले 24 घंटों के दौरान 41.4 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा से ज़्यादा दर्ज हरारत के साथ भभुआ रियासत का सबसे गर्म जगह रहा। भागलपुर और शेखपुरा का ज़्यादा से ज़्यादा पारा हरारत 40 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम की कयास आरई में कहा गया है कि अगले 2 से 3 दिनों के दौरान ज़्यादा से ज़्यादा दर्ज हरारत में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस का मज़ीद इजाफा हो सकता है। वहीं आज रियासत के शमाल मशरक़ी और जनूब मगरबी हिस्सों में कुछ मकामात पर हल्की बारिश का इम्कान है। नौजवान रोज़गार और हुनर फरोग महकमा की तरफ से दरभंगा में कल से 6 जून तक अलग अलग ब्लाकों में रोज़गार मेले का इनाकाद किया जाएगा। मेले में 18 से 42 उम्र के उम्मीदवार हिस्सा ले सकते हैं। इधर खगड़िया में भी कल एक रोज़ा रोज़गार मेले का इनाकाद किया जाएगा। कटिहार रेल डिवीज़न में चल रही दोहरीकारी और इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग काम के सबब रेलवे ने 12 जून को सहरसा सियालदा हाटे बाज़ार एक्सप्रेस की सर्विस रूट में तब्दीली की है। इस दिन ये ट्रेन पूर्णिया बनमंखी मधेपुरा रूट की जगह मानसी नवगछिया कटिहार के रास्ते से चलेगी। और इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से इलाकाई खबरों का ये बुलेटिन ख़त्म हुआ।
1: हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं मीडियम वेव 483.1 मीटर यानी 621 किलो हर्ट्ज पर। लीजिए सुनिए रोजगार सूचना। संघ लोक सेवा आयोग परीक्षा के आलोक में कुल 394 पदों पर भर्ती हेतु योग्य और इच्छुक उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित करता है। शैक्षणिक योग्यता, उम्मीदवार भारत के किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से कम 10+2 उत्तीर्ण होना चाहिए। योग्यता से संबंधित विस्तृत जानकारी के लिए विज्ञापन देखें। आयु सीमा, उम्मीदवार की आयु 1 जनवरी 2008 से 1 जनवरी 2011 के बीच होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग को नियमानुसार आयु सीमा में छूट दी गई है। आवेदन ऑनलाइन भरा जाएगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि 9 जून 2026 है। आवेदन से संबंधित विस्तृत जानकारी www.upsc.gov.in से प्राप्त किया जा सकता है। रेलवे भर्ती बोर्ड असिस्टेंट लोको पायलट के कुल 11,127 पदों पर भर्ती हेतु योग्य और इच्छुक उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित करता है। शैक्षणिक योग्यता, उम्मीदवार भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से कम 10वीं उत्तीर्ण होना चाहिए। साथ ही संबंधित ट्रेड में ITI या डिप्लोमा अथवा इंजीनियरिंग में डिग्री होनी चाहिए। योग्यता से संबंधित विस्तृत जानकारी के लिए विज्ञापन देखें। आयु सीमा, उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 18 वर्ष एवं अधिकतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग को नियमानुसार आयु सीमा में छूट दी गई है। आयु की गणना 1 जुलाई 2026 के आधार पर की जाएगी। आवेदन ऑनलाइन भरा जाएगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि 14 जून 2026 है। आवेदन से संबंधित विस्तृत जानकारी www.indianrailways.gov.in से प्राप्त किया जा सकता है। कर्मचारी चयन आयोग CGL

0: 2026 के आलोक में कुल 12,256 पदों पर भर्ती हेतु योग्य और इच्छुक उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित करता है। शैक्षणिक योग्यता, उम्मीदवार भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से कम किसी भी विषय में स्नातक उत्तीर्ण होना चाहिए। योग्यता से संबंधित विस्तृत जानकारी के लिए विज्ञापन देखें। आयु सीमा, उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 18 वर्ष एवं अधिकतम आयु 32 वर्ष होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग को नियमानुसार आयु सीमा में छूट दी गई है। आयु की गणना 1 अगस्त 2026 के आधार पर की जाएगी। आवेदन ऑनलाइन भरा जाएगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि 22 जून 2026 है। आवेदन से संबंधित विस्तृत जानकारी www.ssc.gov.in से प्राप्त किया जा सकता है। भारतीय स्टेट बैंक अप्रेंटिस के कुल 7,150 पदों पर भर्ती हेतु योग्य और इच्छुक उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित करता है। शैक्षणिक योग्यता, उम्मीदवार भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से कम स्नातक उत्तीर्ण होना चाहिए। योग्यता से संबंधित विस्तृत जानकारी के लिए विज्ञापन देखें। आयु सीमा, उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 20 वर्ष एवं अधिकतम आयु 28 वर्ष होनी चाहिए। विस्तृत जानकारी के लिए www.sbi.bank.in से जानकारी प्राप्त करें। सूचना समाप्त हुई। हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं। स्टूडियो की घड़ी में 2:15 होने वाले हैं। अब से कुछ ही देर बाद आप हमारे दिल्ली केंद्र से दोपहर समाचार सुनेंगे। कृपया प्रतीक्षा करें।
1: आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। दिल्ली के मालवीय नगर स्थित एक होटल में भीषण आग लगने से 21 लोगों की मौत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना पर दुख व्यक्त किया। प्रत्येक मृतक के परिजन को 2-2 लाख रुपए के अनुग्रह राशि देने की घोषणा। पश्चिम बंगाल विधानसभा से निष्कासित विधायक ऋतव्रता बनर्जी के लगभग 60 विधायकों के समर्थन का दावा करने के बाद तृणमूल कांग्रेस में उथल पुथल मची। सर्वोच्च न्यायालय ने अरावली पर्वत श्रृंखला के परिभाषा के पुनर्विचार के लिए उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डीके शिवकुमार अब से कुछ देर में कर्नाटक के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। भारत सौर ऊर्जा विकास के मामले में विश्व का दूसरा सबसे बड़ा बाजार बना। वार्षिक सौर ऊर्जा क्षमता वृद्धि में अमेरिका को पीछे छोड़ा और इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन में एचएस प्रणय और आयुष शेट्टी आज पुरुष सिंगल्स मैच खेलेंगे। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के मालवीय नगर स्थित एक होटल में आग लगने की घटना में 21 लोगों की मौत हो गई है। दक्षिण दिल्ली के पुलिस उपायुक्त अनंत मित्तल ने बताया कि 8 दमकल कर्मियों की मदद से आग पर काबू पा लिया गया है। एक रिपोर्ट।
2: दिल्ली के मालवीय नगर में आज सुबह करीब 9 बजे एक होटल में भीषण आग लग गई। इसके बाद दिल्ली दमकल विभाग, दिल्ली पुलिस, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, कैट एम्बुलेंस सेवा और अन्य आपातकालीन एजेंसियों की टीमें तुरंत मौके पर पहुंची और राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया। दिल्ली पुलिस के अनुसार अब तक 40 से अधिक लोगों को सुरक्षित बाहर निकालकर इलाज के लिए नजदीकी अस्पतालों में भेजा गया है। 8 दमकल की गाड़ियों की मदद से आग पर काबू पा लिया गया है। हालांकि बचाव और तलाश अभियान अभी भी जारी है और सभी संबंधित एजेंसियां मौके पर तैनात हैं। आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। इस संबंध में दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: दिल्ली के शहरी विकास मंत्री आशीष सूद ने कहा है कि लापरवाही करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी।
3: जिनके लापरवाही के कारण ये हुआ है, पुलिस जांच करके उसे तुरंत अभी गिरफ्तार करेंगी। आसपास के इस एरिए में ऐसी जितनी इमारतें चल रही हैं, जिसमें राई बराबर भी वॉयलेशन होगी, शाम तक उसकी जांच करके ऐसी सभी इमारतों को सील किया जाएगा। एक भी दोषी छोड़ा नहीं जाएगा।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आग की घटना में हुई जानमाल के हानि पर गहरा दुख व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि अधिकारी पीड़ित लोगों को हर संभव सहायता प्रदान कर रहे हैं। उन्होंने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। श्री मोदी ने प्रत्येक

0: मृतक के परिजन को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए तथा घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि दिए जाने की घोषणा की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और गृहमंत्री अमित शाह ने इस घटना पर शोक व्यक्त किया है। राष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यह घटना बहुत दुखद है। उपराष्ट्रपति ने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना की। उन्होंने शोक संतप्त परिवारों को इस दुख की घड़ी में शक्ति और साहस प्रदान करने की भी कामना की। गृहमंत्री ने बताया कि स्थानीय प्रशासन राहत और बचाव कार्यों में लगा हुआ है। उन्होंने कहा कि घायलों को सर्वोत्तम चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार स्थिति पर कड़ी नजर रख रही है और प्रभावित परिवारों को सभी आवश्यक चिकित्सा सहायता प्रदान की जा रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में एकीकृत जनजातीय विकास एजेंसियों और एकीकृत जनजातीय विकास परियोजनाओं को सुदृढ़ करने के लिए राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि देश भर में रहने वाला जनजातीय समाज सांस्कृतिक रूप से समृद्ध है और इन्हें आगे बढ़ाने के प्रयास किए जाने चाहिए। राष्ट्रपति ने कहा कि देश के प्रत्येक गाँव और व्यक्ति तक विकास पहुँचना चाहिए।
1: जनजातीय समुदाय के अनेक गाँव और बस्तियां दूर दराज के क्षेत्र में जंगलों और पहाड़ों तले इलाकों में होते हैं। ऐसे इलाकों को विकास की मुख्य धारा से पूरी तरह जोड़ना आपका कर्तव्य है। अंतिम गांव और अंतिम बस्ती के अंतिम घर तक विकास कार्यक्रम को पहुंचाना आपका उत्तरदायित्व है।
0: सूचना प्रसारण और संसदीय कार्य राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने मिजोरम में जनता से राष्ट्र निर्माण प्रक्रिया में विकसित भारत पहल के तहत 2047 तक एक विकसित भारत के लक्ष्य को सरकार साकार करने में योगदान करने का आह्वान किया है। राज्य के कोलाबिस जिले में सरकारी अधिकारियों के साथ बातचीत के दौरान श्री मुरुगन ने कहा कि केंद्र सरकार पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास को उच्च प्राथमिकता दे रही है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस में उथल पुथल के बीच राजनीतिक घटनाक्रम तेज हो गया है। तृणमूल कांग्रेस से निष्कासित विधायक ऋतव्रता बनर्जी ने राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता पद पर दावा करते हुए 58 विधायकों के समर्थन का दावा किया है। विधानसभा सूत्रों के अनुसार 58 विधायकों द्वारा हस्ताक्षरित एक पत्र अध्यक्ष रथिंद्र बोस को सौंपा गया है, जिसमें बनर्जी के गुट को वास्तविक तृणमूल कांग्रेस के रूप में मान्यता देने की मांग की गई है। इस गुट ने मुर्शिदाबाद के रघुनाथगंज से विधायक अखरुजमान को मुख्य सचेतक नामित किया है। एंटाली से संदीप अंसाहा और कस्बा से जावेद खान को उपनेता के रूप में प्रस्तावित किया गया है। पश्चिम बंगाल की सामाजिक सुरक्षा योजना अन्नपूर्णा योजना का आज औपचारिक रूप से शुभारंभ किया गया। शहरी विकास, महिला और बाल विकास तथा समाज कल्याण मंत्री अग्नि मित्रा पॉल ने नबन्ना में इसका उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी भी इस अवसर पर उपस्थित थे। पहले चरण में लाभार्थियों को आज से उनके बैंक खातों में 3,000 रुपए मिलने शुरू हो जाएंगे। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि राज्य प्रशासन के अधिकारियों के अथक प्रयासों से ही योजना का संचालन तुरंत शुरू करना संभव हो पाया है। पश्चिम बंगाल में मॉनसून से पहले चलाए जा रहे नियमित सफाई अभियान के दौरान कल शाम कोलकाता के सुरेंद्रनाथ कॉलेज में नोटों के बंडल बरामद किए गए। एक बंद कमरे में 2 पुराने सूटकेसों में रखे गए ये नोट पूरी तरह क्षतिग्रस्त अवस्था में मिले। भाजपा विधायक सजल घोष ने आरोप लगाया है कि ये कमरा एक स्थानीय तृणमूल कांग्रेस नेता ने बनवाया था, जिसका इस्तेमाल वो अपनी अवैध गतिविधियों को अंजाम देने के लिए करता था। हालांकि पार्टी सदस्यों ने इन दावों को निराधार बताया है। कर्नाटक में कांग्रेस विधायक दल के नेता डीके शिवकुमार को आज शाम बेंगलुरु में मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी। राज्यपाल थावरचंद गहलोत लोकभवन में उन्हें 25वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलाएंगे। पूर्व गृह मंत्री डॉ जी परमेश्वर उप मुख्यमंत्री के रूप में तथा 12 विधायक मंत्री पद की शपथ लेंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी, राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल और रणदीप सिंह सुरजेवाला, मजदूर, लेखक, अभिनेता, प्रमुख व्यवसायी तथा उद्योगपति शपथ ग्रहण समारोह में आमंत्रित हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने अरावली पर्वत श्रृंखला की परिभाषा के पुनर्विचार और सीमांकन संबंधी केंद्र सरकार की रिपोर्ट की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद की महानिदेशक कंचन देवी करेंगी। समिति को इस वर्ष 31 अगस्त

0: तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है। समिति इस बात की जांच करेगी कि क्या अरावली पहाड़ियों की पहचान के लिए प्रस्तावित मानदंड पर्यावरण संरक्षण के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र को काफी हद तक कम कर सकते हैं और पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में खनन या अन्य गतिविधियों की अनुमति दे सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के लेख को साझा किया है, जिसमें लद्दाख में खुल रहे नए अवसरों पर प्रकाश डाला गया है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि लद्दाख में पाई जाने वाली ये खास बेरी नवोन्मेष और अवसरों की कहानी लिख रही है। उन्होंने कहा कि ये लेख बताता है कि कैसे उद्यमिता और मूल्यवर्धन लद्दाख में समृद्धि के नए द्वार खोल रहे हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। भारत अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए वार्षिक सौर ऊर्जा क्षमता वृद्धि में 2025 तक विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा विकास बाजार बन गया है। भारत ने सौर ऊर्जा के स्थापित क्षमता में उल्लेखनीय 155 गीगावाट का आंकड़ा पार कर लिया है। इससे देश के 50% गैर जीवाश्म ईंधन क्षमता लक्ष्य को प्राप्त करने और राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान को समय से पहले पूरा करने में मदद मिली है। प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना जैसी प्रमुख पहल लोगों के जीवन में बदलाव ला रही है। घरों पर लगे सौर पैनल से 40 लाख से अधिक परिवारों को बिजली मिल रही है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि देश की सौर ऊर्जा विकास गाथा वैश्विक मानक स्थापित कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में नेपाल के राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के अध्यक्ष रवि लामिछाने से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि नेपाल भारत की पड़ोसी पहली नीति के अंतर्गत एक प्रमुख साझेदार है। उन्होंने कहा कि भारत दोनों देशों के बीच विशेष और बहुआयामी संबंधों को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए नई सरकार के साथ सहयोग करने के लिए उत्सुक है। ईरान ने कल बहरीन और कुवैत में अमरीकी सैन्य ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए हैं। ईरान के एक सैन्य ठिकाने पर अमरीकी सेना के हमले के बाद हुए इस घटनाक्रम से तनाव और बढ़ गया है। इससे क्षेत्रीय स्तर पर संघर्ष विराम को लेकर नई चिंताएं पैदा हो गई हैं। एक रिपोर्ट।
1: अमरीकी केंद्रीय कमान के अनुसार अमरीकी सेना द्वारा ईरानी बंदरगाहों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे एक तेल टैंकर को निष्क्रिय करने के बाद यह तनाव शुरू हुआ है। अमरीकी अधिकारियों ने बताया कि हेलफायर मिसाइल ने जहाज के इंजन पर हमला किया। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने कहा कि अमरीका ने केशम द्वीप के दक्षिण में स्थित उनके एक संचार केंद्र को निशाना बनाया था। जवाब में ईरान ने बहरीन में अमरीकी नौसेना के 5वें बेड़े के मुख्यालय और कुवैत में एक सैन्य हवाई अड्डे पर मिसाइल और ड्रोन दागे। हालिया तनाव बढ़ने के बावजूद अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ संपर्क जारी है और कूटनीति के विफल होने की खबरों को खारिज कर दिया। हालांकि मसौदा समझौते पर बातचीत अभी भी अधूरी है, क्योंकि दोनों पक्षों के नेतृत्व ने अभी तक प्रस्ताव को मंजूरी नहीं दी है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमन यादव।
0: भारतीय रिजर्व बैंक RBI की मौद्रिक नीति समिति की 3 दिवसीय बैठक आज मुंबई में शुरू हुई। विशेषज्ञों का मानना है कि पश्चिम एशिया में जारी तनाव के कारण अस्थिर वैश्विक परिस्थितियों को देखते हुए RBI ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं करेगा। नीतिगत निर्णय शुक्रवार को घोषित किया जाएगा। सरकार ने उस अंतर्राष्ट्रीय समाचार रिपोर्ट का खंडन किया है, जिसमें दावा किया गया है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने लगभग 12 अरब अमरीकी डॉलर मूल्य का सोना बेचा है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांचाई इकाई ने कहा कि समाचार एजेंसी का यह दावा फर्जी है। पंजाब की मुख्य चुनाव अधिकारी अनिंदिता मित्रा ने सूचित किया है कि विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के अंतर्गत मतदाताओं की पूर्व मैपिंग प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए राज्य भर के सभी मतदान केंद्रों पर 7 जून को विशेष शिविर आयोजित किए जाएंगे। अब तक राज्य में 90% से निर्धारित लक्ष्य के मुकाबले 84.62% पूर्व SIR मैपिंग हो चुकी है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने बताया है कि लगभग 40,000 छात्रों ने सफलतापूर्वक पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन जमा कर दिए हैं। ये प्रक्रिया बिना किसी समस्या के पूरी कर ली गई है। आज विश्व साइकिल दिवस है। इस साल का विषय है हरित भविष्य के लिए साइकिल चलाना। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने युवाओं से साइकिल चलाने और एक स्वस्थ तंदुरुस्त और हरित राष्ट्र के निर्माण में अग्रणी भूमिका निभाने का आग्रह किया है। विश्व साइकिल दिवस के अवसर पर एक वीडियो संदेश साझा करते हुए उन्होंने ये बात कही।
2: साइकिलिंग को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। साइकिलिंग केवल एक व्यायाम या एक दिन की हॉबी नहीं, बल्कि स्वस्थ और सशक्त जीवन शैली की

0: एक पहचान है। यह हमारे स्वास्थ्य के साथ साथ पर्यावरण को सुरक्षित रखने का सबसे सस्ता, सुंदर और टिकाऊ माध्यम है। जितना अधिक हम साइकिल का उपयोग करेंगे उतना ही प्रदूषण कम होगा और पेट्रोल डीजल की बचत के माध्यम से देश को भी लाभ मिलेगा।
1: इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन में आज पुरुष सिंगल्स में एचएस प्रणय आयरलैंड के नहन गुवेन से और आयुष शेट्टी चीन के वेन होंगयांग से मुकाबला करेंगे। लक्ष्य सेन पहले ही दौर में हारकर बाहर हो गए हैं। महिला सिंगल्स में पीवी सिंधु ने थाईलैंड की बुसानन ओमबाम रुंगफान को हराकर दूसरे दौर में प्रवेश किया। पुरुष डबल्स में भारत के सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी को आज मलेशिया के खाई शिंगकांग और आरोय ताई ने 6-11 से हार का सामना करना पड़ा। वहीं महिला सिंगल्स में आज उन्नति हुडा का सामना जापान की पूर्व विश्व चैंपियन नोजोमी ओकुहारा से होगा। मौसम विभाग ने आज पूर्वोत्तर क्षेत्र के कुछ हिस्सों ओडिशा, कोंकण, गोवा और पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों में गर्म और उमस भरे मौसम का अनुमान है। आज दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गुजरात, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में आंधी आ सकती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दिल्ली के मालवीय नगर स्थित एक होटल में भीषण आग लगने से 21 लोगों की मौत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना पर दुख व्यक्त किया। प्रत्येक मृतक के परिजन को 2-2 लाख रुपए के अनुग्रह राशि देने की घोषणा। पश्चिम बंगाल विधानसभा से निष्कासित विधायक ऋतव्रता बनर्जी के लगभग 58 विधायकों के समर्थन का दावा करने के बाद तृणमूल कांग्रेस में उथल पुथल मची। सर्वोच्च न्यायालय ने अरावली पर्वत श्रृंखला की परिभाषा के पुनर्विचार के लिए उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डीके शिवकुमार अब से कुछ देर में कर्नाटक के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। और इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन में एचएस प्रणय और आयुष शेट्टी आज पुरुष सिंगल्स मैच खेलेंगे। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 483.1 मीटर यानी 621 किलो हर्ट्ज पर। लीजिए सुनिए प्रायोजित उमंग।

हम सुन रहे थे समाधि फिल्म का यह गीत लता मंगेशकर, अमीर बाई और साथियों की आवाज में राजेंद्र कृष्ण के बोल और सी रामचंद्र के संगीत के साथ। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन, कार्यक्रम है सदाबहार नगमे। और आइए सुनते हैं सदाबहार नगमे का अगला गीत, जो कि है श्री 420 फिल्म से। मन्ना डे और साथियों की आवाजें हैं, शैलेंद्र के हैं बोल और शंकर जयकिशन का है संगीत।

0: तन्हाई, सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी,
2: खुजी बहार आई गांवों में खिली गलियां,
1: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत भूले बिसरे गीत,
3: मैं तेरा राग तू मेरी रागनी,
1: गुजरे दौर की आवाजें धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज आपकी सुबह को बनाए खास, भूले बिसरे गीत
4: तुम्हारी याद सताते हैं
1: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: रेशमी ख्वाब कुछ मखमली अंदाज,
1: कहीं बेख्याल हो किसी ने।
0: सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल,
2: जाने
0: सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है सदाबहार नगमे। आइए सुनते हैं न्यू दिल्ली फिल्म का ये गीत, किशोर कुमार की आवाज में। शैलेंद्र के बोल हैं और शंकर जयकिशन का है संगीत।
1: मिलते ही नजर, मिलते ही नजर आप मेरे दिल में आ गए। अफसोस है कि आप

हम सुन रहे थे सीआईडी फिल्म का यकीत गीता दत्त की आवाज में, मजरू सुल्तानपुरी के बोल और ओपी नैयर के संगीत से सजा हुआ। आइए सुनते हैं सदाबहार नगमे का अगला गीत, जो कि है फिल्म साथी से। लता मंगेशकर की आवाज है, मजरू सुल्तानपुरी के बोल है और नौशाद का है संगीत।

हम सुन रहे थे बरात बिरादरी फिल्म से यह गीत लता मंगेशकर मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में। कुमार ने इसे लिखा और शौकत दिलवी नौशाद ने इसे संगीतबद्ध किया। आइए सुनते हैं अगला गीत। आज के कार्यक्रम का यह अंतिम गीत होगा और जो गीत है फिल्म अनुभव से, गीता दत्त की आवाज़ है, गुलजार के बोल हैं, करुण रॉय का संगीत है। इसके साथ ही आज्ञा दीजिए कार्यक्रम सदाबहार नगमे से मुझे यानी विधि जैन को नमस्कार।

0: सखी सहेली सखी सहेली कार्यक्रम सुनने वाले सभी सखियों और सखाओं को मंदाकिनी जोशी और
1: मेरा यानी चंचल वर्मा का
0: प्यार भरा नमस्कार। क्या बात है चंचल, आज बड़ी महक रही हो और खूब कपड़े भी हरे भरे पहने हुए हैं। और जब मैं तुम्हारा लंच बॉक्स देख रही थी तो काफी हरी हरी सब्जी लेकर आई थी, क्या बात है।
1: वैसे तो हरी सब्जियां भाई इस मौसम में मिलना मुश्किल होता है, लेकिन अगर कभी मिल जाए ना तो अपनी सेहत का ध्यान रखते हुए जरूर खा लेनी चाहिए। और बात हुई हरे भरे की, तो थोड़ी सी हरियाली आप में भी है। और ये जो उत्सव का सा माहौल है ना, कल से ही जो चल रहा है, आज भी जब हम आए स्टूडियो में तो वो सजावट देखकर लगा कि कल के उत्सव की जो रौनक
0: महक है वो आज भी है, खुशबू है ना आज भी हमारे बीच में महसूस हो रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हर उत्सव को जब हम खुशी के साथ मनाते हैं तो वो कई दिनों तक हमारे दिलो दिमाग पर असर करता है।
1: तो चलिए अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और हमारे सभी सुनने वालों को बताते हैं कि आज हमारे सखी सहेली के पिटारे में कौन कौन सी जानकारी है या मनोरंजन है और किस चीज पर हम चर्चा करने वाले
0: हैं। तो बताइए आज क्या क्या विषय लेकर आई हैं आप।
1: तो देखिए, सखी सहेली का रिश्ता यानी कि 22 साल पुराना रिश्ता, और कोई भी रिश्ता मजबूत कब बनता है, जब वहां पर प्यार हो, खुशियां हो,
0: विश्वास हो, सम्मान हो।
1: तो रिश्तों की जो मजबूती है उसका आधार क्या है, इस पर हम बात करेंगे।
0: बिल्कुल।
1: और आज बुधवार का दिन है तो साड़ियों की भी कुछ बात होती है।
0: अरे क्या
1: जब
0: बात
1: उत्सव
0: है?
1: का समय होता है ना, तो भाई जो महिलाएं हैं वो बड़ी सजी धजी नजर आती है और

0: साड़ियों के बिना कहाँ श्रृंगार पूरा होता है।
1: तो भाई हम अपनी अलमारी खोलते हैं ना जब उत्सव के दिन की आज हमें खास साड़ी पहननी है, तो चंचल लगता है जैसे हमारे पास कुछ है ही नहीं। बहुत कुछ होते हुए भी लगता है कुछ नहीं है, क्या पहना जाए क्या पहना जाए। तो लगभग ये सभी महिलाओं की कमजोरी होती है ना।
0: तो आज जो साड़ी है वो है घर चोला साड़ी, जिसके बारे में बात होगी। और शब्द आपका, शब्द हमारा, विचार आपके। तो हमारे सुनने वालों को जिस शब्द के बारे में अपने विचार भेजने हैं वो शब्द है नियोजन।
1: अरे वाह, बहुत सुंदर शब्द है ये नियोजन जी। तो इस पर हमारे श्रोता जो हैं अपने विचार लिखें कि नियोजन का अर्थ क्या है और आपने इसको किस तरह से, किस अर्थ में अपने जीवन में उतारा है।
0: और 3 जून का दिन होता है विश्व साइकिल दिवस।
1: अरे
0: तो साइकिल से जुड़ी हुई अपनी यादें भी आप साझा कर सकते हैं।
1: हाँ, ये बता सकते हैं कि जब आपको पहली साइकिल मिली आपकी जिंदगी में, जो पहली साइकिल थी, चाहे वो छोटी सी थी, चाहे वो बड़ी थी या वो उससे बड़ी थी, तो आप उसका जिक्र कर सकते हैं कि वो साइकिल हमारे लिए कितना मायना रखती थी उस जमाने में, है ना।
0: और आज कई घरों में हमने देखा है कि चाहे दोपहिया वाहन है या चौपहिया वाहन है, उनके घर में बड़े बड़े वाहन खड़े हैं, लेकिन एक साइकिल जरूर रखते हैं, क्योंकि लोग अपने स्वास्थ्य को लेते हुए बहुत जागरूक हो रहे हैं। तो सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक जाने की बजाय वो साइकिल लेके
1: नजर आते हैं,
0: ताकि उनकी सेहत पर कोई बुरा असर ना पड़े। तो साइकिल एक घर का परिवार के सदस्य की तरह वो हिस्सा होती है।
1: बिल्कुल सही कहा। और आजकल इसका प्रचलन जो थोड़ा कम हुआ है ना, उससे हमारी सेहत में बहुत बुरा असर भी पड़ा है, क्योंकि हमने हर जगह दोपहिया वाहन या चार पहिए के वाहन को, कार को लेके जाना सीख लिया। थोड़ी सी दूर पर हम सामान लेने जाते हैं और अपनी गाड़ी स्टार्ट करके ले जाते हैं, तो हम हिलना डुलना ही नहीं चाहते हैं, तो हमारे स्वास्थ्य पर इसका कितना बुरा प्रभाव पड़ता है। अगर आपने साइकिल चलानी नहीं छोड़ी है तो यकीनन आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा होगा।
0: तो साइकिल चलाने के क्या फायदे हैं, इस पर भी आप हमें लिख कर बता सकते हैं। और गर्मियों की बात हो रही है, तो गर्मियों में जैसे हमने शुरू में ही कहा ना कि हरी सब्जियां बड़ी मुश्किल से देखने को मिलती हैं, और सिर्फ हरी सब्जियां नहीं, बाकी सब्जियां भी बाजार में बड़ी कम दिखती हैं।
1: हाँ।
0: ले देखे कुछ गिनी चुनी सब्जियां हैं, तोरी है, टिंडे हैं, भिंडी है, कद्दू है,
1: लौकी है,
0: जिसमें से बहुत सारी सब्जियां तो बच्चे पसंद नहीं करते खाना। तो महिलाओं के सामने बड़ी समस्या कि बनाएं क्या।
1: सुनो चंचल, बहुत सारी सब्जियां बनाने पर जो पति देव है ना हमारी सखियों के, वो मुंह फुला लेते हैं, ये क्या बना दिया आज, मैं नहीं खाता हूँ।
0: तो एक बड़ा अच्छा ऑप्शन होता है बिना सब्जी के सब्जी बनाने के लिए बेसन। और बेसन से जाने कितनी तरह की सब्जियां बनाई जा सकती है। तो हमारी सखियां बेसन से कौन कौन सी सब्जी बनाती हैं, जैसे अगर मुझे कुछ याद है तो कड़ी बन जाती है, गट्टे बन जाते हैं, पितौड़ की सब्जी।
1: अरे सारा मत बताओ।
0: और इसके अलावा कौन सी सब्जियां हैं और उनकी रेसिपीज भी हमारी सखियां साझा करें। तो ये गीत सुन लेते हैं सखियों के।
1: बिल्कुल सुन लेते हैं। तो अपनी सखियों से हम कहते हैं कि फटाफट तैयार हो जाइए, और बेसन की इन गर्मियों के दिनों में आप क्या सब्जी बनाती हैं हमें भी बताइए
0: जी।

0: हाँ तो चंचल, जब हम बेकरार होते हैं कब होते हैं बताओ? जब हम किसी के साथ मजबूती से किसी रिश्ते में बंधे होते हैं, है ना?
1: और पता है जब किसी से रिश्ता बहुत मजबूत होता है, कई बार हम उनके साथ ना हो तो भी उनका जो एहसास है वो हमारे साथ होता है,
0: बिल्कुल सही
1: और
0: कहा,
1: ये उसी रिश्ते की मजबूती को दिखाता है।
0: बिल्कुल। तो रिश्तों की मजबूती के लिए क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए, वही हमारे सफल जीवन का आधार है। अगर इस बात
1: बिल्कुल
0: को हम जान लेंगे तो हमारे रिश्ते मजबूत होंगे, वरना स्वार्थी रिश्ते तो हर जगह मिलते ही हैं।
1: बिल्कुल, मतलब ही रिश्तों का तो कहते हैं ना कि हर जगह लोग अपना मतलब साधने में ही लगे रहते
0: हाँ
1: हैं, लेकिन जीवन में रिश्तों की कीमत को साधारणतया बहुत कम लोग समझ पाते हैं
0: बिल्कुल
1: मंदाकिनी जी।
0: बिल्कुल
1: लेकिन जो इस बात को समझ जाते हैं कि रिश्ते हमारी ताकत होते हैं, और इसलिए जरूरी है कि जो भी रिश्ते हमारे साथ हैं और वो हमें मजबूती दे रहे हैं वो बहुत जरूरी है, क्योंकि रिश्तों की जो नींव है वो प्यार और त्याग पर ही टिकी होती है। प्यार के धागे में ही रिश्ते पिरोए जाते हैं और त्याग से उन्हें हम प्रगाढ़ता देते हैं, मजबूती देते
0: बिल्कुल
1: हैं।
0: सही कहा। और अपने से बड़ों के साथ अगर हमारे रिश्ते हैं तो विनम्र होने चाहिए, और विनम्रता ही हमारे जीवन पथ पर आगे हमें ले जाती है।
1: जी
0: अहंकार और अक्कड़ से भरा जो व्यक्तित्व होता है वो कभी भी रिश्तों को सही ढंग से नहीं निभा पाता चंचल, और
1: हाँ
0: इसलिए ऐसे व्यक्ति के साथ कोई रहना भी नहीं चाहता, और क्या होता है धीरे धीरे वो व्यक्ति अकेला रह जाता है।
1: लेकिन हम अपने लिए अगर मान सम्मान चाहते हैं ना मंदाकिनी जी, तो सभी जो भी हमें मिलते हैं, बड़े हैं छोटे हैं, सबके साथ सरल सहज रहने की कोशिश हमें जरूर करनी चाहिए। जो जैसा है बस उसे वैसे ही अगर हम स्वीकार कर लें, उसके साथ अपना तालमेल बिठा लेते हैं, तो अगर विपरीत स्वभाव वाला भी कोई व्यक्ति है उसके साथ भी हम सामंजस्य बिठा सकते हैं, और ऐसा जब होगा तो कभी भी मुश्किलें आएंगी ही नहीं हमारे जीवन में।
0: बिल्कुल सही कहा। परिवार के साथ हम जिन रिश्तों से जुड़े होते हैं वो तो हमें जन्मजात मिलते हैं, मतलब वो भगवान की देन है ऐसा हम मानते हैं,
1: हाँ
0: ठीक है? और उनमें कोई बदलाव भी नहीं हो सकता। भाई माता पिता हैं, भाई बहन हैं, ये हमारे
1: जी
0: रिश्ते हैं, खून के रिश्ते हैं। बदलाव लाना है तो अपने स्वभाव में लाना होता है, और प्रेम पूर्ण होकर संबंधों को निभाने का जो प्रयास है वही आपके जीवन को खुशियों से भरता है।
1: बिल्कुल, और एक सफल और संतुष्टिदायक जीवन अगर जीना है तो रिश्तों को मजबूत बनाना भी जरूरी हो जाता है हम सबके लिए। विश्वास, संवाद, सम्मान, सहानुभूति, प्रतिबद्धता को प्राथमिकता देकर हम सार्थक संबंध बना सकते हैं और उनको हमेशा के लिए कायम भी रख सकते हैं, और यही व्यवहार हमारे व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन को समृद्ध करने में भी मंदाकिनी जी
0: सहायक
1: बहुत
0: होते
1: मदद होता
0: हैं,
1: है।
0: बिल्कुल
1: दोस्त बनाने की कोशिश हम जरूर करें, लेकिन अच्छे दोस्त बनाने पर ध्यान दें, क्योंकि दोस्त हमारे बारे में बहुत कुछ जानते हैं और वो हमारे बहुत बड़े राजदार भी होते हैं।
0: बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन ऐसे दोस्त चंचल बहुत कम मिलते
1: जी
0: हैं। ज्यादातर लोग दोस्ती करते तो वे कहते हैं भी हमारा कोई दोस्त नहीं है, लेकिन जब आप उनसे दोस्ती करते हैं तो वही आपके साथ क्या करते हैं ये हम
1: बिल्कुल
0: कह नहीं सकते हैं। रिश्ते जो होते हैं हमारे अंदर की अच्छाई या बुराई को उजागर करके हमें बना सकते हैं, बिगाड़ भी सकते हैं, और इसीलिए किसी भी नए रिश्ते में कदम रखते समय बस थोड़ा सा सावधानी जरूरी होती है।
1: बिल्कुल, हमारे आसपास परिवार के लोग जो भी होते हैं, ये इनके साथ हमारे रिश्ते बहुत भावनात्मक होते हैं, और ऐसी दुनिया में सच्चे संबंध से लेकर तेजी से ये जो रिश्ते हैं मूल्यवान होते जा रहे हैं। मजबूत रिश्ते बनाने की कला में जो महारत हासिल करनी है अगर आपको, तो भाई आपके अंदर प्यार होना बहुत जरूरी है।
0: सबसे बड़ी बात है कि आप प्यार दें, सम्मान दें, विश्वास दें, है ना? और इसके अलावा मजबूत रिश्ते सुखी और संतुष्टिपूर्ण जीवन की आधारशिला माने जाते हैं। चाहे अगर हम व्यक्तिगत बात करें जैसा कि आपने कहा, या व्यावसायिक स्तर पर बात करें, अगर हमारे व्यवहार में कड़वाहट है तो कोई भी हमें पसंद नहीं करेगा।
1: अब देखो ना, हमारे सुनने वालों का एक संदेश मैं पढ़कर सुनाती हूँ। ये लिखते हैं कि रिश्तों की मजबूती सफल और संतुष्ट जीवन का वास्तविक आधार है। मजबूत रिश्ते जीवन में भावनात्मक

0: सुरक्षा, मानसिक शांति, कठिन परिस्थितियों में संबल प्रदान करते हैं। अकेले कोई भी व्यक्ति संपूर्ण सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। सार्थक और गहरे संबंध ही जीवन को सही मायने में खुशहाल बनाते हैं। सफल जीवन में मजबूत रिश्तों की मानसिक चुनौतियां और उतार चढ़ाव के समय परिवार, दोस्तों के साथ तनाव करने में मदद करता है। अच्छे रिश्ते आपको नई सीख, दृष्टिकोण और सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करते हैं और आपके व्यक्तिगत रूप से आपको बेहतर बनाते हैं।
1: बिल्कुल, वही एक श्रोता ये भी लिखते हैं चंचल कि रिश्ते जो है जीवन की सबसे अनमोल पूंजी होते हैं। धन, पद और प्रतिष्ठा जीवन को सुविधाएं दे सकते हैं, लेकिन सच्ची खुशी और मानसिक संतोष रिश्तों की मजबूती से ही प्राप्त होता है। परिवार हो, मित्र हो, समाज हो, इनसे जुड़े जो रिश्ते हैं वो हमारे जीवन को प्रेम देते हैं, विश्वास देते हैं और अपनत्व से भर भी देते हैं। तो ये जो रिश्ते हैं हमें कठिन समय में संबल देते हैं और सफलता के क्षणों को और अधिक आनंदमय बना देते हैं। इसलिए रिश्तों को समय दें, उन्हें सम्मान दें, प्रेम से सींचे, क्योंकि रिश्तों की मजबूती ही सफल और सुखी जीवन का सच्चा आधार होती है।
0: और भाई बातें तो भी बहुत सारी करनी है, संदेश भी पढ़ने हैं, लेकिन साथ में गीत सुनते हुए आगे बढ़ते हैं।
1: चलिए

0: तो देखा आपने कितनी इल्तिजा कर रही थी कि दूरी मत होना, दूर नहीं होना, और ये रिश्ते हमें निभाने हैं, है ना।
1: और रिश्तों में ही तो कई बार हम प्यार से सोना वगैरह भी कहते हैं।
0: वही मैं कहने वाली थी, कितना प्यार से हम किसी को कहते हैं ओ मेरे सोना रे, है ना, ये प्यार है। और ये रिश्ता बना रहे उसके लिए हम इस तरह का भाव रखते हैं मन में। तो एक श्रोता लिखते हैं चंचल की, रिश्तों की मजबूती किसी इमारत की नींव की तरह होती है, जो दिखती तो नहीं है पर सब कुछ उसी पर टिका होता है। रिश्तों में संवाद के दौरान बोलने से ज्यादा सुनने पर फोकस करना पड़ता है, तर्क वितर्क करने पर बहस की स्थिति बन जाती है। जबरन अपनी बात मनवा लेना किसी रिश्ते की जीत नहीं होती, वो बात अपनी पसंद दूसरे पर थोपना भी नहीं होता। रिश्तों में बहुत सी गलतफहमियां बन जाती हैं जो चुप्पी से लंबे समय तक रह सकती हैं, उन्हें आपसी बातचीत और सहमति से हमेशा के लिए खत्म कर देना चाहिए। किसी में सामने वाले की अच्छाइयों के साथ कुछ छोटी छोटी कमियां भी होती हैं, उसे स्वीकार करें, माफी मांग लेना, माफ कर देना, वो ज्यादा अच्छा होता है।
1: और यही बात हमारे श्रोता ने पहले भी लिखी थी, जो जैसा है वैसे अगर उसे स्वीकार कर लिया जाए तो रिश्तों में कहीं कोई बनावट नहीं होती, या कहते हैं कि तनाव नहीं रहता। ये चीजें बड़ी जरूरी होती हैं। इसी तरह से हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि भाई मेरे जीवन का आधार मेरी धर्म पत्नी है, और उनके आने से दो कलियां मेरे जीवन में खिली, और पैरालिसिस होने पर भी उन्होंने मेरा सारा साथ दिया और सहारा बनकर पूरे परिवार को संभाल लिया। आज उसी वजह से मैं स्वस्थ हो सका हूं, और इसीलिए कहते हैं कि सही समय में जीवन साथी बनी वो मेरी, और जीवन का वो आधार है।
0: क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और इसके लिए हम अपनी जो आपकी धर्म पत्नी उन्हें सैल्यूट करते हैं कि उन्होंने आपका साथ नहीं छोड़ा। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि मजबूत रिश्ते एक सुखी और सफल जीवन गहरे में और आत्मीय संबंध जीवन के तनाव को कम करते हैं, सकारात्मक ऊर्जा का संचार करते हैं। जहां एक और अकेला व्यक्ति संघर्षों में टूट जाता है, वहीं मजबूत पारिवारिक और सामाजिक संबंध उसे चट्टान जैसा सहारा देते हैं।
1: क्या बात है, बिल्कुल सही बात है। और ये चट्टान और मजबूत होगी अगर आप उसे प्यार से हमेशा सींचते रहेंगे।
0: बिल्कुल।
1: इसी तरह से हमारे एक अन्य श्रोता का संदेश है कि रिश्तों की मजबूती हमारे लापरवाह होने पर कमजोर पड़ जाती है। मैं स्वयं के अनुभव से ये बता रहा हूँ कि नौकरी में रहते हुए हम कभी बच्चों पर ध्यान ही नहीं दे पाए, माँ के संरक्षण में ही रहे तो सब अपने मन के हो गए। जब घर आते तो सब सामान्य दिखते थे लेकिन करते वो अपने मन की थे। एक ने तो बीए तक कर लिया, जूनियर हाई स्कूल खत्म कर दिया है उसने, दूसरे ने, और आज बुढ़ापे में घर में पड़े उन दिनों की ढिलाई का परिणाम हम भुगत रहे हैं। अनुशासन जब सिखाना चाहिए था जब सिखाया नहीं गया, और अब वो सब अपने अपने परिवार में मस्त हैं। पत्नी रही नहीं तो अब सब होते हुए भी सारे रिश्ते बेमानी से लगते हैं और बस मुश्किल के दिन उनके गुजर रहे हैं। तो कई बार हमने जब अगर रिश्तों पर हम ध्यान नहीं दे पाते तो सिर्फ ये अफसोस और काश हमारे जीवन में रह जाते हैं। इसीलिए समय पर वो बच्चों को जो हम कहते हैं संस्कार देना, या बच्चे जो है ना हमारे व्यवहार से ही सीखते हैं।
0: बिल्कुल।
1: तो सबसे अच्छा तरीका यही है, आप अपने व्यवहार में वो सारी अच्छाई या
0: बच्चों को दें।
1: जी
0: बिल्कुल, ताकि बच्चे भी बड़े होकर वही आपको दें, है ना। ये तो है कि टिट फॉर टैट होता ही, अगर आपने अपने माता पिता को दुख दिया है तो आपके बच्चे भी फिर आपको बड़े होकर दुखी देंगे, ऐसा माना जाता है। क्योंकि उन्होंने जो देखा है वही उनके मन में, उनके जो बीज है भीतर वही तो उत्पन्न हुआ है ना, वही फलता फूलता है। इसलिए हमेशा खुद को, जब तक हम एक प्रेरणा का स्रोत नहीं बनाएंगे, बच्चों के लिए आइडियल नहीं बनेंगे, बच्चे भी नहीं बन पाएंगे। एक श्रोता लिखते हैं कि रिश्तों की मजबूती सफल जीवन का सबसे प्रमुख आधार है। ये भरोसा, सम्मान और त्याग के धागों से बंधा होता है, जो न केवल व्यक्तिगत खुशी लाता है बल्कि कड़े समय में भावनात्मक संबल भी प्रदान करता है। गहरा और सच्चा रिश्ता ही सफलता का सफर है, असली प्रेरणा है। समर्पण और प्रेम से सींचा जाना चाहिए सफल जीवन के रिश्तों का महत्व। भावनात्मक स्थिरता, मजबूत रिश्ते तनाव कम करते हैं और मानसिक शांति हमें प्रदान करते हैं। वहीं वो कहते हैं साथी कि रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए कुछ सूत्र है, विश्वास, ईमानदारी, जिससे कि हमारे रिश्ते जो है टिके रहते हैं। संवाद मधुर संवाद होने चाहिए, त्याग और स्वीकृति की भावना

0: चाहिए, एक दूसरे को समय देना चाहिए, समय निकालना चाहिए। अहंकार और अक्कड़ रिश्तों के लिए सबसे बड़े बाधक होते हैं, जो व्यक्ति को अकेला कर देते हैं। और सच्चा वैवाहिक जो जीवन है तभी सफल होता है जब आप दोनों मिलकर रहते हैं।
1: एक अन्य संदेश में हमारे श्रोता लिखते हैं कि रिश्ते अगर मजबूत हैं तो जीवन सफल होता है। अगर हमारे जीवन में रिश्ते हमने नहीं कमाए तो समझिए कि जीवन कुछ भी काम नहीं आया और वो रिश्ते सफल नहीं होंगे। इसीलिए अपने रिश्ते अगर हम मजबूत रखेंगे तो किसी भी जरूरत के समय वो हमें उनसे मदद मिलेगी, और वो आपके अगर साथ होंगे तो यही आपकी सफलता की सबसे बड़ी कुंजी है। और आगे एक छोटा सा संदेश है हमारे श्रोता का, हम भी रिश्ते निभाते हैं और बनाते भी हैं, और ये हमें बहुत अच्छा लगता है, हम परिवार में ही रहते हैं।
0: बिल्कुल, तो अब एक गीत सुन लिया जाए।
1: जी

0: हाँ चंचल, देखिए जीवन से भरी जब आंखें होती हैं ना, तो आपके व्यक्तित्व पे चार चांद लगा देती हैं, है ना। और ऐसे में जब महिलाएं खास तौर से खूबसूरत साड़ियां पहनती हैं, तो फिर उनको तो देखते मन ही भरता नहीं है कि क्या बात है।
1: और आपने बात की भाई किसी खास मौके की, तो शादी एक ऐसा मौका होता है ना जब हमें अपना कल्चर उसे दिखाने का और उसमें लुत्फ उठाने का जब मौका मिलता है, तो उसे महिलाएं खास तौर पे बिल्कुल गंवाना नहीं चाहती। शादियों में रीति रिवाज के अलावा सबसे ज्यादा खास होता है पारंपरिक खाना और पारंपरिक
0: पहनावा।
1: पहनावा।
0: और शादी किसी भी लड़की के लिए उसके जीवन के सबसे खास मौकों में से तो एक होता ही है। दूल्हा दुल्हन के कल्चर और रीति रिवाज शादी के मौके को और भी खास बना देते हैं। हर जगह

0: अपना कल्चर होता है, अपने नियम होते हैं और उनका अपना खास महत्व भी होता
1: तो
0: है।
1: आज हम गुजरात के कल्चर की एक खास साड़ी के बारे में बात कर रहे हैं मंदाकिनी जी, और जिसे कोई लड़की शादी में पहनकर अपने जो भी उसके लुक्स हैं उसे वो और भी ज्यादा निखार सकती है, यानी कि हम बात कर रहे हैं घर चोला साड़ी की।
0: क्या बात है, घटचोला साड़ी इतनी सुंदर लगती है चंचल
1: जी
0: कि पूछो मत। तो घटचोला साड़ियां गुजराती शादियों का बहुत खास हिस्सा है और इन्हें जो खास दुल्हन की साड़ी के रूप में चुना जाता है। घटचोला साड़ी के चेकर्ड ग्रिड में प्रत्येक वर्ग दुल्हन और उसके वैवाहिक घर के लिए आशीर्वाद का प्रतिनिधित्व करता है, ऐसा माना जाता है।
1: और ये दुल्हन की सुंदरता में चार चांद लगा देती है, तो वहीं इस साड़ी की जो खूबसूरती है और इसकी तरह ही इसका मतलब भी बड़ा खास होता है। घट चोला यानी कि नाम में दो गुजराती शब्दों को मिलाया गया है, घर
0: घर
1: जिसका मतलब होता है
0: घर
1: और चोला इसका मतलब है कि
0: पोशाक।
1: पोशाक, और
0: हाँ
1: दुल्हन अपने पैतृक घर से यानी कि पिता के घर से वैवाहिक घर में जाने को इस चीज के बारे में दर्शाया जाता है। इसका मतलब होता है कि दुल्हन का नया घर और उस चोले को पहनकर ये लड़की उस नए घर में प्रवेश
0: प्रवेश
1: करती।
0: करती है। बिल्कुल, बहुत सुंदर तरीके से इस बात को रखा गया है। और वैसे तो घटचोला एक साड़ी होती है, लेकिन आजकल शादियों में इसके दुपट्टे का भी बहुत इस्तेमाल किया जाता है।
1: और देखिए ना, घड़ी की सुइयां इशारा कर रही हैं कि एक छोटे से अंतराल का समय हो गया है। बातें हम
0: बिल्कुल
1: जारी रखेंगे, लेते हैं अंतराल।

0: विविध भारती पर इस समय चल रहा है कार्यक्रम सखी सहेली। मैं हूँ आपके साथ चंचल वर्मा।
1: और मैं हूँ आपके साथ मंदाकिनी जोशी।
0: बात कर रहे थे हम साड़ी की।
1: बिल्कुल, साड़ियों की बात हो और हम भूल जाएं, ऐसा कभी होता है चंचल? तो हम बात कर रहे थे कि आजकल शादियों में इसके दुपट्टे का भी खूब इस्तेमाल किया जाने लगा है, जिसे दुल्हन अपने सिर पर ओढ़ती है। और ये कॉटन या सिल्क से बना होता है, जिस पर जरी का काम किया जाता है। घटचोला साड़ियों में पारंपरिक रूप से जरी की बुनाई के साथ चेकर्ड ग्रिड डिजाइन होता है और अक्सर मोर, कमल, फूल पत्तियां जैसे शुभ चिन्ह भरे होते हैं।
0: जब आपने दुपट्टे का जिक्र किया तो मुझे याद आया, सिर्फ महिलाएं ही नहीं पहन कर सचती संवरती, जब कुर्ता पायजामा मर्द पहनते हैं तो जो हमारे पुरुष साथी है ना, वो भी घटचोला का दुपट्टा लेना बड़ा पसंद करते हैं,
1: में रख लेते हैं वो
0: जी
1: भी, हाँ।
0: और हम बात कर रहे थे साड़ी की, जो आपने बताया चेकर डिजाइन होते हैं, फूल पत्तियों के चिन्ह होते हैं इस पर। और क्योंकि ये एक पारंपरिक विवाह में पहने जाने वाली साड़ी है, तो इसमें वर्गों की जो संख्या है अनुष्ठानिक रूप से वो बहुत महत्वपूर्ण होती है। वर्गों की संख्या 9, 12, 92 के गुणांक में होती है। और ये पहले कपास से बनी होती थी, लेकिन अब रेशम का भी इसमें उपयोग किया जाने लगा है।
1: हाँ, हालांकि घटचोला साड़ी में क्या है कि बांधनी साड़ियों की जैसा मिश्रण होता है चंचल, जिसमें घटचोला के जरी ग्रिड पैटर्न के भीतर बांधनी टाई डाई को शामिल भी किया गया है।
0: घटचोला बनाने की शुरुआत गुजरात के खंबात जिले में हुई थी और तब से लेकर आज तक गुजरात में साड़ियों, ये जो साड़ी है वो शादियों में बहुत अहम हिस्सा मानी जाती है। इस साड़ी की सबसे खास पहचान है ग्रिड पैटर्न, और ये साड़ियां पारंपरिक रूप से विवाह जैसे खास अवसरों पर ही पहनी जाती हैं। इन साड़ियों में गुजरात की पारंपरिक खास साड़ी है ये, खासतौर पर जामनगर, राजकोट इलाकों में इनका बहुत ही ज्यादा चलन देखने मिलता है।
1: बिल्कुल, और सास की तरफ से बहू को जब आशीर्वाद दिया जाता है ना, तो चोला दूल्हे के परिवार की तरफ से दिया जाता है, जिसे ओढ़कर दुल्हन अपने नए घर में प्रवेश करती है। और ये नए परिवार की स्वीकृति और आशीर्वाद का प्रतीक भी होता है। और जब दुल्हन अपने नए घर में स्वागत के लिए पानेत्र साड़ी के ऊपर जो है घटचोला साड़ी डालती है, तो इस बात का प्रतीक माना जाता है कि शादी के बाद दूल्हा और उसका परिवार दुल्हन का हमेशा ख्याल रखेंगे।
0: इनमें से बहुत सारी बातें हमारे श्रोताओं ने भी हम तक लिखकर पहुंचाई हैं, उन्हें हम धन्यवाद कहते हैं। और घटचोला जो है वो दुल्हन को अपने सिर और कंधे दोनों पर वो ओढ़कर आती है, जिसे फेरों के समय दूल्हे को के दुपट्टे के साथ में बांध दिया जाता है। ये पति पत्नी के अटूट संबंध और इस जोड़े के बीच के पवित्र रिश्ते और उसकी मजबूती को दर्शाता है। इसलिए भी शादी में इस साड़ी का बहुत
1: महत्व होता है। बिल्कुल, और घटचोला साड़ी

0: बार फैशन है जो कभी फैशन से बाहर नहीं जाता। इसे शादी के अलावा आप दूसरे फंक्शंस में भी पहन सकते हैं।
1: जी
0: देखा है बहुत सारी महिलाओं को चाव से पहनकर जाती हैं। ज्यादातर लाल है, गुलाबी है, हरा है, पीला है। ये रंग इसमें बेहद खास लुक देता है और इसके दुपट्टे को लहंगे के साथ भी अलग अलग स्टाइल तरीके से, स्टाइलिश तरीके से हम पहन सकते हैं जो खूबसूरती में चार चांद लगा देते हैं।
1: तो भाई कुछ गाने भी सदाबहार होते हैं साड़ियों की तरह, सुन ले।
0: बिल्कुल, जो हमारे कार्यक्रम में चार चांद लगा देते हैं।

0: कुछ तुम कहो और कुछ हम कहें, यानी बात हम करेंगे अब विश्व साइकिल दिवस की, कुछ हम कहेंगे कुछ हमारे श्रोता तो कह रहे, कुछ नहीं बहुत कुछ कह रहे
1: कहेंगे
0: हैं।
1: बिल्कुल ही, इतना प्यारा विषय है साइकिल, हमारा इतना प्यारा एक ऐसा
0: याद है
1: याद हमारा अभिन्न मित्र हुआ करता था एक जमाने में, जब हमें
0: जी।
1: पहली साइकिल मिली थी तो आज भी भुलाई नहीं भूलती।
0: और 3 जून को ये दिन हम मनाते हैं, और इसका उद्देश्य है लोगों को साइकिल चलाने से जो लाभ होते हैं उसके बारे में जागरूक करना। और ये दिन इसलिए भी खास है मंदाकिनी जी, क्योंकि साइकिल एक ऐसा परिवहन साधन है जो वायु प्रदूषण को कम करने में भी मदद करता है और पर्यावरण को भी बचाने में मदद करता है।
1: बहुत बड़ी बात, और ये परिवहन का एक सबसे सस्ता, सरल और टिकाऊ और सुलभ साधन है चंचल। इसे हर वर्ग के लोग आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं, और इन दिनों साइकिलिंग को एक स्वस्थ और किफायती परिवहन विकल्प के रूप में भी प्रस्तुत किया जा रहा है। साइकिल चलाना सामाजिक समावेशन और शांति की संस्कृति को बढ़ावा भी देता है।
0: विश्व साइकिल दिवस को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अप्रैल 2018 में मनाने की घोषणा की थी, और ये दिन साइकिल के महत्व पर बहुत सारी बातें हमें बताता है। और हम सब भली भांति इस बात को समझते हैं कि साइकिल शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद है, और पर्यावरण के नजरिए

0: भी अच्छा कदम है, ये हम बता ही चुके
1: बिल्कुल
0: हैं।
1: बिल्कुल सही बात है। और इस दिन का समर्थन करने वाले भी मानते हैं कि साइकिल का उपयोग विकास को बढ़ावा देना, बच्चों और युवाओं के लिए शरीर को मजबूत करना, स्वास्थ्य को बढ़ावा देना और बीमारियों की रोकथाम करने के साधन का एक साधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है।
0: अब देखो ना, हमारे जो साथी हैं, साथी हैं, वो क्या लिख रहे हैं। साइकिल कभी मध्यम वर्गीय परिवार की आन बान शान हुआ करती थी। जो साइकिल चलाता था या जिसके दरवाजे पर साइकिल होती थी, समझिए कि वो समाज में एक सम्मानित व्यक्ति हुआ करता था। और
1: बिल्कुल
0: इसी तरह कहानी में कोर्स की किताब भी पढ़ी है हमने। हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध हास्य व्यंग्य कथा साइकिल की सवारी के लेखक सुदर्शन हैं पंडित बद्रीनाथ भट्ट। इन प्रेरणादायक कहानी में आदर्शवादी संदेश होता था और ये कहानी हास्य से भरपूर है। इसमें लेखक साइकिल सीखने की प्रबल इच्छा और इसके दौरान उनके द्वारा किए गए मजेदार प्रयासों के बारे में वर्णन करता है। तो अगर किसी ने ये कहानी नहीं पढ़ी है
1: तो
0: तो
1: उसे
0: जरूर
1: पढ़नी चाहिए।
0: पढ़िए।
1: बहुत सुंदर जिक्र किया है इन्होंने। वहीं एक श्रोता लिखती है कि जब मैंने पहली बार साइकिल पर कदम रखा तो मेरे मन में धुकधुकी थी, कहीं मैं गिर न जाऊं। संतुलन बनाने की कोशिश में शुरुआती कुछ पलों में हैंडल कांप रहा था और मुझे पैडल मारने में डर लग रहा था। कुछ बार लड़खड़ाने और गिरने के बाद मैंने संतुलन बनाना सीखा। हवा का एहसास जैसे ही मैंने पैडल पर पूरी ताकत लगाई और साइकिल आगे बढ़ी तो चेहरे पर ठंडी हवा का सुखद एहसास था।
0: और हमारे एक अन्य श्रोता का संदेश है कि जब मैंने पहली बार पापा को साइकिल के लिए कहा तो उसके 2 साल बाद मेरी साइकिल आई। यानी कि पहले के माता पिता भी ऐसे होते थे कि तुरंत आपकी फरमाइशें पूरी नहीं करते थे,
1: बिल्कुल
0: सही समय आने पर ही वो ला कर देते थे।
1: बिल्कुल
0: आगे इन्होंने लिखा है कि जब भी पापा से पूछो कब आएगी तो वो कहते एक टायर बन रहा है, फिर कहते हैंडल बन रहा है, फिर कभी कहते कि सीट बन रही है, और इस तरह उन्होंने 2 साल
1: साल निकाल
0: निकाल
1: दिए, कितनी
0: दिए।
1: अच्छी बात है। और
0: जी
1: वहीं आजकल के माता पिता 2 मिनट भी नहीं लगाते। अगर
0: जी
1: बच्चे ने कह दिया मुझे मोटरसाइकिल चाहिए, मुझे मोबाइल चाहिए, तो 2 मिनट में आ जाता है। एक श्रोता लिखते हैं कि साइकिल की बात चली है तो आपको बता दूं, 1999 में कक्षा 10वीं पास करने पर मेरे को मिली थी। उसकी खुशी मैं बयान नहीं कर सकता। और आज दो दो दुपहिया वाहन है, किंतु साइकिल की बात कुछ और ही है। मेरी वो साइकिल आज भी मैंने संभाल कर रखी है। मैं चली देखो प्यार की गली, ऐसा ये गाना भी सुनना चाहते थे।
0: और भाई ये गाना नहीं सुनना कि गाना कोई दूसरा सुनवा
1: हाँ
0: देंगे, गाने
1: हाँ
0: सभी अच्छे हैं।
1: बिल्कुल।
0: और संदेश बताइए क्या है।
1: ये लिखते हैं कि एक अन्य श्रोता कि दोपहिया वाहन यानी मोटरसाइकिल तब चला सकते हो जब आप साइकिल चलाना सीख गए हो। मतलब दोपहिया वाहन चलाने से पहले साइकिल चलाना आना जरूरी है। भाई वो तो बेस है आपका, है ना। वो तो
0: बिल्कुल
1: सबसे पहले आप नहीं सीखेंगे तो उसके बाद दूसरी चीजों पर जब आप हाथ साफ करेंगे तो आपको डर लगेगा, आप सीख ही नहीं पाएंगे। लेकिन हाँ ये बात भी होती है चंचल कि साइकिल चलाने के साथ घुटने टूटने का जो है ना,
0: जी।
1: घुटनों में चोट लगने का जो एक सबसे बड़ा नजर आता है, वो उसके लिए तैयार रहना
0: एक
1: चाहिए।
0: और बात बहुत सारे श्रोताओं ने लिखकर भेजी है कि नियमित साइकिल चलाने से हृदय, फेफड़े, मांसपेशियों को मजबूत करने में मदद मिलती है, और इसी वजह से हृदय संबंधी बीमारियां, मोटापा, गठिया, मधुमेह, कैंसर, बहुत सारी बीमारियों के खतरे को हम कम कर सकते हैं। साइकिलिंग तनाव को भी कम करती है और मानसिक कल्याण को भी बढ़ावा देने में ये सहायक है। तो चले अब गाना सुन लें।
1: नहीं, एक मेरे पास बहुत अच्छा मैसेज आया
0: तो
1: है
0: पढ़िए
1: कि
0: ना।
1: हाँ ये लिखते हैं कि मेरे लड़के ने पूरी पढ़ाई साइकिल कॉलेज लेकर
0: हाँ
1: जाकर की है और इस साल फाइनल पढ़ाई होगी, अभी भी वो साइकिल चलाता है।
0: क्या बात है।

0: हाँ तो चंचल, वक्त तो तब गुजरेगा ना जब आप वक्त का ध्यान रखेंगे, और कैसे ध्यान
1: जी
0: रखेंगे कि आपके पास घड़ी होगी। हमारे एक श्रोता लिख रहे हैं कि हम लोग जब हाई स्कूल पास करते थे तो लड़कियों को हाथ की घड़ी दिया करते थे हमारे माता पिता, और हम लड़कों को साइकिल मिला करती थी।
1: तो भाई ये भी एक तरह का नियोजन है, यानी कि प्लानिंग है
0: हाँ
1: कि लड़कियों को क्या देना है, लड़कों को क्या देना है। उस समय पहले की अगर बात जब चल रही है ना, तो लड़कियों को भाई वाहन चलाते समय कहीं गिर ना जाए, चोट ना लग जाए, उन्हें थोड़ा नाजुक समझकर इस तरह के उपहार नहीं दिए जाते थे। और लड़कों को क्योंकि बाहर जाकर ही सारे काम करने हैं,
0: इसलिए
1: और
0: उन्हें साइकिल दे दी जाती थी। लेकिन
1: दोपहिया
0: आज
1: वाहन या
0: उल्टा है।
1: मोटरसाइकिल का इतना फैशन नहीं था
0: हाँ
1: तब।
0: आज उल्टा है चंचल, आज लड़कियों को कमजोर नहीं मानते हमारे
1: जी
0: माता पिता भी, और उन्हें यहाँ तक कि चार पहियों वाली गाड़ी भी दिलाने में कोई परहेज नहीं करते हैं।
1: और बिल्कुल इस बात का नियोजन भी अब सब माँ बाप करते हैं। और नियोजन पर ही बात हो रही है, नियोजन का मतलब होता है योजना बनाना या फिर प्लानिंग करना। और दो शब्दों को जोड़कर बनाया गया है शब्द, मतलब बहुत सारे शब्द हैं इसमें। इसके जो अन्य शब्द हैं, योजना, आयोजन, प्रबंध, व्यवस्था, रूपरेखा या
0: या
1: फिर
0: रणनीति,
1: रणनीति।
0: इस अर्थों में भी इनको समझा जा सकता है इन शब्दों से भी। और नियोजन एक प्रबंधन प्रक्रिया है जिसमें
1: जी
0: भविष्य के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक यानी जरूरी कार्यों और संसाधनों का निर्धारण किया जाता है, और ये प्रक्रिया लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में भी काम करती है।
1: बिल्कुल, नियोजन में की जो प्रक्रिया है बहुत सारे चरण शामिल होते हैं, जिसमें विकल्पों का मूल्यांकन, योजना का चयन, उसका क्रियान्वयन, और नियोजन में भविष्य में आने वाले जो भी जोखिम है या अनिश्चितताएं हैं उनका पहले से ही एक अनुमान निकालकर क्या समाधान हो सकता है, इसकी तैयारी की जाती है।
0: बिल्कुल। और नियोजन में किसी भी पूर्व निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भविष्य की एक रूपरेखा तैयार की जाती है। इसे हम यूं भी समझ सकते हैं कि ये निर्णय लेने की एक बौद्धिक प्रक्रिया है जो तय करती है कि क्या करना है, कब करना है और कैसे करना है।
1: इसीलिए हमारे श्रोता लिखकर हमें बता रहे हैं कि नियोजन प्लानिंग का सामान्य अर्थ योजना बनाना है। ये किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भविष्य की रूपरेखा तैयार करने की बौद्धिक प्रक्रिया होती है। इसमें ये तय किया जाता है कि काम कब करें, कैसे करें, कहाँ करें, किसके द्वारा किया जाएगा, और उपलब्ध साधन का सर्वोत्तम उपयोग सुनिश्चित कर लेना, ताकि जो लक्ष्य है उस तक आसानी से पहुंचा जा सके। ये सब वैसा ही है जैसा हम अपने घर का बजट बनाया करते हैं।
0: बिल्कुल सही कहा। और अगर सरल शब्दों में हम इसे समझें तो वर्तमान और भविष्य के बीच की खाई को कम करना भी नियोजन है, और ये तय करना कि आने वाले समय में हमें किस दिशा में काम करना है। किसी स्पष्ट लक्ष्य को ध्यान में रखकर जो योजना बनाई जाती है वही नियोजन है, और ये योजना वर्तमान परिस्थितियों और भविष्य के अनुमानों के आधार पर बनाई जाती है।
1: और बिल्कुल मंदाकिनी जी, समय, धन, उपलब्ध संसाधन, इन सब का बेहतर उपयोग भी जिस तरह से किया जाएगा ये नियोजन ही बताता है हमें। जब हमारे पास बहुत सारे विकल्प होते हैं तो उनमें से किसी सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करना भी नियोजन का मुख्य हिस्सा होता है।
0: और नियोजन का यानी जो है विभिन्न तरीकों में से जो सबसे उपयुक्त और प्रभावी मार्ग का चयन करना वही नियोजन कहलाता है।
1: तो ये भी एक नियोजन है ना कि बातों के बाद गाना सुनवाना है।

0: बहुत सुंदर गीत था
1: बहुत सुंदर गीत था, और सुनने के बाद एक मन में अलग सा
0: जी
1: नशा आ गया है।
0: जी
1: और चंचल, हम बात कर रहे थे ना कि भाई आजकल गर्मी का मौसम है, क्या खाएं क्या ना खाएं, क्या सब्जी बनाएं, क्योंकि महिलाओं की खास तौर से ये सबसे बड़ी परेशानी होती है। तो
0: और वो इसलिए
1: हमारे
0: होती है क्योंकि बच्चे बड़े चूजी होते हैं, वो बहुत सारी सब्जियां खाने के लिए मना कर देते हैं। जब भी उन्हें बोलो टिंडे की सब्जी बनेगी तो उनका मुंह बन जाता है, लौकी बनाओ तो उसे वो खाना पसंद नहीं करते। तो कितने कितने जतन करती हैं महिलाएं कि वो सब्जियां उनको
1: खिला दी
0: उन
1: जाए
0: हाँ
1: किसी भी तरह से,
0: ताकि उनका पोषण मिले।
1: लेकिन तुम मुझे माफ करना, बच्चों को तुम बहुत ज्यादा बदनाम कर रही हो, है ना। देखा जाए तो हमारी सखियों में से भी कुछ सखियां ऐसी हैं जो हर तरह की सब्जी खाना पसंद नहीं करती हैं।
0: तो भाई ऐसे में बहुत अच्छा आपके पास एक विकल्प है कि बेसन की तरह तरह की सब्जियां आप बना सकती हैं। उसके लिए बेसन, सिंधी बेसन की टिक्कियों की सब्जी, इसके बारे में हमारे श्रोता ने लिखकर बताया है कि इसके लिए सबसे पहले बेसन को कम पानी से टिक्कियां बनाना है। इसमें अनारदाना और हरा धनिया भी डालते हैं। फिर तवे पर बहुत कम तेल में इनको सेका जाता है। प्याज लहसुन अपनी इच्छा के अनुसार, अदरक हरी मिर्च, इन सबको डालकर आप पेस्ट बना लीजिए। एक अच्छी स्वादिष्ट सी ग्रेवी बनाना है, उसमें नमक लाल मिर्च स्वाद के अनुसार डाल लीजिए। आप अन्य मसाले भी स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं। थोड़ा गरम मसाला डालकर बेसन की टिक्कियों को डालकर थोड़ी सी आंच पर इसे पकाना है और सिंधी बेसन की टिक्कियों वाली सब्जी तैयार हो जाती है।
1: बहुत स्वादिष्ट सब्जी होती है ये। हमारी एक सहेली थी, वो सिंधी थी, उनके यहाँ मैंने ये सब्जी खाई भी है।
0: जी
1: हाँ, वही एक श्रोता लिखती है कि बेसन की चीले वाली सब्जी, क्या बात है। बेसन को नमक, हल्दी, अदरक, मिर्ची का पेस्ट के साथ चीले की तरह घोल लें और तवा पर चिली को सेक लें, मतलब उस चिली को सेक लें, इस दोनों तरफ से फोल्ड कर लें, फिर इन्हें चाकू से काट के टुकड़े के रूप में बना लें। ग्रेवी के लिए धनिया पाउडर पिसा हुआ, पीला सरसों, लहसुन, जीरा, मिर्च, इन सभी को बारीक पीस लें। कढ़ाई में तेल डालें, राई का तड़का दें, बारीक कटा प्याज भून लें, पीसें, पीसे हुए टमाटर डाल दें, मतलब अगर आपने टमाटर को भी पीस लिया है। साथ ही मसाले, जो भुने हुए मसाले हैं, उनकी ग्रेवी तैयार होने पर बेसन के टुकड़ों को डाल दें, 5 मिनट तक इसे पकाएं। स्वादिष्ट जो है सब्जी आपकी तैयार है, और बहुत सारे लोग इसे शाकाहारी

0: हाँ तो जन जल रहे ना रहे हम यूं ही महकते रहेंगे और ये कार्यक्रम यूं ही चलता रहेगा। और अब ही सखी सहेली से हमें इजाजत लेनी होगी क्योंकि वक्त हमें और इजाजत नहीं दे रहा है।
1: जी
0: तो
1: तो
0: कार्यक्रम
1: चलिए
0: समाप्त करने की मंदाकिनी जोशी
1: और
0: और
1: चंचल वर्मा को दीजिए इजाजत।
0: नमस्कार।
1: नमस्कार। सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुत करता है अनुश्री पाठक।
2: सखी सहेली।

0: दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह और आज विविध भारती के स्टूडियो में हमने आमंत्रित किया है डॉक्टर गायत्री आहूजा को, जो अली यावर जंग राष्ट्रीय वाक एवं श्रवण दिव्यांग जन संस्थान की विभागाध्यक्ष है, यानी कि अली यावर जंग नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पीच एंड हियरिंग डिसेबिलिटीज। ये संस्था देश भर के दिव्यांग जनों के लिए बहुत बड़े पैमाने पर काम कर रही है। ऐसे छात्र जो श्रवण बाधित हैं और बोलने में समर्थ नहीं है, उन बच्चों को शिक्षा देना, उन्हें सिखाना कितना मुश्किल होता है, कितना चुनौतीपूर्ण होता है, ये सब कुछ बताएंगे डॉक्टर गायत्री आहूजा। विविध भारती के स्टूडियो में डॉक्टर गायत्री, हम आपका बहुत बहुत स्वागत कर रहे हैं। नमस्कार।
1: नमस्कार, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। और विविध भारती से जुड़ना मुझे लगता है काफी सम्मान की बात होती है, सो थैंक यू सो मच। और ये इस इम्पोर्टेंट टॉपिक पे चर्चा करने के लिए आपने मुझे बुलाया है, सो थैंक यू सो मच।
0: और ये एक ऐसी संस्था है जिसके बारे में बहुत सारे लोगों को जानकारी भी नहीं होती है, तो इस संस्था के बारे में आप जानकारी दीजिए सबसे पहले, और उसके बाद बताइए कि श्रवण बाधित बच्चों की शिक्षा बाकी बच्चों से किस तरह से अलग होती है। तो मेरे ख्याल से एक साथ दो सवाल हो गए।
1: कोई नहीं। अली यावर जंग नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पीच एंड हियरिंग डिसेबिलिटीज का हेडक्वार्टर्स मुंबई में है, और जहाँ पे मैं वहाँ पे काम करती हूँ, ये हेडक्वार्टर्स है। और हेडक्वार्टर्स से जुड़े हुए रीजनल सेंटर्स भी हैं, जैसे सिकंदराबाद है, कोलकाता है, नोएडा है। हमारे अंतर्गत कॉम्पोजिट रीजनल सेंटर्स भी हैं, जैसे कि अहमदाबाद, गोवा एंड छतरपुर, नागपुर एज वेल। हम सारी संस्था जो हैं स्पीच एंड हियरिंग डिसेबिलिटीज पे काम करती हैं। पीडियाट्रिक से लेके जेरियाट्रिक पॉपुलेशन तक हम डील करते हैं। मतलब आप अगर हमारी संस्था में आएंगे तो आप बिल्कुल छोटे से छोटा बच्चा देखेंगे, एज वेल एज 80 ईयर अबाव लोग भी देखेंगे। तो उन सब की हम श्रवण की जांच, स्पीच की जांच, जो हेडक्वार्टर्स है मुंबई, सिकंदराबाद, नोएडा एंड कोलकाता में, स्पीच एंड हियरिंग से जुड़ी हुई करते हैं। पर जो सीआरसीज हैं, जैसे अहमदाबाद हो गया या नागपुर हुआ या छतरपुर हुआ, वहां पे हम सारे डिसेबिलिटीज के साथ डील करते हैं। तो ये बेसिक हमारा काम है, जहाँ पे हम आइडेंटिफिकेशन भी करते हैं, इंटरवेंशन भी करते हैं। सिर्फ यहाँ तक सीमित नहीं है, हम ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट भी करते हैं। अच्छा। हमारे अंतर्गत डिप्लोमा के कोर्सेज, बैचलर्स, मास्टर्स, पीएचडी प्रोग्राम्स, साइन लैंग्वेज ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी चलते हैं। पेरेंट्स के लिए भी बहुत सारे प्रोग्राम्स चलाते हैं, जिससे वो खुद एम्पावर हो सके। एंड पेरेंट्स के लिए जो प्रोग्राम्स हम करते हैं वो मोस्टली फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं। बहुत बार हम इंडिविजुअल्स विद डिसेबिलिटीज के लिए भी कार्यक्रम करते हैं कि बैंकिंग किस तरीके से करना चाहिए या

0: इंग्लिश स्पीकिंग किस तरीके से करना चाहिए, वॉट एवर स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज हम चलाते हैं वो भी हम बेसिकली फ्री ऑफ कॉस्ट चलाते हैं। तो रेंज बहुत सारी है कि जहाँ पे हम बच्चे से लेके सीनियर सिटीजन तक के लिए हम काम करते हैं।
1: जी
0: ये हो गया पहला सवाल।
1: हाँ, राइट। और फिर कितना अंतर है एक सामान्य बच्चे को पढ़ाना, शिक्षा देना, और श्रवण बाधित जो बोलने में समर्थ नहीं है उनको सिखाना, कितना कठिन होता है, कितना चुनौतीपूर्ण होता है?
0: ओके, अब जो बच्चा एजुकेशन के लिए स्कूलिंग सिस्टम में जाता है, एक सामान्य बच्चा, ठीक है, सामान्य बच्चे के जो गोल्स होते हैं एडुकेशन के, वो सेम गोल्स हियरिंग इम्पेयर्ड या श्रवण बाधित बच्चों के भी होते हैं। ओके, जनरल गोल्स सेम रहते हैं, बट आप ऐसा सोचिए कि एक बच्चा है जिसको सुनाई नहीं देता है, ठीक है, अब उसको सुनाई नहीं देता है हियरिंग लॉस की वजह से, उसके तीन चीजें बेसिकली इम्पैक्ट होती हैं, स्पीच वाचा में प्रॉब्लम, लैंग्वेज में इश्यूज एंड कम्युनिकेशन में इश्यूज। ओके, तो एक चीज तीन चीज से जुड़ी हुई है। अब ऐसे बच्चों को जब हम एडुकेट करते हैं तो अगेन इसके अंदर दो पहलू आ जाते हैं, एक ग्रुप जहाँ पे हम हियरिंग एड या कॉकलियर इम्प्लांट लिसनिंग डिवाइसेस से हम सिखाते हैं, जहाँ पे हम पूरी कोशिश करते हैं कि बच्चा सुने और बात करे, फिर एक ग्रुप है जहाँ पे हम साइन लैंग्वेज के माध्यम से हम पढ़ाते हैं। तो जनरल गोल्स तो आपके हो गए कि नॉलेज का डेवलपमेंट करना है, स्किल्स को डेवलप करना है, ओवरऑल डेवलपमेंट करना है। ओवरऑल डेवलपमेंट बेसिकली मतलब आपका बौद्धिक विकास, सामाजिक विकास, भावनात्मक विकास, फिजिकल डेवलपमेंट, साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट, ये सारे डेवलपमेंट तो हो गए जनरल गोल। पर जब मैं स्पेसिफिक गोल की बात करती हूँ तो स्पेसिफिक गोल में आ गया मेरा इस बच्चे का लैंग्वेज डेवलपमेंट करना, स्पीच डेवलपमेंट करना, कम्युनिकेशन डेवलपमेंट करना। अब कम्युनिकेशन भी कितनी चीजों से जुड़ी हुई है, फॉर एग्जाम्पल अब हम साथ में बैठे हैं, हम बात कर रहे हैं, पर मेरी उंगलियां भी चल रही है, मेरे फेशियल एक्सप्रेशन भी हो रहे हैं, मेरे आंख वाँख भी, यू नो, इट्स गोइंग अप एंड डाउन, एंड बहुत सारा बॉडी लैंग्वेज है एंड स्माइल है, और जो मैं महसूस कर रही हूँ वो मैं बता सकती हूँ, ठीक है। नाउ यू इमेजिन अ चाइल्ड जिसको जो कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा है क्योंकि उसके पास भाषा नहीं है। तो कम्युनिकेशन इज सच अ वेरी बिग इंपॉर्टेंट रोल। कम्युनिकेशन करने के लिए भाषा होना बहुत ज्यादा जरूरी है। भाषा नहीं है तो वो समाज में किस तरीके से उठेगा बैठेगा, वो समाज में इंटरैक्ट कैसे करेगा और पार्टिसिपेट कैसे करेगा, वो जो महसूस करता है या करती है वो किस तरीके से व्यक्त करेगा। तो जो एडुकेशन है, जो हियरिंग इम्पेयरमेंट के लिए जो एडुकेशन है, वो ये सारी पहलुओं को देखकर हम उसका एडुकेशन का विकास करते हैं। अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट फॉर एडुकेशन ऑफ हियरिंग इम्पेयरमेंट इज पेरेंट्स का एम्पावरमेंट करना। तो पेरेंट्स के लिए हम बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग प्रोग्राम्स कराते हैं कि बच्चे को हियरिंग एड किस तरीके से लगाना है, या कॉकलियर इम्प्लांट है तो किस तरीके से लगाना है, अगर हियरिंग एड या कॉकलियर इम्प्लांट में कुछ भी रिपेयर्स हुए तो उसको सिंपल रिपेयर्स किस तरीके से करने हैं, और अगर बच्चा हियरिंग एड और कॉकलियर इम्प्लांट नहीं लगाता है, सांकेतिक भाषा से बात करता है, इशारों में बात करता है, इशारे इज अ वेरी सिंपल टर्म, हम उसको सांकेतिक भाषा बोलते हैं, और सांकेतिक भाषा में अगर बात करता है या करती है तो पेरेंट्स को भी आनी चाहिए सांकेतिक भाषा, तब तो कम्युनिकेशन साइकिल कंप्लीट होगी। तो बहुत सारे एडिशनल गोल्स आ जाते हैं जब हम एडुकेशन ऑफ हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चों की बात करते हैं। तो
1: यहाँ पर एक गाना सुनते हैं फिर और बातें करते हैं, कौन सा गाना सुनवाए?
0: मुझे बड़े अच्छे लगते हैं, ये गाना बहुत पसंद है,
1: ये धरती ये नदिया
0: और विविध भारती और अलिया वर्जंग।
1: क्या बात है, सुनते हैं।
2: बड़े अच्छे लगते हैं

0: इस गाने के पहले आप जिक्र कर रही थी कि किस तरह से आप शिक्षा देती हैं और पेरेंट्स को भी बुलाते हैं, तो वो बड़ा मुश्किल काम होता होगा पेरेंट्स को सिखाना। कौन सी प्रणाली होती है, कैसे आप सिखाती हैं, कैसे ट्रीट करती हैं उनको?
1: पेरेंट्स के लिए, नाउ यू इमेजिन अ फीमेल हु इज़ प्रेग्नेंट, एंड हर फीमेल को लगता है या हर माँ बाप को लगता है या हर फैमिली को लगता है कि जो बच्चा होगा वो काफ़ी हेल्दी होगा, ओके, इट्स नॉर्मल। बट जब चाइल्ड इज बॉर्न एंड यू कम टू नो कि नहीं बच्चे को हियरिंग लॉस है, तो सबसे पहले जो चीज़ है वो है एक्सेप्टेंस, कि उसको एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी है कि ओके आई हैव अ चाइल्ड, आई हैव अ हेल्दी चाइल्ड, बट द चाइल्ड इज हैविंग दिस एज अ कंसर्न, ओके। दूसरी चीज ये है कि या तो पेरेंट्स बहुत ज्यादा ओवर प्रोटेक्टिव हो जाते हैं या तो बिल्कुल भी प्रोटेक्टिव नहीं होते हैं, बैलेंस्ड अप्रोच कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा मिसिंग हो जाता है, तो वो भी उनको बताना होता है कि किस तरीके से एक बैलेंस्ड अप्रोच रखना है, ना कि यू नो ओवर हो या अंडर हो। यू हैव टू कंसिडर योर चाइल्ड, एक्सेप्ट द चाइल्ड, उसको उतनी ही रेस्पेक्ट दें जितनी बाकी बच्चों को दी जाती है, उसे ऐसा नहीं लगे कि हाँ मैं कुछ अलग हूँ इसलिए मम्मी पापा मेरे साथ ऐसा बिहेव कर रहे हैं, तो उसे भी अपनापन लगना चाहिए और मैं इसी घर का एक हिस्सा हूँ ये उसे समझना बहुत जरूरी है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि पेरेंट्स को एडुकेशन के प्रोसेस में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होना चाहिए, अगर इन्वॉल्व हुए तो यस द चाइल्ड कैन प्रोसीड या प्रोग्रेस आराम से। इसलिए हमारे पास भी ऐसे बहुत सारे पेरेंट्स आते हैं कोर्सेज करने के लिए, चाहे डिप्लोमा हो या बैचलर्स हो, जिनके खुद के बच्चों को या तो हियरिंग लॉस हो या कोई कंसर्न हो, वो खुद भी आते हैं, क्योंकि जब तक पेरेंट्स को नहीं पता चलेगा कि इन बच्चों में क्या कंसर्न्स हैं तो वो बच्चों की डेवलपमेंट में कैसे भागीदारी ले सकते हैं। स्कूल्स के साथ जुड़े रहें लगातार या फॉलो अप ऑडियोलॉजिस्ट या स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट के साथ करते रहें। टीचर्स के साथ जुड़ना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और अगर आपका बच्चा सांकेतिक भाषा का इस्तेमाल करता है तो आप खुद भी सीखें सांकेतिक भाषा, विच इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। बहुत बार ये देखा गया है कि क्या होता है कि पता तो चल जाता है कि बच्चे को हियरिंग लॉस है, ओके, बट माँ या फादर बाकी फैमिली मेंबर्स को बताते ही नहीं है कि बच्चे को कुछ इशू है,
0: रिश्तेदारों को
1: और बाकी लोगों को बताते ही नहीं है, डर के मारे शर्म के मारे कुछ

0: बताते ही नहीं है। अब इससे क्या होता है, पहचान तो हो गई कि मेरे बच्चे को कुछ ना कुछ तो इश्यूज है, कंसर्न्स है, मुझे डॉक्टर के पास जाना चाहिए। बट इंटरवेंशन बहुत टाइम के बाद होता है, 4 साल 5 साल के बाद हो जाता है। तो ये जो गैप है आइडेंटिफिकेशन और इंटरवेंशन का, ये बढ़ते जाता है। ये कहीं ना कहीं कम करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सो उनका माइंडसेट कैसा है पेरेंट्स का, दैट ऑल्सो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। पॉजिटिव माइंडसेट रखेंगे तो यस द चाइल्ड कैन प्रोग्रेस। ऐसा नहीं है कि चिल्ड्रन विथ हियरिंग इम्पेयरमेंट आगे प्रोग्रेस नहीं करते हैं। मेरा खुद का एक स्टूडेंट है जो PhD कर रहा है, सुनील सहस्त्रबुद्धे, वो खुद PhD कर रहा है। शिवाजी पांडा सर हैं, काफी बड़े रोल मॉडल हैं, उनकी तो PhD हो भी चुकी, उन्होंने खुद का अपना एक स्कूल सेटअप बनाया है उड़ीसा में। सो देर आर मैनी who are having hearing loss और एक बहुत अच्छे मुकाम पे पहुंच गए हैं। हम hearing loss के क्षेत्र में डॉक्टर मदन वशिष्ठ का नाम लेते हैं हमेशा, वो खुद भी hearing impairment है उनको है, एंड गैलोडेट यूनिवर्सिटी में डीन रह चुके हैं। सो इट इज पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल, बट टाइमली और एप्रोप्रिएट सपोर्ट सिस्टम लेके अगर हम काम करें तो थिंग्स आर पॉसिबल।
1: तो किन किन क्षेत्रों में ये बच्चे आगे बढ़ जाते हैं, ज्यादातर कोई ऐसा क्षेत्र है जहां पर इनके लिए मुश्किल पैदा हो सकती है?
0: देखिए, अभी जैसे मैंने कहा कि हियरिंग लॉस की वजह से लैंग्वेज, स्पीच और कम्युनिकेशन अफेक्टेड है। ओके, सो अगर ये तीन चीज आपने सही, टाइमली, एप्रोप्रिएटली डेवलप कर दी तो बच्चे को कोई कंसर्न्स इश्यूज नहीं आएंगे। हमारे पास ऐसे भी चिल्ड्रन विथ हियरिंग इम्पेयर्ड हैं जो BSLP जिन्होंने कर चुके हैं, ओके, ऑडियोलॉजी का कोर्स कर चुके हैं, ऑडियोलॉजिस्ट हैं अभी, ओके। एजुकेशन के क्षेत्र में तो बहुत अच्छा करते हैं, बहुत जगह पे यू विल फाइंड जो डेफ टीचर्स बहुत ज्यादा कनेक्टेड हैं बच्चों के साथ। टीचर के क्षेत्र में मैंने बहुत सारे देखे हैं, प्लस यू विल फाइंड मेनी पीपल इन IIMs, IITs ऑल्सो यू विल फाइंड। तो अगेन एवरीथिंग बॉइल्स डाउन टू आइडेंटिफिकेशन, इंटरवेंशन का गैप कम करना है एंड पॉजिटिव माइंडसेट के साथ अगर हम काम करें तो यस थिंग्स आर पॉसिबल। प्लस टीम अप्रोच में काम करना बहुत जरूरी है। टीम अप्रोच का मतलब पेरेंट्स हो गए, टीचर्स हो गए, जो भी उनके थेरेपिस्ट होंगे या साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर हो गए, इन सबको साथ में लेकर अगर वो आगे बढ़ेंगे तो यस थिंग्स आर पॉसिबल।
1: बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर गायत्री, हमें बताइए कि कैसे पहचाने कि किसी बच्चे को हियरिंग लॉस है, मतलब वो सुनने में असमर्थ है, प्रारंभिक अवस्था में कैसे पहचान होती है?
0: ओके, फॉर सिंपल एग्जांपल, अगर मैं फैमिली सेटअप पे बात करूं तो आप जोर से आवाज बुला रहे हैं बच्चे का, राहुल राहुल राहुल, बच्चा प्रतिसाद नहीं करता है। आपने चिल्ला के बात किया तभी भी प्रतिसाद नहीं कर रहा है, देयर इज नो चेंजेस इन एक्सप्रेशन। हमें जब आवाज आती है तो हम उस तरफ देखते हैं, ओके, जहां से आवाज आती है हम उस तरफ देखते हैं, तो बच्चा वहां पे रेस्पॉन्ड नहीं करता है। अगर बहुत जोर से कोई आवाज आती है तो हम नॉर्मली दचकते हैं, वी स्टार्टल, ओके। अगर बच्चा स्टार्टल नहीं करता है या दचकता नहीं है तो दीज आर सर्टन साइंस जहां पे बच्चा रेस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। अगेन घर की घंटी बजी है एंड द चाइल्ड इज नॉट अंडरस्टैंडिंग कि देयर इज अ डोर बेल। तो एनवायरमेंटल साउंड्स को अगर वो रेस्पॉन्ड नहीं करता है या फाइन साउंड्स जैसे स्पीच साउंड्स को वो रेस्पॉन्ड नहीं करता है तो यस द चाइल्ड कैन हैव इश्यूज। बहुत बार क्या होता है कि हियरिंग लॉस उतनी मात्रा पे नहीं है, माइल्ड, मॉडरेट या मॉडरेटली सीवियर है, तो उन बच्चों को पहचाना थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल पे है। पर उसके लिए जांच करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अभी ऐसे बहुत सारे बच्चे आपको रेगुलर स्कूल्स में मिल जाएंगे, जनरल स्कूल्स में मिल जाएंगे, ठीक है, जहां पे बच्चे को लॉस तो है बट आप अगर थोड़ा जोर से बोलते हो तो बच्चा रिस्पॉन्ड कर लेता है। बट व्हेन यू से टर्न पेज नंबर दिस, तो पेज नंबर ये टर्न करना है, ये पूरा वाक्य समझना उनके लिए थोड़ा डिफिकल्ट होता है। अगेन ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं जो बहुत ऊंचा बात करते हैं तो कहीं ना कहीं कंसर्न्स है। तो ये सब एक बिहेवियरल रिस्पॉन्सेज है जिनको हमें ध्यान में रखना चाहिए। और अगर ऐसा कोई बिहेवियरल रिस्पॉन्स आप देखते हो तो तुरंत ENT ऑडियोलॉजिस्ट को मिलने, ताकि हमें पता चले कि हियरिंग लॉस है तो कितना हियरिंग लॉस है, और अगर हियरिंग लॉस है क्या वो दवाई से या सर्जरी से ठीक हो सकता है, तो फाइन, नहीं ठीक हो सकता है तो व्हाट आर द डिफरेंट अल्टरनेटिव्स, चाहे वो हियरिंग एड लगा दें या कॉक्लियर इम्प्लांट लगें या हमको साइन लैंग्वेज का है सपोर्ट चाहिए, क्या करना है तो हम प्लान ऑफ एक्शन बना सकते हैं। तो दिस इज द बेसिक।
1: और शुरुआत में कोई चीज पता चल जाती है तो उसका इलाज भी संभव है।
0: एग्जैक्टली,
1: छोटी मोटी तकलीफें, छोटी मोटी समस्या है तो उसका इलाज भी संभव है। यहाँ पर एक गाना सुन लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। बताइए आपकी पसंद का कौन सा गाना?
0: पल पल दिल के पास।

0: जुड़ा हुआ है। तो क्या जिनको सुनने में समस्या होती है निश्चित रूप से उनको बोलने में भी समस्या होती है? ऐसा भी होता है कि बोलना बहुत स्मूथ होता है और सुनने में प्रॉब्लम होती है, ये इसके बारे में हमारे श्रोताओं को जरा विस्तार से बताइए।
1: स्पीच इम्पेयरमेंट और हियरिंग इम्पेयरमेंट दो अलग अलग डिसेबिलिटी है, ठीक है। अब पहले हम चलते हैं हियरिंग इम्पेयरमेंट की क्षेत्र में। मुझे सुनाई नहीं देता है, अगेन आई रिपीट, इसलिए मुझे भाषा वाचा और संप्रेक्षण में तकलीफ होगी, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि मुझे कितना हियरिंग लॉस है, ओके। उसके हिसाब से डिसाइड होगा कि मेरा वाचा भाषा और संप्रेक्षण कितना अफेक्टेड रहेगा। तो हियरिंग इम्पेयरमेंट की वजह से मुझे बात करने में प्रॉब्लम आएगी और भाषा वाचा और संप्रेक्षण में प्रॉब्लम आएगी। स्पीच इम्पेयरमेंट बिल्कुल भी जरूरी नहीं है जिस बच्चे को स्पीच इम्पेयरमेंट हो उसको हियरिंग इम्पेयरमेंट हो, बिल्कुल नहीं। स्पीच इम्पेयरमेंट टोटली डिफरेंट थिंग है। लाइक फॉर एन एग्जाम्पल, आप जब बात करते हैं तो बात करने के लिए जो जो ऑर्गन्स या इन्वॉल्व हैं, ओके, जो भी आर्टिकुलेटर्स इन्वॉल्व हैं या जो वोकल फोल्ड्स हैं या जो भी इन्वॉल्व हैं, ओके, वो एक टोटली डिफरेंट क्षेत्र है, ओके। तो हियरिंग इम्पेयरमेंट की वजह से मुझे बात करने में तकलीफ हो सकती है, पर मैं बात नहीं कर सकती हूँ या मुझे स्टटरिंग है या स्टैमरिंग है या मुझे कोई भी स्पीच रिलेटेड कंसर्न्स है, बट दैट डजंट मीन कि मुझे हियरिंग लॉस भी है। तो ये दो अलग अलग चीजें हैं, पर बहुत बार लोग उसको मिक्स कर लेते हैं। तो पहले जब हमारे पास पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट था, तब वी हैड डेफ की डेफिनेशन थी हमारे पास, एंड डेफ एक प्रॉपर एक डिसेबिलिटी था। RPWD एक्ट जब आया 2016, तो दो अलग डिसेबिलिटी बना दी, स्पीच इम्पेयरमेंट अलग, हियरिंग इम्पेयरमेंट अलग। एंड दोनों की टेक्निक्स, मेथड्स, सिखाने के तरीके एंड थेरेपी सेशंस काफी अलग हैं। तो ये दोनों चीजें अलग हैं,
0: बिल्कुल। और कुछ बच्चे जो बोल तो सकते हैं लेकिन ठीक से नहीं बोल पाते हैं, जिनको हकलाना कहते हैं,
1: राइट राइट राइट, हाँ,
0: तो उनके लिए भी
1: थेरेपीज होती हैं। एंड जैसे आपने खुद ने पहले कहा, जितना जल्दी आप जानोगे उतना जल्दी आप उसका निवारण कर सकते हैं, उतना जल्दी इंटरवेंशन प्रोग्राम शुरू हो सकता है। तो अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा हकलाता है तो आप उसको प्लीज एक इंटरवेंशन प्रोग्राम में लेके जाएं या थेरेपिस्ट के पास लेके जाएं। टू एड वन थिंग कि जैसे जनरल स्कूल्स में, रेगुलर स्कूल्स में, यू विल फाइंड कि कुछ बच्चे हैं जिनको हियरिंग इश्यूज हैं, कुछ बच्चे हैं जिनको स्पीच इश्यूज हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने एक प्रशस्त ऐप बनाया है, ओके। तो वो ऐप से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये बच्चे को रेड फ्लैग है कि ग्रीन फ्लैग है, ओके। तो वो स्क्रीनिंग करने में काफी आसानी होती है कि हाँ वो बच्चा कौन से ग्रुप में फिट होता है, ताकि आपका इंटरवेंशन प्रोग्राम या थेरेपी प्रोग्राम उस तरीके से बढ़ते जाएगा।
0: तो जो बच्चे सामान्य स्कूल में, सामान्य विद्यालय में पढ़ते हैं, तो टीचर्स का, शिक्षक का किस तरह का सहयोग होना चाहिए, क्या भूमिका होती है फिर?
1: जो जनरल टीचर्स हैं, जो रेगुलर टीचर्स हैं, उनके क्लास में यू विल फाइंड कि बहुत सारे अलग अलग डिसेबिलिटी के बच्चे होते हैं उनके क्लास में भी। तो उनके लिए कुछ कुछ चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि अगर आपको मालूम है कि आपके क्लास में ऐसा बच्चा है जिनको सुनने में तकलीफ है, तो उस बच्चे का आप सिटिंग अरेंजमेंट सही करें, मतलब उसको ठीक सामने बिठाएं, ताकि उसका हियरिंग एड जो एम्पलीफाई करता है साउंड, या वो कॉकलियर इम्प्लांट यूज़ करता होगा, या जो आपको स्पीच रीड करता होगा, आपकी तरफ देख के वो समझता होगा, तो उसमें काफ़ी मदद हो जाती है। तो सिटिंग अरेंजमेंट अच्छे से रखें। क्लासरूम नॉइज को जितना कम कर सकते हो उतना अच्छा है, ताकि आप जो बात कर रहे हैं या जो उसका पीयर ग्रुप है, जो उसके फ्रेंड सर्कल है, जो वो बात कर रहे हैं, उनको वो ध्यान लेके समझ सके और सुन सके। दूसरी, पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे मैं तो कहूंगी कि अगर आप पेरेंट्स को बुलाएं क्लास में और उनको बोलें आप बैठो और ऑब्जर्व करो कि किस तरीके से पढ़ाया जाता है, तो दैट विल ऑल्सो बी हेल्पफुल। तो पेरेंट एम्पावरमेंट अगेन मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पेरेंट का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब उनको लगे कि यस, इसमें मुझे पढ़ाने में ये तकलीफ हो रही है, तो मैं इसको किस तरीके से पढ़ाऊं, तो सपोर्ट लेना और स्पेशल एडुकेटर्स विल रियली हेल्प, बिकॉज स्पेशल एडुकेटर्स जिस तरीके से पढ़ाते हैं उनका मेथड्स और टेक्निक्स काफी अलग होता है। तो वो बहुत हेल्प कर सकते हैं जनरल एडुकेटर्स को कि हम किस तरीके से आगे पढ़ा सकते हैं। चौथी चीज इज, जो वो हियरिंग एड पहनते हैं, जो वो यहाँ तो कॉकलियर इम्प्लांट लगाते होंगे, आपने बहुत बार देखा होगा कान के पीछे एक मशीन होती है, ठीक है, और कान के पीछे और कान के ऊपर तक एक मशीन लगती होगी, तो हियरिंग एड हो या कॉकलियर इम्प्लांट बहुत कॉमन हो गई है, तो वो चल रही है कि नहीं चल रही है उसको भी जांचना बहुत जरूरी है। क्योंकि हो सकता है बच्चे ने लगा तो दी है मशीन, पर बैटरी खत्म हो गई है, आवाज जा भी नहीं रही है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं कि आवाज

0: तो रही है, बच्चा सुन तो रहा है, अगर मशीन खराब हो गई है तो अगर आप ठीक नहीं भी कर सकते हो तो पेरेंट्स को बोल दो कि हाँ पापा ये मशीन चल नहीं रही है तो आप ठीक करो, या माइनर रिपेयर्स करने आपको आने चाहिए। अगेन जैसे मैंने लास्ट कहा कि टीम अप्रोच प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, कि इफ देर इज एनी कंसर्न आप उसको ऑडियोलॉजिस्ट के पास भेजें, ENT के पास भेजें और स्पेशल एडुकेटर्स की सपोर्ट आप लें, तब जाके सक्सेसफुल होगी चीजें, अदरवाइज इट इज डिफिकल्ट।
1: तो क्या ऐसे बच्चों को कुछ मनोवैज्ञानिक ट्रीटमेंट की भी जरूरत होती है? क्योंकि एक सामान्य स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं और सारे बच्चे, उसको तो पता है कि वो सुनने में असमर्थ है, हियरिंग एड लगा रहा है तो उसको पता है बोलने में असमर्थ है, तो वो जो हीन भावना के शिकार होते हैं, तो उसमें किस तरह से मनोवैज्ञानिक ट्रीटमेंट होता है या नहीं होता है?
0: इट ऑल डिपेंड्स ऑन चाइल्ड टू चाइल्ड एंड फैमिली टू फैमिली। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं हियरिंग इम्पेयर्ड पर्सन हूँ और मेरी फैमिली ऐसी है जो बहुत पॉजिटिव है, ओके, एंड उनका माइंड सेट ऐसा है कि इट्स ओके, मतलब कि ठीक है, और उनका काफ़ी री इन्फोर्समेंट हो रहे हैं, उन बच्चों को ज़्यादा इशूज़ और कंसर्न्स नहीं आते हैं। पर जहाँ पे पेरेंट्स ने खुद ने एक्सेप्ट नहीं किया है कि मेरे बच्चे को ये कंसर्न है, एंड पेरेंट और बच्चे के बीच का जो संबंध है वो सही नहीं है, तो बच्चों को कंसर्न्स आएंगे ही आएंगे। इट कैन भी उनको इन्फेरियरिटी कॉम्प्लेक्स हो कि मेरे से कोई बात नहीं कर रहा है, मेरे से कोई क्यों नहीं बात कर रहा है, मुझे लोग अलग तरीके से क्यों ट्रीट कर रहे हैं, तो दैट कॉम्प्लेक्सिटी विल कम। तो ये तो हमारे साथ भी होता है कि समझो अगर हम कोई ग्रुप में गए और हमें लगा कि हाँ मुझे ये इंग्लिश भाषा बात करने नहीं आती और सबके सब इंग्लिश में बात करते हैं, तो वो तो हमको भी लगता है, ये एक स्वाभाविक चीज है। तो ये कंसर्न्स जहां पे एक्सेप्टेंस की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, वहां मैंने ये कंसर्न्स बहुत ज्यादा देखे हैं। एक दूसरा जो बहुत ज्यादा देखा है मैंने वो है कि क्या होता है कि पहले समझो बच्चा स्पेशल स्कूल में गया या थेरेपी सेंटर में गया, वहां पे पेरेंट्स को लगा और टीचर्स को लगा कि हाँ बाबा मेरा बच्चा अच्छा प्रोग्रेस कर रहा है, वो सब कुछ अच्छे से कर रहा है, उसको स्पेशल स्कूल सेटअप में जहाँ पे सब स्पेशल बच्चे हैं, स्पेशल टीचर हैं, एंड उसको वहां से पिक करके उन्होंने प्लेस कर दिया एक रेगुलर स्कूल में। अब वो रेगुलर स्कूल में बाकी सब एक सामान्य बच्चे, एक जनरल टीचर, उन्होंने कभी ऐसा बच्चा देखा नहीं, उसके पढ़ाने का तरीका, जिस तरीके से वो दिखता है, दिखता तो बिल्कुल सेम है, ओके, बट वो हियरिंग एड है और मोस्टली कभी वो इशारे करता है तो वो थोड़ा अलग हो जाता है। तो वहां पे अगर वो कोप अप नहीं करता है, ओके, बाकी वो इन्वायरमेंट और सराउंडिंग से, देन देयर कैन बी अ साइकोलॉजिकल कंसर्न्स ऑल्सो। फिर क्या होता है, वहां से हम वापस उसको स्पेशल स्कूल में लेकर आते हैं, रिवर्स इंटीग्रेशन करते हैं, इस प्रोसेस में द चाइल्ड फेसेस लॉट ऑफ प्रॉब्लम। थर्ड, अगर उसकी लैंग्वेज उतनी डेवलप नहीं है, चाहे वो मौखिक भाषा हो या सांकेतिक भाषा हो, अगर उसकी लैंग्वेज डेवलप नहीं है एंड द चाइल्ड इज नॉट एबल टू कम्युनिकेट, ओके, अगर मेरा कम्युनिकेशन अफेक्टेड है तो यस आई माइट हैव साइकोलॉजिकल कंसर्न्स ऑल्सो।
1: बिल्कुल।
0: सो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन कि कौन सा सिनेरियो है, कौन सा सिचुएशन है, दैट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल। एंड समटाइम्स आई फील कि जो बिहेवियर्स हैं ना हम सबके, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। फॉर सिंपल एग्जाम्पल, अगर बच्चा स्कूल जाता है तो उसके सिक्योरिटी गार्ड उसको कैसे डील करते हैं, आया जो है आया किस तरीके से उसको डील करती है, और ये सब छोटे बच्चों में बहुत, बिकॉज इफ दे आर मोर ऑफ विजुअल लर्नर्स, ओके, आपका फेशियल एक्सप्रेशन ऐसा होगा कि यू नो यू आर नॉट एक्सेप्टिंग इट, बट आप मुंह से तो बोल रहे हैं हेलो गुड मॉर्निंग, बट फेशियल एक्सप्रेशन इज नॉट गोइंग विथ योर स्पीच, ओके, तो वो भी कहीं ना कहीं उसको फील होता है। तो बिहेवियर्स प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल, बिकॉज जो हियरिंग इम्पेयर्ड होते हैं वो मोस्टली विजुअल लर्नर्स होते हैं, दे आर मोर ऑफ विजुअल्स, ओके, तो आपका बर्ताव, आपका एटीट्यूड, आपका बॉडी लैंग्वेज, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यहाँ कहीं ना कहीं कमतरता हुई तो दैट मीन्स दैट विल अफेक्ट द चाइल्ड।
1: बिल्कुल सही बात है। इन बच्चों की ऐसी कौन सी प्रमुख शैक्षणिक आवश्यकताएं हैं जिन्हें हर माता पिता और शिक्षक को समझना चाहिए, ये बताइए हमारे श्रोताओं को।
0: ओके, अभी जैसे मैंने कहा चिल्ड्रन विथ हियरिंग इम्पेयरमेंट या वो बच्चे जिनको हियरिंग लॉसेस हैं, वो दो ग्रुप में होते हैं बेसिकली। एक ग्रुप जो हियरिंग एड या कॉकलियर इम्प्लांट यूज करता है एंड उसका वर्बल कम्युनिकेशन डेवलप होता है, हम मोस्टली उनके इसमें मौखिक भाषा किस तरीके से विकास हो उसके ऊपर हम स्टेप्स लेते हैं। दूसरा ग्रुप है जहाँ पे हम साइन लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं, इशारों की भाषा बोलते हैं या विजुअल स्पेशल मैनुअल कम्युनिकेशन हम जिसको बोलते हैं, ये एक ग्रुप होता है, ठीक है। अब इन दोनों ग्रुप में बेसिक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट या जो जरूरत है या लर्निंग नीड्स हैं बेसिकली कम्युनिकेशन और लैंग्वेज की जरूरत है, ठीक है। अब नॉर्मली लोगों को क्या लगता है कि आपने हियरिंग एड लगा दिया तो मेरा बच्चा बात करेगा या कॉकलियर इम्प्लांट सर्जरी कर दी तो मेरा बच्चा बात करेगा, पर इसमें

0: और चश्मे के बीच में बहुत फर्क है। मुझे अगर दिखाई नहीं देता है और मैं ऑप्थेल के पास जाती हूँ, ऑप्थेल मुझे चश्मा देगा और मुझे तुरंत दिखाई देगा, और वो आपका तभी का तभी टेस्टिंग करते हैं, ठीक है। जिन बच्चों को सुनाई नहीं देता है, ऑडियोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, वो अलग अलग श्रवण यंत्र ट्राई करते हैं, फिर वो गेन देखते हैं, और उसके बाद आपको एक हियरिंग एड दिया जाएगा। हियरिंग एड लगाने के बाद तुरंत बच्चा बात नहीं करता है, उसके बहुत सारे थेरेपी सेशंस होते हैं, श्रवण प्रशिक्षण के बहुत सारे थेरेपी के सेशंस होते हैं। उनको सिखाया जाता है कि ये आवाज़ कौन सी है, इस आवाज़ का मतलब क्या है, आवाज़ आ कहाँ से रही है। तो इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस, ओके, एंड अ टीडियस प्रोसेस, जहाँ पे बहुत ज़्यादा सिंसियरिटी से आपको काम करना होता है। तो ये एक लर्निंग नीड है, जहाँ पे अगर लगता है कि हाँ बच्चे ने श्रवण यंत्र पहना है, तो उसका ऑडिटरी ट्रेनिंग या श्रवण प्रशिक्षण आपको लगातार करना होगा। हियरिंग एड आपको लगातार पहनना होगा, एंड चाहे वो कॉकलियर इम्प्लांट हो या हियरिंग एड हो, आपको कंटिन्यूअसली पहनना बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़ है, आप जिस वातावरण में हैं वो भाषिक वातावरण होना चाहिए। जितना ज़्यादा आप लैंग्वेज इनपुट दोगे, उतना ज़्यादा आप लैंग्वेज आउटपुट होगा।
1: क्या बात
0: जितना
1: है।
0: लैंग्वेज इनपुट नहीं है, उतना आउटपुट इज अफेक्टेड। सोशल इंटरेक्शंस बहुत ज़्यादा कराएं, ताकि बच्चे को भी लगे कि हाँ मैं इस समाज का एक हिस्सा हूँ, एंड मुझे हर जगह एक्सेप्टेंस होनी चाहिए, एंड प्लस एक सोशल आइडेंटिटी भी डेवलप होती है। मैं जितना ज़्यादा समाज में इन्वॉल्व होंगी, मेरी उतनी अच्छी आइडेंटिटी भी बनेगी। नीड्स है बेसिकली एक चिल्ड्रन विथ हियरिंग इम्पेयरमेंट की। अपार्ट फ्रॉम दिस, अब देखिए जब हम भाषा की बात करते हैं, तो अगर मैं सिंपल एग्जाम्पल दूँ मैथमेटिक्स का, अगर मैं लिखूंगी 26 + 24 कितना होता है इन अ डिजिटल फॉर्मेट, वो बच्चा कर पाएगा, ओके। पर अगर यही चीज मैं भाषिक रूपांतर में दूं, मैथमेटिकल सम्स, वो डिफिकल्ट हो जाएगा, बिकॉज अब जिस तरीके से मैं बात कर रही हूँ और जब मैं वो लिखती हूँ भाषा, ओके, टिपिकल मैथमेटिकल कंसेप्ट में जो भाषा का इस्तेमाल होता है, वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है बच्चे को भाषा सीखने में। नेक्स्ट, वॉट आई फील इज, हम कभी भी जो भी कंटेंट सिखाते हैं, या चाहे वो टीचर्स हो या चाहे वो पेरेंट्स हो, जो भी हम कंटेंट सिखाते हैं, उस कंटेंट के अंदर जितने भी कंसेप्ट होते हैं, ओके, वो जितने भी संकल्पनाएं हैं, वो संकल्पना संदर्भ के अकॉर्डिंगली सीखना बहुत जरूरी है। अब एग्जाम्पल, अगर मैं आपको एक शब्द बोलूं खोलना, ओके, ये शब्द है अगर खोलना, तो हम तो कितनी सारी अलग अलग चीजें खोलते हैं, ओके। क्लास में आप जाते हो और बोलते हो कि आप बुक्स खोलो, तो यू अंडरस्टैंड कि बुक मुझे खोलना है, ओके, बुक इस तरीके से खुलती है, ओके। अगर मैं कहूँ कि मुझे डोर खोलना है, तो दैट क्रिया इज डिफरेंट, ओके, दैट प्रोसेस इज डिफरेंट। तो वन वर्ड बेसिकली डिपेंड्स अपॉन द कॉन्टेक्स्ट, तो हेंस कंसेप्टुअल क्लैरिटी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। अगर संकल्पना में अंडरस्टैंडिंग कहीं ना कहीं अफेक्टेड होती है, तो इसके लिए बच्चों को आगे एकेडमिक अंडरस्टैंडिंग में भी प्रॉब्लम्स होती है। नहीं तो फिर बच्चे फिर रट्टा मार के वो वैसे आंसर लिखते हैं, कि बहुत बार आप देखोगे कि बच्चे क्या करते हैं, जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसका वो कीवर्ड देखते हैं और उसके हिसाब से आंसर लिखते हैं, क्योंकि उनमें कंसेप्टुअल क्लैरिटी ही नहीं होती है। और बहुत बार रट्टा मारना करते हैं, तो रट्टा मारा हुआ चीज़ लिखते हैं, पर कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है। तो अंडरस्टैंडिंग प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। अंडरस्टैंडिंग हुई तो बहुत सारी एकेडमिक डिफिकल्टीज तो चली ही जाएंगे। प्लस आई एम अ टीचर, तो मैं लिटरेसी डेवलपमेंट को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देती हूँ, कि जितना ज्यादा आप रीडिंग राइटिंग कराओगे, उतना ज्यादा आप अच्छा प्रोग्रेस होगा।
1: अभ्यास
0: तो हाँ,
1: होगा।
0: जितना ज्यादा रीडिंग हो, फॉर एग्जाम्पल 6 महीने का अगर बच्चा है, आप बोलोगे क्या मैं कराऊं रीडिंग और राइटिंग, एंड क्या ही कराऊं, बट आप बुक खोल सकते हैं उसके सामने और बुक खोल के पढ़ सकते हैं, तो वो जो
1: बिल्कुल।
0: विजुअल थिंग्स है, ओके, दैट गोज इन हिज हेड, ओके, बच्चा देख रहा है, उसका रिसेप्टिव लैंग्वेज इज ऑल्सो डेवलपिंग। आप पेज टर्न कर रहे हैं, तो ही ऑल्सो अंडरस्टैंड कि हाँ जब हम रीड करते हैं तो मुझे पेज टर्न करना है, जब मैं रीड करता हूँ तो मैं ऊपर से लेके नीचे तक जाता हूँ, ना कि नीचे से लेके ऊपर तक। तो ये जो स्मॉल स्मॉल थिंग्स है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। सो
1: बिल्कुल
0: दिस ऑल थिंग कंपाइल्स इन द लर्निंग नीड्स ऑफ द चाइल्ड।
1: जी। तो ऐसे बच्चे जो सीख रहे हैं इस तरह, जिनमें श्रवण बाधित जो बच्चे हैं, तो इनकी समझदारी में कुछ भी कुछ फर्क होता है सामान्य बच्चों के तुलना में, कि नॉर्मल, क्योंकि जो सामान्य बच्चे हैं बहुत कुछ सुन रहे हैं, देख रहे हैं आंखों से, और बहुत ऐसी जगहों पर ले जा रहे हैं। अमूमन होता होगा तुम्हें
0: राइट
1: कि
0: राइट राइट राइट
1: पेरेंट्स अवॉइड करते

0: होंगे कि यहाँ नहीं ले जाना है, यहाँ ले जाना है, तो उनकी जो समझ थिंकिंग प्रोसेस है क्या बराबर होती है या कम होती
1: सी,
0: है?
1: आपका जब कॉग्निशन की बात करते हो तो कॉग्निशन बहुत हायर लेवल थिंकिंग है,
0: हाँ
1: राइट? एंड उसके अंदर एक और चीज़ आती है जिसको हम मेटा कॉग्निशन बोलते हैं, तो उसमें बहुत सारे प्रोसेसेस आते हैं। प्रोसेसेस को समझने के लिए आपको एक यंत्र चाहिए, आपको एक टूल चाहिए, जो है भाषा। कोई भी चीज़ को समझने के लिए, जैसे आई नो कि जो मैं बात कर रही हूँ ये माइक के माध्यम से, इट इज़ गोइंग टू मैम, मैम उनको चेंज वेंज करके, एंड देन इट इज़ लाइव ब्रॉडकास्टिंग। एवरीथिंग आई एम अंडरस्टैंडिंग थ्रू लैंग्वेज, ओके? पर अगर मेरे पास लैंग्वेज ही नहीं है, हाउ विल माई अदर प्रोसेसेस विल टेक प्लेस? सो कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए लैंग्वेज भी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बट
0: बिल्कुल
1: मैं ये नहीं कह सकती कि जो हियरिंग इम्पेयरमेंट होते हैं उनको कुछ कॉग्निटिव इश्यूज़ होते हैं। नहीं, देर आर नो कॉग्निटिव इशूज़, नो अंडरलाइंग इशूज़ एज सच, बट येस, लैंग्वेज कॉग्निशन से जुड़ा हुआ है एंड इट हैज़ एन इम्पॉर्टेंट रोल इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑल्सो। तो वो काफी अच्छा प्रोग्रेस करते हैं। बट अगेन सेम थिंग बॉइल्स डाउन टू लैंग्वेज और कम्युनिकेशन डेवलपमेंट। मेरे पास अगर भाषा ही नहीं है तो मैं आगे किस तरीके से वो प्रोसेस को समझूं, या किस तरीके से रिस्पॉन्ड करूं, या क्या कैसे करूंगी, वो मुझे कैसे पता? जब तक मुझे वो रियल लाइफ सिचुएशंस नहीं पता होंगे या मुझे उस चीज का संदर्भ ही नहीं पता है कि मैं किस तरीके से करूं। वैसे
0: बिल्कुल। यहाँ हम एक गाना सुनते हैं, कौन सा गाना सुनवाए?
1: ये मुंबई है मेरी जान, ऐ दिल है मुश्किल।
0: ऐ दिल है मुश्किल जीना, यहाँ ये जी सुनते हैं ये गाना।

0: डॉक्टर गायत्री, हमें बताइए कि श्रवण बाधित बच्चे की सीखने की पूरी प्रक्रिया को किस तरह से प्रभावित करती है, जो सीखने की मतलब लर्निंग प्रोसेस होती है। अभी गाने से पहले भी इस बारे में हम बात कर रहे थे।
1: हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि जब हम टीचिंग लर्निंग प्रोसेस की बात करते हैं या लर्निंग की बात करते हैं, एक सिंपल चीज को अगर हम ध्यान में रखें कि हर चीज मुझे एक्सेसिबल होना चाहिए। अगर सारी चीजें आपके पास एक्सेसिबल हैं, तो आपका टीचिंग लर्निंग प्रोसेस भी आसान से हो सकता है। नाउ, जब मैं एक्सेसिबिलिटी ये शब्द बोलती हूँ, तो इसका अर्थ क्या है? एक्सेसिबिलिटी बेसिकली मींस कि मैं कोई भी चीज को पार्टिसिपेट करूं तो उसमें कोई भी बैरियर नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, समझो

0: व्हीलचेयर का इस्तेमाल करती हूँ और आपके बिल्डिंग में लिफ्ट नहीं है, सो मैं थर्ड फ्लोर तक कैसे जाऊँ? ठीक है, आई हैव टू टेक हेल्प ऑफ समबडी एल्स, ओके, मैं इंडिपेंडेंटली नहीं कर पाऊंगी. ठीक है, तो एक्सेसिबल होना हर चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है. समझो हम ये रेडियो शो कर रहे होते और आप फ्रेंच में बात कर रहे होते, तो मुझे तो फ्रेंच आती नहीं है, तो इट वुड हैव बीन वन वे कम्युनिकेशन, क्योंकि मैं कुछ रिस्पॉन्ड नहीं करती. तो लर्निंग सक्सेसफुल करने के लिए आप जो भी चीज़ें, जो भी मटेरियल आप बच्चों को देते हो या जो भी चीज़ों का इस्तेमाल करते हो, बच्चे के लेवल के अनुसार होना चाहिए और उसको, उस तक वो पहुंच सके, इसका ध्यान रखना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. तो दैट इज़ एक्सेसिबल होना चाहिए. जैसे मैंने पहले भी कहा कि जो हमारे बच्चे होते हैं वो मोर ऑफ विजुअल लर्नर्स होते हैं, ओके. सो आप कोई भी क्लासरूम देखोगे, अगर स्पेशल क्लासरूम देखोगे, या अगर आप हमारे CDIC में आओगे, दैट इज क्रॉस डिसेबिलिटी अर्ली इंटरवेंशन सेंटर, उधर भी आप देखोगे बहुत ज़्यादा विजुअल चार्ट्स होंगे, विजुअल थिंग्स होंगे, बिकॉज द चाइल्ड इज मोर ऑफ विजुअल, ओके. सो टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स आपको अलग अलग लेने होंगे, एंड अगेन आई रिपीट, एक्सेसिबल होना बहुत ज़रूरी है. जो भी आप कंसेप्ट कंटेंट दे रहे हैं, क्या वो साइन लैंग्वेज में उपलब्ध है कि नहीं है, ओके. और अगर साइन लैंग्वेज में उपलब्ध नहीं है, जो आप भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या वो भाषा मेरे बच्चे को समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है. तो बहुत बार जो होता है वो टेक्स्ट जो होता है, स्कूल के जो टेक्स्ट होते हैं, उसको हम अडेप्ट करते हैं. अडेप्ट बेसिकली मीन्स व्हाट, हम उसको चेंजेस करते हैं. चेंजेस बच्चे के लेवल के अनुसार चेंजेस करते हैं और बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल्स के माध्यम से सिखाते हैं. अगेन कमिंग टू बेसिक, कंसेप्टुअल क्लैरिटी के लिए. कंसेप्ट्स क्लियर हैं तो बच्चे का टीचिंग लर्निंग प्रोसेस भी आसान तरीके से होता है. हमारे बच्चों के लिए आप जब असेसमेंट भी करते हो, जो मूल्यांकन करते हो, तो आप समझो आप जब पढ़ा रहे हो तो
1: जी
0: पढ़ाते समय भी आप मूल्यांकन करते रहते हो. पढ़ाने के पहले भी करते हैं, पढ़ाने के बाद भी करते हैं, और पढ़ाते समय बहुत बार हम मूल्यांकन करते हैं. एंड इट प्रोसेस शुड भी बेसिकली दोनों तरफ से इंटरैक्टिव होना चाहिए. ऐसा नहीं है कि टीचर क्लास में गई और खुद ही खुद बात किए जा रही है, किए जा रही है, किए जा रही है. और बहुत बार तो हमने ये देखा है कि जब हम पेरेंट्स को बोलते हैं कि लैंग्वेज रिच एनवायरनमेंट होना चाहिए, भाषिक वातावरण होना चाहिए, तो माँ ही बोले जा रही है, बोले जा रही है, बोले जा रही है. नहीं, बच्चे को भी मौका दो कि बच्चा भी बात करे, बच्चा भी वो प्रोसेस में इन्वॉल्व हो. तो जितना ज़्यादा आप इन्वॉल्व करोगे बच्चे को हर प्रोसेस में, उतना ज़्यादा बच्चा प्रोग्रेस कर सकता है.
1: बिल्कुल डॉक्टर गायत्री, हमारे श्रोताओं को बताइए कि सरकार की कौन सी नीतियां हैं, कौन सी ऐसी महत्वपूर्ण नीतियां हैं इन बच्चों को जो शिक्षा में समर्थन देती हैं और बढ़ावा देती हैं।
0: गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऐसे बहुत सारे लॉज हैं, बहुत सारे स्कीम्स हैं जहाँ पे वो बच्चों को बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं या इंडिविजुअल्स को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं. हमारे पास अलग अलग एक्ट्स हैं, चाहे वो RPWD एक्ट हो या नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हो 2020 की, या सिप्टा स्कीम हो. स्किल डेवलपमेंट के लिए वी हैव PM दक्ष स्कीम ऑल्सो. हमारे पास अलग अलग स्कॉलरशिप के स्कीम्स हैं ताकि बच्चे को ऐसा नहीं लगे कि एजुकेशन काफ़ी डिफिकल्ट है, यू नो, मैं एजुकेशन कहाँ से लूँ और कैसे लूँ. एक सिंपल एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ कि आप अगर हमारे यहाँ पे अगर कोई दिव्यांग है, हियरिंग इम्पेयरमेंट है, और को BEd का कोर्स करना है, MEd का कोर्स करना है, या डिसलिटी ISL का कोर्स करना है, तो उसके लिए फ्री है एजुकेशन, ओके. दैट इज एज पर द स्कीम बच्चे के लिए फ्री है. अगर उसको कोई स्किल डेवलपमेंट का कोर्स करना है या फ्री कोचिंग करना है, तो इट इज टोटली फ्री. तो ऐसे बहुत सारे स्कीम्स हैं जहाँ पे उनको हियरिंग एड भी मिलता है कंसेशनल रेट पे. तो ये सारी चीजें हैं जहाँ पे लॉज आर इन प्लेस, स्कीम्स आर इन प्लेस, जहाँ पे हम एजुकेशन भी देते हैं बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट में. सो ये सारी चीजें तो है इन प्लेस. पर जब हम गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस या लॉज एंड पॉलिसीज की बात करते हैं, वी स्टिल हैव टू, यू नो, डेवलप अवेयरनेस. और अवेयरनेस की आवश्यकता है अभी तक हमारे देश में कि अगर ये इशू है, अगर ये कंसर्न है, तो मुझे कहाँ जाना है, ओके. ये कहाँ जाना है ये अभी तक एक कंसर्न है. अभी भी हमको अवेयरनेस में बहुत ज़्यादा काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. इफ़ आई कैन कोट अ थिंग इज कोविड के टाइम पे, यू नो, दे आर गोइंग टू हॉस्पिटल्स एंड दे वर हैविंग देयर ट्रीटमेंट ऑल्सो. सो यू थिंक ऑफ अ पर्सन जिसको कोविड अफेक्टेड है एंड वो हॉस्पिटल गया है एंड ही इज नॉट एबल टू कम्युनिकेट विद द डॉक्टर बिकॉज देर इज नो इंटरप्रेटर, ओके. तो हमारे देश में अभी भी इंटरप्रेटर्स की संख्या बहुत कम है, उसमें और ज़्यादा इनरोल होना जरूरी है। थर्ड इज द एक्सेसिबिलिटी। इस एक्सेसिबिलिटी को भी हमें इम्प्रूव करना बहुत ज्यादा जरूरी है।

0: अगर हम इन सब अवेयरनेस, एक्सेसिबिलिटी, इंटरप्रेटर सर्विसेज एंड सपोर्ट सिस्टम अगर हम और बढ़ाते हैं, तो यस, तो गवर्नमेंट लॉज, पॉलिसीज जो है, इम्प्लीमेंटेशन काफ़ी अच्छे से होगा। हम डॉक्यूमेंट्स में बहुत अच्छे हैं, इम्प्लीमेंटेशन भी बहुत कर रहे हैं, बट फिर भी अगर ये दो तीन चीज़ पे और लाइन अप हम करें, तो यस, द चाइल्ड कैन गो मच मच हायर लेवल पे।
1: जी, आप खुद इस संस्था में पढ़ाती हैं बच्चों को और आपके पास देश भर के बहुत सारे बच्चे आते होंगे। कोई ऐसा निजी यादगार कोई घटना है आपके पास जो शेयर करना चाहती हैं
0: मैं इस
1: कि
0: क्षेत्र में आई क्योंकि ऑन माय
1: आप तो
0: पर्सनल
1: हेड
0: नोट
1: हैं, डिपार्टमेंट की हेड हैं, तो बहुत बड़े पैमाने पर काम कर रही
0: नहीं,
1: हैं।
0: उसके पहले तो फैकल्टी थी एंड उसके पहले बहुत साल तक एनजीओ सेटअप में भी काम करती थी मैं। एंड आई इंटर्ड इन दिस फील्ड बिकॉज मेरी बुआ की डॉटर इज
1: हाँ
0: हियरिंग इम्पेयर्ड।
1: हाँ
0: ओके, सो जब भी मैं बुआ के घर जाती थी तो मुझे ऐसे लगता था कि ये इशारों से बात कर रही है और मेरे पापा आराम से कम्युनिकेट कर सकते थे। एंड आई
1: हाँ
0: यूज टू फील ये ऐसे, ये कुछ अलग है, ये क्या है। ओके, सो व्हेन आई कंप्लीटेड माय मास्टर्स आई थॉट कि लेट मी गेट इन टू दिस फील्ड बिकॉज दिस फील्ड आई फेल्ट इज वेरी सैटिस्फैक्ट्री, वेरी क्रिएटिव एंड बहुत कुछ चेंज हम कर सकते हैं। एंड अगर हम सब इकट्ठा होके एज अ टीम काम करें तो आई फील यू कैन मेक वंडर्स। कमिंग टू द पर्सनल नोट, जिस संस्था में मैं काम कर रही हूँ, पहले मैं वहाँ पे फैकल्टी थी एंड उसके बाद मैं अभी 2024 में आई बिकेम द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। सो बहुत सारी चीज़ें हम देखते हैं, लाइक मेरे पास ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो खुद डेफ हैं, ने कहा कि जो बैचलर्स करते हैं, मास्टर्स करते हैं और पीएचडी करते हैं, और बहुत सारे सो कॉल्ड यू नो टिपिकली डेवलप्ड स्टूडेंट्स भी हैं। दोनों काफ़ी अलग हैं एंड दोनों का सीखने का तरीका काफ़ी अलग है, बट दीज आर ऑल यू नो लेसन्स, यू अंडरस्टैंड सो मेनी थिंग्स। और अगर मैं कहूँ कि मैंने इनसे क्या सीखा है, पेशेंस सीखा है काफ़ी ज़्यादा, मेरे में पेशेंस लेवल काफ़ी अच्छा हो गया है। एंड यू अंडरस्टैंड कि एक ही पहलू को हम कितने अलग तरीके से देख सकते हैं। जैसे हम रिसर्च में कहते हैं थर्ड व्यू। ओके, थर्ड व्यू बेसिकली मीन्स फ्रॉम रिसर्च एंगल, डिफरेंट तरीके से वही चीज़ को देखना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो दिस इज द थिंग व्हाट आई हैव अंडरगॉन एज अ रीडर।
1: बिल्कुल, भारत में श्रवण बाधित बच्चों को जो शिक्षा दी जा रही है, तो इसे मजबूत करने के लिए और क्या-क्या कदम उठाए जा सकते हैं भारत सरकार की ओर से?
0: कैपेसिटी बिल्डिंग, कैपेसिटी बिल्डिंग की जब मैं बात करती हूँ, तो अगर मैं जनरल स्कूल्स की बात करूँ तो जनरल स्कूल्स में जो टीचिंग स्टाफ है एंड नॉन टीचिंग स्टाफ है, उनका कैपेसिटी बिल्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। उनको समझना, उनका एक्सेप्टेंस करना, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड कैपेसिटी बिल्डिंग के साथ साथ, जैसे मैं आई थिंक स्टार्ट से कह रही हूँ, वी नीड मोर डेवलपमेंट ऑन एक्सेसिबिलिटी। अगर हर चीज़ उनके पहुँच तक हो तो यस, द थिंग्स आर पॉजिटिव। एट द एंड ऑफ द डे माइंड सेट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, पॉजिटिव माइंड सेट होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
1: जी, संक्षेप में बताइए चलते चलते कि आपकी संस्था किस तरह से मदद करती है इन बच्चों को, क्योंकि देश भर से बच्चे आते हैं, तो क्या क्या, किस तरह की थेरेपी दी जाती है और क्या क्या जांच की जाती है, फिर उनकी मदद कैसे करती है आपकी संस्था?
0: हमारी संस्था में अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं जो अलग अलग क्षेत्र में काम करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल, जिनको सुनने में तकलीफ होती है, तो वी हैव एन ऑडियोलॉजी डिपार्टमेंट जहाँ पे उनकी जांच की जाती है कि बच्चे को कितना सुनाई देता है, कितना सुनाई नहीं देता है, उसको कौन सी हियरिंग एड से फ़ायदा होगा, अगर कॉकलियर इम्प्लांट करना है तो कितने हद तक। हमने रिसेंटली वर्टिको थिंग भी बनाया है, वर्टिको एक क्लिनिक थेरेपी सेंटर बनाया है कि जिन बच्चों को, अगर सिंपल तरीके से बोलूं कि बहुत बार लोगों को चक्कर आते हैं, राइट, सम पीपल से ना आई हैव अ वर्टिगो इश्यूज एंड ऑल। ओके, सो दिस इज अ न्यू थिंग व्हिच इज बीइंग डेवलप्ड इन द डिपार्टमेंट। फिर हमारे पास एक डिपार्टमेंट है जिसको हम बोलते हैं स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी डिपार्टमेंट। जिन बच्चों को बात करने में, वाचा में प्रॉब्लम आती है, स्टटर करते हैं, स्टैमर करते हैं, कभी कभी सिर्फ शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, कभी कभी कुछ शब्द नहीं बोलते हैं, तो उनकी पूरी थेरेपी वहाँ पे चलती है। फुल स्पीच थेरेपी लैब है, आइडेंटिफिकेशन से लेके इंटरवेंशन तक। ओके, देन वी हैव साइकोलॉजिकल डिपार्टमेंट जहाँ पे पूरा का पूरा साइकोलॉजिकल डायग्नोसिस होता है, बिहेवियरल मैनेजमेंट करते हैं, बिहेवियरल टेक्निक्स करवाते हैं ताकि उसका भी निवारण हो सके। और जिस डिपार्टमेंट से मैं आती हूँ, हम पूरा एजुकेशन देखते हैं उन बच्चों का, कि समझो अगर बच्चा कोई रेगुलर स्कूल में भी जाता है और उसको वहाँ पे भी तकलीफ होती है, तो वी गिव देम रेमेडियल टीचिंग एज वेल। सो एजुकेशन डिपार्टमेंट में अगेन अलग अलग कोर्सेज चलते हैं, डिप्लोमा से

0: के PhD तक, एंड हम साइन लैंग्वेज के भी कोर्सेज चलाते हैं, कभी ऑफलाइन कभी ऑनलाइन। तो अगर किसी को लगे कि मुझे सांकेतिक भाषा सीखनी है तो वो हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, एंड काफी सारे कोर्सेज चलते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट्स में। हम कैंप्स भी ऑर्गेनाइज करते हैं, अवेयरनेस प्रोग्राम्स भी करते हैं, ताकि जो हमारे तक नहीं आ सके तो हम वहां तक पहुंच सके, रीच द अनरीच। तो हम वहां जाके कैंप्स और अवेयरनेस प्रोग्राम्स करते हैं और उनको हियरिंग एड्स या उनको जो जरूरत हो ओके वो हम देते हैं।
1: जी, तो आपके संस्था से कोई संपर्क करना चाहे तो क्या कुछ कर सकता है, मेल के जरिए और
0: वेबसाइट पे आप जा सकते हैं AYJNISS

0: मिलेंगे. ओके, यू विल गेट ऑलमोस्ट ऑल द इन्फॉर्मेशन ऑन द वेबसाइट इटसेल्फ.
1: बहुत बढ़िया जानकारी आपने दी है डॉक्टर गायत्री, और मुझे लगता है देश भर के हमारे श्रोता जो सुन रहे होंगे, जिन्हें भी जिनके घर में जिन बच्चों को जिन बड़ों को हियरिंग लॉस है या बोलने में दिक्कत है, तो बहुत अपने तई जहां इलाज संभव करें, नहीं तो आपकी संस्था से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. और चलते चलते कोई गाना सुनवाना चाहेंगे?
0: जगजीत सिंह का कोई भी गाना, आई जस्ट लाइक हिम और लाइक हिज वॉइस अ लॉट, तो एनी सॉन्ग ऑफ जगजीत सिंह इज ओके विद मी.
1: तुमको देखा तो ये ख्याल
0: हाँ,
1: है.
0: ऑल गुड.
1: तो सुनते हैं ये.
0: ठीक है.

0: और डॉक्टर गायत्री विविध भारती के स्टूडियो में आप आई और इतनी सारी जानकारी दी। और ये एक ऐसा विषय है जो जिस पर लोगों का ध्यान नहीं जाता है, जो लोग इससे पीड़ित होते हैं वही लोग परेशान होते हैं। तो हमारा भी श्रोताओं से बस यही कहना है कि जहाँ कहीं ऐसे बच्चे हैं उनको सपोर्ट करें, मानसिक रूप से सहयोग दें। आपका तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत
1: थैंक यू टू यू ममता मैम एंड थैंक्स टू विविध भारती द होल टीम। दे आर वेरी कोऑपरेटिव एंड द वे दे आर डीलिंग with everything, so thanks to them, thanks to all the listeners कि आप सुने और कहीं पे किसी को भी आवश्यकता हो तो प्लीज संपर्क करें अलिया वर्जन संस्था को। थैंक यू सो मच।
2: आज के मेहमान इस कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर गायत्री आहूजा से रेडियो सखी ममता सिंह की ये बातचीत। चलने से पहले आपको बता दें इस कार्यक्रम में हमारी रिकॉर्डिंग इंजीनियर किरण बंग, संपादन सहयोग काजल भदरगे का, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।
3: आज के मेहमान।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। मंत्रिमंडल ने तेल विपणन कंपनियों को घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए 10,000 करोड़ रुपए की एकमुश्त बजटीय सहायता देने को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि मंत्रिमंडल ने भारतीय एयरलाइंस को ईंधन की कीमतों में स्थिरता बनाए रखने में सहायता देने के लिए यह निर्णय लिया है।
1: ATF प्राइस स्टेबिलाइजेशन फंड में एक सेल्फ सस्टेनिंग रिवॉल्विंग फंड बनाया गया है। ATF प्राइस फॉर दी एयरलाइन कैरियर्स हु वांट टू पार्टिसिपेट इन दिस, उनको एक स्टेबल ATF प्राइस अभी करंट क्राइसिस के दौरान मिलेगा। इससे हमारे एंटायर एविएशन सेक्टर में करीब 70 लाख से अधिक जो जॉब्स हैं, जिनके ऊपर इम्पैक्ट पड़ना आरंभ होने लगा था बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस इन द सेक्टर, वो इससे सिग्निफिकेंटली मिटिगेट होगा।
0: मंत्रिमंडल ने दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पुराने ट्रकों और बसों के प्रतिस्थापन के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड को सहायता प्रदान करने की योजना को भी मंजूरी दे दी है। श्री वैष्णव ने बताया कि योजना के अंतर्गत लगभग 2 लाख ट्रक और 16,000 बसें बदली जाएंगी।
2: दिल्ली के पॉल्यूशन को रोकने के लिए लगातार कई स्टेप्स लिए जा रहे हैं। उन स्टेप्स में एक बहुत बड़ा निर्णय लिया गया कि जो 40% कंट्रीब्यूशन है पार्टिकुलेट मटेरियल का, वो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर के कारण आता है, और उस ट्रांसपोर्टेशन में जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है हैवी ट्रक्स और बसेस, पुरानी ट्रकों और बसों को रिप्लेस करने का इसमें फैसला लिया गया है।
0: मंत्रिमंडल ने रामेश्वर से पारादीप तक 163 किलोमीटर से अधिक लंबे तटीय राजमार्ग के निर्माण को भी मंजूरी दे दी है। श्री वैष्णव ने बताया कि इस परियोजना की कुल लागत 830 करोड़ रुपए से अधिक होगी। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने बिहार में NH-31 और NH-231 के खगड़िया पूर्णिया खंड को 4 लेन में उन्नत करने को मंजूरी दे दी है। इसकी लागत 3,936 करोड़ रुपये से अधिक है। कर्नाटक कांग्रेस विधायक दल के नेता डीके शिवकुमार ने आज राज्य के 25वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने बेंगलुरु में उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर जी परमेश्वर ने उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। उनके साथ 12 विधायकों ने भी मंत्री पद की शपथ ली। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस में उथल पुथल के बीच राजनीतिक घटना क्रम तेज हो गया है। तृणमूल कांग्रेस से निष्कासित विधायक ऋतव्रत बनर्जी ने राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता पद पर दावा करते हुए 58 विधायकों के समर्थन का दावा किया है। विधानसभा सूत्रों के अनुसार 58 विधायकों द्वारा हस्ताक्षरित एक पत्र अध्यक्ष रथिंद्र बोस को सौंपा गया है। इसमें ऋतव्रत बनर्जी के गुट को वास्तविक तृणमूल कांग्रेस के रूप में मान्यता देने की मांग की गई है। उधर कोलकाता में पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भाजपा पर विभाजन की साजिश रचने का आरोप लगाया। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के मालवीय नगर में एक होटल में आग लगने से 21 लोगों की मौत हो गई। दमकल की 8 गाड़ियों की मदद से आग पर काबू पा लिया गया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि स्थिति पर कड़ी नजर रखी जा रही है। शहरी विकास मंत्री आशीष सूद ने कहा कि लापरवाही करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और गृहमंत्री अमित शाह ने हादसे पर दुख व्यक्त किया है। श्री मोदी ने प्रत्येक मृतक के परिजन को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए तथा घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि दिए जाने की घोषणा की है। निर्वाचन आयोग ने आज से नई दिल्ली में 2 दिन का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन शुरू किया है। इसमें चुनावी प्रक्रियाओं और अभियानों में मीडिया के लिए वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं और नवाचारों पर चर्चा की जा रही है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने बताया कि आयोग बूथ स्तर के अधिकारियों और एजेंटों को प्रशिक्षण देकर 10 करोड़ से अधिक मतदाताओं तक बेहतर संपर्क सुनिश्चित कर रहा है। सर्वोच्च न्यायालय ने अरावली पर्वत श्रृंखला की परिभाषा और सीमांकन संबंधी केंद्र सरकार की रिपोर्ट की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद की महानिदेशक कंचन देवी करेंगी। समिति को इस वर्ष 31 अगस्त तक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है। मुंबई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 304 अंकों के गिरावट से 74,346 पर बंद हुआ।

0: इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: FM बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है। श्रोताओं, स्टूडियो की घड़ी में संध्या के 5:05 हुए हैं। आइए एक नज़र डालते हैं आज के कार्यक्रम विवरणी पर।

अब से ही थोड़ी देर में आप सुनेंगे भक्ति संगीत पर आधारित कार्यक्रम वंदन। 5:10 पर संध्या, 5:30 पर महिला बहनों का कार्यक्रम होगा घर आंगन। भोजपुरी लोकगीत आप सुनेंगे संध्या के 6:00 और 6:10 पर ग्रामीण कार्यक्रम गांव घर सुनेंगे। सांझे गीत हम लेकर आएंगे संध्या के 6:40 पर और 7:00 हम आपको सुनवाएंगे प्रायोजित कार्यक्रम पारा मेडिकल है पारस। संध्या 7:15 पर होगा गुड इवनिंग रोहतास में सांध्यकालीन सूचना कार्यक्रम। और आकाशवाणी के पटना केंद्र से हम आपको सुनवाएंगे प्रादेशिक समाचार रात्रि के 7:25 से। हेलो मनपसंद कार्यक्रम लेकर हाजिर होंगे हम 7:50 पर रात्रि के और 8:45 पर संध्या समाचार संध्या होगा आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। रात्रि 9:00 शास्त्रीय गायन पर आधारित कार्यक्रम सुर सौरभ आप सुनेंगे।

रात्रि 9:30 पर हम चलेंगे विविध भारती की ओर और सुनेंगे आज के फनकार कार्यक्रम को। हिंदी एल्बम सॉन्ग पर आधारित कार्यक्रम रस रंग हम आपको सुनवाएंगे रात्रि के 10:00 और 10:30 पर होगा फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम चित्रपट तराने।

अगले दिन के कार्यक्रम विवरणी एवं मौसम पूर्वानुमान हम जानेंगे रात्रि के 10:55 से, और हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार होगा आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रात्रि के 11 बजे। इसके साथ ही 11:10 पर होगा सभा का समापन।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे आज के कार्यक्रम में प्रस्तुत की जाने वाली शेष कार्यक्रम विवरणी। आकाशवाणी का ये सासाराम केंद्र है FM 103.4 MHz पर। भक्ति संगीत कार्यक्रम में आइए सुनते हैं कार्यक्रम का पहला गीत, कृष्णा भजन। सुमंगला अरोरा ने इस गीत को स्वर और धुन दिया है। टी सीरीज के बैनर तले आइए सुनते हैं ये प्यारा सा भजन वंदन कार्यक्रम के तहत।

श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।

वंदन कार्यक्रम में अब आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला भक्ति गीत, परम सनातन एल्बम से। इस गीत को स्वर, शब्द, संगीत दिया है प्रमोद पंत ने।

इसी के साथ भक्ति संगीत का यह कार्यक्रम वंदन यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये सासाराम केंद्र है एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, स्टूडियो की घड़ी में संध्या के 5:30 हुए हैं। प्रस्तुत है महिला बहनों का कार्यक्रम घर आंगन।

नमस्कार सखियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम घर आंगन में। सखियों, कहते हैं कि हमारी त्वचा हमारी स्वास्थ्य का आईना होती है। ये बिल्कुल सही है सखियों। हमारी त्वचा केवल हमारे शरीर का बाहरी आवरण नहीं होता है, बल्कि यह आपके संपूर्ण आंतरिक स्वास्थ्य का एक जीता जागता आईना है। सखियों, हमारी त्वचा में होने वाले बदलाव सीधे तौर पर बताते हैं कि हमारे शरीर के अंदर क्या चल रहा है। जैसे कि हम बीमार होते हैं, या फिर टेंशन में, या फिर किसी भी चीज़ की हमें चिंता सता रही होती है, नींद ना आना, ये तो जो सारी चीज़ें होती हैं हमारे जीवन में हमारे साथ, तो ऐसे में हमारे चेहरे और त्वचा पर ये सीधा असर दिखने लगती है। सखियों, हमारी त्वचा हमारा शरीर ये बयान करता है कि हमारा डाइट हमारा आहार कैसा है। पानी की कमी से हमारी त्वचा रूखी और बेजान हो जाती है। इसलिए सखियों, अपनी त्वचा और अपने शरीर का ध्यान ज़रूर रखें। दिन भर में कम से कम 3 से 4 लीटर पानी ज़रूर पिएं। इससे शरीर और त्वचा हाइड्रेट रहती है, साथ ही टॉक्सिन्स भी बाहर निकलते हैं। और सखियों, अपनी डाइट में ताज़े फल, हरी सब्जियां, नट्स और विटामिन सी से भरपूर चीज़ों को शामिल ज़रूर करें। ऐसे पौष्टिक आहार लें जो हमारे त्वचा और शरीर के लिए सही हो। और सखियों, आजकल तो गर्मियों का मौसम भी है, तो ऐसे मौसम में अपना ध्यान और भी ज़्यादा रखें। ऐसे मौसम में घाव, फुंसी, मुहासे होते रहते हैं, तो इस मौसम में तेल मसाले वाले खानों खाने से परहेज़ करें, या फिर बाहर के खाने से बचें। अच्छी नींद ज़रूर लें। रोज़ाना 7 से 8 घंटे की नींद हमारे स्वास्थ्य को सही रख सकता है। नींद पूरी ना होने से या टेंशन लेने से आंखों के नीचे काले घेरे यानी कि डार्क सर्कल आ जाते हैं। इसीलिए सखियों, बिना टेंशन के अपनी नींद ज़रूर पूरी करें। सखिए, सच ही तो है कि हमारी त्वचा स्वास्थ्य का आईना होता है। इसीलिए सखियों, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, इससे हमारा चेहरा भी खिला खिला नज़र आएगा। इसी के साथ आइए सखियों, सुनते हैं कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज़ों में ये प्यारा सा गीत।

0: निशुल्क कानूनी सहायता टेली लॉ के ऐप वेबसाइट www.tele-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
2: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, RBI कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: सखियों, अभी हमने जो गीत सुना कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज़ों में, ये गीत फिल्म सपने साजन से लिया गया था। और सखियों, अब बात करते हैं बच्चों के लिए खेल ज़रूरी है पर। जी हाँ सखियों, बच्चों के लिए खेल बेहद ज़रूरी है, इससे उनके मानसिक और शारीरिक विकास होता है। ये न सिर्फ उनके शारीरिक रूप से स्वस्थ रखता है, बल्कि खेल से बच्चों में आत्मविश्वास भी बढ़ता है। दौड़ने कूदने और खेलने से बच्चों की मांसपेशियों और हड्डियों का विकास होता है, इससे बच्चों की ऊर्जा सही दिशा में लगती है, उनके शरीर में फुर्ती रहती है और साथ ही मोटापा जैसी समस्याएं भी दूर रहती हैं। सखियों, खेलते समय बच्चे नई चीज़ें सीखते हैं, समस्याओं को सुलझाना, निर्णय लेना शुरू करते हैं, उनकी सोचने समझने की शक्ति यानी कि क्षमता बढ़ती है। साथ ही दूसरे बच्चों के साथ खेलने से बिल्कुल हिचकते नहीं और वो एक टीम बनाकर मिलजुल कर रहना, धैर्य रखना और अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना सीखते हैं और दूसरे के प्रति सहानुभूति रखना भी सीख लेते हैं। सखियों, बच्चों को भी बड़ों की तरह अपने दैनिक जीवन में तनाव का सामना करना पड़ता है, जो खेल उन्हें तरोताज़ा और खुश मिजाज रखने की सबसे बेहतरीन तरीका है। सखियों, बच्चों के लिए खेलकूद उनके जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है, यह न सिर्फ उनके मनोरंजन का एक साधन है बल्कि उनके संपूर्ण विकास की नींव भी है। सखियों, ज़्यादातर बच्चे खेल में रुचि नहीं रखते बल्कि मोबाइल या डिजिटल स्क्रीन की लत लगी होती है, जिससे बाहर खेलने में रुचि नहीं दिखाते। बच्चे अपने बड़ों से सीखते हैं कि यदि हम उनके सामने खुद मोबाइल पर लगे रहेंगे तो उन्हें रोकना मुश्किल होगा। घर के काम या व्यस्तता के दौरान बच्चों को फ़ोन में के बजाय उनसे बातचीत करें या उनके साथ खेलें या फिर उन्हें बाहर जाकर खेलने को बोलें। बच्चे यदि बोर हो रहे हैं तो उन्हें किताबों, पहेलियां या कहानियां पढ़ने को बोलें और पढ़ाई के बीच बीच में उन्हें खेलने को भी बोलें, इससे उन्हें मानसिक रूप से तरोताज़ा फील होगा। बच्चों को क्रिकेट, फुटबॉल, पकड़म पकड़ाई या साइकिलिंग, ये ज़रूर उन्हें खेलने के लिए बोलें, इससे उन्हें शारीरिक ताकत मिलती है। बच्चों को साथ ही शतरंज, कैरम या लूडो, इस खेल से बच्चों का दिमाग विकसित भी होता है। इसलिए सखियों, खेल बच्चों के लिए बेहद ज़रूरी है, जिससे उनका शारीरिक और मानसिक दोनों मजबूत होता है। और अब आइए सखियों, सुनते हैं एक और गीत उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज़ों में।

सखियों, अभी हमने उदित नारायण और अलका याग्निक को सुना। ये गीत फिल्म हाँ मैंने प्यार भी किया है से सुना गया था। और सखियों, देशभक्ति केवल सीमाओं की रक्षा तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह अपने देश के प्रति निष्ठा, गहरी आस्था और राष्ट्र के निर्माण व विकास में सकारात्मक योगदान देने की भावना है। यानी कि अपने पेशेवर कार्यों में ईमानदारी बरतना और देश की प्रगति में सहयोग करना सच्चा देश प्रेम है। अपनी मातृभूमि की विरासत, संस्कृति और विविधता का सम्मान करना, यानी कि सांस्कृतिक और ऐतिहासिक सम्मान, राष्ट्रगान, राष्ट्रध्वज और संविधान के प्रति सम्मान की भावना बनाए रखना, पर्यावरण व संसाधनों की रक्षा, यानी कि देश की प्राकृतिक संसाधनों को बचाना और उन्हें नुकसान न पहुंचाना, बेवजह पेड़ न काटना, पानी की बर्बादी न करना, वनों की कटाई को रोकना, जीव जंतुओं की रक्षा करना, नदी और तालाबों की सफाई कर रखना, ये सारी चीज़ें एक समाज के नागरिक बनकर ये हमारा कर्तव्य बनता है कि हम इनकी रक्षा करें। एक जिम्मेदार नागरिक बनकर कानून का पालन करना और दूसरे के अधिकारों का सम्मान करना। सखियों, देश के प्रति प्रेम और समर्पण केवल सीमाओं पर लड़ने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह हर नागरिक के दैनिक जीवन, ईमानदारी और कर्तव्यों को झलकता है। यातायात नियमों से लेकर देश के संविधान का ईमानदारी से पालन करना भी एक जिम्मेदारी है। देश के विकास और बुनियादी ढांचे के निर्माण में आर्थिक सहयोग देना या बिना किसी लालच के देश के विकास के लिए सही प्रतिनिधि चुनना। सखियों, काम के प्रति ईमानदारी दिखाएं। एक डॉक्टर, शिक्षक, सैनिक, सफाई कर्मचारी या व्यापारी के रूप में अपना काम पूरी निष्ठा से निभाएं। अपने आसपास सफाई रखें, जल संरक्षण करें, पेड़ पौधे लगाकर देश को हरा भरा रखें, देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए वस्तुओं का सही सदुपयोग करें और जाति, धर्म, भाषा के भेदभाव से ऊपर उठकर सभी देशवासियों को अपना भाई बहन मानना। वहीं ट्रेन, बस और ऐतिहासिक स्मारकों जैसे सार्वजनिक स्थानों को नुकसान ना पहुंचाना। देश की समृद्ध विरासत, कला और ऐतिहासिक को संजो कर रखना और आने वाली पीढ़ियों को सौंपना। सखियों, जब हम अपने व्यक्तिगत स्वार्थ से ऊपर उठकर देश के हित में सोचना और कार्य करना शुरू कर देते हैं, वही सच्ची देशभक्ति और समर्पण है। इसी के साथ सखियों, सुनते हैं एक और गीत।

0: अभी हमने उदित नारायण की आवाज में ये प्यारा सा गीत सुना।
1: ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। लीजिए सुनिए आज इस सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त जानकारी।

अभी आप सुन रहे थे महिला बहनों का कार्यक्रम घर आंगन। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे संतोष कुमार। आकाशवाणी का ये सासाराम केंद्र है FM बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। और अब आइए आप सुनते हैं भोजपुरी लोकगीत।

0: अभी आप सुन रहे थे भोजपुरी लोकगीत, आकाशवाणी का ये सासाराम केंद्र है एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। और भाई सुनते हैं भोजपुरी बुलेटिन समाचार आकाशवाणी के पटना केंद्र से।
1: आकाशवाणी का पटना केंद्र है मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलोहर्ट्ज़ पर। कुछ ही देर में भोजपुरी बुलेटिन प्रसारित होंगे, कृपया प्रतीक्षा करें।

नमस्कार, ई आकाशवाणी पटना है। अब रउआ रजिया सुल्ताना से भोजपुरी में समाचार सुनी। केंद्र सरकार बिहार में NH 31 और NH 231 के खगड़िया

बुनियाखंड के फोर लेन में अपग्रेड करे के मंजूरी दे दिहले बाड़न। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अध्यक्षता में भइल कैबिनेट के बैठक में यह प्रस्ताव के मंजूरी दिहल गइल। बैठक के बाद सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव बतौलन कि एही योजना के तहत 143 किलोमीटर लंबा सड़क के अपग्रेडेशन कइल जाई। यह पर 3,936 करोड़ रुपया के लागत आई। उ कहले कि प्रोजेक्ट के हिस्सा के रूप में पूर्णिया शहर में ग्रीन फील्ड बाईपास के निर्माण कैल जाई। ग्रामीण विकास मंत्री राजीव रंजन सिंह आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित एगो कार्यक्रम में राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार प्रदान कैले। देश भर के 42 गो बढ़िया पंचायतन के ग्रामीण विकास, सुशासन, जन भागीदारी, स्वच्छता, डिजिटल सेवा और सतत विकास के लक्ष्यन के प्रभावी क्रियान्वयन के खातिर 2 गो श्रेणी में ई पुरस्कार दिहल गइल बा। सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत पुरस्कार श्रेणी के अंतर्गत नानाजी देशमुख सर्वोत्तम पंचायत सतत विकास पुरस्कार से रोहतास जिला के तेलकक पंचायत के पुरस्कृत कैल गइल। एह श्रेणी में पंचायत के दूसरा स्थान प्राप्त भइल बा। मुखिया अनीता टोप्पो पुरस्कार ग्रहण कैले बालिन। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी कहले बाड़न कि चौथा चरण के शिक्षा बहाली परीक्षा TRE4 खातिर जुलाई महीना में विज्ञापन जारी क दिहल जाई। आकाशवाणी समाचार से खास बातचीत में श्री तिवारी बतौलन कि अब हर साल जुलाई महीना में ही विज्ञापन जारी कैल जाई। अगला 5 वर्ष में 1 लाख शिक्षकन के बहाली कैल जाई। श्री तिवारी कहले कि राज्य के मदरसा और संस्कृत विद्यालयन के जमीनी जांच कैल जाई। उ कहले कि जवन विद्यालय में तय मानक के हिसाब से पढ़ाई लिखाई के व्यवस्था ना मिली ओकरा के बंद क दिहल जाई। शिक्षा मंत्री कहले कि शिक्षा विभाग शिक्षक विद्यार्थी और आम लोगन के समस्या के समाधान खातिर सिंगल विंडो सिस्टम के शुरुआत कैल गइल बा। राज्य और भूमि सुधार मंत्री दिलीप कुमार जायसवाल कहलन कि राज्य के 13 गो जिला में आयोजित होखे वाला श्रावणी मेला के खातिर 2,25,00,000 रुपया के राशि आवंटित कैल गइल बा। उ कहले कि ई राशि मेला क्षेत्रन में बुनियादी सुविधा के मजबूत और श्रद्धालु सबके सुविधा के खातिर खर्चा कैल जाई। श्री जायसवाल कहले कि राज्य सरकार श्रद्धालुअन के बेहतर सुविधा देवे के खातिर एकदम संकल्पित बा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE बतौलन कि करीब 40,000 छात्र सब सफलतापूर्वक पुनर्मूल्यांकन के खातिर आवेदन जमा कैले बाड़े। ई प्रक्रिया बिना कोनो समस्या के पूरा कैल गइल बा। बोर्ड काल 12वीं कक्षा के छात्रन खातिर उत्तर पुस्तिका के त्रुटि के सत्यापन और उत्तर के पुनर्मूल्यांकन के खातिर ऑनलाइन पोर्टल खुलले रहे। ई सुविधा खाली ओइसने छात्रन खातिर उपलब्ध रहे जवन आपन जांचल गइल उत्तर पुस्तिका के स्कैन कैल कॉपी के प्राप्त कैले बाड़े। मधुबनी जिला के बिस्फी थाना क्षेत्र के किरवार गांव में पानी से भरल एगो गड्ढा में डूबे से एक ही परिवार के 5 गो लइकन के मौत हो गई बा। मृतकन में सगा और चचेरा भाई बहिन शामिल बाड़न। हमार संवाददाता बतौलन कि माटी कोड़े खातिर JCB से खोदल गइल रहे गड्ढा उहे गड्ढा में नहाए के दौरान ई हादसा भइल ह। सभे लइकन के लाश बरामद क लिहल गइल बा। भागलपुर के विक्रमशिला सेतु के टूटल हिस्सा पर बनल बेली ब्रिज पर गाड़ी चलावे के ट्रायल कैल गई। जांच के दौरान 2.5 टन वजन वाला 4 चक्का गाड़ी के 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से चला के पुल के मजबूती से परखल गई है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक गाड़ियन के परिचालन पूरा तरह से सफल रहा। सिवान जिला के बड़हरिया थाना क्षेत्र के शिवराजपुर गांव में एगो युवक के पीट पीट के मुआ देवे के मामला में पुलिस अधीक्षक पूरन कुमार झा, पुलिस अवर निरीक्षक संजीव कुमार झा के तुरंते प्रभाव से सस्पेंड क देले बाड़न। उन्हें 2 गो होमगार्ड के कॉन्ट्रैक्ट खत्म करके कार्रवाई भी शुरू क दिहल गइल बा। पूरा प्रदेश एकदम में उमसा कड़ाके के गर्मी के चपेट में बा। मौसम विभाग से मिलल जानकारी के मुताबिक कई जगहन पर अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार क गइल बा। पिछले 24 घंटा के दौरान 41.4 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान के साथ बिहार के भभुआ सबसे गर्म जगह बनल रहे।
एकरे साथे ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित भोजपुरी समाचार के ई अंक एहिजा समाप्त भइल।

ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। प्रस्तुत है फिल्म संगीत। फिल्म संगीत में आइए सबसे पहले हम सुनते हैं सनम रे फिल्म का ये प्यारा सा गीत, अरिजीत सिंह के स्वर में, जिसके संगीतकार और गीतकार हैं मिथुन।

आकाशवाणी का ये सासाराम केंद्र है FM 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। प्रस्तुत है ग्रामीण कार्यक्रम गांव घर।

नमस्कार श्रोता भाई बहन, आप सुन रहल बानी आपके आपन प्रिय कार्यक्रम गांव घर, और हम आपके साथ बानी आपके प्रस्तोता सुगिया बहन। आज हमने के एक ऐसन साधन के बात करल जाई जवन सरल बा, सस्ता बा, पर्यावरण के अनुकूल बा और हमने के जीवन के बेहतर बनावे में महत्वपूर्ण भूमिका निभावेला। आज के विषय बा व्यक्तिगत, सामाजिक और आर्थिक विकास में साइकिल का योगदान। श्रोता भाई बहन, हर वर्ष 3 जून के विश्व साइकिल दिवस मनावल जाला। संयुक्त राष्ट्र एह दिन के साइकिल के महत्व के में पहचान देवे खातिर घोषित कैले बा। साइकिल केवल 2 पहिया वाला वाहन ना है, बल्कि स्वास्थ्य, पर्यावरण, रोजगार और सामाजिक समानता के एक मजबूत माध्यम है। व्यक्तिगत विकास में साइकिल के बहुत योगदान बा। सबसे पहले बात कही जाओ व्यक्तिगत विकास के, साइकिल चलाना एक उत्कृष्ट व्यायाम है। आज के समय में लोग मोटापा, मधुमेह, उच्च रक्तचाप और हृदय रोग जैसन समस्या से जूझ रहल बनी जा। यदि हम प्रतिदिन 20 से 30 मिनट तक साइकिल चलाई तो शरीर स्वस्थ और सक्रिय बनल रहेला। साइकिल चलावे से हृदय मजबूत होला, मांसपेशी के विकास होला, शरीर के सहन शक्ति बढ़ेला, मानसिक तनाव कम होला, आत्मविश्वास में वृद्धि होला। बच्चा और युवा खातिर साइकिल आत्मनिर्भरता के प्रतीक है। ऐसे उस समय के सदुपयोग करना सीखे नीजा और अनुशासन विकसित करे नीजा। सामाजिक विकास में साइकिल के बहुत बड़ भूमिका भी बा। साइकिल समाज के हर वर्ग के लोग खातिर समान रूप से उपयोगी बा। ई अमीर गरीब के बीच के दूरी के कम करेला। ग्रामीण क्षेत्र में साइकिल शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा, रोजगार तक पहुँच के महत्वपूर्ण साधन है। कई छात्र छात्रा प्रतिदिन साइकिल से विद्यालय जालन जा। एकरा से उनकर शिक्षा निरंतर बनल रहेला। विशेष रूप से बालिका के खातिर साइकिल के शिक्षा के बढ़ावा दिहल प्रभावी माध्यम बनी। साइकिल लोग के एक दूसरा से जोड़ेला, सामाजिक सहभागिता बढ़ावेला, महिला और युवा के आत्मनिर्भर बनावेला, ग्रामीण क्षेत्र में आवागमन के आसान बनावेला। आज अनेक राज्य में छात्रा के साइकिल वितरण योजना के लाभ दिहल जा रहल बा, जौना से उनकरा विद्यालय में उपस्थिति और शिक्षा में स्तर में सुधार भइल बा। आर्थिक विकास में भी साइकिल के योगदान बा। अब चर्चा कइल जाओ आर्थिक विकास के। साइकिल सबसे कम खर्चीला परिवहन साधन है। एमे पेट्रोल, डीजल या गैस के आवश्यकता नहीं है। रख रखाव के खर्च भी बहुत कम होला। एक मजदूर, किसान, दूध विक्रेता, समाचार पत्र वितरक या छोटा व्यापारी

साइकिल के माध्यम से कम लागत में अपन कार्य कर सकेनी जा। साइकिल के उपयोग से परिवहन खर्च कम होला, समय के बचत होला, आमदनी बढ़े में सहायता मिलेला, गरीब और मध्यम वर्ग के परिवार पर आर्थिक बोझ भी कम होला। साइकिल उद्योग भी लाखों लोग के रोजगार देला। साइकिल निर्माण, मरम्मत, बिक्री और ओकरा से जुड़ल व्यवसाय अनेक लोग के आजीविका के साधन बा। पर्यावरण संरक्षण में साइकिल के भी बहुत बड़ा महत्व बा। लाभ ई बा कि पर्यावरण के प्रदूषित ना करेला। आज दुनिया वायु प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन जैसन गंभीर चुनौती के सामना कर रहल बा, ऐसन समय में साइकिल एक अच्छा और हरित परिवहन के विकल्प है। साइकिल धुआं ना छोड़ेला, ईंधन के बचत करेला, कार्बन उत्सर्जन कम करेला, पर्यावरण संरक्षण में योगदान देवेला। यदि छोटा दूरी खातिर अधिक लोग साइकिल के उपयोग करी तो शहर में ट्रैफिक जाम और प्रदूषण दोनों कम हो सकता। ग्रामीण क्षेत्र में साइकिल के महत्व और भी अधिक बा। किसान खेत तक पहुँचे खातिर, मंडी जाए खातिर, दूध और सब्जी बेचे तथा आवश्यक वस्तु लावे खातिर साइकिल के उपयोग करेनी जा। ग्रामीण महिला खातिर भी साइकिल आत्मनिर्भरता और सुविधा के माध्यम बन रहल बा। एकरा से उनकर समय बचेला और वो आर्थिक उत्पादन कार्य में भाग ले सकतड़ी। युवा खातिर संदेश बा कि प्रिय युवा भाई बहन, आधुनिक तकनीक और मोटर वाहन के इस दौर में भी साइकिल के महत्व कम नहीं के भइल। साइकिल स्वस्थ, पर्यावरण और आर्थिक बचत के सबसे सरल उपाय बा। यदि हम सप्ताह में कुछ दिन भी साइकिल के उपयोग करी तो हम अपना स्वास्थ्य के बेहतर बना सकतनी और पर्यावरण संरक्षण में योगदान दे सकतनी जा। अंत में यह कहल उचित हुई कि साइकिल केवल एक वाहन ना है, बल्कि स्वस्थ जीवन, स्वच्छ पर्यावरण, सामाजिक समानता और आर्थिक विकास के प्रतीक है। ई व्यक्ति के सहन शक्ति सशक्त बनावेला और समाज के जोड़ेला और एकरा साथ ही देश के प्रगति में योगदान भी देवेला। आई विश्व साइकिल दिवस के अवसर पर अभी हमनी के ये संकल्प लिही जा कि जहाँ जहाँ संभव हो छोटा दूरी खातिर साइकिल के उपयोग करी और दूसरा के भी एकरा खातिर प्रेरित करी। अब यह संदेश के साथ आपसे विदा ले रहल बानी। एक फिर हमनी के चर्चा कल जी अपना चर्चा पर वापस आई जाई, लेकिन एक लोक गीत के आनंद लेवे के आज के कलाकार बानी मनोरंजन ओझा जी। तो चली यहाँ से कुछ गीत सुनल जाओ।

0: उपभोक्तन तक पहुँचे के सस्ता असुलभ माध्यम बा आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी का केंद्रन से करें विज्ञापन का माध्यम से अपन उत्पादित माल आ सेवा का प्रचार।
0: स्थानीय आ देश स्तर पर कहीं करी अपन बिजनेस के प्रसार।
1: काहे कि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग भइला आसान।
0: घर दफ्तर या दुकान पर बैठल अब करी विज्ञापनन के बुकिंग।
1: डायल करें 870-001-4242।
0: नंबर फिर लिखी 870-001-4242।
2: देखी जा श्रोता भाई बहन, मनोरंजन ओझा अभी हमनी के बहुत अच्छा गीत सुनैनी। एक गीत खातिर बुना के बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमनी के थोड़ा सा बात कइल जाओ, जब स्वास्थ्य जागरूकता पर बिना ऑपरेशन होम्योपैथिक में उपचार, यह विषय पर। होम्योपैथिक एक ऐसा पद्धति है जौना में रोगी के लक्षण, शारीरिक, प्राकृतिक और मानसिक स्थिति के ध्यान में रख के उपचार कइल जाला। बहुत सा लोग ऐसा रोग में होम्योपैथिक उपचार के सहारा लेला जौना में ऑपरेशन के संभावना बतावल जाला। कुछ मामला में जैसे कि प्रारंभिक अवस्था में बवासीर, फिशर, कुछ प्रकार के गांठ, टॉन्सिल के समस्या या बार बार होखे वाला कुछ स्वास्थ्य समस्या में लोग होम्योपैथी से लाभ के बात करेला। होम्योपैथी के सबसे बड़ लाभ ई मानल जाला कि उपचार व्यक्ति केंद्रित होला और कई बार लंबा समय से चलल आ रहल समस्या से राहत देवे के प्रयास करेला। लेकिन कोई उपचार शुरू करे से पहले योग्य एवं पंजीकृत चिकित्सक से परामर्श अवश्य लेवे के चाहिए। स्वयं दवा लेना

0: या अपूर्ण जानकारी के आधार पर निर्णय लिहल उचित नहीं है। एह विषय पर अब हमनी के एक विशेष भेंट वार्ता के माध्यम से जानकारी लिहल जा डॉक्टर एनएन तिवारी से। भेंट के लिए बने डॉक्टर श्याम सुंदर तिवारी। तो चले जाने के यहाँ के हमनी के कौन जानकारी दे रहल बनी जा।
1: श्रोताओं, होम्योपैथी चिकित्सा में ऑपरेशन का कॉन्सेप्ट नहीं है। बिना ऑपरेशन के भी होम्योपैथी की चिकित्सा कितनी कारगर है, आज हम लोग जानेंगे प्रसिद्ध होम्योपैथी चिकित्सक डॉक्टर एमएन तिवारी से। एमएन तिवारी जी, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। पहले तो ये बताइए, क्या सचमुच होम्योपैथी में ऑपरेशन का कॉन्सेप्ट नहीं है?
2: धन्य ऑपरेशन का कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन हम लोगों के पैथ में विदाउट ऑपरेशन हम लोग मेडिसिनली उसको ऑपरेट करते हैं।
1: अच्छा,
2: कोई भी ऑपरेटिव केसेस होता है उस ऑपरेटिव केसेस को हम लोग मेडिसिनली करते हैं।
1: वो कैसे संभव होता है?
2: वो अकॉर्डिंग टू टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स, जैसे मान लेते हैं किसी पेशेंट को ट्यूमर है
1: जी,
2: किसी लेडीज के ब्रेस्ट में ट्यूमर है
1: जी,
2: तो वैसे ट्यूमर का क्या उसको सिम्टम्स मिला
1: जी,
2: उस सिम्टम्स के आधार पे हम मेडिसिन का चयन करते हैं
1: जी,
2: और मेडिसिन चयन जो करते हैं उस वही मेडिसिन उस ट्यूमर को ऑपरेट कर देता है
1: जी। तो उसके लिए फिर बाहर से चीर पहाड़ करने की जरूरत
2: कोई जरूरत नहीं, कोई जरूरत।
1: तो क्या कैंसर जैसे केस में भी ये संभव है?
2: कैंसर जैसे केस में भी ये संभव है, जबकि वो हम लोगों के पैथ में प्राइमरी स्टेज सेकेंडरी स्टेज में पहुंच जाए तब
1: जी।
2: वैसे हम लोगों के यहाँ जब लास्ट स्टेज हो जाता है 99 की स्पीड में, जब कैंसर की माने सेल्स जो है मल्टीप्लाई करने लगते हैं उस वक्त जो है हम लोगों के शरण में लोग आते हैं कि अब हार दाव मान के मरना ही है, चलो होम्योपैथिक का इलाज लिया जाए। तो उस समय हम लोग बेचारगी महसूस करते हैं
1: जी,
2: ट्रीटमेंट देते हैं, बेनिफिट होता है
1: जी,
2: लेकिन स्पीड इतनी हो गई है कि वैसे में पेशेंट कोलैप्स कर जाता है
1: जी। क्या ऑपरेशन कराने के बाद भी कैंसर के केस में जो मरीज आते हैं वो जो है आपसे संतुष्ट हो पाते हैं, आप लोगों से?
2: एकदम संतुष्ट हो पाते हैं
1: जी।
2: ऐसे कई केसेस हम लोगों के मेरे ट्रीटमेंट में अभी तक आए
1: जी,
2: जो कि ऑपरेशन कराने के बाद भी
1: जी,
2: अगर उनको थोड़ी कॉम्प्लिकेशन या तकलीफ महसूस हुई तो वो लोग होम्योपैथ के शरण में जाते हैं
1: जी,
2: और वहां से इलाज लेने के बाद उनको संतुष्टि मिलती है
1: जी। जैसे बवासीर है, एक ऐसा आम रोग होता है
2: जी जी,
1: नसें फट जाती हैं और एलोपैथ में माना जाता है कि बिना ऑपरेशन के वो संभव नहीं है
2: जी,
1: लेकिन आप लोग उसका ऑपरेशन नहीं करते हैं, क्या बवासीर ठीक हो जाता है?
2: जी हाँ, हमारे पैथ से बवासीर ठीक हो जाता है। हम लोगों के पैथ में देखिए मेन चीज ये है कि हमारी डिग्री क्या है, DHMS BHMS
1: जी,
2: बैचलर इन होम्योपैथिक मेडिसिन इन सर्जरी
1: जी,
2: तो सर्जरी इज देयर
1: जी,
2: हम खुद भी सर्जरी करते हैं
1: जी,
2: लेकिन किस तरह से करते हैं अपनी मेडिसिन के थ्रू करते हैं। पेशेंट का चाहे वो बवासीर हो चाहे वो भगंदर हो, फिस्चुला इनेनो उसे कहते हैं भगंदर
1: जी, जी।
2: वो सब एलोपैथिकली जो है कितना हो भी बार ऑपरेट कराइएगा, 29 टाइम्स ऑपरेटेड केस ऑफ फिस्चुला इनेनो इज क्योर्ड थ्रू पियोनिया 30
1: जी।
2: पियोनिया 30 इज ए होम्योपैथिक मेडिसिन
1: जी,
2: वो पियोनिया 30 से 29 टाइम्स ऑपरेटेड केस 29 मने आप समझ सकते हैं कि एक बार अगर फिस्टुला इनेनो यानी भगंदर का आप इलाज किए ऑपरेशन कराए अगेन वो रिकर होगा
1: जी,
2: फिर उसका ऑपरेशन कराए फिर होगा
1: जी।
2: तो इस तरह से वो लास्टली जो है ना वो कन्वर्ट कर जाता है कैंसरस प्रॉब्लम में
1: जी।
2: सिचुएशन यही होती है कि वो कैंसर लोग कह देते हैं कि अभी ये कैंसर हो गया
1: जी।
2: तो वैसे केसेस को भी हमारे पैथ ने जो है हमारे पैथ की एक मेडिसिन पियोनिया 30 है जो कि उसको क्लियर क्योर किया
1: जी। डॉक्टर एमएन तिवारी जी, पथरी
2: जी,
1: चाहे वो पित्त की पथरी हो या आंत की पथरी हो
2: जी जी,
1: या किडनी की पथरी हो
2: जी,
1: क्या वैसे पथरी को भी जो कि बहुत बड़ा हो गया है उसको भी बिना ऑपरेशन के इलाज है?
2: जी हाँ, हमारे पैथ में उसकी इलाज है
1: जी।
2: अभी रिसेंटली मैं रीनल स्टोन का ट्रीटमेंट दे रहा हूँ, किडनी में बोथ किडनी में पथरी है और उस पथरी का इलाज मैं दे रहा हूँ और वो पेशेंट काफ़ी सेटिस्फाइड है
1: जी,
2: और विदाउट ऑपरेशन उसको मैं डिजॉल्व करके पेशाब के थ्रू बाहर निकाल दूंगा
1: जी। और क्या बाद में उसका अगर एक्सरे वगैरह किया जाए तो उसमें नहीं दिखाई
2: जी? नहीं दिखाई देगा, आफ्टर 3 मंथ्स जो है मैं अल्ट्रासाउंड कराता हूँ
1: जी,
2: तो जैसे मान लेते

0: हैं 7 सेंटीमीटर का स्टोन है,
1: जी
0: तो 3 मंथ्स ट्रीटमेंट लेने के बाद वो 3 सेंटीमीटर का हो गया, तो 4 सेंटीमीटर तो डिजॉल्व हो गया। इट मीन्स 2-4 महीने और ट्रीटमेंट ले लेने से फुल्ली डिजॉल्व हो जाएगा।
1: जी डॉक्टर एम एन तिवारी जी, औरतों के केस में गर्भाशय कभी कभी बाहर निकल आता है,
0: जी जी,
1: तो क्या वह भी संभव है क्या?
0: जी हाँ।
1: जैसे क्योंकि एलोपैथ में हालांकि इस पर बहुत प्रतिक्रिया हो रही है समाज की और सरकार की,
0: जी जी,
1: कि गर्भाशय निकालना बहुत बेकार कार्य है क्योंकि औरतों का जो मानसिक संतुलन है, शारीरिक संतुलन है, वो बिगड़ जाता है।
0: जी जी।
1: क्या होम्योपैथ में गर्भाशय अगर निकल चुका है, बाहर आ गया है, निष्क्रिय हो चुका है, तो क्या वह पुनः सक्रिय हो सकता है?
0: पुनः सक्रिय हो सकता है, जबकि उसकी भी डिग्रियां होती हैं।
1: जी।
0: वो कितना परसेंटेज प्रोलैप्स ऑफ द यूटेरस है।
1: जी।
0: अगर फर्स्ट स्टेज में है तब तो हम लोग होम्योपैथिकली उसको ऑपरेट नहीं करते हैं, उसको क्लियर कर देते हैं।
1: जी।
0: वो उसका प्रोलैप्स ठीक हो जाता है।
1: जी।
0: इवन लेडीज ही केसेस नहीं, एनिमल केसेस में भी प्रोलैप्स ऑफ यूटेरस, इवन बफेलोज, भैंस, गाय, इन सबों में भी इतनी बढ़िया होम्योपैथ में मेडिसिन है जो कि देने के बाद वो उसका जो प्रोलैप्स होता है यानी एक्सपल्सन ऑफ द यूटेरस जो होता है
1: जी,
0: वो सब ठीक हो जाता है।
1: जी। इसमें होम्योपैथ में ये संभव है।
0: जी जी संभव है।
1: लेकिन डॉक्टर एम एन तिवारी जी, जैसे रीढ़ की हड्डी है,
0: जी,
1: रीढ़ की हड्डी के बीच जो गद्दा होता है,
0: जी जी,
1: जो कि कहा जाता है स्लिप डिस्क जिसको कहा जाता
0: जी,
1: है, जब
0: जी,
1: वो
0: जी,
1: बाहर आ जाता है
0: जी,
1: और नसों को जब दबा देता है,
0: जी जी,
1: तो उसका एलोपैथ में माना जाता है कि या तो ऑपरेशन कराया जाए
0: जी,
1: या फिर व्यायाम के जरिए
0: जी
1: उसको ठीक किया जा सकता है, या ट्रैक्शन दे करके, खिंचाव दे करके उसको ठीक किया जा सकता है।
0: जी जी।
1: होम्योपैथ क्या मानता है?
0: होम्योपैथ भी वो जो कह रहा है एलोपैथ कि ट्रैक्शन दे के ठीक किया जा सकता है, वैसी परिस्थिति में हम लोग उस पेशेंट को क्या क्या तकलीफ है उस तकलीफ को हम कलेक्ट करके मेडिसिन को सेलेक्ट करेंगे और उसको मेडिसिन चलाएंगे, प्लस कुछ फिजियोथेरेपी बताएंगे जो नेचुरोपैथिक मैनेजमेंट है,
1: जी जी,
0: कुछ उसको बताएंगे और बताने के बाद जो है वो पेशेंट काफ़ी रिलीफ महसूस करता है। और इस तरह से जैसे सर्वाइकल स्पोंडिलाइटिस,
1: जी,
0: सर्वाइकल स्पोंडिलाइटिस आप सुने होंगे, ये गर्दन में लोग नेक लगा लेते हैं,
1: जी जी,
0: तो वो जो सर्वाइकल स्पोंडिलाइटिस हो जाता है तो वैसे सिचुएशन में दाहिने हाथ में झिझिनाहट, दर्द, तमाम तरह की बातें होती है, वैसे केसेस को यानी उसका जो स्पाइन है
1: जी,
0: सर्वाइकल 7 वर्टिब्रा होता है
1: जी,
0: तो जो एक दूसरे से जो है गुत्थी में सजे रहते हैं नेट नेट की तरह, माले की तरह,
1: जी जी,
0: तो उसी में जब सूजन हो जाता है तो स्पोंडिलाइटिस, आइटिस जहां भी है मतलब सूजन,
1: जी,
0: तो जब सूजन हो गया तो वो वहां का एडजस्टमेंट गड़बड़ हुआ तो नर्व्स को प्रेशर देने लगा,
1: जी,
0: तो नर्व्स प्रेशर देने लगा तो सिम्टम्स देने लगा, तो पेशेंट आकर के होम्योपैथिक क्वालिफाइड होम्योपैथिक चिकित्सक के पास यदि वो आके अपना कंप्लेन देता है और वो सारे कंप्लेन्स को कलेक्ट करके और मेडिसिन सेलेक्ट करके उसका ट्रीटमेंट देता है, पेशेंट को काफी रिलीफ मिलती है और विदाउट ऑपरेशन जो है, इवन हॉर्निया,
1: जी,
0: हॉर्निया, हाइड्रोसिल,
1: जी,
0: जैसे बच्चों के केसेस में जनरली जो है बच्चों के केसेस में अम्बिलाइकल हॉर्निया होता है, इंग्विनल हॉर्निया होता है,
1: जी,
0: जैसे उसको जिस समय उसका बर्थ हुआ तो अम्बिलिकस जब काटते हैं, लेडीज जितनी ANM वगैरह है काटती हैं, कोई खींच देता है तो बल्जिंग हो जाती है,
1: जी,
0: तो उसमें परफोरेशन हो जाता है,
1: वो सूज जाता है,
0: जी, सूज जाता है, सूज जाता है, जब बच्चा रोता है तो ब्लैडर की तरह, बैलून की तरह, नाभि का,
1: जी,
0: तो उसको अम्बिलिकल हॉर्निया कहते हैं,
1: जी,
0: वैसे हॉर्निया को हम लोग अपनी होम्योपैथिक मेडिसिन से ऑपरेट कर देते हैं,
1: जी,
0: ऑपरेट करने का सेंस ये कि मतलब क्लियर कर देते हैं,
1: जी,
0: विदाउट एनी स्कार, विदाउट एनी चीर फाड़,
1: जी,
0: हम उसको क्लियर कर दे, इवन एब्सेस,
1: जी,
0: इवन एब्सेस जो घाव हो गया, एक बार हम घाव देख लें उसके बाद जो है कोई जरूरत नहीं है छूने की, मैं मवाद वगैरह भी नहीं छूता, न इवन रुई से उसको पोंछता हूँ, अपने से मेरी मेडिसिन उसको एबॉर्ट करेगी, उसको पूरा निकाल करके साफ करेगी, बाती कोचेगी और उसके बाद ड्राई अप करके काम खत्म कर दी,
1: बाती उसमें डालने की जरूरत
0: नहीं है, नो नीड फॉर बाती बाती इसलिए जो है हमारे पैथ में विदाउट ऑपरेशन।
1: लेकिन डॉक्टर एम एन तिवारी जी, आंख में मान लीजिए कि मोतियाबिंद हो गया,
0: जी जी,
1: उसके लिए क्या करेंगे आप?
0: आंख में मोतियाबिंद हो गया, अगर वो मोतियाबिंद मैच्योर्ड नहीं है,
1: जी,
0: मैच्योर्ड हो गया तब तो उसको ऑपरेशन कराना है,
1: जी,
0: जैसे एपेंडिसाइटिस है,
1: जी,
0: तो एपेंडिसाइटिस है,

0: इसमें जितने भी सिम्टम्स आपको मिल रहे हैं प्राइमरी स्टेज में,
1: जी
0: तो वो होम्योपैथ के कंसर्निंग में जाता है, तो वैसे मरीज को आदमी इलाज देता है, इलाज देने के बाद उसको कह देता है कि देखो ठीक हो गया, लेकिन तुम इससे नेग्लिजेंसी अडॉप्ट मत करना, असावधानी मत बरतना, यू गो अंडर सर्जिकल ट्रीटमेंट, बिकॉज कुछ ऐसे केसेस हैं जिसको कि विदाउट सर्जरी होम्योपैथिक उसको क्लियर नहीं कर पाती।
1: ये आप मानते हैं?
0: जी हाँ, इस चीज को मानते हैं। लाइक एपेंडिसाइटिस, एक बार एपेंडिसाइटिस हुआ उसका दर्द कम कर दिए, दोबारा हुआ दर्द कम कर दिए, तिबारा में वो बर्स्ट कर जाएगा तो वो लाइफ सेव करना बड़ा मुश्किल है। तो सो दैट हम लोग पेशेंट को एडवाइस कर देते हैं उसी तरीके से कैटरेक्ट है। कैटरेक्ट जब तक पका नहीं है, जब तक वो पका नहीं है, मैच्योरिटी नहीं हुई है, अगर मैच्योर्ड हो गया तो हम लोग एडवाइस दे देते हैं पेशेंट को कि यू गो अंडर सर्जिकल मैनेजमेंट, या लेंस एडजस्टमेंट करवा लो, या सिंपल ऑपरेशन करो।
1: और मान लीजिए कि कभी चोट लग गई किसी को और माथे में खून का थक्का जमा है, उसको जो है एलोपैथ में ऑपरेशन करके निकाला जाता है, होम्योपैथ में क्या?
0: जी होम्योपैथ में, होम्योपैथ में हम लोगों के पैथ में इस चीज़ की दवाई है। जैसे मान लेते हैं किसी वेंस में अगर क्लॉट कर गया, उसको थ्रोम्बोसिस कहते हैं। थ्रोम्बस जो है वो क्लॉट जो है वेन में घूमते रहता है, वेन में घूमते रहता है, और जहाँ मान लेते हैं कहीं एक जगह है उसका मेन सेंटर, वहाँ पहुँचने के बाद पेशेंट फेंट कर जाता है।
1: जी।
0: तो वैसे सिचुएशन में हमारे पैथ में अच्छी अच्छी मेडिसिन है जो कि देने के बाद उस क्लॉट को डिसॉल्व करके और फिर सर्कुलेशन में सर्कुलेट करते हैं।
1: ऑपरेशन की जरूरत नहीं,
0: ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ती।
1: डॉक्टर एम एन तिवारी, आप आए और आपने इतनी अच्छी जानकारी दी कि बिना ऑपरेशन होम्योपैथी में चिकित्सा संभव है, लेकिन कहीं कहीं आपकी मजबूरी हो जाती है कि ऑपरेशन कराना पड़ता है।
0: जी जी।
1: आपने इतनी अच्छी जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
2: बिना ऑपरेशन होम्योपैथी में उपचार, अभी हमने के जानकारी लेत रही जा डॉक्टर एन एन तिवारी से, और यहाँ से बातचीत के लिए रही डॉक्टर श्याम सुंदर तिवारी। ए भेंट वार्ता खातिर यहाँ सबके और अच्छा सब जानकारी खातिर बहुत बहुत धन्यवाद। श्रोता भाई बहन, अभी हमने के एक ऐसा विषय पर चर्चा कल जी जवन हर माता पिता, शिक्षक और समाज खातिर अत्यंत महत्वपूर्ण बा, विषय बा बच्चों के अच्छे संस्कार के लिए रहे सजग। कहल जला कि बच्चा देश के भविष्य होला, उनकर व्यक्तित्व, उनकर व्यवहार, उनकर जीवन के मूल्य ही आवे वाला समाज के दिशा तय करेला। ऐसे बच्चा के अच्छा शिक्षा देवे के साथ साथ अच्छा संस्कार देना भी उतना ही जरूरी बा। संस्कार उ अमूल्य धरोहर है जौन मनुष्य के सही और गलत में अंतर करल सिखावेला। अच्छा संस्कार से ही बच्चा के जिम्मेवार, संवेदनशील और सफल नागरिक बनावेला। सब बच्चा पहले अपना घर से सीखेला, माता पिता और परिवार के सदस्य उनकर प्रथम गुरु होलन। बच्चा उहे सीखेला जौन उ अपना आसपास देखेला और सुनेला। यदि घर में बड़ के सम्मान कइल जाला, सत्य बोलल जाला, तो अनुशासन के पास पालन होला और दूसरा के भी सहायता कइल जाला, तो बच्चा भी यही गुण के अपनावेला। ऐसे माता पिता के चाहें कि स्वयं भी आदर्श व्यवहार प्रस्तुत करें, केवल उपदेश देवे से ना बल्कि अपना आचरण से बच्चा के सीख दीं। आज के भाग दौड़ भरल जिंदगी में अक्सर माता पिता अपना काम में इतना व्यस्त हो जानी जा कि बच्चा खातिर पर्याप्त समय नहीं खे निकल पावत, लेकिन बच्चा के केवल सुविधा ही ना बल्कि माता पिता के समय और स्नेह भी चाहिए। बच्चा के भावना के जाने के प्रयास करें। जब बच्चा के परिवार के सहयोग और मार्गदर्शन मिलेला तो वो गलत रास्ता से दूर रहेला। बच्चा के सत्य बोलना सिखाई, ईमानदार रहना सिखाई, बड़े के सम्मान करना सिखाई, छोटा से प्रेम करना, जरूरतमंद के सहायता करना, प्रकृति और पर्यावरण के रक्षा करना, छोट कहानी सुनाना, प्रेरक प्रसंग और महापुरुष के जीवन चरित्र में के अच्छा संस्कार विकसित करे वाला प्रभावी माध्यम बा। आज के समय में मोबाइल और इंटरनेट बच्चा के जीवन के हिस्सा बन चुकल बा। एकर सही उपयोग ज्ञान और विकास के माध्यम बन सकता, लेकिन गलत उपयोग बच्चा के व्यवहार और सोच पर नकारात्मक प्रभाव भी डालेला। ऐसे माता पिता के चाहें कि वो बच्चा के अच्छा संस्कार दें। और अब हमने के थोड़ा सा समय के हिसाब से मौसम

जानकारी ले लिया जा। समय कह रहल बा आप सबसे विदा लेबे के, तो चली चले चले के बेरा सुगिया बहन के तरफ से सब श्रोता भाई बहन के नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे ग्रामीण कार्यक्रम गांव घर। आकाशवाणी का ये सासाराम केंद्र है एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। गांव घर कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे संतोष कुमार। पेश है भोजपुरी फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम सांझे गीत। सांझे गीत में आइए सबसे पहले सुनते हैं प्रतिज्ञा फिल्म से ये गीत कविता कृष्णमूर्ति की स्वर में। शब्द विनय बिहारी के है, राजेश रजनीश ने धुन बनाया है।

0: आपन बिजनेस बढ़ावे खातिर लीही आकाशवाणी के सहयोग देहियों के बुलंदियन के पांख।
1: आपको बिजनेस स्थानीय बा चाहे देश स्तर का आकाशवाणी देले उपभोक्तन तक पहुँचे का विकल्प।

0: घर, दफ्तर चाहे दुकान पर बैठल करी आकाशवाणी के कोनो केंद्र खातिर विज्ञापन बुकिंग।
1: आकाशवाणी के चैनलन पर विज्ञापन देहल भइल सस्ता आ सुलभ।
0: त बुकिंग खातिर संपर्क करी 8700014242 पर।
1: जी हाँ, नंबर बा 8700014242।
2: और अब आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म विदाई से। स्वर उदित नारायण इंदु सोनाली के, शब्द धनंजय मिश्रा और धुन विनय बिहारी के।

और अब आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म वीरज तड़ीपार से। कल्पना प्रवीण सरकार ने इस गीत को स्वर दिया है और प्रेम सागर सिंह ने शब्द। संगीतकार हैं छोटे बाबा।

0: और इसी गीत के साथ सांझे गीत का यह कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे संतोष कुमार। आकाशवाणी का ये सासाराम केंद्र है एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। लीजिए सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम पारा मेडिकल है पारस।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री राज नर्सिंग ट्रेनिंग एंड पैरा मेडिकल इंस्टीट्यूट।
2: नमस्कार, मैं हूं राजेश और एक बार फिर से 7 दिनों के बाद आज बुधवार का दिन है और हम कार्यक्रम में पैरा मेडिकल है पारस लेकर आप सबों के घर आंगन में आ चुके हैं बातें करने की। पैरा मेडिकल का कोर्स, ANM GNM का कोर्स, ये सारा कोर्स जो है ना आपके जीवन में एक नई गति ला सकता है यदि आपने तरीके से पढ़ाई की। पैरा मेडिकल है पारस ये कार्यक्रम लेकर आते आते वर्षों निकल गया, लगातार ये कार्यक्रम जी हाँ चल रहा है और इसका लाभ लोग उठा रहे हैं। ये कार्यक्रम हम लेकर आते हैं श्री राज नर्सिंग ट्रेनिंग एंड पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट की तरफ से, जो कि पटना के जक्कनपुर इलाके में है, जक्कनपुर पुलिस लाइन के ठीक सामने। हाँ, यहाँ आप आकर मिल सकते हैं और ढेर सारी जानकारियां भी ले सकते हैं। कहते हैं ना साथियों कि टेक्निकल पढ़ाई का जमाना है, अगर जो आपने टेक्निकल पढ़ाई की तो आपके लिए रास्ते, हाँ रास्ते बहुत तरीके से खुल जाते हैं। हेल्थ सेक्टर में तो

0: और भी संभावनाएं हैं। आप पढ़ते पढ़ते रोजगार पा सकते हैं, अपनी अर्निंग शुरू कर सकते हैं, स्वरोजगार कर सकते हैं, सरकारी क्षेत्र में जा सकते हैं या फिर निजी क्षेत्र में भी आप अपनी किस्मत आजमा सकते हैं। कुल मिलाकर कहें तो दोनों हाथ में लड्डू है, लेकिन संस्थान का चुनाव हाँ बहुत सावधानी से करना चाहिए। देखना चाहिए कि कहाँ से संस्थान एफिलिएटेड है, क्लासरूम स्टडी की क्या व्यवस्था है, प्रैक्टिकल की क्या व्यवस्था है, लाइब्रेरी, किताबें बहुत महंगी होती हैं, किताबों के लिए क्या करना होगा, सब कुछ ठोक बजा के एकदम ठोक बजा के देखना होगा, फिर दाखिला लेना होगा और जोरदार पढ़ाई करनी होगी। बहरहाल चलिए, आज हमारे साथ यहाँ कौन है आपको बताएं, और वो हैं श्रीराज, नर्सिंग ट्रेनिंग एंड पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट के वाइस प्रिंसिपल हैं। आइए जानते हैं सबसे पहले इन्हीं से इनका परिचय, लेकिन उससे पहले हम नंबर बताना चाहेंगे जिस पर आप फोन करके जानकारियां ले सकते हैं। नंबर, दो नंबर बताएंगे, आप नोट कीजिए नंबर, और अगर आपके पास नंबर है तो कोई बात ही नहीं है। पहला नंबर है 9162 41 32 33, और दूसरा नंबर है 9155558888, यानी 9 1 4 5 और 4 8। चलिए मुलाकात करते हैं वाइस प्रिंसिपल साहब से और जानते हैं इनके विषय में। पहले फिर सवाल।
1: सर, मेरा नाम केशव कुमार डागुरा है, मैं जयपुर राजस्थान से हूँ और श्री राज ट्रस्ट हॉस्पिटल में लास्ट ईयर से वाइस प्रिंसिपल पोस्ट पर पोस्टेड हूँ।
0: वाइस प्रिंसिपल साहब, आप दूसरी बार हमारे इस कार्यक्रम में आ रहे हैं बच्चों को मोटिवेट करने के लिए, कहाँ से शुरुआत करें?
1: और मैं सभी बच्चों को यही बोलना चाहूँगा, नर्सिंग में एक अच्छा करियर,
0: नर्सिंग में एक अच्छा करियर है। आपकी पढ़ाई लिखाई कहाँ से हुई केशव जी? जो आज आपको सुन रहे हैं, पहली बार नहीं सुन पाए थे, उनके लिए पूछ रहा हूँ।
1: मैं सर जीवाजी यूनिवर्सिटी 2013 में पास आउट हूँ वहाँ से, और MSc नर्सिंग मेरा KS कॉलेज ऑफ नर्सिंग MPMSU से क्लियर किया हूँ।
0: बातचीत तो होती ही रहेगी, लेकिन ये बताइए कि बिहार आके राजस्थान से कैसा लग रहा है?
1: बिहार आके काफी अच्छा लग रहा है सर, और यहाँ पे नर्सिंग में और पैरामेडिकल क्षेत्र में हम लोग कुछ बेटर करना चाहते हैं, कुछ बेस्ट करना चाहते हैं बच्चों को एजुकेशन के मामले में।
0: अच्छा एक बात बताइए, हाँ आप यहाँ बाहर से आए हैं, हमारे पूरे बिहार के बच्चे ये जानना चाहते हैं कि श्री राज नर्सिंग ट्रेनिंग एंड पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट का माहौल कैसा है?
1: श्री राज नर्सिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का सर एजुकेशनली माहौल एकदम, सारे वेल एजुकेटेड टीचर्स हैं, लैब्स हमारे यहाँ जितनी भी हैं वो अवेलेबल हैं बच्चों को ट्रेनिंग देने के लिए। और मैं यही कहूँगा सभी बच्चों को, सबसे अच्छा एनवायरनमेंट हमारे यहाँ है अभी, और सर भी बहुत अच्छे हैं, चेयरमैन सर, डायरेक्टर सर, बच्चे को हर तरह से सपोर्ट मिलता है।
0: अच्छा अब चलते लौटते हैं BSc नर्सिंग कोर्स की तरफ, BSc नर्सिंग के बारे में पूरी जानकारी दीजिए बच्चों।
1: BSc नर्सिंग सर एक 4 ईयर का कोर्स होता है, इसके लिए इंटर में 12th में बायोलॉजी का होना जरूरी होता है। इसमें गवर्नमेंट भी सेंट्रल लेवल पर भी बहुत सारा वैकेंसीज होता है, आर्मी होता है, डिफेंस का जितना भी वैकेंसी होता है, एम्स होता है, ESIC हॉस्पिटल होता है, आजकल CHO 2020 से एक कॉन्ट्रेक्चुअल गवर्नमेंट पोस्ट दिया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, जिसका दिल्ली से संचालन होता है, बच्चा CHO भी पोस्टेड होता है, एक PSC होता है गाँव में सर जहाँ पे अंडर 5000 पॉपुलेशन होता है, वहाँ पर CHO को पोस्टेड किया जाता है।
0: आपने बड़ा बड़े अच्छे से बताया कि बच्चे कहाँ कहाँ जा सकते हैं BSc नर्सिंग की पढ़ाई करके, और 4 साल का कोर्स है आपने बताया
1: जी सर,
0: और जो इंटर में बायोलॉजी के साथ जिसने किया है वो यहाँ आ सकता है। बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ेगा, लेकिन दो बातें हम अपने सुनने वालों से कर लें। कार्यक्रम चल रहा है पैरामेडिकल हिपारस, और इस वक्त हमारे साथ केशव कुमार डांगुर साहब बैठे हैं जो श्री राज नर्सिंग ट्रेनिंग एंड पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट के वाइस प्रिंसिपल हैं, और अभी बातचीत चल रही है BSc नर्सिंग, जैसा कि अभी हमने बताया, और कहां कहां आप प्लेस्ड हो सकते हैं, रोजगार मिल सकता है, यानी एंड ऑफ द डे रोजगार ही चाहिए आपको, है ना, तो वो भी जानकारी दी है। अगर आपको और भी विशेष जानकारी चाहिए तो डॉक्टर NP प्रियदर्शी संस्थान के डायरेक्टर से आप सीधे बात कर सकते हैं, और उनका नंबर है 9162413233, 9162413233।

0: और दूसरा नंबर है 9155558888। ये नंबर है, इस पर बात कर लीजिए। और श्रीराज नर्सिंग ट्रेनिंग एंड पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट, जैसा कि आप सभी जानते हैं जो आज पहली बार सुन रहे हैं, उनको बता दें कि ये पटना के जक्कनपुर इलाके में है, जक्कनपुर पुलिस स्टेशन के ठीक सामने श्रीराज नर्सिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का अपना बिल्डिंग है, जहां क्लासेस चलते हैं, सारी गतिविधियां होती हैं। अपना श्रीराज ट्रस्ट हॉस्पिटल है जहां प्रैक्टिकल कराई जाती है। प्रैक्टिकल से ही एक सवाल हम आपसे पूछते हैं, क्योंकि टेक्निकल कोर्स है हेल्थ का, इसमें प्रैक्टिकल का कितना बड़ा रोल होता है?
1: मेरा मानना यह है सर, प्रैक्टिकल का इसमें 100% रोल होता है। बच्चा अगर उसको हॉस्पिटल में जाके ऑन पेशेंट करेगा या ऑन डमी करेगा, उसके लिए हमारे यहाँ कॉलेज में, इंस्टीट्यूट में, लैब में डमी पर ये सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं। उसके बाद पेशेंट के पास बच्चे को भेजा जाता है, जिससे टेक्निकली फेस टू फेस बच्चा पेशेंट को हैंडल करेगा, तो इससे ये चीज़ें सीखने को मिलती है सर।
0: कब से प्रैक्टिकल शुरू होता है? हम तो सुने हैं कि श्रीराज में जब बच्चे आते हैं तो एडमिशन हुआ और उनकी व्यवहारिक शिक्षा शुरू हो जाती है।
1: जी सर, ऐसा ही है, लेकिन नॉर्म्स के अकॉर्डिंग सर 3 मंथ्स बच्चे को फर्स्ट एजुकेशन थ्योरी का स्टडी कराया जाता है, पीटीएस एग्जाम होता है, उस एग्जाम के जस्ट बाद उनका आवरली इसमें होता है सर। हम लोग टोटल बच्चे को आवर के अकॉर्डिंग, ईयरली अकेडमिक अकॉर्डिंग भेजा जाता है बच्चे को हॉस्पिटल ड्यूटी में। अप्रोक्स 10 मंथ उसको कंटिन्यू हॉस्पिटल में ही रहना होता है, 6 आवर ड्यूटी।
0: अच्छा, आपका इंस्टीट्यूशन और हॉस्पिटल का कैंपस तो एक ही में है?
1: यस सर।
0: तो बच्चों को इसका लाभ तो मिलता होगा?
1: बिल्कुल, बच्चों को लाभ भी मिलता है, बच्चों को नाइट ड्यूटी भी, हम लोग जो भी सीखने का इच्छुक होता है हॉस्पिटल में, उसको अलग से भी सर का सपोर्ट होता है, चेयरमैन सर का, टीचर्स लोगों का भी सपोर्ट होता है, सारी चीजें बच्चे को अच्छे से लर्न कराई जाती है प्रैक्टिकल के लिए सर।
0: अच्छा, एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज होता है केशव जी, हम लोग भी जब स्टूडेंट रहे थे, आप भी रहे होंगे,
1: जी जी सर,
0: स्टूडेंट और टीचर का रिलेशन जो बच्चों के ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है।
1: जी बिल्कुल जरूरी होता
0: है, फ्रेंडली। तो क्या टीचर एकदम खौफ के साथ रहते हैं या बच्चों के साथ फ्रेंडली बिहेवियर?
1: नहीं सर, टीचर्स जो होता है, कम्युनिकेशन गैप हमारे नर्सिंग में एक टॉपिक होता है सर, जिसमें बच्चे का बिहेवियर, उसके कंप्लीट जो हैबिचुअल है, उन सारी चीजों को टीचर्स सर्विलेंस करते हैं, निगरानी में रखते हैं, अच्छे से देखते हैं, और जो गैप मेंटेन होना चाहिए टीचर्स स्टूडेंट के बीच में, वो होता है एजुकेशनली गैप और बिहेवियर को लेके। मुझे नहीं लगता हमारे यहाँ कोई भी स्ट्रिक्ट टीचर्स होगा, सभी बच्चे को अच्छे से हैंडल करते हैं, पोलाइटली हैंडल करते हैं,
0: यानी एकदम प्रैक्टिकल, एकदम बिहेवियर जो है फ्रेंड और टीचर का है बावजूद।
1: बिल्कुल सर,
0: है ना,
1: बिल्कुल
0: फ्रेंडली माहौल है।
1: बिल्कुल सर,
0: आपको क्या लगता है कि बच्चे जो आते हैं बीएससी नर्सिंग के लिए, जो ख्वाब लेके आते हैं, जो फ्यूचर में बनना चाहते हैं, तो अगर आपके यहाँ, आपके इंस्टीट्यूशन, कहने का मतलब श्रीराज नर्सिंग ट्रेनिंग एंड पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट से पढ़े, तो बच्चे अपने लक्ष्य को पा सकते हैं?
1: बिल्कुल सर, मैं यही बोलना चाहूँगा, बच्चे अच्छा मेहनत करेंगे, बच्चे और गार्जियन का भी उसमें सपोर्ट होता है सर, और बच्चों को भी स्टडी करना होगा, ये 4 ईयर ही होता है बच्चे की एक एज के अकॉर्डिंग, जो स्टडी जो उसका फ्यूचर बना सकती है।
0: जी बिल्कुल,
1: उसके बाद मैं यही बोलना चाहूँगा सभी बच्चों को, राज इंस्टीट्यूट में एक बार आइए और वहाँ पर देखिए स्टडी का, प्रैक्टिकल का, उसके बाद सभी बच्चों का उम्मीद यही है कि 99% उनका फ्यूचर बनेगा सर।
0: फ्यूचर बनेगा। हालांकि हम एक जानकारी और दे दें आप लोगों को कि बहुत सारे लोगों ने डायरेक्टर साहब को, डॉक्टर एनपी प्रियदर्शी जी को फोन किया कि हम लोग पटना नहीं आ पा रहे हैं, बहुत सारी चीजें हैं। इन्होंने गुरौल में भी वैसे लोगों के लिए, एक समाज का विकास हो सके, बच्चे गांव के भी आगे बढ़ सके, इसके लिए इन्होंने गुरौल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, जो श्रीराज ग्रुप का ही है, उन्होंने गुरौल में स्थापित किया है, वहां भी आप इसी नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं, 9162413233, और दूसरा 9155558888। वाइस प्रिंसिपल साहब केशव जी, एक सवाल जो हमारे आपके घर में भी होता रहा है, बच्चों को अभी भी मिडिल क्लास फैमिली में कहें तो करियर चुनने की आजादी नहीं होती है, उनके माँ बाप का बहुत बड़ा रोल होता है, बड़े भाई बहन का होता है, जो हम समझते हैं कुछ हद तक गलत है, सजेशन देना चाहिए। ऐसे में पूरा बिहार सुन रहा है, बात कीजिए कि ये गलत है या सही अपने हिसाब से।
1: मैं सभी गार्जियन से एक ही बात बोलना चाहूंगा, बच्चे पर बिलीव रखना है, बच्चे को अच्छा स्टडी के लिए, लाइफ एक बार मिलता है किसी भी इंसान को, तो मुझे ये लगता है कि बच्चे को आगे बढ़ाना चाहिए, पढ़ने के लिए भेजना चाहिए, उसके फ्यूचर पर ध्यान देना चाहिए। सभी गार्जियन से मेरा यही रिक्वेस्ट है।
0: और जो कोर्स वो चुनना चाहते हैं
1: जी,
0: उस पे लिबर्टी मिलनी चाहिए?
1: बिल्कुल मिलनी चाहिए सर, बच्चे की जो चॉइस है, बच्चा जिस चीज में जाना चाहता है उसको बिल्कुल गार्जियन को देना चाहिए और उसको आगे बढ़ने में

0: अच्छा एक बात और हम आपसे पूछना चाहेंगे केशव जी, आपका टीचिंग एक्सपीरियंस है, बहुत हमसे ज्यादा बच्चों के साथ आप रह चुके हैं।
1: जी, जी,
0: बहुत सारे बच्चे इनडिसिसिव होते हैं जिसमें वो डिसीजन नहीं ले पाते और प्लेन स्टडी को चुन लेते हैं। मसलन बीएससी कर रहे हैं तो फिजिक्स में या केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में, या इस तरीके से कर रहे हैं, तो अगर इसकी जगह वो टेक्निकल कोर्स को ऑप्ट करते तो शायद ज्यादा बेनिफिशियल होता।
1: जी।
0: तो वैसे बच्चों के लिए संदेश की अगर आप कंफ्यूजन है आपके पास तो आप किसी बड़े से, किसी एक्सपीरियंस आदमी से मदद ले सकते हैं। और इस वक्त रेडियो कार्यक्रम के माध्यम से आपसे ज्यादा एक्सपीरियंस तो कोई है नहीं, तो बताइए उन लोगों को।
1: मैं उन लोगों को ये बोलना चाहूंगा सर, जैसे चाइना है, अमेरिका जिस डेवलप कंट्री है, तो वहाँ पर एजुकेशन का मेन रोल है सर उस चीज में, टेक्निकल एजुकेशन का। वहाँ पर बच्चे को ही सिखाया जाता है बाज कैसे बनता है, मोबाइल कैसे बनता है, ये सारी चीजें उनको स्टार्टिंग से लर्न कराई जाती है। तो मैं सभी बच्चों को यही बोलना चाहूंगा कि बीएससी नर्सिंग एक टेक्निकल कोर्स होता है, इसमें आकर वो आगे बढ़े और अपना फ्यूचर बनाए।
0: आगे बढ़ें और फ्यूचर बनाएं। आप राजस्थान से बिहार आ गए, कैसा लग रहा है?
1: जी सर बहुत अच्छा लग रहा
0: है। बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद केशव कुमार डागुर साहब।
1: थैंक यू सर।
2: ये केशव जी थे जो वाइस प्रिंसिपल हैं श्री राज नर्सिंग ट्रेनिंग एंड पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट के। एक बात बताएं, टेक्निकल पढ़ाई में इतनी अपॉर्चुनिटी है, जैसे देखिए इन्होंने राजस्थान से पढ़ाई की और बिहार में आकर ये अपना योगदान दे रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं और श्रीराज ट्रस्ट के साथ जुड़े हैं। लगातार बच्चों में बीएससी नर्सिंग या टेक्निकल पढ़ाई के लिए प्रेरणा दे रहे हैं। बहरहाल साथियों, बीएससी नर्सिंग एक बहुत ही वाइब्रेंट है, एएनएम, जीएनएम, ये बहुत ही वाइब्रेंट कोर्स है। अगर जो आपने इसे चुन लिया तो आपके लिए रोजगार की कोई भी कमी नहीं होगी। इसके अलावे अगर आप पैरामेडिकल के कोर्सेज में जाना चाहते हैं, तो ढेर सारे कोर्सेज हैं। इसके अलावे हॉस्पिटल मैनेजमेंट का भी कोर्स आ गया है। सारी चीजों की जानकारी के लिए आप डायल कर सकते हैं 9162413233, 9162413233 या 9155558888, ये नंबर है। इस पर डॉक्टर एनपी प्रियदर्शी से आपकी बातचीत हो जाएगी और श्रीराज नर्सिंग ट्रेनिंग एंड पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट की तरफ से ये जो प्रोग्राम ला रहा हूँ, ये संस्थान बहुत ही उम्दा है, लाइब्रेरी की भी सुविधा है और अच्छे जगह से एफिलिएटेड है, हॉस्टल की सुविधा है। अगर आप चाहें, अगर आप चाहें तो फोन से बात कर सकते हैं और आकर मिल सकते भी हैं। नंबर हमने आपको बता ही दिया है, एक नंबर फिर से बता दे रहा हूं, 9155558888। और अब राजेश को दे इजाजत, नमस्कार।
3: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे श्री राज नर्सिंग ट्रेनिंग एंड पैरा मेडिकल इंस्टीट्यूट।
4: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम पैरा मेडिकल है पारस, FM 103.4 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है। प्रस्तुत है गुड इवनिंग रोहतास में सांध्यकालीन सूचना कार्यक्रम।

गुड इवनिंग रोहतास में। सबसे पहले आइए जाने, रोहतास जिले में पड़ रही भीषण गर्मी को देखते हुए जिला प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। जिला प्रशासन रोहतास ने आमजनों से अपील करते हुए कहा है कि गर्म हवाओं एवं लू के प्रभाव से बचने के लिए सभी नागरिकों को विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता है। प्रशासन द्वारा लोगों को सतर्क रहने तथा आवश्यक दिशा निर्देशों का पालन करने की सलाह दी गई है, ताकि लू एवं अत्यधिक गर्मी के दुष्प्रभाव से बचा जा सके। वर्तमान मौसम परिस्थितियों को देखते हुए विशेष रूप से बच्चे, बुजुर्ग, गर्भवती महिलाएं एवं बीमार व्यक्ति को अतिरिक्त सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। गर्मी के दौरान पर्याप्त मात्रा में पानी पीते रहें तथा शरीर में पानी की कमी न होने दें। हल्के रंग के

ढीले ढाले एवं सूती वस्त्र पहने, भोजन में हल्का एवं पौष्टिक आहार ले तथा तरबूज खरबूजा सहित पानी युक्त फलों का सेवन करें। इसके अलावा सत्तू पुदीना सौंफ एवं खस जैसे पारंपरिक खाद्य पदार्थों को भी दैनिक आहार में शामिल करने की सलाह दी गई है। जिला प्रशासन द्वारा स्वास्थ्य विभाग सहित सभी संबंधित विभागों को पूरी तरह सतर्क रहने का निर्देश दिया गया है। किसी भी आपात स्थिति में लोक सहायता हेतु टोल फ्री नंबर 101 एवं 112 पर संपर्क किया जा सकता है। वही समाहरणालय रोहतास में स्थापित कंट्रोल रूम में के नंबर हैं 06184226072 एवं 06184226093 पर भी सहायता के लिए संपर्क करने की अपील की गई है।

अगली सूचना माननीय मंत्री खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग बिहार सरकार सह प्रभारी मंत्री रोहतास के द्वारा जिला कार्यान्वयन समिति की बैठक में दिए गए निर्देश के आलोक में जिला पदाधिकारी रोहतास द्वारा जल संसाधन विभाग सभी प्रमंडलों का समीक्षात्मक बैठक की गई। समीक्षात्मक बैठक में उप विकास आयुक्त कार्यपालक अभियंता सिंचाई प्रमंडल डेहरी कार्यपालक अभियंता सोन बराज इंद्रपुरी डेहरी सोन उच्च स्तरीय नहर प्रमंडल सासाराम विक्रमगंज आरा बक्सर कार्यपालक अभियंता गंगा पंप नहर चौसा कार्यपालक अभियंता दुर्गावती बांध प्रमंडल दो भीतरी बांध कार्यपालक अभियंता दुर्गावती दाया तट नहर प्रमंडल चेनारी कार्यपालक अभियंता दुर्गावती कार्यप्रमंडल चेनारी एवं अन्य संबंधित विभागीय पदाधिकारी मौजूद रहे। बैठक का मुख्य उद्देश्य आगामी खरीफ मौसम के दौरान किसानों को निर्बाध सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराना, नहरों एवं वितरणियों के माध्यम से अंतिम छोर तक जल प्रवाह सुनिश्चित करना, जल जमाव की समस्याओं का समाधान करना तथा विभागीय योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करना था। बैठक में कार्यपालक अभियंता सिंचाई प्रमंडल डेहरी द्वारा बताया गया कि जल जीवन हरियाली के अंतर्गत औरंगाबाद डेहरी एवं सासाराम को सतही जल का उपयोग करते हुए पेयजल उपलब्ध कराए जाने की कार्य की भौतिक प्रगति 71% है। इसके साथ ही दुर्गावती दाया तट नहर प्रमंडल चेनारी एवं कार्य प्रमंडल चेनारी के कार्यपालक अभियंता द्वारा समीक्षात्मक बैठक में ध्यान आकर्षित किया गया कि दुर्गावती दाया तट नहर से निसंत्रित नहर लांची उप वितरणी में अंतिम छोर तक जल स्राव प्रवाहित करने में कठिनाइयां होती हैं एवं उगानी पंचायत में पहाड़ी पानी से जल जमाव की समस्या उत्पन्न हो जाती है। उर्दा वितरणी के अंतिम छोर भी हर एवं पहाड़ी नालियों पानियों से जल जमाव की समस्या से अवगत कराया गया है। जिला पदाधिकारी रोहतास की अध्यक्षता में ली गई समीक्षात्मक बैठक में सभी कार्यपालक अभियंता को निर्देश दिया गया है कि रोहतास परिक्षेत्रधीन नहरों एवं इससे निसंत्रित वितरणियों में मानक नहर संचालन प्रक्रिया के तहत अंतिम छोर में पानी पहुंचाना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही नहरों से हो रही जल जमाव की समस्या के निराकरण हेतु क्षेत्रीय पदाधिकारी द्वारा सर्वेक्षण कर यथाशीघ्र कार्रवाई करेंगे।

और हमारी अगली सूचना, आज दिनांक 3/6/2026 को जिला पदाधिकारी रोहतास श्रीमती उदिता सिंह द्वारा सहयोग शिविर एवं नल जल योजना को लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिले के सभी प्रखंड

विकास पदाधिकारी, BPRO, कार्यपालक पदाधिकारी, PHED एवं मुखियागण वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शामिल हुए। बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने जनहित से जुड़े मामले के त्वरित एवं गुणवत्तापूर्ण निष्पादन पर विशेष बल देते हुए सभी संबंधित पदाधिकारियों को अपने अपने स्तर से कार्यों की नियमित समीक्षा करने तथा लंबित मामलों का शीघ्र निपटारा करने सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है। जिलाधिकारी ने जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, भूमि विवाद, भूमि की नापी, दाखिल खारिज, परिमार्जन, प्राथमिकता से संबंधित मामले, जन शिकायतों, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं, विभिन्न अनुदान योजनाओं एवं अन्य लोकहितकारी मामले के त्वरित निष्पादन का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि सरकार की योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक समयबद्ध तरीके से पहुंचाना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। बैठक में 16 जून 2026 को आयोजित होने वाले सहयोग शिविर की तैयारी की भी समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने सभी प्रखंडों एवं पंचायतों में शिविर के व्यापक प्रचार प्रसार का निर्देश देते हुए कहा है कि अधिक से अधिक लोगों की इसकी जानकारी उपलब्ध कराई जाए ताकि आमजन अपनी समस्याओं एवं शिकायतों के समाधान हेतु शिविर का लाभ उठा सके।

अभी आपने सुना गुड इवनिंग रोहतास में सांध्यकालीन सूचना। आकाशवाणी का ये सासाराम केंद्र है FM 103.4 MHz पर। आइए पुनः रुक करते हैं आकाशवाणी के पटना केंद्र और सुनते हैं प्रादेशिक समाचार कुछ ही पलों में।

0: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे,
1: अरे रमुआ ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
0: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, आज ही रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in पर।

0: आकाशवाणी एट 90।
1: इधर आइए, इधर
2: इधर।
1: हाँ, विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना आइए और बिहार और झारखंड के किसी भी आकाशवाणी केंद्र से अपना विज्ञापन बुक कराइए।
3: देश के सबसे बड़े रेडियो नेटवर्क पर बिल्कुल किफायती दर पर आप अपने उत्पाद का प्रचार प्रसार कर सकते हैं।
2: अच्छा, ऐसी बात है, तो फिर इधर उधर क्यों भटकना, अपनी आकाशवाणी में अपनापन भी तो है।
3: बिहार और झारखंड के आकाशवाणी केंद्रों से विज्ञापन प्रसारण हेतु संपर्क करें।
2: विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना, हमारा मोबाइल नंबर है 9431021294। हमारा लैंडलाइन नंबर है 0612222502। हमारा ईमेल एड्रेस है patna@gmail.com।
3: शुभ वाणी,
2: लाभ वाणी,
1: आकाशवाणी।
4: आकाशवाणी एट 90, 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक, नॉन स्टॉप धमाल, पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है, आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने एनएच 31 और एनएच 231 के खगड़िया पूर्णिया खंड को फोर लेन में अपग्रेड करने की दी मंजूरी। राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान प्राप्त करने के लिए वार्षिक आय सीमा को 2.5 लाख रुपए से बढ़ाकर 4 लाख रुपए किया। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने कहा, TRE4 के लिए जुलाई महीने में प्रकाशित होगा विज्ञापन। और रोहतास जिले की तेलकप पंचायत को नानाजी देशमुख सर्वोत्तम पंचायत सतत विकास पुरस्कार से किया गया सम्मानित। अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने बिहार में एनएच 31 और एनएच 231 के खगड़िया पूर्णिया खंड को फोर लेन में उन्नयन की मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री

0: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि योजना के तहत 144 किलोमीटर लंबी सड़क का अपग्रेडेशन किया जाएगा। इस पर 3,936 करोड़ रुपए की लागत आएगी। उन्होंने बताया कि प्रोजेक्ट के हिस्से के रूप में पूर्णिया शहर में ग्रीनफील्ड बाईपास का निर्माण किया जाएगा।
1: खगड़िया से पूर्णिया सेक्शन को लिया गया है। इस सेक्शन की लेंथ है 144 किलोमीटर और कॉस्ट आएगी 3,936 करोड़ रुपीस। फोर लेनिंग होगी और प्रॉपर एक्सेस कंट्रोल हाई स्पीड रोड कॉरिडोर के तरीके से इसको डेवलप किया जाएगा। एग्जिस्टिंग टू लेन रोड है जिसको कि अपग्रेड किया जाएगा फोर लेनिंग से। बहुत इंपॉर्टेंट हाईवे है ये और आगे नॉर्थ ईस्ट की कनेक्टिविटी भी इसी से जुड़ती है।
0: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने खगड़िया पूर्णिया खंड को फोर लेन में उन्नयन की मंजूरी मिलने पर केंद्र सरकार को धन्यवाद दिया है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि इस परियोजना से सीमांचल और कोसी क्षेत्र की कनेक्टिविटी सुदृढ़ होगी और आर्थिक विकास को नई गति मिलेगी। राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान प्राप्त करने के लिए वार्षिक आय सीमा को 2.5 लाख रुपए से बढ़ाकर 4 लाख रुपए कर दिया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। बैठक के बाद कैबिनेट विभाग के अपर मुख्य सचिव अरविंद कुमार चौधरी ने बताया कि आय सीमा बढ़ने से अधिक मरीजों को योजना का लाभ मिलेगा।
2: स्वास्थ्य विभाग का एजेंडा था जिसके अंतर्गत मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से राज्य के मरीजों को इलाज के लिए अनुदान का लाभ प्राप्त करने हेतु पूर्व से निर्धारित वार्षिक आय सीमा 2.5 लाख रुपए से बढ़ाकर उसे 4 लाख रुपए करने की स्वीकृति दी गई।
0: श्री चौधरी ने बताया कि कैबिनेट ने प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद उद्योग उन्नयन योजना के क्रियान्वयन के लिए 164 करोड़ रुपए से अधिक की राशि स्वीकृत की है। वहीं भोजपुर जिले में एकीकृत एक्वा पार्क की स्थापना के लिए 31 करोड़ रुपए से अधिक की योजना को भी मंजूरी दी गई। कैबिनेट ने कुल 13 प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने कहा है कि चौथे चरण की शिक्षक नियुक्ति परीक्षा TRE4 के लिए जुलाई महीने में विज्ञापन प्रकाशित कर दिया जाएगा। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में श्री तिवारी ने बताया कि शिक्षक नियुक्ति के लिए अब प्रत्येक वर्ष जुलाई महीने में ही विज्ञापन प्रकाशित किए जाएंगे। अगले 5 वर्षों में 1 लाख शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी।
3: हमने 5 साल में हमने कैलेंडर बनाया है कि हम 1 लाख शिक्षकों की और भर्ती करेंगे। अब कैलेंडर बनाया है तो इसमें हर साल किसी साल 12,000 किसी साल 15,000 शिक्षक हमारे रिटायर भी होने वाले हैं। TRE4 की वैकेंसी जुलाई महीने में हम अधियाचना BPSC को भेज देंगे और हमारी सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में यह निर्णय लिया है कि हर साल न्यूनतम 20,000 की बहाली करेंगे और 5 साल में 1 लाख करेंगे।
0: शिक्षा मंत्री ने कहा कि राज्य के मदरसों और संस्कृत विद्यालयों की स्थलीय जांच की जाएगी। उन्होंने कहा कि जिन विद्यालयों में तय मानकों के अनुरूप शिक्षण व्यवस्था नहीं पाई जाएगी उसे बंद किया जाएगा।
3: और मदरसा विद्यालय हो या संस्कृत विद्यालय, सभी विषयों की पढ़ाई होगी। दोनों को साथ साथ करा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि किसी एक पर हम कर रहे हैं, हम दोनों को करा रहे हैं। जबकि संस्कृत विद्यालयों को तो हम लोगों ने इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कुछ पैसे दिए ही नहीं आज तक, और मदरसे को हमेशा पैसा मिलता है, चाहे वो वेतन का पैसा हो या इंफ्रा का पैसा हो, वो अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय द्वारा मिलता है।
0: ग्रामीण विकास मंत्री राजीव रंजन सिंह ने आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित कार्यक्रम में राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार प्रदान किए। देश भर की 42 उत्कृष्ट पंचायतों को ग्रामीण विकास, सुशासन, जनभागीदारी, स्वच्छता, डिजिटल सेवाओं तथा सतत विकास लक्ष्यों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए 2 श्रेणियों में ये पुरस्कार प्रदान किए गए। सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत पुरस्कार श्रेणी के अंतर्गत नानाजी देशमुख सर्वोत्तम पंचायत सतत विकास पुरस्कार से रोहतास जिले की तेलकप पंचायत को पुरस्कृत किया गया। इस श्रेणी में पंचायत को 2रा स्थान प्राप्त हुआ है। मुखिया अनीता टोप्पो ने पुरस्कार ग्रहण किया।
4: सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत में द्वितीय पुरस्कार जाता है टेल कप बिहार को।
0: इस अवसर पर केंद्रीय

0: मंत्री राजीव रंजन सिंह ने कहा कि सरकार विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए पंचायतों के सशक्तिकरण पर काम कर रही है।
1: आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का यह सपना है और एक लक्ष्य निर्धारित 2047 तक हम भारत को विकसित भारत बनाएंगे। हम विकसित भारत बनाने का लक्ष्य लेके चल और हम उस लक्ष्य को लेके हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चल रहे हैं। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ये सोच है कि ग्रामोदय से ही भारत का उदय हो सकता है। जब तक गांव सशक्त नहीं होगा तब तक इस देश को हम विकसित भारत नहीं बना सकते और इसलिए पंचायती राज व्यवस्था में के प्रति उनका समर्पण रहा है।
0: राजस्व और भूमि सुधार मंत्री दिलीप कुमार जायसवाल ने कहा है कि राज्य के 13 जिलों में आयोजित होने वाले श्रावणी मेले के लिए 2,25,00,000 रुपए की राशि आवंटित की गई है। उन्होंने कहा कि यह राशि मेला क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण और श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए खर्च की जाएगी। श्री जायसवाल ने कहा कि राज्य सरकार श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
2: कहाँ चलती है? इधर तो आओ।
3: इधर आइए। इधर
4: इधर
3: हाँ, विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना आइए और बिहार और झारखंड के किसी भी आकाशवाणी केंद्र से अपना विज्ञापन बुक कराइए।
5: देश के सबसे बड़े रेडियो नेटवर्क पर बिल्कुल किफायती दर पर आप अपने उत्पाद का प्रचार प्रसार कर सकते हैं।
4: अच्छा, ऐसी बात है, तो फिर इधर उधर क्यों भटकना, अपनी आकाशवाणी में अपनापन भी तो है।
5: बिहार और झारखंड के आकाशवाणी केंद्रों से विज्ञापन प्रसारण हेतु संपर्क करें।
4: विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना।
6: हमारा मोबाइल नंबर है 9431021294। हमारा लैंडलाइन नंबर है 0612225042। हमारा ईमेल एड्रेस है patnacbs@gmail.com।
5: शुभ वाणी,
6: लाभ वाणी,
3: आकाशवाणी।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल @news_पटना को फॉलो कर सकते हैं। पूरा प्रदेश भीषण गर्मी की चपेट में है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार कई स्थानों का अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस को पार कर गया है। पिछले 24 घंटों के दौरान 40.6 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान के साथ बक्सर राज्य का सबसे गर्म स्थान रहा। पटना का अधिकतम तापमान 39.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम पूर्वानुमान में कहा गया है कि अगले 2 से 3 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की और बढ़ोतरी हो सकती है।
7: अगले 2 से 3 दिनों के दौरान राज्य के अनेक स्थानों के अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की क्रमिक वृद्धि होने का पूर्वानुमान है। राज्य के उत्तर पूर्व और दक्षिण पश्चिम भाग के जिलों के 1 या 2 स्थानों पर वर्षा की संभावना है, जबकि शेष भागों का मौसम आमतौर से शुष्क बने रहने की संभावना है।
0: मुंगेर के ITC पार्क स्थित 700 साल पुराने विशाल वटवृक्ष को हेरिटेज ट्री घोषित करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। हमारे संवाददाता ने बताया कि दुनिया के सबसे पुराने वृक्ष के रूप में खड़ा यह वटवृक्ष बिहार के महत्वपूर्ण प्राकृतिक धरोहर है। एक रिपोर्ट।
8: मुंगेर के ITC पार्क में 700 वर्ष पुराना वटवृक्ष को प्राकृतिक धरोहर के रूप में पहचान देने की कवायद शुरू हो गई है। वन प्रमंडल पदाधिकारी अमरीश कुमार मल ने बताया कि लखनऊ के बीरबल सहनी पूरा विज्ञान संस्थान के वैज्ञानिकों ने कार्बन डेटिंग से इस वटवृक्ष की उम्र 700 वर्ष निर्धारित की है।
9: काफी पुराना ये प्रतीत होता है, इसलिए हमने लखनऊ के एक इंस्टीट्यूट को हमने इसके उम्र पता करने के लिए हमने एक लेटर दिया था और हालिया में ही उनका रिपोर्ट हमें प्राप्त हुआ है, जिसमें यह बताया गया है कि ये करीब 700 से भी ज्यादा वर्ष पुराना पेड़ है।
8: मुंगेर बानकी महाविद्यालय की सहायक प्राध्यापिका कृतिका सुमन ने कहा कि इस पेड़ का संरक्षण चुनौतीपूर्ण है।
10: ये हमारे राज्य के लिए एक बहुत बड़ी धरोहर है, इसको बचाने के लिए बहुत सारी चीजें हैं जो हम कर सकते हैं। इसका जो पहला चैलेंज है वो ये है, क्योंकि इसके जो एरियल रूट्स है और इसके जो तने हैं वो काफी दूर तक फैले हुए, उनको सपोर्ट देना है। तो इसके चलते हम

0: आर्टिफिशियल कोई बैम्बू का खंभा वगैरह लगा सकते हैं उसको एरियल रूट्स को सपोर्ट करने के लिए। दूसरी चीज है कि इंसेक्ट्स का अटैक होता होगा, दीमक का अटैक उसमें हो रहा होगा, तो हमको उस अटैक से भी उसको बचाना है। तीसरा, जितना ज्यादा हो सके हमको ह्यूमन इंटरफेरेंस को रोक, उसके आसपास हमको कंस्ट्रक्शन नहीं करनी है, मिट्टी खुली रहे ताकि उसके जो रूट्स है उनको ऑक्सीजन मिलता रहे, पानी प्रॉपर मिलता रहे, जिससे वो नॉर्मल तरीके से जीवित रह सके। क्योंकि ऑब्वियसली इतना पुराना पेड़ है तो उसमें बहुत सारे पशु पक्षी वगैरह रहते होंगे, तो हमको उसको एज ए इको सिस्टम कंजर्व करना।
1: मुंगेर का यह बट वृक्ष हमें यह याद दिलाता है कि जब तक हम अपनी प्रकृति को सहेज कर रखेंगे, हमारा इतिहास भी अमर रहेगा। आकाशवाणी समाचार के लिए मुंगेर से प्रशांत कुमार सिंह।
2: ऊर्जा विभाग के सचिव अजय यादव ने भीषण गर्मी को देखते हुए निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने का अधिकारियों को निर्देश दिया है। विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान उन्होंने उपभोक्ताओं की शिकायतों के शीघ्र निपटारे के भी निर्देश दिए। भागलपुर के विक्रमशिला सेतु के क्षतिग्रस्त हिस्से पर निर्मित बेली ब्रिज पर वाहन परिचालन का सफल ट्रायल किया गया। परीक्षण के दौरान 2.5 टन वजन वाले चार पहिया वाहन को 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलाकर पुल की मजबूती की जांच की गई। मधुबनी जिले के बिस्फी थाना क्षेत्र के केरवार गांव में पानी से भरे एक गड्ढे में डूबने से एक ही परिवार के 5 बच्चों की मौत हो गई। मृतकों में सगे और चचेरे भाई बहन शामिल हैं। हमारे संवाददाता ने बताया कि मिट्टी खनन के लिए जेसीबी से खोदे गए गड्ढे में नहाने के दौरान ये हादसा हुआ। सभी बच्चों के शव बरामद कर लिए गए हैं। इधर जिला प्रशासन की ओर से मृतकों के निकटतम परिजनों को 4-4 लाख रुपए की अनुग्रह राशि प्रदान की गई है। निगरानी जांच ब्यूरो की टीम ने स्वास्थ्य विभाग के तिरहुत प्रमंडल के क्षेत्रीय अपर निदेशक डॉक्टर अजय कुमार को पटना में 40,000 रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। वहीं ब्यूरो की टीम ने नवादा जिले के मैस्कौर प्रखंड के ग्रामीण आवास सहायक वीरू कुमार चौधरी को 10,000 रुपये रिश्वत लेते गिरफ्तार किया। युवा रोजगार और कौशल विकास विभाग की ओर से बेगूसराय में आयोजित रोजगार मेले में 70 से अधिक युवाओं को विभिन्न कंपनियों ने ऑफर लेटर प्रदान किया। इधर दरभंगा में कल से 6 जून तक अलग अलग प्रखंडों में रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। खगड़िया और मोतिहारी में भी कल एक दिवसीय रोजगार मेले का आयोजन होगा। मुंगेर जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के शंकरपुर गांव में एक व्यक्ति के घर पर फायरिंग करने के मामले में पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। मधुबनी जिले के रहिका थाना क्षेत्र से पुलिस ने हाईवे पर फायरिंग करने के आरोप में एक आरोपी को हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। शेखपुरा जिले के पैन पंचायत में राष्ट्रव्यापी खेत बचाओ अभियान के तहत किसानों के लिए जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ज्ञान भारतम मिशन के तहत सहरसा जिले के कहरा गांव से अभय कांत ठाकुर ने लगभग 500 साल पुरानी पांडुलिपि जिला प्रशासन को सौंपी है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने एनएच 31 और एनएच 231 के खगड़िया पूर्णिया खंड को 4 लेन में अपग्रेड करने की दी मंजूरी। राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान प्राप्त करने के लिए वार्षिक आय सीमा को 2.5 लाख रुपए से बढ़ाकर 4 लाख रुपए किया। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने कहा, TRE4 के लिए जुलाई महीने में प्रकाशित होगा विज्ञापन। और रोहतास जिले की तेलकप पंचायत को नानाजी देशमुख सर्वोत्तम पंचायत सतत विकास पुरस्कार से किया गया सम्मानित। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:48 से प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
3: इधर आइए, इधर
4: इधर।
3: हाँ, विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना आइए और बिहार और झारखंड के किसी भी आकाशवाणी केंद्र से अपना विज्ञापन बुक कराइए।
5: देश के सबसे बड़े रेडियो नेटवर्क पर बिल्कुल किफायती दर पर आप अपने उत्पाद का प्रचार प्रसार कर सकते हैं।
4: अच्छा, ऐसी बात है, तो फिर इधर उधर क्यों भटकना, अपनी आकाशवाणी में अपनापन भी तो है।
5: बिहार और झारखंड के आकाशवाणी केंद्रों से विज्ञापन प्रसारण हेतु संपर्क करें।
4: विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना। हमारा मोबाइल नंबर है 9433

0: 3102194। हमारा लैंडलाइन नंबर है 0612-222-5042। हमारा ईमेल एड्रेस है patnacbs@gmail.com।
1: शुभ वाणी,
0: लाभ वाणी,
1: आकाशवाणी।
2: यह आकाशवाणी का पटना केंद्र है। प्रस्तुत है कटिहार जिले की हलचल। इसे प्रस्तुत कर रहे हैं हमारे संवाददाता कुमार मुकेश चौधरी।
3: कटिहार जिला प्रशासन द्वारा आम नागरिकों की शिकायतों के त्वरित और प्रभावी समाधान के लिए पंचायत स्तर पर सहयोग शिविर का आयोजन किया जा रहा है। यह शिविर प्रत्येक माह के पहले और तीसरे मंगलवार को संबंधित पंचायत सरकार भवन अथवा निकटवर्ती सार्वजनिक स्थल पर आयोजित किया जा रहा है। जिले के प्रभारी मंत्री प्रमोद कुमार चंद्रवंशी और प्रभारी सचिव राजकुमार द्वारा विधिवत रूप से जिले की कई पंचायतों में कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है। इस अवसर पर उपस्थित जनसभा को संबोधित करते हुए प्रभारी सचिव राजकुमार ने कहा कि यह सहयोग शिविर जनता और सरकार के बीच एक सेतु का कार्य कर रहा है। बीते कुछ दिनों से जिला भीषण गर्मी की चपेट में है। जिले का अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस रहने की वजह से सुबह से ही गर्मी का असर दिखने लगा है। इधर भीषण गर्मी की वजह से अस्पतालों में भी मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। वहीं नगर निगम क्षेत्र में 15 स्थानों पर निःशुल्क पियाव की व्यवस्था की गई है। कटिहार नगर निगम के नगर आयुक्त संतोष कुमार ने बताया कि शहर के सभी प्रमुख चौक चौराहों पर पियाव की व्यवस्था की गई है। साथ ही कई स्थानों पर शेड का निर्माण भी कराया गया है ताकि लोगों को इस गर्मी में कुछ राहत मिल सके।
4: नगर निगम क्षेत्र में 15 जगहों पे पियाऊ की व्यवस्था की गई है। आम नागरिकों को निःशुल्क पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है और इसके साथ साथ उनको ORS भी दिया जा रहा है।
3: कटिहार के सभी सरकारी विद्यालयों में अब माता समूह का गठन किया जाएगा जो बच्चों की नियमित उपस्थिति, पढ़ाई की गुणवत्ता, अनुशासन और विद्यालय की गतिविधियों पर नजर रखेगा। शिक्षा विभाग की इस नई व्यवस्था के माध्यम से स्कूल और अभिभावकों के बीच समन्वय को मजबूत करने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम है। इस पहल के तहत माता समूह की बैठक प्रत्येक महाविद्यालय में आयोजित होगी। जिला शिक्षा पदाधिकारी राहुल चंद चौधरी ने बताया कि सरकारी विद्यालयों में माताओं की सक्रिय भागीदारी बढ़ाने को लेकर तैयारी शुरू कर दी गई है। माता समूह द्वारा दिए गए सुझावों और फीडबैक के आधार पर विद्यालयों में सुधारात्मक कार्रवाई भी की जाएगी। जिले के बराड़ी और मनिहारी में बीते दिनों अवैध खनन के विरुद्ध जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 21 हाईवा तथा एक पोकलेन को जब्त किया। इन सभी वाहनों में अवैध रूप से मिट्टी का खनन कर ओवरलोडिंग के साथ परिवहन किया जा रहा था। जिला पदाधिकारी आशुतोष द्विवेदी ने बताया कि जिले में लगातार अवैध खनन को लेकर अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बराड़ी, मनिहारी, कुर्सेला समेत कई स्थानों पर अवैध खनन के विरुद्ध लगातार छापेमारी की जा रही है। कटिहार के प्रभारी मंत्री सह खान एवं भूतत्व मंत्री प्रमोद कुमार ने जिले के विकास भवन स्थित सभागार में 20 सूत्रीय और आपदा की समीक्षा बैठक में भाग लिया। बैठक के बाद पत्रकारों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि जिले में अब किसी भी प्रकार की सरकारी सहायता या सरकारी अनुदान राशि स्थानीय जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में ही दी जाएगी। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक आपदा से जान गंवाने वाले मृतकों के परिजनों को राहत अनुदान राशि के अलावा अन्य प्रकार की अनुदान राशि भी अब स्थानीय जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में ही देने का निर्देश दिया गया है। श्री कुमार ने कहा कि कटिहार जिला कई नदियों से घिरा हुआ है, इसलिए संभावित बाढ़ एवं प्राकृतिक आपदा के खतरे से निपटने के लिए जिला के सभी पदाधिकारियों और कर्मियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं।
5: तो हम लोग से बैठ करके उसका पहले से तैयारी कर लेंगे ताकि बाढ़ आने के पहले लोगों के जान माल की रक्षा हो सके, बाढ़ से लोग ज्यादा प्रभावित नहीं हो। ये हम सब लोग अभी तुरंत बैठक करके हम लोग इसका प्लान कर।
3: कटिहार प्रखंड अंतर्गत उत्क्रमित मध्य विद्यालय सिरसा में समर कैंप का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन जिला शिक्षा पदाधिकारी और प्रखंड विकास पदाधिकारी सह प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी द्वारा किया गया। यह कैंप 1 जून से शुरू होकर 30 जून तक चलेगा। इस दौरान छात्र छात्राओं के सर्वांगीण विकास, उनकी रचनात्मक प्रतिभा के संवर्धन, भाषा एवं गणितीय दक्षता में वृद्धि तथा विभिन्न शैक्षणिक और सह शैक्षणिक गतिविधियों को बढ़ावा देगा। जिला शिक्षा पदाधिकारी राहुल चंद्र चौधरी ने बताया कि समर कैंप बच्चों के लिए केवल अवकाशकालीन गतिविधि नहीं है, बल्कि यह उनके बौद्धिक, सामाजिक, भावनात्मक एवं रचनात्मक विकास का एक महत्वपूर्ण मंच है। उन्होंने कहा कि यह कैंप विद्यार्थियों को सभी गतिविधियों में सक्रिय सहभागिता करने तथा अपने अंदर छिपी प्रतिभाओं को विकसित करने में सहायक साबित होगा।
2: अभी आप सुन रहे थे कटिहार जिले की हलचल। इसे प्रस्तुत कर रहे थे हमारे संवाददाता कुमार मुकेश चौधरी।
6: आकाशवाणी का ये सासाराम केंद्र है FM 103.5।

0: रागिनी। तो प्यार भरा नमस्कार आप सभी को, और चलिए इसी के साथ कार्यक्रम में जुड़ते हैं हमारे श्रोताओं से और लेते हैं कार्यक्रम का ये पहला कॉल। हेलो मनपसंद।
1: नमस्कार जी।
0: नमस्ते,
1: साबिर परवाना बोल रहे हैं, नाहरमन टोला, जिला मधुबनी, बिहार से।
0: जी साबिर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हेलो
1: बहुत बहुत
0: मनपसंद
1: धन्यवाद।
0: कार्यक्रम में।
1: कैसे हैं दीदी आप?
0: आप सबकी दुआ है, बहुत ही अच्छा चल रहा है। और आप अपना सुनाइए।
1: ठीक है, एकदम बढ़िया, एकदम मस्त है, एकदम।
0: आकाशवाणी सासाराम के सभी कार्यक्रम सुनते हैं या कोई खास
1: कितने
0: कार्यक्रम
1: प्रकार
0: आपको
1: की बात,
0: पसंद
1: जितना
0: आता
1: सब
0: है?
1: सुनते हैं।
0: सब सुनते हैं।
1: जी।
0: कौन सा गीत आप सुनना चाह रहे हैं?
1: आज आंखें फिर वह गाना सुना दीजिए, मिलती है जिंदगी में मोहब्बत कभी कभी।
0: जी बेहद ही खूबसूरत गीत आपने चुना है, तो चलिए पूरी करते हैं आपकी फरमाइश।

0: हेलो मनपसंद।
1: हेलो दीदी, नमस्ते।
0: नमस्ते। वाह,
1: गंगाधर सावनकर, कुंडलवाड़ी, जिला नांदेड़, महाराष्ट्र से बात कर रहा हूँ दीदी। जी
0: बड़ी ही दूर से आपने आज फोन कॉल मिलाया है।
1: जी जी बहुत दिन
0: तो
1: के बाद मिला मेरे को। पहले सर जी से बात की थी, आज दीदी से बात हो रही है।
0: अच्छा, हमें भी बहुत अच्छा लगता है आप सभी श्रोता जो इतनी दूर से हमें कार्यक्रम में अपनी फरमाइश के गीत सुनने के लिए फोन करते
1: हाँ
0: हैं।
1: दीदी,
0: तो
1: और आपके पूरे अनाउंसर और स्टेशन डायरेक्टर को मेरे तरफ से नमस्ते कहना दीदी, क्योंकि ये मनपसंद जो प्रोग्राम है बहुत अच्छा लगता है मुझे, तो बहुत अच्छा कार्यक्रम है दीदी।
0: हाँ, ये तो है ही कि आप सभी श्रोताओं के प्यार से हमारा ये कार्यक्रम बहुत ही प्रसिद्ध हुआ है और हमें भी अच्छा लगता है आप सभी श्रोताओं से इस कार्यक्रम में बात करके। आज आप कौन सा गीत सुनना चाहते हैं?
1: खिलाड़ी दीदी,
0: जी,
1: और गाने के बोले तुमसे बना मेरा जीवन सुंदर सपन सलोना, ये मोहम्मद अजीज और अनुराधा पोलवाल ने गाया जा रहा है जी।
0: अच्छा, तो आपको ये गीत सुनना है खतरों के खिलाड़ी फिल्म का। आपको सुनवाते हैं।
1: कार्यक्रम में पूरे गाने जो करते दीदी आप, और गाने ऐसे पसंद रहते हैं कि कभी सुने सुने सभी गाने आप बजते हैं कार्यक्रम में।
0: सासाराम के सभी कार्यक्रम बहुत अच्छे लगते हैं।
1: और कुछ मित्रों का नाम लेना चाहता हूँ दीदी,
0: जी बिल्कुल लीजिए।
1: हमारे गौतम दादा राय बोले जी है, तुकाराम जाधव जी है, सुनील झा, दिलीप पाहू झा, उदयलाल तिलक जी है, राजेंद्र गंगवार जी है, और सुरेश जाधव पैटन के सभी दोस्तों को ये गाना सुना है, आपको भी डेलीगेट गाना दीजिए।
0: जी बिल्कुल, और लीजिए, आप सुनिए अपने दोस्तों के साथ अपनी पसंद का ये बेहद ही खूबसूरत गीत।

0: हेलो मनपसंद
1: हेलो
0: जी, नमस्कार। कौन बात कर रहे हैं?
1: जी, हम योगेश जांगड़े बोल रहे हैं, बेमेतरा छत्तीसगढ़ से।
0: जी योगेश जी, आपने आज फोन कॉल मिलाया और आपका कॉल लग भी गया, तो आज क्या सुनना चाहेंगे आप?
1: फिल्म ब्रह्मचारी से सुनवा देंगे, आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर जुबान पर। जी
0: जी, सुमन कल्याणपुर की भी आवाज़ है। अभी तो हाल ही में 31 मई की
1: जी
0: शाम को उनका निधन हो गया। जो भी हिंदी साहित्य जगत और हिंदी फिल्मी जगत संसार के जो भी हम जैसे लोग हैं जो सुमन कल्याणपुर की आवाज़ को बड़े ही चाव से सुनते थे, तो हम लोगों के लिए तो ये बहुत ही गमज़दा खबर है। और आपने ये गीत चुनकर उन्हें श्रद्धांजलि देने का काम किया है, तो योगेश जी पूरी करते हैं आपको आपकी पसंद के इस गीत के साथ आपकी फरमाइश।

0: हेलो मनपसंद,
1: नमस्ते,
0: नमस्ते।
1: मेरा नाम पड़ेगा भूअर।
0: भूअर, कहाँ से बात कर रहे हैं आप?
1: पूरा से बात कर रहे हैं।
0: कहाँ पड़ता है ये?
1: सासाराम, बिहार, रोहतास जिला में।
0: रोहतास जिला में सासाराम के नजदीक ही पड़ता है। आप आकाशवाणी सासाराम के सभी कार्यक्रम सुनते हैं?
1: सब सुनते हैं, रोज सुनते हैं।
0: कौन कौन से कार्यक्रम आपको पसंद आते हैं?
1: बहुत से जो भी भोजन होता है सब मेरे पसंद आता है।
0: अच्छा, नमस्ते रोहतास जो सुबह में होता है, प्रातःकालीन सूचना कार्यक्रम सुनते हैं आप रोज?
1: हाँ, सुनते हैं।
0: अच्छा, आज क्या सुनना चाहेंगे आप?
1: तुमको देखा जो जाना सनम। हाँ
0: तुमको देखा तो ये जाना सनम, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, इस फिल्म का ये गीत है। बड़ा ही संगीत में ये फिल्म था और इसका ये जो गीत है ये तो आज तक काफी चर्चित और प्रसिद्ध है,
1: हाँ
0: और जब भी
1: इसीलिए
0: हम
1: तो ये
0: सुनते
1: मेरा
0: हैं तो
1: याद रह
0: काफी
1: गया,
0: अच्छा लगता
1: बहुत
0: है।
1: फेवरेट मेरा गाना है ये।
0: अच्छा, चलिए आपका फेवरेट गीत हम आपको सुनवा रहे हैं, लीजिए सुनिए।

0: हेलो मनपसंद,
1: नमस्ते
0: नमस्ते। किनसे बात हो रही है हमारी?
1: मैम। निसार बोल रहे हैं, काशी सासाराम से। जी
0: अच्छा, काशी सासाराम से बोल रहे हैं आप। आज क्या सुनना चाहेंगे आप?
1: एक डंकी फिल्म में गाना है, गाना का बोल है, जो भी हो वजह तेरी जाने का।
0: डंकी फिल्म का ये गीत है ना?
1: जी मैं पूरा रास्ता देखूंगा। बोलो।
0: अच्छा जी। किन्हीं श्रोताओं के नाम लेना चाहेंगे आप, आपके जो दोस्त हैं?
1: जैसे इब्राहिम हो गए, पंकज कुमार हो गए, राजनाथ हो गए। जी
0: जी, अकासी के आप सभी श्रोताओं का, जो ये निसार कमाल और इब्राहिम, इन सभी की फरमाइश भी आती रहती है गाने, मैसेज के गाने कार्यक्रम में शामिल भी हम करते हैं। आपकी फरमाइश अक्सर नए गीतों के लिए ही रहती है, नए गीत आपको बहुत पसंद आते हैं, है ना? तो चलिए हम सुनवाते हैं आपको डंकी फिल्म का गीत।

0: हेलो मनपसंद
1: हेलो मनपसंद,
0: जी, नमस्कार।
1: हम गुड्डू शर्मा बात कर रहे हैं,
0: गुड्डू शर्मा कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: जिला औरंगाबाद बिहार, ग्राम सिमरी धमनी, ग्राम अम्बा धमनी से। है
0: आपके यहाँ
1: ठीक।
0: नेटवर्क अच्छा मिलता है?
1: हाँ, प्रसारण तो अच्छा मिलता है, उसका गर्मी पड़ रहा है, इस बार बारिश भी नहीं हुआ है।
0: अच्छा, औरंगाबाद में बारिश नहीं हो रही है?
1: नहीं, औरंगाबाद में कहाँ बारिश हो रहा है, तो कोई बारिश मतलब नहीं है। तापमान भी मतलब बहुत बड़े, हम तो ब्लाइंड है ना।
0: अच्छा,
1: हाँ,
0: दृष्टि
1: मेरी
0: बाधित
1: दिखता है
0: हैं।
1: दोनों आँख से। अरे,
0: रेडियो के प्रोग्राम सुनते हैं और आकाशवाणी ही
1: रेडियो का
0: आपकी
1: सुनते
0: जीवन
1: हैं, किसान
0: संगिनी है।
1: वाणी, बच्चों का अंकुर पसंद, आपकी हेलो फरमाइश, और यह आता है सुर सौरभ के लोकगीत। सर, लोकगीत का एक सुझाव है कि इसे आधा घंटा करते थे तो बहुत अच्छा होता।
0: तो लोकगीत तो हमारे यहाँ 2 बार बजता है, एक रात में लोकधारा बजता है और फिर सुबह में 10:30 पर लोक माधुरी में भी हम लोग लोकगीत
1: हाँ, तो
0: बजाते
1: लोक
0: हैं।
1: माधुरी में बजता है ना, लेकिन
0: जी
1: जैसे और कलाकार को उसमें नहीं सुनाया जाता, जैसे कलाकारों का मतलब लक्की पासवान, चाहे सविता देवी, कुसुम कुमारी, सबके मतलब बहुत कम बजता है, ये चलते हैं मैं बोल रहे थे।
0: अच्छा, ठीक है, हम कोशिश करेंगे कि नए कलाकारों का भी अगर हमारे पास सीडी है तो उसको भी शामिल किया जाए। आपका जो ये सुझाव है हमें बहुत अच्छा लगा इसे सुनकर। आपकी पसंद क्या है, किस फिल्म का गीत?
1: पसंद है गाना, आप सुना दीजिएगा। वो फिल्म तो मतलब याद नहीं है, पे गाना है, मेरी जिंदगी से आना धीरे धीरे से, ऐसे करके कोई गाना
0: धीरे
1: है।
0: धीरे से मेरी जिंदगी में आना।
1: आशिकी
0: हाँ
1: का गाना यह है।
0: जी, आशिकी फिल्म का ये गीत है, बहुत ही अच्छा गीत है ये। सुनवाते हैं आपको आशिकी फिल्म का ये गीत।

0: हेलो मनपसंद,
1: हेलो मैडम,
0: नमस्ते।
1: दिल्ली से बोल रहे हैं
0: दिल्ली से कौन साहब बोल रहे हैं आप?
1: जी। जी मैं फोन हो रहा, पहली बार मेरा नंबर लगा है जी। जी
0: अच्छा, पहली बार आपका नंबर लगा है।
1: पहली बार लगा है जी।
0: आकाशवाणी सासाराम के कार्यक्रम आप कौन कौन से सुनते हैं दिल्ली में? अच्छा,
1: मॉर्निंग से सुनते हैं जी। हाँ
0: मॉर्निंग में सुनते हैं। नमस्ते रोहतास सुनते हैं आप?
1: जी, रोज दिल्ली सुनते हैं जी।
0: अच्छा, रोज सुनते हैं। तो आप दिल्ली के ही मूल निवासी हैं या आप बिहार से दिल्ली गए हैं?
1: नहीं जी, मैं बिहार जहानाबाद जिला से हूँ जी।
0: अच्छा, बिहार के जहानाबाद जिला से हैं आप।
1: हाँ, मेरा पहली बार लगा, खुशी हो रहा है जी। आज मैं काम छोड़ कर लगा था, मैं बोला भाषा के, फिर मेरे को फोन लगाना है जी।
0: तो हमें भी अच्छा लगता है कि आप जैसे श्रोता जो हैं आकाशवाणी सासाराम को इतना प्यार करते हैं कि अपना काम छोड़ के भी आप कॉल लगाते हैं, फरमाइश आप पूरी करते हैं हेलो मनपसंद कार्यक्रम में। आज आप क्या सुनना चाहेंगे?
1: फिल्म का नाम तो मुझे नहीं पता जी, गाना की याद मुझे है जी।
0: अच्छा, तो गाना का बोल ही बता दीजिए।
1: जो प्रेम रोग सुना दीजिएगा।
0: अच्छा, प्रेम रोग फिल्म का कोई सा भी गीत?
1: हाँ जी
0: अच्छा, तो प्रेम रोग फिल्म का ऋषि कपूर पर फिल्माया गया ये गीत हम आपको पहुंचा रहे हैं आपके दिल्ली में। लीजिए, सुनिए।

0: हेलो मनपसंद
1: हेलो
0: जी। हेलो मनपसंद में किनसे बात हो रही है हमारी?
1: जी, हमको इतना चाहत था कि आकाशवाणी सासाराम में मेरी कॉल लग जाए। कब से मिला रहा हूँ, अभी के लगा है जी।
0: तो आज तो आपकी चाहत पूरी हो गई। पहले
1: धन्यवाद।
0: तो हम जानना चाहेंगे कि आप कौन बोल रहे हैं और कहाँ से बोल रहे हैं।
1: मैं अशोक कुमार प्रजापति, करौता लोसा वाराणसी से। मेरी बात किससे हो रही है? रागिनी
0: आपकी बातचीत रागिनी मैडम से हो रही है
1: मैडम जी, प्यार भरा नमस्कार।
0: और आपसे भी बात करके अच्छा लग रहा है। क्या पसंद है आज आपकी?
1: हाँ, पसंद तो हम लोग आकाशवाणी से जुड़े रहते हैं। रेडियो हम लोग का चाहत है। एक रेडियो ऐसा हम लोग का जीवन साथी है कि हम लोग का काम धंधे करते करते दिन गुजर जाता है, हमको पता ही नहीं चलता है। कार्यक्रम में एक गाना हम जरूर देना चाहते हैं।
0: जी बताइए।
1: वो गाना है कहाँ से? तू इस कदर से मेरी जिंदगी में शामिल हो।
0: आपकी फरमाइश को पूरा कर रहे हैं। लीजिए सुनिए अपनी पसंद का ये गीत।

0: हेलो मनपसंद
1: हेलो
0: जी, बोलिए, कौन बोल रहे हैं आप? कहाँ से बोल रहे हैं?
1: जी, हम घटकन से बोबी जी बोल रहे हैं।
0: अच्छा, घटकन से बोल रहे हैं
1: जी,
0: आप क्या सुनना चाहेंगे आज आप?
1: नागिन फिल्म का कोई गाना सुना दीजिए।
0: अच्छा, नागिन फिल्म का कोई सा भी गीत सुना चाहेंगे आज आप?
1: मेरा तो बच्चा है, तो बच्ची है,
0: जी, क्या नाम है उनका?
1: अंचल, हिमांशु।
0: तो चलिए, आपको आपके परिवार के साथ सुनवाते हैं नागिन फिल्म का ये गीत।

तो इसी गीत के साथ ही हमारा आज का यह हेलो मनपसंद कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होती है प्रत्येक बुधवार को पूर्वाह्न 11 बजे से अपराह्न 12 बजे तक। तो आप सभी श्रोताओं से हम गुजारिश करते हैं कि जिन श्रोताओं के कॉल आज शामिल हो चुके हैं वो हमें कुछ दिनों तक कॉल न करें। अगले बुधवार को हमारे नए श्रोता इस नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं। जी हाँ, हेलो मनपसंद कार्यक्रम में अपनी पसंद का गीत सुनने के लिए हमारा रिकॉर्डिंग समय है पूर्वाह्न 11 बजे से अपराह्न 12 बजे तक, और हमारा नंबर है 0618422110। तो इस नंबर पर आप पूर्वाह्न 11 बजे से अपराह्न 12 बजे तक प्रत्येक बुधवार

को रिकॉर्डिंग करवा सकते हैं और अपनी पसंद का गीत प्रत्येक बुधवार को रात 7:50 से रात 8:45 तक सुन सकते हैं। और शेष भाग आप सुनेंगे प्रत्येक शनिवार को रात 7:50 से रात 8:45 तक। और अब इसी के साथ रागिनी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: मंगल भवन मंगल हारी रवहु सुदर्शन।
1: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
2: अभी आप सुन रहे थे फोन इन फरमाइशी कार्यक्रम हेलो मनपसंद। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे संतोष कुमार। आकाशवाणी का ये सासाराम केंद्र है FM 103.4 MHz पर। आपसे थोड़ी देर में हम सुनेंगे समाचार संध्या आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। कृपया करें कुछ पल का इंतज़ार।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय विमानन कंपनियों की सहायता के लिए 10,000 करोड़ रुपए के विमानन ईंधन स्थिरता कोष को मंजूरी दी। दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में पुराने ट्रकों और बसों को नए वाहनों से बदलने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड को भी स्वीकृति मिली। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस ने निष्कासित विधायक ऋतव्रत बनर्जी को राज्य विधानसभा में विपक्ष का नेता नियुक्त किया गया। कांग्रेस नेता डी के शिव कुमार ने कर्नाटक के 25वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। जी परमेश्वर ने उप मुख्यमंत्री पद की और 12 विधायकों ने कैबिनेट मंत्री पद की शपथ ली। दिल्ली के मालवीय नगर में भीषण आग में 21 लोगों की मौत। पुलिस ने गैर इरादतन हत्या के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की। मौसम विभाग ने कल केरलम और माहे में तेज वर्षा की चेतावनी दी। और इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन में आयुष शेट्टी चीन के वेंग होंग यांग को हराकर सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विमानन ईंधन की कीमतों को स्थिर रखने के लिए तेल विपणन कंपनियों को 10,000 करोड़ रुपए की एकमुश्त बजटीय सहायता देने का निर्णय लिया।

0: नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारतीय विमानन कंपनियों की सहायता के लिए ये आत्मनिर्भर कोष 36 महीने के लिए लागू रहेगा।
1: ATF प्राइस स्टेबिलाइजेशन फंड में एक सेल्फ सस्टेनिंग रिवॉल्विंग फंड बनाया गया। ATF प्राइस फॉर द एयरलाइन कैरियर्स हु वांट टू पार्टिसिपेट इन दिस, उनको एक स्टेबल ATF प्राइस अभी करंट क्राइसिस के दौरान मिलेगा। इससे हमारे एंटायर एविएशन सेक्टर में करीब 70 लाख से अधिक जो जॉब्स हैं, जिनके ऊपर इम्पैक्ट पड़ना आरंभ होने लगा था बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस इन द सेक्टर, वो इससे सिग्निफिकेंटली मिटिगेट होगा।
0: मंत्रिमंडल ने दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पुराने ट्रकों और बसों को नए वाहनों से बदलने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड को सहायता प्रदान करने की योजना को भी मंजूरी दी है। श्री वैष्णव ने बताया कि योजना के अंतर्गत लगभग 2 लाख ट्रक और 16,000 बसें BS6 या इलेक्ट्रिक वाहनों से बदली जाएंगी।
2: दिल्ली के पॉल्यूशन को रोकने के लिए लगातार कई स्टेप्स लिए जा रहे हैं। उन स्टेप्स में एक बहुत बड़ा निर्णय लिया गया कि जो 40% कॉन्ट्रीब्यूशन है पार्टिकुलेट मटेरियल का, वो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर के कारण आता है, और उस ट्रांसपोर्टेशन में जो सबसे बड़ा कॉन्ट्रीब्यूटर है हैवी ट्रक्स और बसेस, पुरानी ट्रकों और बसों को रिप्लेस करने का इसमें फैसला लिया गया।
0: मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने ओडिशा में रामेश्वर से पारादीप तक 163 किलोमीटर से अधिक लंबे तटीय राजमार्ग के निर्माण को भी मंजूरी दी है। इस परियोजना की कुल लागत 830 करोड़ रुपए से अधिक होगी। श्री वैष्णव ने बताया कि इससे रामेश्वर और पारादीप के बीच यात्रा का समय घटकर लगभग 2.5 घंटे कम हो जाएगा।
2: उड़ीसा में कोस्टल हाईवे, जो स्टेट की बहुत लंबे समय से एक डिमांड रही है, बिकॉज कोस्टल एरियाज का बार बार साइक्लोन से इम्पैक्ट होना, कोस्टल एक्टिविटीज जो है, फिशिंग हो, पान की खेती हो, धान की खेती हो, कई तरह के इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं, और साथ ही साथ जो टूरिज्म और श्रद्धा के बड़े केंद्र हैं, जैसे पुरी हो गया, चिलिका हो गया, इन सब की कनेक्टिविटी अलोंग द कोस्ट कैसे हो, ये एक लंबे टाइम से उड़ीसा की डिमांड रही है। तो इस डिमांड को आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कैबिनेट में अप्रूव किया।
0: मंत्रिमंडल ने बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग 31 और 231 के खगड़िया पूर्णिया खंड को 4 लेन करने को भी मंजूरी दी है। इसकी लागत 3,936 करोड़ रुपए से अधिक होगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। पश्चिम बंगाल विधानसभा में ऋतव्रत बैनर्जी को विपक्ष का नेता नियुक्त किया गया है। विधानसभा अध्यक्ष द्वारा तृणमूल कांग्रेस के बाकी विधायकों के एक समूह को अलग विधायक दल के रूप में मान्यता देने के बाद ये नियुक्ति हुई है। एक रिपोर्ट।
2: ऋतव्रत बैनर्जी पहले मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के राज्यसभा सांसद थे और बाद में तृणमूल कांग्रेस में शामिल हुए। उन्हें लगभग 60 विधायकों का समर्थन मिल गया है। यह संख्या दल बदल विरोधी कानून के अंतर्गत आवश्यक 2/3 बहुमत के आंकड़ों से अधिक है। ममता बनर्जी गुट ने इससे पहले शोभन देव चट्टोपाध्याय को विपक्ष नेता नामित किया था। इससे पहले पार्टी ने नेता प्रतिपक्ष की नियुक्ति के लिए जमा किए गए हस्ताक्षरों से जुड़े विवाद में पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में विधायक ऋतव्रत बैनर्जी और संदीपन साह को निष्कासित कर दिया था। कोलकाता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशेष शुक्ला।
1: इस बीच पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज नबन्ना में सामाजिक सुरक्षा योजना अन्नपूर्णा की शुरुआत की। इसके अंतर्गत 28 लाख से अधिक महिलाओं के खातों में 3,000 रुपए भेजे गए। योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को पंजीकरण कराने के लिए 90 दिन का समय दिया गया है। 25 से 60 वर्ष की आयु वर्ग की महिलाएं योजना के लिए पात्र होंगी। कर्नाटक में वरिष्ठ कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार ने आज राज्य के 25वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। सिद्धारमैया मंत्रिमंडल में गृह विभाग संभाल रहे डॉक्टर जी परमेश्वर ने उप मुख्यमंत्री पद की और 12 विधायकों ने कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार द्वारा शपथ ग्रहण के बाद एक्स साइट में कहा कि इस बदलते टेक्नोलॉजी के युग में कर्नाटक नए आइडियाज के साथ अपने विकास पथ में सबसे आगे बढ़े। लोग

0: भवन से विधानसौधा पहुंचने के बाद उन्होंने महात्मा गांधी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, जगत ज्योति बसवन्ना और अन्य महान पुरुषों की पुतली पर पुष्प नमन किया। उसके बाद उन्होंने विधानसौधा के नॉर्थ गेट पर झुककर नमस्कार किया। अपने पहले कैबिनेट मीटिंग में वह कुछ नए समाज कल्याण कार्यक्रमों की घोषणा करने की संभावना है। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री डी के शिव कुमार को बधाई दी है। श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार जनता के कल्याण के लिए कर्नाटक सरकार के साथ मिलकर काम करेगी। दिल्ली के मालवीय नगर के एक होटल में आज सुबह आग लगने की घटना में 21 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में कई विदेशी नागरिक भी शामिल हैं। 40 से अधिक लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया है। एक रिपोर्ट।
2: दिल्ली पुलिस ने दक्षिण दिल्ली के मालवीय नगर में होटल में आग लगने की घटना में गैर इरादतन हत्या के आरोप में FIR दर्ज किया है। इस हादसे में कम 21 लोगों की मौत हो गई। 26 लोगों का अभी इलाज चल रहा है। दिल्ली नगर निगम ने भी घटना की जांच के आदेश दिए हैं। दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत संधू ने कहा है कि कल से जिला मजिस्ट्रेटों, पुलिस उपायुक्तों और नगर निगम के उपायुक्तों की संयुक्त नेतृत्व में 1 महीने तक चलने वाला प्रवर्तन और रोकथाम अभियान शुरू किया जाए। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने हादसे पर दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने मृतकों के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा बाजार बनकर उभरा है। श्री यादव ने बताया कि 2025 तक वार्षिक सौर ऊर्जा क्षमता वृद्धि के मामले में देश ने अमेरिका को पीछे छोड़ दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के अंतर्गत देश में पिछले 12 वर्ष में उल्लेखनीय बदलाव आया है। इस दौरान मोदी सरकार ने निर्धनों, किसानों

अभी आप सुन रहे थे शास्त्रीय गायन पर आधारित कार्यक्रम सुर सौरव। आकाशवाणी का ये सासाराम केंद्र है FM बैंड के 103.4 MHz पर। अब आइए पुनः रुक करते हैं विविध भारती कार्यक्रम की ओर और चलते हैं आकाशवाणी के मुंबई केंद्र।

0: भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: कमाल साहब कह रहे थे कयाम साहब जो मेरा हीरो है वो सिंगर नहीं है, उसने गाना सीखा नहीं, मुझे ऐसी आवाज।
0: संगीतकार खयाम।
1: पूरे हिंदुस्तान भर से आवाजें इकट्ठी की गई, यहाँ बुलाया गया। सजेशन आई कि साहब एक आवाज है कब्बन मिर्जा साहब, बुलाया उनको, सुना आवाज तो यही है जो चाहिए कमाल साहब को, बेमिसाल गा गए वो। आई जंजीर की झनकार खुदा खैर, तो उसमें जो रिदम है जंजीरों का है।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

0: श्रोताओं नमस्कार, स्वागत है आपका आज के फनकार में। आज हम बात करेंगे उस चेहरे की जिसे देखकर दिल मुस्कुरा उठता है, जिसकी मुस्कान पर लोग दिल हार जाते हैं और वो हमारे दिल में बस जाता है। एक ऐसा अभिनेता जो रोमांस करता है तो सच्चा लगता है,
1: सच कह रहा है दीवाना,
0: और जब दर्द दिखाता है तो आंखें नम हो जाती हैं।
1: दिल दिल ना किसी से लगाना।
0: जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हमारे अपने आर माधवन की, जिन्हें प्यार से लोग मैडी कहते हैं।

एक ऐसा कलाकार जिसने टेलीविजन से शुरुआत की, तमिल सिनेमा में अपनी अलग पहचान बनाई और फिर बॉलीवुड में अपने अभिनय से लाखों दिलों को छू लिया।

रंगनाथन माधवन का जन्म 1 जून 1970 को बिहार के जमशेदपुर में हुआ, जो अब झारखंड में आता है। पिता राघवन टाटा स्टील में मैनेजर और माँ सरोजा बैंक में मैनेजर थीं। आर माधवन की फैमिली जमशेदपुर में ही रहती थी, इसी वजह से इनकी स्कूलिंग यहाँ से पूरी हुई। अपनी स्कूलिंग पूरी करने के बाद महाराष्ट्र में मौजूद कोल्हापुर के राजाराम कॉलेज में इलेक्ट्रॉनिक्स से बीएससी में ग्रेजुएशन किया और वो पढ़ाई में बहुत ही शानदार स्टूडेंट थे और ग्रेजुएशन करने के बाद मुंबई के किशनचंद चेलाराम कॉलेज से पब्लिक स्पीकिंग में अपने पोस्ट ग्रेजुएशन को कम्प्लीट किया। पढ़ाई के अलावा आर माधवन पढ़ाई के दिनों में ही एनसीसी कैडेट भी रह चुके थे और एनसीसी ट्रेनिंग भी उन्होंने ली। लाइफ में एक ऐसा समय भी आया जब वो मिलिट्री ज्वाइन करना चाहते थे, लेकिन किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। इसी दौरान उन्हें मॉडलिंग का ऑफर मिला और फिर आया टेलीविजन का दौर। यूले लव स्टोरीज, बनेगी अपनी बात, सी हॉक्स और घर जमाई, इन सीरियल्स में उन्होंने छोटे पर्दे पर अपनी पहचान बनाई।

असली ब्रेक मिला साल 2000 में मणिरत्नम की तमिल फिल्म अलई पायते से। इस फिल्म की सफलता ने उन्हें तमिल सिनेमा का रोमांटिक हीरो बना दिया और फिल्म का हिंदी रीमेक साथिया के रूप में बना साल 2002 में, और इसमें नजर आए विवेक ओबेरॉय और राय मुखर्जी।

2001 में उन्होंने हिंदी फिल्म रहना है तेरे दिल में से हिंदी डेब्यू किया। फिल्म में दिया मिर्जा और सैफ अली खान के साथ उनके किरदार मैडी ने युवाओं के बीच उन्हें सुपरस्टार बना दिया। हालांकि बॉक्स ऑफिस पर फिल्म शुरुआत में औसत रही, लेकिन बाद में ये कल्ट रोमांटिक क्लासिकल बन गई।

साल था 2002, फिल्म थी दिल विल प्यार व्यार। इस फिल्म में माधवन ने एक ऐसे नौजवान का किरदार निभाया जो प्यार में टूटा तो जरूर, लेकिन फिर उस टूटे दिल को संगीत के सुरों में ढाल दिया। एक तरफ इमोशन था तो दूसरी तरफ रफ्तार से भागती जिंदगी, और इन दोनों के बीच माधवन ने अपनी एक्टिंग से वो बैलेंस बनाया जिसे देख दर्शक बस यही बोले क्या बात है।

बात करते हैं एक ऐसी फिल्म की जो आर माधवन के लिए सिर्फ एक रोल नहीं बल्कि एक क्रिएटिव सफर थी, राम जी लंदन वाले। ये फिल्म तमिल हिट नल दमयंती की हिंदी रिमेक थी जिसे लिखा था कमल हासन ने, लेकिन हिंदी वर्जन को माधवन ने सिर्फ निभाया ही नहीं बल्कि संवादों से लेकर क्लाइमेक्स तक खुद लिखा खुद संवारा। बावर्ची नाम से शुरू ही ये फिल्म

0: बाद में रामजी लंदन वाले बनी। और खास बात ये थी कि निर्देशक संजय दयामा, जिन्हें आपने लगान जैसी फिल्मों में बतौर सह निर्देशक देखा होगा, पहली बार डायरेक्शन की कमान संभाल रहे थे। रामजी लंदन वाले आज भी माधवन के करियर की एक यादगार कहानी है। साल 2006 में रंग दे बसंती में फ्लाइट लेफ्टिनेंट अजय राठौर की भूमिका माधवन ने निभाई, जो छोटी लेकिन बेहद असरदार थी। कहा जाए तो उनके किरदार के इर्द गिर्द ही पूरी कहानी गुथी गई। इस फिल्म में सोहाली खान के साथ उनकी जोड़ी को काफी सराहा गया।
1: जीरो

2009 में आई फिल्म थ्री इडियट्स और आर माधवन उस कहानी का वो हिस्सा बने जिसने लाखों युवाओं के दिल की बात कह दी। उन्होंने निभाया फरहान कुरैशी का किरदार, एक ऐसा लड़का जो इंजीनियरिंग की किताबों में उलझा जरूर था लेकिन उसके भीतर बसता था एक कलाकार का दिल, एक फोटोग्राफर की उड़ान। फरहान की दुविधा, उसके डर और अंत में उसका हिम्मत से किया गया फैसला, ये सब कुछ इतना सच्चा लगा कि मानो हर दर्शक को अपनी ही कहानी उसमें दिखाई दी। माधवन ने फरहान को सिर्फ निभाया नहीं बल्कि जिया, और इसी वजह से आज भी वो किरदार लोगों के दिलों में एक प्रेरणा की तरह जिंदा है।

साल 2011 और पर्दे पर नजर आई एक अनोखी प्रेम कहानी तनु वेड्स मनु। इस फिल्म में आर माधवन बने डॉक्टर मनु शर्मा, एक शान संकोची लेकिन दिल से बेहद सच्चे प्रेमी। उनके सामने थी कंगना रनौत एक बिंदास और बगावती तनु के रूप में। मनु का किरदार जैसे सादगी की मिसाल था, वो प्यार करता लेकिन उसका शोर नहीं मचाता था, उसकी खामोशी में भी इश्क की आवाज थी। और फिर साल 2015 में इसका सिक्वल आया तनु वेड्स मनु रिटर्न्स। फिल्म ने तो जैसे बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया। इस बार माधवन ने उसी मनु को और भी गहराई और टूटे दिल की तड़प के साथ निभाया।

माधवन कुछ समय के लिए सिल्वर स्क्रीन से दूर हो गए। इस दौरान उन्होंने खुद को रिफाइन किया, एक्टिंग और लुक्स पर काम किया और साल 2017 में धमाकेदार वापसी की फिल्म विक्रम वेधा से। इस क्राइम थ्रिलर में उन्होंने एक पुलिस अफसर का किरदार निभाया जिसे क्रिटिक्स और दर्शकों दोनों का प्यार मिला। इस थ्रिलर को निर्देशित किया था पुष्कर गायत्री की जोड़ी ने, जिन्होंने साल 2017 में तमिल सिनेमा को एक नई ऊंचाई दी। आर माधवन बने ईमानदार पुलिस अफसर विक्रम, गंभीर, सुलझा हुआ और भीतर से सवालों से घिरा हुआ। वहीं विजय सेतुपति के निभाए किरदार वेधा ने अपनी कहानियों से विक्रम की सोच को ही हिला दिया। ये फिल्म जितने थ्रिलिंग थी उतनी ही सोचने पर मजबूर करने वाली। तभी तो साल 2022 में आई इसकी हिंदी रीमेक। निर्देशन फिर से पुष्कर गायत्री के हाथ में था। इस बार विक्रम बने सैफ अली खान और वेधा बने ऋतिक रोशन। फिल्म में एक्शन और स्टाइल भरपूर था लेकिन गहराई थोड़ी हल्की। सैफ का विक्रम ज्यादा आक्रामक था जबकि ऋतिक वेधा के रूप में पूरी तरह चार्म और धमक से भरे। तमिल वर्जन सोच के दरवाजे खोलता है और हिंदी वर्जन एंटरटेनमेंट का दरवाजा।

2022 में आर माधवन ने खुद को सिर्फ एक अभिनेता नहीं बल्कि एक दृढ़ संकल्प और जुनून के प्रतीक के रूप में पेश किया। फिल्म थी रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट। ये फिल्म तीन भाषाओं में एक साथ बनी, इंग्लिश, तमिल और हिंदी। इस बार माधवन ने सिर्फ पर्दे पर अभिनय नहीं किया बल्कि

फिल्म को लिखा, निर्देशित और प्रोड्यूस भी किया। कहानी थी एक सच्चे हीरो की, इसरो वैज्ञानिक नंबी नारायणन की, जिनकी जिंदगी में विज्ञान जितना बड़ा था उतना ही बड़ा था अन्याय से लड़ने का हौसला भी। माधवन ने इस किरदार में नंबी सर की प्रतिभा, पीड़ा और आत्मसम्मान को कुछ इस तरह जिया कि हर दर्शक की आंखें नम हो गई। रॉकेट्री को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला और कांस फिल्म फेस्टिवल में भी इसे स्टैंडिंग ओवेशन मिला। ये सिर्फ एक फिल्म नहीं थी, ये थी माधवन की सबसे महत्वाकांक्षी और दिल के करीब परियोजना, जिसने साबित किया कि जब सच्ची कहानी और सच्चा कलाकार एक साथ मिल जाएं, तो सिनेमा इतिहास बन जाता।

माधवन की निजी जिंदगी भी उतनी ही प्रेरणादायक है। उनकी पत्नी सरिता बिरजे हैं, जिनसे उनकी मुलाकात एक पब्लिक स्पीकिंग वर्कशॉप के दौरान हुई थी। वो एयर होस्टेस थी और दोनों ने साल 1999 में शादी की। उनका बेटा वेदांत माधवन एक इंटरनेशनल स्विमर है और भारत के लिए उसने स्वर्ण पदक जीते हैं। माधवन अपने बेटे की सफलता को सबसे बड़ा गौरव मानते हैं।

के वर्षों में माधवन ने न सिर्फ सिनेमा में वापसी की बल्कि अपने अभिनय की गहराई से सबको चौंका दिया। साल 2024 में रिलीज हुई फिल्म शैतान, इसमें उन्होंने एक तांत्रिक की भूमिका निभाई जो रहस्यमय और भयावह शक्तियों से जुड़ा हुआ है। इस किरदार में उनका खामोश डर, रहस्यपूर्ण मुस्कान और संजीदगी ने दर्शकों को डराया भी और बांधे भी रखा। ये भूमिका उनकी अभिनय क्षमता का एक नया आयाम दिखाती है। इसके अलावा वेब सीरीज डी कपल्ड में उन्होंने एक तलाकशुदा लेखक की भूमिका निभाई जो अपने रिश्तों और समाज की विडंबनाओं से जूझ रहा है। इस सीरीज में उनका व्यंग्यात्मक अंदाज और ईमानदार प्रदर्शन एकदम नया अनुभव था। साथ ही 2023 में नेटफ्लिक्स की बहुचर्चित वेब सीरीज द रेलवे मैन में उन्होंने भारतीय रेल कर्मियों के संघर्ष को दर्शाने वाले एक अहम किरदार में दमदार अभिनय किया। हिसाब बराबर में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और समाज के ज्वलंत मुद्दों को बारीकी से प्रस्तुत किया। माधवन का मानना है कि फिल्मों का उद्देश्य केवल मनोरंजन नहीं बल्कि प्रेरणा देना और समाज में सकारात्मक बदलाव लाना भी।

माधवन को मिले पुरस्कारों में शामिल हैं बेस्ट एक्टर का फिल्म फेयर साउथ अवार्ड, अलई पायते फिल्म के लिए आईफा और जी सिने अवार्ड का नॉमिनेशन उन्हें मिला थ्री इडियट्स फिल्म के लिए। राष्ट्रीय पुरस्कार उन्हें मिला बेस्ट फीचर फिल्म का रॉकेटरी के लिए। इसके अलावा उन्हें यूएन द्वारा यूथ आइकन

तौर पर सम्मानित किया गया। उनकी छवि एक जिम्मेदार अभिनेता और संवेदनशील इंसान की है। माधवन एक ऐसे अभिनेता हैं जिन्होंने मेहनत, लगन और ईमानदारी से इंडस्ट्री में अपनी अलग पहचान बनाई। उम्र के इस दौर में भी उनका चार्म और व्यक्तित्व उन्हें किसी भी नए अभिनेता से कम नहीं ठहराता। वो आज भी हर दिल में बसते हैं, युवाओं के फेवरेट हैं और हर भूमिका में एक नई ताजगी लेकर आते हैं।

0: आज का जश्न मनाता, हर लम्हे को खुल के जीता था वो।
1: आज के फनकार, ये कार्यक्रम आज केंद्रित था दिलकश मुस्कान के मालिक आर माधवन पर। स्वर नेहा शर्मा का, शोध आलेख और प्रस्तुति तेजश्री कामले की। अब दीजिए इजाजत।

0: मोहब्बत आज का जश्न मनाता, हर लम्हे को खुल के जीता था वो।
1: आज के फनकार, ये कार्यक्रम आज केंद्रित था दिलकश मुस्कान के मालिक आर माधवन पर। स्वर नेहा शर्मा का, शोध आलेख और प्रस्तुति तेजश्री कामले की। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।
2: आज के फनकार।

आकाशवाणी का ये सासाराम केंद्र है FM 103.4 MHz पर। प्रस्तुत है हिंदी एल्बम सॉन्ग पर आधारित कार्यक्रम रस रंग। रस रंग कार्यक्रम में आइए सबसे पहले सुनते हैं बेदर्दी से प्यार का एल्बम का ये प्यारा सा गीत जुबीन नौटियाल के स्वर में। मनोज मुतशिर ने इस गीत को शब्द दिया है और धुन है मीत ब्रोस की।

और अब आइए रसरंग कार्यक्रम में सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत, मेरा दिल भी कितना पागल है एल्बम से। इस गीत को शब्द दिया है और धुन बनाया है अशरफ अली ने। गायक कलाकार है ममता शर्मा।

श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।

अभी आप सुन रहे थे नैनो की शरारत एल्बम से ये प्यारा सा गीत, सौरभ गंगल अनुष्का गुप्ता की स्वर में। अनु फातिमा ने इस गीत को शब्द दिया है और नितेश रामचंद्र सलीम आसिफी ने धुन बनाई है। और अब आइए रस रंग कार्यक्रम में सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत, ओ आसमां वाले एल्बम से। गायक कलाकार है जुबिन नौटियाल, गीतकार है मनोज मुतशिर माया गोविंद और संगीतकार है रोचक कोहली अमर उत्पल।

कार्यक्रम में हमारे साथ बने रहने के लिए तहे दिल से शुक्रिया। श्रोताओं, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी के सासाराम केंद्र को, और अब रसरंग कार्यक्रम में सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत यसीर देसाई के स्वर में। मनोज यादव ने इस गीत को शब्द दिया है और जीत गांगुली ने धुन बनाई है।

और अब आइए रसरंग कार्यक्रम का अगला और अंतिम गीत सुनते हैं, नेहा कक्कर जुबिन नौटियाल के स्वर में, तारों के शहर एल्बम से। इस गीत को शब्द और धुन बनाया है जानी ने।

नेहा कक्कर, जुबिन नौटियाल के गाए इसी गीत के साथ रस रंग कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये सासाराम केंद्र है FM 103.4 MHz पर। हमारा अगला कार्यक्रम एक छोटे से अंतराल के बाद।

श्रोताओं, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी के सासाराम केंद्र को। प्रस्तुत है कार्यक्रम चित्रपट तराने। चित्रपट तराने में कुछ रिश्ते नाम के मोहताज नहीं होते, वे बस दिल में बस जाते हैं। किसी की हंसी, किसी की बातें जिंदगी की सबसे प्यारी याद बन जाती है। वक्त गुजर जाता है, मौसम बदल जाते हैं, लेकिन कुछ एहसास कभी नहीं बदलते।

कभी कभी ज़िंदगी हमें ऐसे मोड़ पर ले आती है जहाँ मुस्कुराहट के पीछे भी कई कहानियाँ छिपी होती है। कुछ ख्वाब अधूरे रह जाते हैं, कुछ लोग दूर होकर भी दिल के करीब रहते हैं। यादों की अपनी एक दुनिया होती है जहाँ हर एहसास जिंदा होता है। ये अगला गीत उन्हीं जज्बातों को आवाज़ देता है।

ती है कि ये दिल से शुरू होकर दिल तक पहुंचती है। कुछ लोग हमारी ज़िंदगी में ऐसे आते हैं जैसे कोई अधूरी दुआ पूरी हो गई हो। उनकी मौजूदगी से हर लम्हा खास लगने लगता है और फिर एक रिश्ता बन जाता है जिसे शायद किस्मत का राबता कहते हैं।

दिल की बातें हमेशा शब्दों में नहीं कही जाती, कुछ बातें सिर्फ महसूस की जाती है। कभी किसी का इंतज़ार तो कभी किसी की याद दिल को चुपचाप छू जाती है, और तब कोई गीत हमारी कहानी सा लगने लगता है।

इसी गीत के साथ चित्रपट तराने कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे संतोष कुमार। आकाशवाणी का ये सासाराम केंद्र है। आइए एक नज़र डालते हैं अगले दिन के कार्यक्रम विवरणी पर।

श्रोताओं, कल हम पुनः आपके सेवा में हाजिर होंगे प्रातः के 5:51 से। प्रातः के 7:30 पर आप सुनेंगे प्रातःकालीन सूचना कार्यक्रम नमस्ते रोहतास। पसंद आपकी कार्यक्रम लेकर हाजिर होंगे सुबह के 8:20 पर।

गीत मलिका का कार्यक्रम लेकर आएंगे हम प्रातः के 9:10 पर, और हिंदी कार्यक्रम में साहित्यिक कार्यक्रम आप सुनेंगे सुबह के 10:05 से। भोजपुरी एल्बम लोकगीत पर आधारित कार्यक्रम लोकगीत आप सुनेंगे कल सुबह के 10:30 पर, और 10:45 पर हम आपको सुनवाएंगे भोजपुरी एल्बम सॉन्ग पर आधारित कार्यक्रम रस धार।

भक्ति संगीत पर आधारित कार्यक्रम वंदन आप सुनेंगे संध्या के 5:10 पर और युवाओं का कार्यक्रम लेकर हाजिर होंगे हम संध्या के 5:30 से। भोजपुरी लोकगीत 6:00 सुनेंगे और 6:05 पर भोजपुरी बुलेटिन समाचार होगा।

किसानवाड़ी होगा संध्या के 6:10 पर। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार। भोजपुरी फिल्म संगीत का कार्यक्रम सांझे गीत हम आपको सुनवाएंगे संध्या के 6:40 पर। 7:15 पर होगा गुड इवनिंग रोहतास में सांध्यकालीन सूचना कार्यक्रम। इसके साथ प्रादेशिक समाचार हम आपको सुनवाएंगे आकाशवाणी के पटना केंद्र से संध्या के 7:25 पर।

ईमेल आधारित फरमाइशी कार्यक्रम हम आपको सुनवाएंगे संध्या के 7:50 से, कार्यक्रम ई मन पसंद में। लोकधारा आप सुनेंगे भोजपुरी लोकगीत पर आधारित रात्रि के 9:00 और 9:15 पर। गजलों की महफिल सजेगी कार्यक्रम महफिल में।

रस रंग कार्यक्रम लेकर हाजिर होंगे कल हम रात्रि के 10 बजे और 10:30 पर। फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम होगा चित्रपट तराने। इसके साथ रात्रि के 11 बजे हम आपको सुनवाएंगे हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। और अंततः 11:10 पर रात्रि की होगा सभा का समापन।

और भाई एक नज़र डालते हैं आज के मौसम पूर्वानुमान पर। तो आज अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस के रहने की संभावना थी, उसके साथ ही न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस, अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता 60%, वहीं न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता 20% रहने की संभावना थी। हवा की गति प्रति घंटा किलोमीटर की दर से 16 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से थी और पवन दिशा 210 डिग्री पर। इसके साथ ही आज कोई चेतावनी नहीं है आंधी पानी की। और ये था मौसम पूर्वानुमान। अब आइए चलते हैं आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र और सुनते हैं हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विमानन ईंधन की कीमतों को स्थिर रखने के लिए तेल विपणन कंपनियों को 10,000 करोड़ रुपए की एकमुश्त बजटीय सहायता देने का निर्णय लिया है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारतीय विमानन कंपनियों की सहायता के लिए ये आत्मनिर्भर कोष 36 महीने के लिए लागू रहेगा। मंत्रिमंडल ने दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पुराने ट्रक और बस को नए वाहनों से बदलने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड को सहायता प्रदान करने की योजना को भी मंजूरी दी है। श्री वैष्णव ने बताया कि योजना के अंतर्गत लगभग 2 लाख ट्रक और 16,000 बस BS6 या इलेक्ट्रिक वाहनों से बदली जाएंगी।
1: दिल्ली के पॉल्यूशन को रोकने के लिए लगातार कई स्टेप्स लिए जा रहे हैं। उन स्टेप्स में एक बहुत बड़ा निर्णय लिया गया कि जो 40% कंट्रीब्यूशन है पार्टिकुलेट मटेरियल का, वो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर के कारण आता है और उस ट्रांसपोर्टेशन में जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है हैवी ट्रक्स और बसेस, पुरानी ट्रकों और बसों को रिप्लेस करने का इसमें फैसला लिया गया है।
0: मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने ओडिशा में रामेश्वर से पारादीप तक 163 किलोमीटर से अधिक लंबे तटीय राजमार्ग के निर्माण को भी मंजूरी दे दी है। इस परियोजना की कुल लागत 830 करोड़ रुपए से अधिक होगी। श्री वैष्णव ने बताया कि इससे रामेश्वर और पारादीप के बीच यात्रा का समय लगभग 2.5 घंटे कम हो जाएगा। मंत्रिमंडल ने बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग 31 और 231 के खगड़िया पूर्णिया खंड को 4 लेन करने को भी मंजूरी दी है। इसकी लागत 3,936 करोड़ रुपए से अधिक होगी। सर्वोच्च न्यायालय ने अरावली पर्वत श्रृंखला की परिभाषा और सीमांकन संबंधी केंद्र सरकार की रिपोर्ट की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद की महानिदेशक कंचन देवी करेंगी। समिति को इस वर्ष 31 अगस्त तक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के मालवीय नगर में एक होटल में आग लगने से 21 लोगों की मौत हो गई। आग पर काबू पा लिया गया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि स्थिति पर कड़ी नजर रखी जा रही है। शहरी विकास मंत्री आशीष सूद ने कहा कि लापरवाही करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
2: जिनके लापरवाही के कारण ये हुआ है, पुलिस जांच करके उसे तुरंत अभी गिरफ्तार करेंगी। आसपास के इस एरिया में ऐसी जितनी इमारतें चल रही हैं, जिसमें राई बराबर भी वॉयलेशन होगी, शाम तक उसकी जांच करके ऐसी सभी इमारतों को सील किया जाएगा। एक भी दोषी छोड़ा नहीं जाएगा।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने हादसे पर दुख व्यक्त किया है। पश्चिम बंगाल विधानसभा में ऋतव्रत बनर्जी को विपक्ष का नेता नियुक्त किया गया है। विधानसभा अध्यक्ष द्वारा तृणमूल कांग्रेस के बागी विधायकों के एक समूह को अलग विधायक दल के रूप में मान्यता देने के बाद ये नियुक्ति हुई है। कर्नाटक में वरिष्ठ कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार ने आज राज्य के 25वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। सिद्धरमैया मंत्रिमंडल में गृह विभाग संभाल रहे डॉक्टर जी परमेश्वर ने उप मुख्यमंत्री पद की और 12 विधायकों ने कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री डीके शिव कुमार को बधाई दी है। श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार जनता के कल्याण के लिए कर्नाटक सरकार के साथ मिलकर काम करेगी। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि भारत में आवागमन वाहन पारितंत्र अब किसी एक तकनीक पर निर्भर नहीं रहेगा। नई दिल्ली में हीरो मोटोकॉर्प की पहली फ्लेक्स फ्यूल मोटरसाइकिल बाजार में उतारे जाने के अवसर पर उन्होंने कहा कि भविष्य का वाहन पारितंत्र इलेक्ट्रिक वाहनों, जैव ईंधन, हाइड्रोजन और नवीकरणीय ऊर्जा को भारतीय परिस्थितियों के अनुरूप एकीकृत करेगा। इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन में आयुष शेट्टी सिंगल्स तथा रोहन कपूर और ऋत्विका शिवानी गद्दे मिक्स्ड डबल्स प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। आयुष ने चीन के वेंग होंगयांग को हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।